नमस्कार, सुप्रभात। FM 103 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। आज सोमवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 19वीं तिथि, तदनुसार 10 अगस्त 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 5:58 और 25 सेकेंड्स हुए हैं। प्रारंभ होती हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

0: इस मौके पर युवा मामले और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और युवा मामले और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारतीय खिलाड़ियों ने विभिन्न खेलों में कुल 39 पदक जीते, जिनमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। हर घर तिरंगा अभियान कल से शुरू हो गया है। 17 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों को अपने घरों पर तिरंगा फहराने और देशभक्ति तथा राष्ट्रीय एकता से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1 करोड़ से ज्यादा मकान बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। झारखंड सरकार और प्रदर्शनकारी छात्रों के बीच झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों की अधिकतर मांगों पर सहमति बन गई है। कल सरकार और छात्रों के बीच हुई वार्ता के बाद मंत्री ने कहा कि कथित वित्तीय अनियमितताओं की ईडी जांच और आपराधिक मामलों की सीआईडी जांच कराई जाएगी, साथ ही 90 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने की भी बात कही गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शिवेंद्र कुमार कश्यप को इस परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं बना रहा है। श्री ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और दावा किया है कि उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए भी पर्याप्त धन नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियों को और बढ़ा दिया है। उनकी ये टिप्पणी ईरान, ओमान और अमरीका के बीच होर्मुज जल डमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए चल रही बातचीत के रुकने के बीच आई है। मुंबई के सोम्या विद्या विहार यूनिवर्सिटी में खेले गए FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 की टीम इवेंट फाइनल में भारत और हांगकांग चीन के बीच मुकाबला 2-2 की बराबरी पर रहा, लेकिन गेम के बेहतर अंतर के आधार पर भारत को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक ईओडी अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोची में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय है मृदा में पोषक तत्व प्रबंधन की तकनीक। संकलन एवं वाचन प्रतिमा वर्मा का।
2: तमाम किसान भाइयों को हमारा नमस्कार। स्वागत है आपका कार्यक्रम खेती की बातें में। किसान भाइयों, प्रत्येक किसान यह अपेक्षा करता है कि उसकी जोत के संपूर्ण क्षेत्र में अच्छी गुणवत्ता वाली अधिक से अधिक उपज प्राप्त हो। किसान भाइयों, हमारी मृदा जितनी अधिक स्वस्थ होगी हम उतनी ही अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए जरूरी है मृदा में पोषक तत्वों का प्रबंधन। किसान भाइयों, जैविक खेती का सिद्धांत पुराना है परंतु अभी

0: व्यवस्थित रूप से लागू नहीं किया जा सका है। कई विकसित देशों में जैविक खेती राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों के आधार पर की जाती है, जिसमें मिट्टी, उत्पादन विधि और उत्पाद प्रमाणीकरण प्रक्रियाएं शामिल हैं। भारतीय जैविक खेती शुद्ध जैविक विधि, समन्वित हरित क्रांति कृषि प्रणाली तथा समेकित कृषि प्रणाली पर आधारित है। किसान भाइयों, शुद्ध जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक और पौध संरक्षण दवाओं का प्रयोग पूर्ण रूप से वर्जित होता है। समन्वित हरित क्रांति कृषि प्रणाली में समेकित पोषक तत्व, कीट एवं व्याधि प्रबंधन तकनीकी को अपनाया जाता है, जबकि समेकित कृषि प्रणाली एक निम्न लागत की कृषि प्रणाली है, जिसमें पोषक तत्वों से परिपूर्ण जैविक स्रोतों को पुनर्चक्रीकरण किया जाता है। इस पद्धति में फसल उत्पादन और पशुपालन को साथ साथ तथा एक दूसरे के पूरक के रूप में किया जाता है। इन तीनों पद्धतियों में से भारतीय किसानों द्वारा मुख्य रूप से जैविक पद्धति और हरित क्रांति पद्धति को अपनाया जा रहा है। मिट्टी में पोषक तत्व संतुलन हेतु दलहनी फसलों की एकल और मिश्रित खेती आवश्यक है। इसके साथ ही मृदा में कृषि अवशेष, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट, जीवाणु खाद और बायोडायनेमिक कंपोस्ट का प्रयोग और पौध सुरक्षा हेतु खरपतवार की सफाई तथा जैविक कीटनाशकों का प्रयोग जरूरी है। किसान भाइयों, मृदा उर्वरता का संतुलन बनाए रखने के लिए फसल की मांग और आवश्यकता के अनुसार पौधों को आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराते रहना आवश्यक है, जिससे अधिक से अधिक उपज मिल सके और मृदा स्वस्थ सुरक्षित बना रहे। इसके लिए आवश्यकता अनुसार अकार्बनिक और कार्बनिक स्रोतों से फसल को सभी तत्वों का निश्चित अनुपात में ग्रहण करना आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक तत्व का पौधों के अंदर अलग अलग कार्य और महत्व है, जो विभिन्न अवस्थाओं में पूर्ण होता है। कोई एक तत्व दूसरे तत्व का पूरक नहीं है। यह संतुलन बिगड़ने पर उत्पादन सीधे प्रभावित होता है। इस व्यवस्था या तकनीकी को एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन की संज्ञा दी गई है। कृषि में एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के कई लाभ हैं, जैसे अधिकतम पैदावार प्राप्त करना, पोषक तत्वों को बर्बादी से बचाना, मृदा की उत्पादकता और स्वास्थ्य बनाए रखना, गुणात्मक उत्पादन प्राप्त करना, वातावरण की विपरीत परिस्थितियों से फसलों का बचाव, कीड़े मकोड़ों के प्रभाव से प्राकृतिक तौर पर कम करना और लागत अनुपात में वृद्धि प्राप्त करना एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन से संभव है। एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के लिए मिट्टी परीक्षण के आधार पर ही उर्वरकों और जैविक खादों का प्रयोग करें। दलहनी फसलों में राइजोबियम कल्चर का प्रयोग अवश्य करें। धान व गेहूं के फसल चक्र में ढेंचे की हरी खाद का प्रयोग करें। फसल चक्र में परिवर्तन करें। आवश्यकता अनुसार उपलब्धता के आधार पर गोबर तथा कूड़ा करकट का प्रयोग कर कंपोस्ट आप तैयार करें। खेत में उपलब्ध फसल अवशिष्ट जैविक पदार्थों को मिट्टी में मिला दें, इससे अनेकों लाभ हैं। कार्बनिक पदार्थ तथा अकार्बनिक उर्वरकों का संतुलित रूप में उपयोग करें। जी हाँ किसान भाइयों, मृदा में पोषक तत्वों के प्रबंधन पर आज विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। जब मृदा स्वस्थ होगी तब अधिक से अधिक फसल उत्पादन संभव है। किसान भाइयों, कार्यक्रम खेती की बातें में बातें आज बस यही तक। दीजिए हमें कार्यक्रम खेती की बातें से अनुमति।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बातें। आज का विषय था मृदा में पोषक तत्व प्रबंधन की तकनीक। इस विषय में आपको बता रही थी प्रतिमा वर्मा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। अब आइए आपको सुनवाते हैं श्री रामचरित।

चित्रकूट की सभा में गुरुजन, मातृत्रय तथा अयोध्यावासियों की उपस्थिति में भरत श्री राम के सम्मुख अपने अंतरतम के उद्गार प्रकट कर रहे हैं। उन्हें इस बात की प्रतीति है कि अपने हितैषियों, बुद्धिमान जन तथा स्वामी के सामने अधिक नहीं बोलना चाहिए। श्री राम के प्रति भरत का स्नेह और समर्पण देखकर उपस्थित समुदाय प्रेमातिरेक से शिथिल पड़ जाता है। स्वयं श्री रघुनाथ जी सम्मान भरे वचन के साथ उनका हाथ पकड़ अपने पास बिठा लेते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस कान। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन। आज का विषय है सफलता की कुंजी आत्मविश्वास। आलेख एवं वाचन निर्मला तिवारी का।

सफलता की कुंजी है कड़ी मेहनत। कोई भी महान काम एक ही दिन में पूरा नहीं किया जा सकता है। इसे करने के लिए बार-बार प्रयास करना पड़ता है और जब तक सफलता ना मिले तब तक थमना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। हम छोटे-छोटे प्रयास करके बड़े काम को कर सकते हैं। अपने आप में विश्वास रखना, दृढ़ इच्छा शक्ति का होना, सकारात्मक सोच का होना, यह सफलता की ओर हमें ले जाता है। कई बार हम

असफलता से निराश हो जाते हैं और प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। असफलता मिलने के बाद हमें उससे सीखना चाहिए कि गलती कहाँ हो रही है और पुनः नए सिरे से प्रयास करना चाहिए। प्रयास करते रहने से एक दिन सफलता अवश्य मिलती है। हमारे सामने अनेक ऐसे उदाहरण हैं, ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन में अपार सफलताएं पाई, लेकिन जब हम उनके अंदर झांकते हैं, उनके जीवन की ओर झांकते हैं, तो पाते हैं कि उन्होंने कठिन संघर्ष किया, तब जाकर उन्हें सफलता मिली। कहने का तात्पर्य है कि सफलता बड़ी आसानी से प्राप्त नहीं हो जाती है, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। जबकि आज के दौर में लोग बहुत ही छोटा रास्ता अपनाना चाहते हैं, वो प्रयास करने से डरते हैं और छोटा रास्ता अपनाकर ऊंचाइयों तक पहुंच जाना चाहते हैं, जो कि चिंता का विषय है, क्योंकि इससे थोड़ी पल के लिए आप किसी कार्य में सफल हो जाएं, लेकिन आपके जीवन में ठहराव नहीं आ पाएगा, वो ऊंचाई आपको नहीं मिल पाएगी जिसे आप प्राप्त करना चाहते हैं। उसके लिए आपको तपना तो पड़ेगा, क्योंकि सोना जब तपता है तभी वह कुंदन बनता है। इसलिए जब तक आपके जीवन में संघर्ष नहीं होगा, कठिनाइयां नहीं होंगी, आप उसका स्वाद नहीं चख पाएंगे। सफलता का स्वाद तभी मिलेगा जब आप तपेंगे, संघर्ष के दौर से गुजरेंगे, तब जाकर आपको महसूस होगा कि सफलता कितनी अच्छी चीज है। इसलिए हमेशा प्रयासरत रहें, कभी भी निराश ना हो, आशा का दामन ना छोड़ें, सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें। सफलता की कुंजी है कठिन मेहनत, संघर्ष, और यदि हमारे जीवन में ऐसा है तो कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है, कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसे हम पूरा नहीं कर सकते हैं। यदि हम ठान लें कि हमें यह काम करना है तो हम उस काम को अवश्य ही कर लेंगे, क्योंकि हम देखते हैं, पाते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एवरेस्ट को फतह कर लिया। क्यों किया? क्योंकि उनके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति थी, वो चाहते थे वहां तक पहुंच जाना, इसलिए वो पहुंचे। और ऐसा नहीं कि आसानी से पहुंच गए, बार बार गिरे, लेकिन प्रयास किया और प्रयास करते हुए वो वहां पहुंच गए। एक छोटी सी चींटी के बारे में ही देख लीजिए कि वह बार बार प्रयास करती है, असफल होती है, गिरती है, लेकिन उसके बाद भी वह संघर्ष करना नहीं छोड़ती और अंततः वह उस ऊंचाई को, उस मंजिल को प्राप्त कर लेती है जो वह पाना चाहती है। इसलिए हमें यदि जीवन में सफलता चाहिए तो फिर मेहनत से, संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए। इसलिए निरंतर प्रयास करिए, जो काम आप करना चाहते हैं उसमें सफलता अवश्य मिलेगी।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चिंतन, विषय था सफलता की कुंजी आत्मविश्वास, आलेख एवं वाचन निर्मला तिवारी का था। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं तृप्ति शाक्या के गाए चंद भक्ति गीत।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना में तृप्ति शाक्या के गाय चंद भक्ति गीत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। आज का विषय है अस्थमा कारण एवं निदान। इस विषय में आपको बताएंगी डॉक्टर आरती गंगोपाध्याय।
1: वायु प्रदूषण के दौर में अस्थमा हमें किस प्रकार प्रभावित कर रही है, बातचीत करेंगे छाती रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अत्री गंगोपाध्याय से। डॉक्टर साहब स्वागत है।
2: नमस्कार, जोहार। अस्थमा भी एक फेफड़े या श्वास नली की बीमारी है और कोविड भी अधिकतर लोगों का फेफड़ा या श्वास नली में असर किया था। तो जो लोग पहले से अस्थमा से ग्रसित थे, कोविड के बाद उनके अस्थमा के सिम्टम्स में बढ़ोतरी आई है और अचानक सिम्टम बढ़ जाना या अस्थमा का अटैक आने, दौरा पड़ना में भी बढ़ोतरी आई है। उसके अलावा क्योंकि कोई नई तरह की कीटाणु से इन्फेक्शन के बाद शरीर में एलर्जी का प्रकोप बढ़ जाता है, इसीलिए काफ़ी ऐसे लोग जिनको पहले से उनमें या उनके खानदान में अस्थमा नहीं थे, कोविड के बाद उनमें अस्थमा जैसे लक्षण देखने को मिल रहे हैं।
1: ऐसे भी मरीज हैं जिनको कोविड नहीं हुआ हो, वो भी अस्थमा से पीड़ित हैं। तो क्या कारण है वर्तमान समय में अस्थमा होने का और हम अपने आप को बचाव किस प्रकार करें?
2: श्रोताओं को मैं एक सीधी बात समझाना चाहता हूँ कि अस्थमा मूलतः सांस नली में एलर्जी को बोलते हैं। ये धूल धुआं, वायु, बहुत सारी चीज़ों से हो सकती है। कहीं ना कहीं आज के समय में बढ़ता हुआ वायु प्रदूषण या एयर पोल्यूशन भी अस्थमा के अटैक ऐसे लोगों में करा रहे हैं जिनको पहले खानदानी अस्थमा नहीं थी या जिनको पहले अस्थमा की समस्याएं न थी।
1: क्या लक्षण है कि हमें पता चले कि हम अस्थमा से पीड़ित हो गए हैं और इसका हम उपचार शुरू कर दें?
2: अस्थमा के लक्षण पहचानना बहुत आसान है और जितने श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, आज के बाद आप लोग भी अस्थमा के लक्षण को पहचान सकेंगे। शरीर में एलर्जी का कुछ और प्रकोप हो सकता है, जैसे कहीं त्वचा में खुजली या दाना होना, छींक आना, नाक से पानी बहना। उसके अलावा अस्थमा के लक्षण होते हैं अचानक से खांसी शुरू होना, सूखी खांसी जो रुकने का नाम नहीं लेता हो, सांस फूलना, छाती में जकड़न तथा छाती से सीटी की आवाज़ सुनाई देना। अगर आपको किसी भी इंसान में ये लक्षण दिखे तो आपको अस्थमा के बारे में शक करनी चाहिए। सबसे बड़ी बात, यह एक ऐसी बीमारी है जिसमें किसी जटिल या आसानी से नहीं मिलने वाली जांचों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केवल यही लक्षण अपने आप में काफ़ी है इसको बीमारी साबित करने के लिए।
1: किसी किसी को किसी खास समय इस तरह का अटैक दिखाई पड़ता है, जब मौसम परिवर्तन होता है तो उस समय इस तरह की परेशानियां दिखती है, और किसी किसी व्यक्ति को किसी खास खाद्य पदार्थ से या किसी खास पौधे से या किसी अन्य तरह की चीज़ों से भी अस्थमा होती है, तो इसका बचाव किस प्रकार किया जाए?
2: हमारे राज्य झारखंड तथा हमारा प्रखंड रांची में कुछ कुछ ऐसे फूल मिलते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं मिलते हैं। तो इनके पोलन से ऐसे लोग जो पहले कभी झारखंड या रांची में नहीं रहे हो, वो आने से उनको भी अस्थमा का अटैक हो सकता है। तो जब भी मौसम बदलता है, नमी में बदलाव आती है, तापमान में बदलाव आती है, तो जिन लोगों को पहले से अस्थमा के बारे में पता है, मौसम बदलते समय इनको विशेष प्रिकॉशन लेना चाहिए, जगह परिवर्तन के समय इनको विशेष प्रिकॉशन लेना चाहिए। कुछ कुछ लोगों में तो ऐसा होता है कि दिन के समय के साथ भी लक्षण में रोकथाम होता है, कि सुबह सिम्टम ज़्यादा होता है या रात में सिम्टम ज़्यादा होता है, तो उनको उस हिसाब से प्रिकॉशन लेना चाहिए। सावधानी ही बचाव है।
1: डॉक्टर साहब, हम खान पान की बात करें तो खान पान में किन किन चीज़ों का हम सेवन नहीं करें ताकि इस बीमारी से हम बचे रहें?
2: अगर मरीज को पता चलता है कि कोई विशेष खाद्य पदार्थ के सेवन से उनके गले में खुजली हो जाए या ओठों में सूजन आ जाए या तुरंत खांसी चालू हो जाए, मतलब उन खाद्य पदार्थ से उस व्यक्ति को एलर्जी है, तो उनको जान के उस खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ उदाहरण के तौर पे मैं बोलना चाहूँगा, अंडे का प्रोटीन, दूध, कई तरह के मूंगफली, बादाम, इनसे कभी कभी इस तरह की एलर्जी हो सकती है। उसके अलावा मैं एक बहुत डिबेटेबल बात बताना चाहूँगा, कि पहले हर फल का एक मौसम होता था, लेकिन आजकल एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बाद हर फल हर मौसम में मिलता है। कहीं ना कहीं ये प्रकृति से छेड़खानी भी अस्थमा या एलर्जी का सिम्टम को बढ़ा रहा है। तो जो फल जिस मौसम में पाया जाता था, ये प्रकृति का नियम है, कृपया उस फल का सेवन उसी मौसम में करिए। अगर आप उस फल के काफी शौकीन हैं

0: दूसरे मौसम में आपको फल मिल भी रहा है तो आप कभी कभी थोड़ा सा स्वाद ले सकते हैं, लेकिन निरंतर नहीं। ये सब भी मुसीबत को बढ़ा सकती है।
1: बचाव हम किस प्रकार करें? किसी व्यक्ति को अस्थमा हो जाता है तो उसके मन में ये भ्रांतियाँ फैल जाती है कि हमें अब हमेशा दवाइयाँ या इन्हेलर लेने पड़ेगी। तो कितना हद तक हमें इन्हेलर लेना पड़ेगा और दवाइयाँ कब तक लेनी पड़ेंगी?
0: मैं आकाशवाणी के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इन्हेलर से डरे नहीं। इन्हेलर केवल एक दवा पहुँचाने का जरिया होता है। जिनको अस्थमा है उनको सांस नली में परेशानी है, तो इन्हेलर केवल दवा को वहां तक तेजी से पहुंचाती है। तो इसमें कोई नशा युक्त पदार्थ नहीं है, इससे आदी होने का खतरा नहीं है। जब तक आपके चिकित्सक आपको सलाह दे तब तक आपको ये इन्हेलर लेना चाहिए। जब आपके चिकित्सक आपको बताए कि अब आप बेहतर हो गए हैं, आपके इन्हेलर हट सकती या कम हो सकती है, उनकी सलाह मान के आप इनको हटा सकते हैं। लेकिन कृपया इन्हेलर नाम से डरे नहीं, ये बहुत सेफ होते हैं और ये जीवन बचाते हैं। अगर आपको अस्थमा हो तो हमेशा आप कहीं भी जा रहे हो एक इन्हेलर आपके साथ रहना चाहिए, और एक इन्हेलर खत्म होने से पहले एक दूसरा इन्हेलर आपके पास हो जाना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, आजकल देखा जाता है कि छोटे छोटे बच्चे भी अस्थमा की बीमारी से पीड़ित हो जा रहे हैं। क्या कारण है डॉक्टर साहब कि छोटे बच्चे इस तरह की बीमारी से ग्रसित हो जा रहे हैं? बेचारे माँ बाप परेशान रहते हैं और बच्चा हमेशा हंसता रहता है, हाफता रहता है, छींकता रहता है।
0: ये हम चिकित्सकों के लिए की भी काफ़ी परेशानी की बात है, क्योंकि जब हम लोग डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे थे बच्चों में अस्थमा 7-8 साल के बाद होती थी, लेकिन आजकल मैं खुद देख रहा हूँ 2 साल 3 साल 4 साल में अस्थमा होने का। शहरी बच्चों में इसका सबसे बड़ा कारण कुछ भी बोलिए वायु प्रदूषण है। तो सरकार या समाज वायु प्रदूषण के खिलाफ जितने कदम ले सकते हैं कहीं ना कहीं वो हमारे नन्हे बच्चों के फेफड़े को बचाएगी, नंबर वन। दूसरा, फिर से प्रकृति से दूर होना। पहले जो पानी का सेवन किया जाता था आज के डेट में उन पानियों का सेवन नहीं होता है। कई तरह का ट्रीटेड वाटर चलती है। तो कृपया इन सब से दूर रह के जो पहले पानियों का सेवन होता था उसको करने से कहीं ना कहीं बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ेगी और इन सब बीमारियों से हम लोग बच्चों को बचा सकेंगे।
1: और दूसरी बात कि हमारा खान पान भी काफ़ी बिगड़ गया है, बाहर की चीज़ें फास्ट फूड का सेवन हम बहुत करने लग गए हैं। तो क्या कहेंगे हमारे सुनने वाले साथियों को और खासकर ऐसे छोटे छोटे बच्चे के माता पिताओं को?
0: कभी कभी मनोरंजन के लिए बाहर का खाना स्वाद चखना अच्छी बात है, जो 15 दिन में एक बार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अपने घरों पे भरोसा रखिए, अपने घरों के रसोई पे भरोसा रखिए और कोशिश करिए उस घर का खाना जितना ज़्यादा खाने का, तो आपको इस तरह की कृत्रिम पदार्थों से होने वाली बीमारियों से आपको बचा के रखेगी।
1: घर का बना हुआ खाना ही खाइए। यदि घर का बना हुआ खाना खाते हैं तो हम स्वस्थ रहेंगे, और हम स्वस्थ रहेंगे तो परिवार स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा और देश स्वस्थ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अत्रि गंगोपाध्याय, छाती रोग विशेषज्ञ। आज आपने अस्थमा पर बड़ी अच्छी बातचीत की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मित्रों, आज के दिन आपके लिए शुभ एवं मंगल।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में अस्थमा कारण एवं निदान के बारे में आपको बताते थे डॉक्टर अत्रि गंगोपाध्याय। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: अभियानमिदं द्वाविंशत्यधिकद्विसहस्रतमे वर्षे प्रारब्धस्य हर घर तिरंगा इत्युपक्रमस्य पञ्चवर्षम् अस्ति। अनेन अभियानेन नागरिकाः राष्ट्रध्वजं प्रस्थापयितुं तथा देशभक्तेः राष्ट्रैकतायाश्च भावनां प्रकटयिष्यन्तीषु विविधासु गतिविधिषु भागं ग्रहीतुं प्रोत्साह्यन्ते। अस्मिन् वर्षे अभियानं विशेषत्वेन महत्वपूर्णमस्ति, यतः इदं भारतस्य राष्ट्रगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य सार्धैकशततम वर्षपूर्त्या सह आयोज्यते। अनेन राष्ट्रध्वजस्य राष्ट्रगीतस्य च विशिष्टः समागमः भवति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी नागरिकान् अभियाने सक्रियतया भागं ग्रहीतुम् अथ विकसितभारतस्य निर्माणे स्वप्रतिबद्धतां पुनर्नवीकर्तुं च आहूतवान्। दिल्ली मेट्रो रेल निगमेन स्वातन्त्र्यभावनायाः उत्सवस्य भागरूपेण पीतवर्णमार्गे हर घर तिरंगा इति विषयवस्तुना सुसज्जिता विशेषा मेट्रो रेल यानसेवा समारब्धा। सामाजिक संचारपटले प्रकाशिते एकस्मिन् सन्देशे DMRC इत्यनेन कथितं यत् भारतस्य 80तमे स्वातन्त्र्यदिवसोपलक्ष्ये आयोज्यमानानां सप्ताहव्यापिनां कार्यक्रमाणां भागरूपेण एषा विशेषा मेट्रो रेल सेवा प्रारब्धा। ओडिशाराज्ये पुनः प्रचण्डवृष्टेः अनन्तरं राज्यस्य अनेकेषु भागेषु नदीनां वर्धमानः स्तरः नूतनः जलाप्लावनप्रकोपः जनयति। बैतरणी नदी अस्य प्रावृट्कालस्य तृतीये जलाप्लावनप्रकोपे प्रविष्टवती अस्ति। एकया नूतन न्यूनचापव्यवस्थया सम्पूर्णे राज्ये अतिवृष्टिः अभवत्। अधिकारिणः जलाप्लावनप्रवणक्षेत्रेषु नदीस्तरस्य निरीक्षणं निकटतया कुर्वन्तः सन्ति, आवश्यकान् समाह्वानान् निवारकोपायान् च कुर्वन्तः सन्ति। भारतीयः भारोत्तोलकः महाराजन अरुमुगा पाण्डियनः उज्बेकिस्तान ताश्कन्दनगरे एशियन जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप इत्यस्याम् स्पर्धायाम् पुरुषाणाम् 65 किलोग्राम मिते भारवर्गे रजत पदकम् प्राप्तवान् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से मुलाकात की। पदक विजेता खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत के दौरान खेलों से जुड़े अपने अनुभव साझा किए। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन से देश का मान बढ़ाया है और उनकी सफलता कई युवाओं को प्रेरित करेगी।
2: जो खेलेगा वो खिलेगा। ऑलवेज चीयर फॉर भारत, भारत माता की जय।

0: भारत माता की
1: जय।
0: भारत माता की
1: जय।
2: इस अवसर पर युवा कार्य और खेल मंत्री मनसुख मांडविया और खेल राज्य मंत्री रक्षा निखिल खड़से मौजूद थे। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में 23 जुलाई से 2 अगस्त तक आयोजित हुए इन खेलों में

0: इस वर्ष ये अभियान राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में वंदे मातरम का सामूहिक गायन भी होगा। दुनिया भर में 200 से अधिक भारतीय दूतावास, उच्चायोग और वाणिज्य दूतावास भी अभियान के अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी और दूसरे चरण की पीएम आवास योजना शहरी के अंतर्गत अब तक 1,25,00,000 से अधिक मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 1,00,00,000 से ज्यादा आवास बनकर तैयार हो चुके हैं और लाभार्थियों को सौंपे जा चुके हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि देश की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। उत्तराखंड सरकार ने कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के विकास के लिए 20 साल की उत्तराखंड कृषि कार्य योजना तैयार करने की प्रक्रिया शुरू की है। इस योजना में राज्य के सभी 13 जिले शामिल होंगे। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. शिवेंद्र कुमार कश्यप को परियोजना का समन्वयक नियुक्त किया गया है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का विस्फोटक आयुध निरोधक ईओडी अभ्यास कल से 14 अगस्त तक दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की विशेषज्ञ गोताखोरी और ईओडी टीमों के बीच अंतर संचालन बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। होर्मुज जलडमरू मध्य को लेकर जारी तनाव के बीच अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ईरान के प्रति संयम बरत रहा है और फिलहाल कोई नया सैन्य हमला करने की योजना नहीं है। ट्रंप ने कहा कि ईरान की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, उसके पास अपने सैनिकों को वेतन देने के लिए पर्याप्त धन भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीकी नौसैनिक नाकेबंदी ने ईरानी सरकार की आर्थिक चुनौतियां बढ़ा दी हैं। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसनुलिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित 2 रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकता है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज और कल दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, असम, मेघालय, पूर्वी मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi met the medalists of the Commonwealth Games 2026 at his residence in New Delhi yesterday. During the interaction, the medal winners shared their experiences from the Games with the Prime Minister. In a social media post, Mr. Modi said that each one of them has made the nation proud through their exceptional performances and their success will motivate many youngsters. Mr. Modi shared a video message and said that those who will play will flourish and appeal to the citizens to always cheer for Bharat.
2: Jo khelega, wo khelega. Always cheer for Bharat. Bharat Mata ki. Jai. Bharat Mata ki. Jai. Bharat Mata ki.
1: Jai. Youth Affairs and Sports Minister Mansukh Mandaviya and Minister of State for Youth Affairs and Sports Raksha Nikhil Kharse were present on the occasion. India finished at the 4th spot on the medal table during the games held between 23rd of July and the 2nd of this month at Glasgow in Scotland. Indian athletes won 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze across various sports.

9 बजे हमारा विशेष कार्यक्रम होगा जोहार पलामू, खेल विज्ञान एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारियों पर आधारित होता है हमारा ये कार्यक्रम। कार्यक्रम की प्रस्तुति स्वर होगी प्रीति कुमारी की, संयोजन प्रशांत गौरव की। 9:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 10 बजे हिंदी में समाचार, 10:05 पर अंग्रेजी में समाचार होगा हमारे दिल्ली केंद्र से। 10:10 पर विविध भारती के कार्यक्रम सुनने के लिए हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी मुंबई।

दोपहर 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, 1:05 पर होगा अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से, 1:10 पर प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे हमारे रांची केंद्र से, 1:20 पर विविध भारती के कार्यक्रम सुरीला सफर आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से।

दोपहर 2 बजे आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार 2:15 पर होगा। हिंदी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से 2:30 पर। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे सदाबहार नगमे हमारे मुंबई केंद्र से 2:55 पर। आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से 3 बजे। विविध भारती के कार्यक्रम सखी सहेली आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से 4 बजे। प्रादेशिक समाचार 4:02 पर। विविध भारती के कार्यक्रम सेहतनामा आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से 5 बजे। प्रादेशिक समाचार जिसे हम रिले करेंगे हमारे रांची केंद्र से 5:02 पर। विविध भारती के कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे हमारे मुंबई केंद्र से।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पलाश। आज इस कार्यक्रम में हम आपको इग्नेश कुमार और जानकी देवी की आवाज़ में चंद लोकगीत सुनवा रहे हैं।

0: अब सुनिए विरह रस का गीत राग जनानी झूमर में। कृष्ण के विरह में व्याकुल राधा सज धज कर अपने प्रियतम का इंतजार करती है, परंतु जब कृष्ण नहीं आते हैं तो वो बेचैन होकर अपने श्रृंगार को तोड़ देना चाहती है। स्वर है जानकी देवी और साथियों का।
1: लहली लहली तारंगे, लहली लहली तारंगे, कुसुमित सारी भाई मोसिया के ललकारी। बस ये सब दो।

0: लोक गीत के कार्यक्रम में प्रस्तुत है नागपुरी लोक गीत, स्वर है जानकी देवी और साथियों का। पहले गीत में किस्म किस्म के फूलों का बड़ा ही सुंदर वर्णन है, गेंदा, गुलाब, कचनार, जूही, बेली, कमल, केवड़ा, कनैली जैसे फूलों को देख कवि का मन आनंदित है। राग दोहरी डमकच के इस गीत को सुनिए जानकी देवी और साथियों के स्वर में।
1: धाधा की धावैया फूले, धाधा की धावैया फूले, फूल लपारा सहो, धाधा की धावैया फूले।

0: जानकी देवी और साथियों के स्वर में ही अब सुनिए एक हरिया डमकच राग पर आधारित लोकगीत। इस गीत में कवि कह रहा है, माघ महीने के आंधी तूफान और बर्फबारी ने बसंत के आगमन का संकेत दे दिया है। खिले खिले फूल, सुगंधित बयार और कोयल की कूक वातावरण को खुशनुमा बना रहे हैं।
1: या गेलक आंधी धुका, आ गेलक पथल पानी, आ गेलक आंधी धुका, आ गेलक पथल पानी, माघ मघेरे

अभी आप सुन रहे थे लोकगीतों पर आधारित कार्यक्रम पलाश में, इग्नेस कुमार और जानकी देवी की आवाज में जन लोकगीत। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है सुगम संगीत कार्यक्रम है स्वर सरिता। आज के फनकार हैं जगजीत सिंह।

अभी आप सुन रहे थे गीत एवं गज़लों का कार्यक्रम स्वर सरिता। आज के फनकार थे जगजीत सिंह। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ हमारे दिल्ली केंद्र से, साथ ही प्रादेशिक समाचार होगा हमारे रांची केंद्र से।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था। सच में बिल जीरो आ सकता है? मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता

300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीति

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देशभर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: तिरंगा, हर घर तिरंगा।
0: महाराष्ट्र में देशभक्ति के उत्साह के साथ हर घर तिरंगा अभियान शुरू हो गया है। राज्य के कई जिलों में स्वतंत्रता दिवस से पहले तिरंगा रैलियां और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बीड में जिला प्रशासन, जिला खेल अधिकारी कार्यालय और विभिन्न खेल संगठनों ने मिलकर जिला खेल परिसर से एक तिरंगा रैली आयोजित की। बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के तहत आज पटना में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका नेतृत्व करेंगे।
3: कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की ओर से आयोजित यह यात्रा सुबह 10 बजे जेपी गोलंबर से रवाना होकर कारगिल चौक पहुंचेगी। प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर प्रखंड को जीविका के माध्यम से 4000 तिरंगे उपलब्ध कराए गए हैं। गौरतलब है कि तिरंगा यात्रा का बिहार में विशेष महत्व है, क्योंकि 11 अगस्त 1942 में बिहार के 7 वीर विद्यार्थी तत्कालीन पटना सचिवालय पर तिरंगा लहराने के क्रम में अंग्रेजों की गोलियों से एक एक कर शहीद हो गए थे। की शान के लिए जान की बाजी लगाने वाले इन छात्रों की याद में पटना विधानमंडल के सामने शहीद स्मारक बनाया गया है। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: मणिपुर में भी हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन किया गया है। ये अभियान 17 अगस्त 2026 को समाप्त होगा। अभियान के दौरान नागरिक अपने घरों पर तिरंगा ध्वज फहराएंगे। मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद ने इम्फाल पश्चिम जिले के सिंगाजामी स्थित अपने आवास से अभियान में भाग लेते हुए लोगों से पहले खुद को भारतीय और फिर मणिपुरी मानने का आग्रह किया। दिल्ली मेट्रो रेल ने स्वतंत्रता की भावना का उत्सव मनाने के लिए येलो लाइन पर हर घर तिरंगा थीम से सजी एक विशेष मेट्रो ट्रेन शुरू की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डीएमआरसी ने बताया कि भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत इस ट्रेन को तैयार किया गया है। लोकसभा में आज 4 विधेयक पेश किए जाएंगे। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन बैंकर बही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई ये ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। एक रिपोर्ट।
4: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। सौर ऊर्जा प्रमुख विकास इंजन बनी हुई है, जिसकी वर्तमान स्थापित क्षमता लगभग 165 गीगावाट है। ये 2014 में मात्र 2.8 गीगावाट थी। मंत्रालय ने कहा कि 2025-26 के दौरान देश में जीवाश्म ईंधन रहित बिजली उत्पादन क्षमता में रिकॉर्ड 55.29 गीगावाट की वृद्धि हुई, जिसमें सौर ऊर्जा का 44.6 गीगावाट और पवन ऊर्जा के 6 गीगावाट का महत्वपूर्ण योगदान रहा। ये 2014-15 में लगभग 191 अरब यूनिट से बढ़कर 2025-26 में 477 अरब यूनिट से

0: अधिक हो गई है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: झारखंड में पुलिस ने विधानसभा परिसर के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है और रांची में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
2: झारखंड में कथित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच लगातार तीन दौर की वार्ता में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच, प्रभावित परीक्षाओं को रद्द करने, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की विस्तृत जांच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, इसलिए इसे सीधे रद्द करना संभव नहीं है। उधर छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम पर कायम है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय नौसेना अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को मजबूत करना है। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूस के उप प्रधानमंत्री मराट खुसलुनिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्फोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जलमार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसलुनिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेलमार्गों का पता लगाया जा सकता है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम भार उठाया। वियतनाम के वांग थाश ने 291 किलोग्राम भार उठाकर स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले दो दिनों तक बारिश जारी रहने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
3: मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रांग सिस्टम सक्रिय है। मॉनसून टर्फ और निम्न दबाव क्षेत्र के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज 21 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं राजगढ़, विदिशा, सीहोर, हरदा और देवास में मौसम विभाग ने अति भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है। इन जिलों में अगले 24 घंटे में 8 इंच तक बारिश होने का अनुमान है। भोपाल और उज्जैन संभाग में रात से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में तेज बारिश का दौर अगले दो दिन तक रह सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि मूसलाधार बारिश की संभावना के मद्देनजर अधिकारी कमजोर तटबंधों और निचले इलाकों पर कड़ी नजर रख रहे हैं।
4: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति अभी भी चिंता का विषय बनी हुई है, क्योंकि ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर फिर से बढ़ रहा है, जबकि भद्रक और जाजपुर में बैतरणी, सालंदी और कानी नदियों के पानी ने गांवों, खेतों और सड़कों को जलमग्न कर दिया है। केंद्रापड़ा के कई इलाकों भी प्रभावित हुए हैं। आईएमडी ने अगले 24 घंटे के दौरान कई उत्तरी और पश्चिम जिलों में भारी बारिश का अनुमान जताया है और मौसम प्रणाली के कारण आने वाले दिनों में भी राज्य में बारिश जारी रहने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: इस बीच मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार वर्षा के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में आज बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ गरज चमक का अनुमान है। आज सावन माह का दूसरा सोमवार है। उत्तर प्रदेश प्रशासन ने श्रद्धालुओं और कांवड़ियों के लिए व्यापक व्यवस्था की है। एक रिपोर्ट।
5: कांवड़ यात्रा ऐप श्रद्धालुओं और प्रशासन के बीच संवाद की सीधी कड़ी बन गया है। तीर्थयात्रियों को उनके मोबाइल फोन पर

0: पूरी जानकारी मिल रही है। वहीं नियंत्रण कक्ष और फील्ड अधिकारी एक साथ ही जमीनी व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं। ये ऐप श्रद्धालुओं को एक क्लिक पर यात्रा से जुड़ी सारी जरूरी जानकारी उपलब्ध करा रहा है। ऐप में पूरे रास्ते का मानचित्र, मंदिर, शौचालय, चिकित्सा सुविधाएं और भोजन की व्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई है। श्रद्धालु शिकायत या आपात स्थिति में तत्काल सहायता प्राप्त करने के लिए भी इस ऐप का उपयोग कर सकते हैं। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद विशाल। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जारी छात्र आंदोलन सभी अखबारों के मुख पृष्ठ पर है। जनसत्ता की सुर्खी है, झारखंड में झुकी सरकार, जेपीएससी के सभी सदस्यों का इस्तीफा, 3 परीक्षाएं रद्द करने पर सहमति, प्रदर्शनकारी सीबीआई जांच पर अड़े। बिहार में शिक्षा परीक्षा सुधार के लिए बनेगी समिति, नवभारत टाइम्स लिखता है, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़, गुणवत्तापूर्ण और छात्र केंद्रित बनाने के लिए 4 बड़ी घोषणाएं की। संसद के मानसून सत्र को भी अखबारों ने सुर्खी बनाया है। राजस्थान पत्रिका के अनुसार संसद में सरकार और विपक्ष के बीच टूट सकता है गतिरोध, लोकसभा में आ जाएंगे 4 विधेयक, मेटा को भारतीय कानूनों का करना होगा पालन, दैनिक जागरण की खबर है। फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की टर्बुलेंस फ्लाइट के मुख्य पायलट का ड्रग स्क्रीनिंग टेस्ट संदिग्ध पाया गया, दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार परीक्षण की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार, जांच और परीक्षण प्रक्रिया पूरी होने तक डीजीसीए ने उड़ान चालक दल के 2 सदस्यों को ड्यूटी से हटाया। डीमैट और म्यूचुअल फंड में नॉमिनी जोड़ना ही होगा, हिंदुस्तान के बिजनेस पर है, बाजार नियामक सेबी के नए नियम 1 सितंबर से लागू होंगे।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने और घरों पर तिरंगा फहराने का आह्वान किया। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन की क्षमता 300 गीगावाट का आंकड़ा पार किया। भारतीय और अमरीकी नौसेनाओं का विस्फोटक आयुध रोधक अभ्यास आज से कोच्चि स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू। रूस ने भारत के लिए हॉर्मुज जलडमरू मध्य जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए रेल मार्ग का प्रस्ताव रखा। और ताशकंद में आयोजित एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में महाराजन अरुमुख पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्जेस पीपल टू जॉइन हर घर तिरंगा मूवमेंट एंड होइस्ट द ट्राइकलर एट होम्स। इंडिया क्रॉसेस 300 गीगावाट्स ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इंस्टॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी। इंडियन एंड यूएस नेवीज एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज टू बिगिन टुडे एट सदर्न नेवल कमांड इन कोची। Russia proposes railway route to India to reduce dependence on strategically important maritime routes like Strait of Hormuz. And Maharajan Arumuga Pandian clinches silver medal in men's 65 kg category at Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. In a social media post, Mr. Modi said, "Our tricolour is our pride and a constant source of inspiration to always give our best for the nation." The Prime Minister said he is glad that this year's efforts are dedicated to Vande Mataram and that too at a time when we are marking its 150th anniversary. In his Man Ki Baat program on Akashvani last month, Mr. Modi urged people to hoist the tricolour at homes.
4: पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है।

नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और राज्य सरकार के बीच तीन दौर की वार्ता के बाद भी गतिरोध बरकरार, आंदोलन जारी रखने का निर्णय। राज्य सरकार ने छात्रों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा, सरकार ने अधिकांश मांगे मानी, जेएसएससी परीक्षाओं पर कोर्ट के आदेश पर फैसला संभव। राज्य के जिला कोषागारों से अवैध निकासी के बाद राज्य सरकार ने तकनीकी प्रणाली में बदलाव करने का लिया निर्णय। अब बैंक खाता और पैन सत्यापन के बिना नहीं होगा भुगतान। राजकीय श्रावणी मेले की दूसरी सोमवारी पर बैद्यनाथ धाम में सुबह 8 बजे तक 70,000 कांवरियों ने किया जलाभिषेक। रांची के पहाड़ी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब। और राज्य में अगले 5 दिनों तक मॉनसून के सक्रिय होने के संकेत, हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान। और अब समाचार विस्तार से।

0: जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और राज्य सरकार के बीच तीन दौर की वार्ता के बाद भी गतिरोध बना हुआ है। आंदोलन के 16वें दिन तीसरे दौर की वार्ता में अधिकांश मुद्दों पर सहमति बनी, हालांकि सभी मांगों पर अंतिम सहमति नहीं बनने के कारण छात्रों ने आंदोलन जारी रखने और विधानसभा घेराव का निर्णय जारी रखा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: झारखंड में कथित भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्र आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच लगातार तीन दौर की वार्ता में परीक्षा में कथित गड़बड़ियों की जांच, प्रभावित परीक्षाओं को रद्द करने, दोषियों पर कार्रवाई और परीक्षा प्रणाली में सुधार पर चर्चा हुई। सरकार ने 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और बैकलॉग परीक्षाओं को रद्द करने, टीडीपीएल से जुड़ी परीक्षाओं की विस्तृत जाँच और दोषियों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है। जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर सरकार ने कहा कि मामला उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है, इसलिए इसे सीधे रद्द करना संभव नहीं है। मंत्री सुदीव कुमार सोनू ने कहा कि सरकार सीबीआई जांच के बजाय 90 दिनों में जांच पूरी कराने और फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से कार्रवाई सुनिश्चित करने के पक्ष में है। उधर छात्रों ने सरकार के प्रस्ताव को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा घेराव के अपने कार्यक्रम पर कायम है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: राज्य सरकार ने छात्रों से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। मंत्री सुदीव सोनू ने कल देर शाम प्रेस वार्ता में कहा कि सरकार ने अधिकांश मांगे मान ली हैं। दोनों पक्षों में सहमति बनी कि 14वीं जेपीएससी और बैकलॉग 2023 और 2025 परीक्षा रद्द होगी। टीडीपीएल कंपनी ने जितनी भी परीक्षाएं ली हैं उनकी जांच सीआईडी करेगी, जबकि सरकार वित्तीय गड़बड़ी के मामलों की जांच ईडी से कराएगी।
2: बड़े दुर्भाग्य के साथ यह कहना पड़ता है कि इन तमाम प्रयासों के बाद भी छात्रों के तरफ से सीजीएल को रद्द करने को लेकर और सीबीआई की जांच को मांग को लेकर इस समझौता वार्ता टूट गई। तमाम छात्रों से यह विनम्रता पूर्वक अपील करना चाहता हूं कि आपकी अधिसंघ मांगों को सरकार ने मांगा, जो मामले न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत जिनका प्रकाशन हुआ था परीक्षा फल का, उसको रद्द करना सरकार के क्षेत्राधिकार से बाहर था। यदि इस संबंध में ऑनरेबल कोर्ट का कोई डायरेक्टिव आएगा तो वो सरकार निश्चित रूप से उसको मानेगी।
0: जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में गड़बड़ी के विरोध में आज के प्रस्तावित विधानसभा घेराव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। कचहरी चौक से लेकर विधानसभा तक सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई है। इधर रांची जिला प्रशासन ने छात्रों से शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन ने कहा कि झारखंड विधानसभा के नए परिसर के 750 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू की गई है। इस क्षेत्र में किसी भी तरह का धरना, प्रदर्शन या विरोध करना प्रतिबंधित है। प्रशासन का कहना है कि कानून तोड़ने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। हजारीबाग, बोकारो और पलामू समेत विभिन्न जिलों के कोषागारों से अवैध निकासी मामलों के बाद राज्य सरकार ने सरकारी भुगतान व्यवस्था को और सुरक्षित बनाने के लिए तकनीकी प्रणाली में बदलाव करने का निर्णय लिया है। भुगतान प्राप्त करने वालों के बैंक खाते तथा पैन का ऑनलाइन और वास्तविक समय में सत्यापन किया जाएगा। बैंक खाते के विवरण में गड़बड़ी या खाता संख्या का मिलान नहीं होने पर वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली से भुगतान रोक दिया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद।
3: श्रावणी मेले का पावन त्योहार, हर दिल में गूंजे बम बम की पुकार, हर हर महादेव जय भोलेनाथ।
4: श्रावण मास के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का संदेश।
5: जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड के इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। धन्यवाद। जोहार, जय भोले।
4: श्रावणी मेला में लाख

0: कुछ श्रद्धालु सुल्तानगंज से पवित्र गंगा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर तक की यात्रा करते हैं। आस्था, सेवा और अध्यात्म का ये अनोखा संगम आपको भी दे रहा है निमंत्रण। इस सावन आइए झारखंड और बनिए श्रावणी मेला का हिस्सा। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: धनबाद जिले के कतरास थाना क्षेत्र अंतर्गत छाताबाद में भू धसान की घटना के बाद भी बीसीसीएल की ओर से राहत और बचाव कार्य शुरू नहीं किए जाने से लोगों में नाराजगी है। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी कल छाताबाद पहुंचे। उन्होंने प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया।
2: जिला प्रशासन को जानकारी है, हमारे सारे पदाधिकारी आए हैं, लेकिन जो सच्चाई ये है कि बहुत बुरा हाल है और घर गिर गया, भूदशान हो गया, तो अब विस्तृत रिपोर्ट हम बनाएंगे और जिनका घर गिरा है उनको आशियाना हमारी सरकार देगी। बीसीसीएल क्या कर रहा है? इलीगल माइंस हो रहा है, कोयला चोरी हो रहा है और आप चुपचाप हैं।
1: सावन की दूसरी सोमवारी पर आज देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम, रांची के पहाड़ी मंदिर और राज्यभर के शिवालयों में लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। देवघर से हमारे संवाददाता ने बताया कि सुबह 8 बजे तक करीब 70,000 श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया।
3: हर हर महादेव। बाबा नगरी देवघर में राजकीय सामनी मेला की दूसरी सोमवारी को श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर है। रात 1 बजे ही बाबा बैद्यनाथ धाम पर जलार्पण के लिए कांवरियों का कतार नंदन पहाड़ से चमरी डीपुल तक पहुँच गयी है। सोमवार सुबह पट खुलते ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार जलाभिषेक के लिए लगी है। भीड़ और सुरक्षा के मद्देनजर QRT पर्याप्त पुलिस बल और दंडाधिकारी की तैनाती 24 घंटे की गई है ताकि हर कांवरियों को सुरक्षित और सुगम जलार्पण का अनुभव मिल सके। आशीष कुमार अंबस्ट, आकाशवाणी समाचार, देवघर।
1: राज्य में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो रहा है। झारखंड में अगले 5 दिनों तक बादल छाए रहने और कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान है। रांची की युवा स्क्वॉश खिलाड़ी आद्या बुधिया ने हांगकांग जूनियर स्क्वॉश ओपन 2026 के बालिका अंडर 17 वर्ग में चैंपियन बनकर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर झारखंड का नाम रोशन किया है। इस टूर्नामेंट में उन्होंने लगातार 5 मुकाबले जीते। अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने जेपीएससी परीक्षा विवाद को लेकर छात्रों और सरकार के बीच 3 दौर की वार्ता में भी अंतिम सहमति नहीं बनने को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर की सुर्खी है, सरकार 14वीं जेपीएससी पीटी और बैकलॉग परीक्षा रद्द करने और ईडी से जांच पर राजी, नहीं माने छात्र, आज विधानसभा मार्च की चेतावनी। दैनिक भास्कर ने सीआईडी से पूछताछ में टीडीपीएल के मार्केटिंग मैनेजर अभय तिवारी के खुलासे की खबर को पहले पेज पर प्रकाशित किया है। अखबार ने लिखा है, ख्यांगते की एजेंसी से डील, 2 करोड़ 1 मुश्त और 20% कमीशन। जेपीएससी विवाद पर आयोग के अध्यक्ष के बाद अब जेपीएससी के 3 सदस्यों के इस्तीफे की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पेज पर जगह दी है। वहीं हिंदुस्तान ने आदिवासी महोत्सव पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हवाले से लिखा है, धरती पर आदिवासी समाज की अलग पहचान। और अंत में मुख्य समाचार। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और राज्य सरकार के बीच 3 दौर की वार्ता के बाद भी गतिरोध बरकरार, आंदोलन जारी रखने का निर्णय। राज्य सरकार ने छात्रों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा, सरकार ने अधिकांश मांगे मानी, जेएसएससी परीक्षाओं पर कोर्ट के आदेश पर फैसला संभव। राज्य के जिला कोषागारों से अवैध निकासी के बाद राज्य सरकार ने तकनीकी प्रणाली में बदलाव करने का लिया निर्णय, अब बैंक खाता और पैन सत्यापन के बिना नहीं होगा भुगतान। राजकीय श्रावणी मेले की दूसरी सोमवारी पर बैद्यनाथ धाम में सुबह 8 बजे से 70,000 कांवरियों ने किया जलाभिषेक। रांची के पहाड़ी मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब और राज्य में अगले 5 दिनों तक मॉनसून के सक्रिय होने के संकेत, हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का अनुमान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
4: प्रसार भारती के पास है भारतीय संस्कृति की अनमोल धरोहर। इसमें शामिल हैं शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन। आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: अभी आप सुन रहे थे समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज़ हमारे दिल्ली केंद्र से, साथ ही प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। पेश है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। तो चलिए बिना देर किए आपको सुनवाते हैं ये पहला गाना जिसे हमने लिया है। फिल्म है धर्मात्मा, आवाज़ किशोर कुमार की है।

अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार को फिल्म डॉन में। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, फिल्म है डिस्को डांसर, आवाज़ विजय बेनेडिक्ट की है।

0: अभी आप सुन रहे थे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गीत गुंजन। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जोहार पलामू।
1: जोहार पलामू।

श्रोताओं जोहार, स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम जोहार पलामू में। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रीति। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। खुशी हमेशा बड़ी उपलब्धियों में नहीं मिलती, कई बार वह छोटी छोटी चीज़ों को महसूस करने की कला में छिपी होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमारी कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी तभी हम खुश होंगे, लेकिन जिंदगी की छोटी खुशियों को नज़रअंदाज करते करते हम वर्तमान का आनंद खो देते हैं। परिवार के साथ कुछ अच्छा समय बिताना, किसी मित्र से बातचीत करना, प्रकृति को देखना, अपने पसंदीदा काम के लिए थोड़ा समय निकालना या किसी की मदद करके उसके चेहरे पर मुस्कान देखना, ये सभी जीवन की खूबसूरती और खुशियों को प्रगाढ़ करती है। इसलिए भविष्य की चिंता करते हुए आज को पूरी तरह से मत भूलिए, जिंदगी को जिए जैसे जी सकते हैं। बड़ी खुशियों का इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है, अपनी छोटी छोटी खुशियों में खुश होना सीखिए।

आप सुन रहे कार्यक्रम जोहार पलामू। अब हम आज सेहतनामा में बात करेंगे एक ऐसे चीज़ के बारे में, एक ऐसी प्राकृतिक चीज़ जो हमारी रसोई में सामान्यतः मौजूद ही होती है, लेकिन इसके गुण के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वो है करी पत्ता। करी पत्ते का इस्तेमाल मुख्य रूप से दाल, सब्जी, सांभर, चटनी, पोहा और कई दक्षिण भारतीय व्यंजनों के तड़के के लिए किया जाता है, लेकिन इसकी खुशबू भोजन के स्वाद को बढ़ा देती है। और आपको बता दें कि करी पत्ते में विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, कैल्शियम, आयरन, कुछ एंटीऑक्सीडेंट यौगिक पाए जाते हैं। इसमें मौजूद पौधे से मिलने वाले यौगिक शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाने में योगदान करते हैं, उनका योगदान होता है।

0: करी पत्ते के बहुत सारे फायदे हैं जिसमें पाचन के लिए उपयोगी होता है। करी पत्ते का इस्तेमाल पारंपरिक रूप से पाचन से जुड़े घरेलू उपायों में किया जाता है। इसे भोजन में शामिल करने से भोजन स्वादिष्ट भी बनता है और मौजूद फाइबर आहार का हिस्सा भी बनता है। आँखों के लिए भी बहुत फायदेमंद है। करी पत्ते में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए सामान्य दृष्टि और आँखों के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण पोषक तत्वों में से एक होता है। एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं इसमें। करी पत्ते में विभिन्न एंटीऑक्सीडेंट यौगिक पाए जाते हैं। ये शरीर में कोशिकाओं को एंटीऑक्सीडेटिव तनाव से होने वाले नुकसान से बचाने में भूमिका निभाते हैं। बालों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होते हैं। करी पत्ते का इस्तेमाल बालों की देखभाल और पारंपरिक रूप से किया जाता है। हालांकि यह कहना सही नहीं होगा कि केवल करी पत्ता खाने या लगाने से बाल झड़ना निश्चित रूप से रुक जाता है या नए बाल उगने लगते हैं। भोजन में स्वाद और पोषण बढ़ाता है। करी पत्ता कम मात्रा का इस्तेमाल होने के बावजूद भोजन में सुगंध और पोषक तत्व जोड़ता है, इसलिए इसे केवल सजावट समझकर अलग करने के बजाय इसे पसंद से खाया भी जा सकता है। इसे आहार में शामिल करें। करी पत्ते को दाल के तड़के, सब्जी, पोहा, उपमा, चटनी या सांभर में डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से धोकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। एक ज़रूरी बात यह है दोस्तों कि करी पत्ता कोई चमत्कारी औषधि नहीं है। किसी बीमारी के इलाज के लिए केवल करी पत्ते पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। संतुलित भोजन और नियमित स्वास्थ्य देखभाल ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अब आइए सुन लेते एक प्यारा सा गीत।
1: Vishal and Shekhar.

0: 10 लाख की लॉटरी मुझे।
1: फर्जी ऑफर्स से सावधान।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से।
1: अनजान ऐप से बचें।
2: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: आप सुन रहे कार्यक्रम जोहार पलामू। अब हम बात करते हैं ज्ञान विज्ञान में, आज हमारे सौर मंडल के बारे में। आकाश की विशालता हमें यह सिखाती है कि हमारी दुनिया बहुत छोटी जरूर है, लेकिन इसे समझने की हमारी जो जिज्ञासा है वो अनंत है। चलिए, सौर मंडल जहाँ घर है हमारा और ग्रहों का, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सूर्य की। सौर मंडल के केंद्र में है सूर्य। सूर्य एक तारा है और हमारे सौर मंडल का सबसे विशाल पिंड। सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली है कि उसके चारों ओर ग्रह, बौना ग्रह, क्षुद्र ग्रह और कई अन्य पिंड अपनी अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। सूर्य से हमें प्रकाश और गर्मी मिलती है। पृथ्वी पर जीवन के लिए सूर्य की ऊर्जा अत्यंत महत्वपूर्ण है। पौधे सूर्य के प्रकाश की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करते हैं और इसी प्रक्रिया के माध्यम से भोजन श्रृंखला की नींव बनती है। सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है और इसके केंद्र में परमाणु संलयन की प्रक्रिया चलती रहती है और जो अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। 8 ग्रह हैं सौर मंडल में वर्तमान में, और जिसमें इसकी दूरी है, अगर हम सूर्य से देखें इसकी दूरी, तो पहला आता है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। अब हम बात करते हैं पहले ग्रह बुध की, जो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है। बुध सूर्य का सबसे करीबी ग्रह है और सौर्य मंडल का सबसे छोटा ग्रह भी। यह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी करता है। बुध का वातावरण बहुत पतला है, यहाँ दिन और रात के तापमान में बहुत बड़ा अंतर हो सकता है। बुध के पास कोई चंद्रमा नहीं है और इसके चारों ओर शनि जैसे स्तब्ध छल्ले भी नहीं हैं। इसके बाद आती है बारी शुक्र ग्रह की। पृथ्वी की बहन कहा जाता है, जिसे आकार और संरचना के कारण कभी कभी इसे पृथ्वी का बहन ग्रह भी कहते हैं, लेकिन शुक्र का वातावरण पृथ्वी से बिल्कुल अलग है। इसका वातावरण मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड से बना है और इसके घने बादलों के कारण यहाँ बहुत शक्तिशाली ग्रीन हाउस प्रभाव पाया जाता है। इसी कारण शुक्र

सौर्यमंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। एक रोचक बात है कि शुक्र अपनी धुरी पर अधिकांश ग्रहों की तुलना में विपरीत दिशा में घूमता है। अब आती है बारी पृथ्वी की, जो है हमारा घर। पृथ्वी सूर्य का तीसरा ग्रह है। अब तक ज्ञात ब्रह्मांड में जीवन की पुष्टि एकमात्र पृथ्वी पर ही हुई है। पृथ्वी की सतह पर बड़ी मात्रा में तरल जल मौजूद है। यहाँ उपयुक्त तापमान, वातावरण, जीवन के लिए आवश्यक अनेक परिस्थितियाँ मौजूद हैं। पृथ्वी का एक प्राकृतिक ग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिन और लगभग 6 घंटे में तय करती है। इसी कारण हर 4 साल के लगभग एक दिन अतिरिक्त जोड़कर लीप वर्ष बनाया जाता है। अब बारी आती है चंद्रमा की। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। चंद्रमा खुद प्रकाश उत्पन्न नहीं करता, हमें उसकी चमकीला भाग इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। चंद्रमा की सतह पर बहुत सारे क्रेटर यानी गड्ढे पाए जाते हैं। चंद्रमा का वातावरण बहुत विरल है, इसलिए वहाँ पृथ्वी के जैसा हवा और मौसम नहीं मिलता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से काफ़ी कम है, इसी कारण वहाँ किसी व्यक्ति का वजन पृथ्वी की तुलना में कम होगा। अब बारी आती है मंगल यानी लाल ग्रह की। चौथा ग्रह है सूर्य से मंगल, और यह लाल रंग का होता है, इसीलिए इसे लाल ग्रह कहा जाता है। मंगल की मिट्टी और चट्टानों में लौह खनिजों की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, इस कारण इसका रंग लाल दिखाई देता है। मंगल पर बहुत बड़े ज्वालामुखी और विशाल घाटियों के मौजूद है, और यहाँ ओलंपियस मॉस नाम का एक विशाल ज्वालामुखी भी है। मंगल के दो छोटे प्राकृतिक उपग्रह फोबोस और डीमोस हैं। मंगल पर पानी के बर्फ के रूप में मौजूद होने के प्रमाण मिलते हैं, जिससे कि वैज्ञानिक यहाँ प्राचीन समय में पानी की भूमिका और संभावित जीवन के संकेत का अध्ययन अभी भी कर रहे हैं। एक क्षुद्र ग्रह की पट्टी भी है। मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षेत्र बहुत बड़ी संख्या में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, इसमें क्षुद्र ग्रह पट्टी कहा जाता है। इसे क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से चट्टानी या धात्विक पिंड होते हैं, और उनका आकार बहुत छोटे से लेकर काफ़ी बड़ा तक हो सकता है। यही क्षेत्र हमें सौरमंडल के शुरुआती इतिहास को समझने में भी और वैज्ञानिकों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देते रहते हैं। अब बारी आती है बृहस्पति ग्रह की। यह सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल के सबसे बड़े ग्रह के रूप में बृहस्पति को हम जानते हैं। बृहस्पति एक गैसीय दानव ग्रह है और इसका आकार पृथ्वी से बहुत बड़ा है। इस ग्रह के सबसे प्रसिद्ध विशेषताओं में से एक है ग्रेट रेड स्पॉट, जो एक विशाल तूफान प्रणाली है। बृहस्पति के कई प्राकृतिक उपग्रह हैं, जिसमें आयो, यूरोपा, गैनीमेड, कैलिस्टो विशेष रूप से प्रसिद्ध है। इसमें गैनीमेड सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। अब बारी आती है छठे ग्रह यानी शनि ग्रह की। छल्लो वाला ग्रह कहते हैं इसे। शनि भी एक गैसीय दानव ग्रह है। इसके चारों ओर बर्फ, चट्टानी कणों और धूल के बने असंख्य छोटे छोटे कणों की संरचना होती है, जो हमें सुंदर छल्लों के रूप में दिखाई देते हैं। शनि के भी बहुत सारे प्राकृतिक उपग्रह हैं। इसमें टाइटन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। टाइटन का वातावरण घना है और इसकी सतह पर तरल हाइड्रोकार्बन की झीलें और समुद्र पाए जाते हैं। अरुण ग्रह अनोखी धुरी वाला ग्रह है। ये सूर्य से सातवां ग्रह है। अरुण ग्रह, जिसे यूरेनस भी कहा जाता है, यह एक आइस जायंट है। मतलब अरुण का सबसे खास बात यह है कि घूर्णन धुरी का जो बहुत अधिक झुका हुआ रहता है। इसे समझने का आसान तरीका यह है कि यह लगभग करवट वाला ग्रह बोलते हैं इसे, वो घूमता हुआ दिखाई देता है। अब बारी आती है वरुण ग्रह की। सौरमंडल का सबसे दूरी पर स्थित ग्रह है और सूर्य से आठवां ग्रह है, जिसे हम नेपच्यून भी कहते हैं। यह भी एक आइस जायंट है। वरुण

पर सौर्य मंडल की सबसे तेज हवाओं में से कुछ पाई जाती है। सूर्य से बहुत अधिक दूरी के कारण वहाँ वातावरण बेहद ठंडा है। प्लूटो को ग्रह नहीं माना जाता है, लेकिन पहले तो इसे हम ग्रह कहते ही थे। अब इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। प्लूटो आखिर ग्रह क्यों नहीं है? प्लूटो को लंबे समय तक सौरमंडल का नौवां ग्रह माना जाता था, लेकिन 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोली संघ के ने ग्रह की परिभाषा जो तय की गई थी वो इस मानक पर खरा नहीं उतरा। इस कारण इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है और इसे अब ड्वार्फ प्लैनेट यानी कि बौना ग्रह माना जाता है। कुछ धूमकेतु के बारे में भी जान लेते हैं। सौरमंडल में केवल ग्रह ही नहीं है, यहाँ धूमकेतु भी पाए जाते हैं। धूमकेतु मुख्य रूप से बर्फ, धूल और चट्टानी पदार्थों से बने छोटे खगोलीय पिंड होते हैं। जब कोई धूमकेतु सूर्य के पास आता है तो सूर्य की गर्मी से उसकी बर्फीली पदार्थ कुछ हिस्से गैस और धूल के रूप में बाहर निकलते हैं। इससे उसके आसपास कोमा बन जाता है और जिसे सूर्य से दूर जाती है तो पूंछ के जैसा दिखाई देती है। धूमकेतु को पूंछ हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देती है। अब हम सौरमंडल के बारे में आपको बता दें कि वैज्ञानिकों के अनुसार हमारा सौरमंडल लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले गैस और धूल के एक विशाल बादल से बना है। गुरुत्वाकर्षण के कारण यह बादल सिकुड़ने लगा। इसके केंद्र के जो पदार्थ है वो इकट्ठा होकर के सूर्य बन गए और उसके आसपास बची हुई सामग्री धीरे धीरे ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह में तब्दील होती गई। अब आइए सुन लेते हैं एक प्यारा सा गीत।

श्रोताओं, समय हो चला है आपसे विदा लेने का, तो चलते चलते बस यही कहना है कि आप हमेशा हंसते खेलते मुस्कुराते और स्वस्थ रहें, और सुनते रहें, अपने मन को तरोताज़ा करते रहें ये गाना।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
1: और अजीत का भी नमस्कार। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरेलकर, रतनमाला सुरेलकर जी ने सुविचार भेजा है, लिखते हैं,
2: पेड़ जितना फलदार होता है उतना ही विनम्र होकर झुक जाता है और सफलता भाग्य से नहीं बल्कि सही सोच, निरंतर मेहनत और धैर्य से ही मिलती है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है राधेनगर अकोला महाराष्ट्र से राजेश पी कारिया जी का। आप हमारे चिर परिचित श्रोता हैं, लिखते हैं, विमलेश जी और अजीत जी आपको प्यार भरा नमस्कार। हमें दिनांक 21/7/2026 और 22/7/2026 का उमंग प्रोग्राम बेहद पसंद आया। आगे आपने लिखा है,
2: जिसमें आपने ये भी जानिए के तहत भारत के अनूठे मेलों की जानकारी दी। इसमें आपने असम और नागालैंड के मेलों की जो दुर्लभ जानकारी दी वो हमें बेहद पसंद आई
1: जी।
2: दिनांक 22 जुलाई 2026 के ही प्रसारण में आपने सुंदरिया की कहानी सुनाई, वो भी हमें बेहद पसंद आई। ऐसा लगा मानो पूरा दृश्य आँखों के सामने दिख रहा हो, बहुत अच्छी कहानी थी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक शिकायत भी है हमारा संदेश प्रोग्राम में शामिल नहीं किए जाने की, कोई नाराजगी है तो माफ करें।
1: तो राजेश जी आपको कहना चाहते हैं कोई नाराजगी नहीं है, देखिए हमने आपका संदेश आज के प्रसारण में सबसे पहले शामिल कर लिया
2: जी। कुलगांव जम्मू कश्मीर से मोहम्मद असलम मीर
1: और राजा जी नगर बेंगलोर से हमारे चिर परिचित श्रोता NR प्रसाद और अखिला प्रसाद जी ने लिखा है,
2: अजीत जी विमलेश जी, मिट्टी की पुस्तकों से भोजपत्र से लेकर तालपत्र और ई पुस्तकों तक, पुस्तकों पर आधारित ये विषय सुनना वाकई शानदार था। वास्तव में आपकी चर्चाएं इतनी उत्कृष्ट थीं कि हमें ऐसा लगा मानो हम उन्हें ई पुस्तकों से ही पढ़ रहे हों
1: जी।
2: आपके वर्णन करने का तरीका और उन्हें सरल भाषा में समझाना बहुत ही बढ़िया था।
1: बहुत बहुत धन्यवाद NR प्रसाद जी और अखिला जी, आपको हम अपना आभार प्रकट करते हैं। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे जी का और साथ में वीणा पांडे, विनय शंकर

0: पांडे, नयन पांडे और सुमांशु पांडे जी का।
1: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा।
0: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की। तो श्रोताओं, हमारा पहला प्रश्न था, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसने दिया?
1: ये नारा दिया था प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, कृत्रिम बुद्धिमत्ता या AI का आविष्कार किसने किया था?
1: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। AI के आविष्कार का श्रेय जाता है अमेरिकी कंप्यूटर वैज्ञानिक जॉन मैकार्थी को।
0: और अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, मेघालय के मावली नोंग गाँव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है, क्यों?
1: इसका उत्तर है, मावली नोंग गांव के पास जो पुल है वो जीवित पेड़ों की जड़ों से बनाया गया है, इसलिए इसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है।
0: तो श्रोताओं, प्रश्नोत्तरी में आप सबकी प्रतिभागिता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
1: सुप्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता कौन है?
0: आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर 8800440559 पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता भी नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करना चाहते हैं तो किसी भी सर्च इंजन में जाकर टाइप कीजिए NCERT बुक्स PDF। वेबसाइट में दिए गए विकल्पों और निर्देशों का पालन कीजिए और मनचाही पाठ्य पुस्तक को डाउनलोड कीजिए।
0: जी हाँ, और यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों को ऑडियो बुक्स यानी ध्वनि पुस्तकों के रूप में सुनना चाहते हैं तो टाइप कीजिए NCERT यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। वहाँ आपको हमारी पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर उपलब्ध हो जाएगा। साथ ही साथ उमंग कार्यक्रम में प्रसारित कार्यक्रम भी आप इस चैनल पर सुन सकते हैं।
1: तो अब बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम,
0: वीर कुंवर सिंह।
1: ये कार्यक्रम महान स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी देशभक्त राजा वीर कुंवर सिंह के जीवन और भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी वीरता की गाथा प्रस्तुत करता है। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार उन्होंने बिहार के शाहाबाद में गंगा नदी के तट पर अंग्रेजों से लोहा लिया।
2: हमका सिपाहियों के साथ मिलकर लड़क चाहिए, महाजनन के बही खातों को जरा डालो।
3: '1857 भारतीय इतिहास का वो समय है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के शोषण और दमन के खिलाफ हिंदुस्तान के राजाओं, जमींदारों, किसानों, काश्तकारों और जनता ने विद्रोह कर दिया था। बैरकपुर में 34वीं इन्फेंट्री के सिपाही मंगल पांडे लड़ते लड़ते फांसी पर चढ़ गए थे। ये देखकर अंग्रेजों के खिलाफ पूरा देश धधक रहा था और विद्रोह की लहर फैल गई थी। भारत माता के कई सपूत आगे आए, जैसे जगदीशपुर के कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को देश से बाहर खदेड़ने के लिए जान की बाजी लगा दी। मेरठ में 10 मई को विद्रोह का बिगुल बजा और 3 जुलाई को पटना में हुई पीर अली की फांसी की सजा ने आग में घी डालने का काम किया। जगदीशपुर, दानापुर और आरा पर पीर अली की फांसी का गहरा असर पड़ा। जनता बगावत करने लगी। कहा जाता है कुंवर सिंह और जगदीशपुर के लोगों ने पीर अली की याद में एक मजार बनवाई, जिससे अंग्रेज और खफा हो गए। पटना के कमिश्नर ने कुंवर सिंह को मना किया, पर कुंवर सिंह कहां रुकने वाले थे।
2: अगर तुम लोगों ने फौज को इकट्ठा किया तो हम तुम्हारा काम तमाम कर देगा, अंडरस्टैंड?
3: उनकी रगों में तो देशभक्ति का जज्बा उफान ले रहा था।
4: मस्ती की थी छिड़ी रागनी, आजादी का गाना था, भारत के कोने कोने में होता यही तराना था। उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई और पेशवा नाना था, इधर बिहारी वीर बांकुड़ा खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। '1777 में कुंवर सिंह का जन्म साहब जादा सिंह के घर हुआ। लाड़ प्यार से पालन पोषण

0: पिता के निधन के बाद कुंवर सिंह ने सन 1826 ईस्वी में जगदीशपुर की जमींदारी की बागडोर संभाली। कुंवर सिंह के बारे में कहा जाता है कि वे एक बड़े नेक दिल इंसान थे। जो किसान समय पर लगान नहीं दे पाते थे या मुसीबत में पड़ जाते थे, वे उनकी दिल खोलकर मदद करते थे। इसी कारण कई बार वे लगान की पूरी राशि जमा नहीं करा पाते थे। उनके ऊपर धीरे धीरे कंपनी की बकाया राशि का कर्ज बढ़ता गया। अंग्रेज उनसे खफा थे, पर आम जनता बहुत खुश थी।
1: सुना तुमने?
2: क्या?
1: पूरे देश में लोगों ने कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया है।
2: हैं?
1: अब हमारे कुंवर सिंह क्या करेंगे?
2: मेरा तो मन कहता है कि कुंवर सिंह लड़ेंगे, वो समझौता करने वालों में से नहीं है।
1: ठीक कहते हो भाई। अभी देखा नहीं, जब पीर अली की मजार पर गए थे तब उनका मन कितना भारी हो गया था। अमर सिंह तो एकदम गुस्से में थे।
2: हाँ, मुझे भी लगता है कुंवर सिंह जरूर लड़ेंगे, कोई साथ दे या ना दे।
3: कुंवर सिंह चार भाई थे, वो सबसे बड़े थे। दूसरे भाई का नाम दयाल सिंह और तीसरे का नाम राजपति सिंह। अमर सिंह उनके सबसे छोटे भाई थे, वे हमेशा उनके साथ रहते थे। जब दानापुर की 40वीं देशी पलटन के सिपाहियों ने विद्रोह किया तो जगदीशपुर के लोग एकजुट हो गए। दानापुर के विद्रोही सिपाही नेता हरकिशन सिंह की चारों ओर चर्चा होने लगी।
1: बड़ बहादुर वा हरकिशन वा, अरे कैसे दानापुर में अंग्रेजन के छक्का छुड़ा दे ले। अरे का हो, अब हमार कुंवर सिंह का करी?
4: अरे सुने में आयल बा कुंवर सिंह के सब खबर हो गई बा, कभो कुछ हो सके ना। हाँ,
5: चाहिए कि जिसके बारे में
1: हुजूर, अभी अभी खबर मिली है कि दानापुर की देशी पलटन ने विद्रोह कर दिया है। अंग्रेजों से सिपाही लड़ते हुए आरा की ओर बढ़ रहे हैं। हमें क्या आदेश है?
6: क्या कहते हो अमर सिंह? ये बड़ी मुश्किल की घड़ी है, सिपाहियों का मनोबल बढ़ाना जरूरी है। हमारे जाबाज अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपकी क्या राय है?
2: भैया, सभी अंग्रेजों से मुक्ति चाहते हैं और समय आ गया है अंग्रेजों से दो दो हाथ हो जाएं। काफी समय से कैप्टन डनवर हमारे किसानों पर अत्याचार कर रहा है। अंग्रेज सैनिक हमारी खड़ी फसलों को रौंद देते हैं।
6: ठीक कहते हो अमर सिंह। रहीम खान
1: जी हुजूर,
6: सिपाहियों को संदेश भेजो कि हमसे आरा कोठी में मिले।
1: जी हुजूर।
6: तो ठीक है, आरा चलने की तैयारी करो।
0: छब्बीस जुलाई 1857, आरा में कुंवर सिंह की कोठी। चारों ओर सैनिकों की चहलकदमी। दानापुर से आए सैनिकों के सामने कुंवर सिंह खड़े हैं।
6: सैनिक भाइयों और बहादुर साथियों, अब समय आ गया है कि हम कंपनी की गुलामी की जंजीरें काट कर फेंक दें। आप सब ने विद्रोह करके हिम्मत और साहस का परिचय दिया है। हरकिशन सिंह और रंजीत राम दोनों बहादुर सिपाही हैं। इनका युद्ध करने का कौशल और क्षमता सबसे उत्तम है। ये दोनों सैनिकों का नेतृत्व करेंगे। आगे बढ़िए, सबसे पहले

0: हमें अंग्रेजों को आरा से बाहर निकालना है, फिर पूरे देश से मैंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहब और बेगम हजरत महल को खबर भिजवाई है। शीघ्र ही हम सारे देश में एकजुट होकर लड़ेंगे।
1: सैनिकों के नारों से आरा कोठी का प्रांगण गुंजायमान हो उठा। सैनिकों की चहल पहल बढ़ गई। तभी सैनिकों की तरफ से हरकिशन सिंह आगे बढ़े और कुंवर सिंह की बगल में आ खड़े हुए। अदब से उन्हें सलामी देते हुए वो सैनिकों की तरफ मुखातिब हुए।
2: साथियों, आप सबने दानापुर में अंग्रेजी फौजों और अफसरों के द्वारा किया गया शोषण और दमन देखा है। उनके यहाँ रहते हुए हम स्वाधीन नहीं रहे। हमारे किसान भाई कर्ज के बोझ से

0: फिर फौज संगठित की। देश को आजाद कराने के लिए नौजवान स्वयं फौज में आगे आए। लोगों का जोश देखकर मिर्जापुर, रीवा, बांदा और कानपुर आदि स्थानों पर अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए कुंवर सिंह की सेना लखनऊ पहुंची।
1: कुंवर सिंह जिंदाबाद! कुंवर सिंह
2: जिंदाबाद!
1: भारत माता की
2: जय!
1: भारत माता की
2: जय!
0: लखनऊ में बेगम हजरत महल ने कुंवर सिंह और उनके सहयोगियों का जोरदार स्वागत किया।
3: अल्लाह की मेहरबानी से आज हमारे बीच शाहबाद के बाबू कुंवर सिंह मौजूद हैं। इन्होंने अंग्रेजी फौज को कई जगह बड़ी शिकस्त दी है। अंग्रेज हुक्मरान इनसे घबराते हैं। हमने कुछ फैसले लिए हैं। हम चाहते हैं कि हम लोग मिलकर अंग्रेजों का मुकाबला करें। खुदा जानता है कि आजमगढ़ से अंग्रेजों को हटाना कितना मुश्किल काम था। हम आजमगढ़ की मिल्कियत बाबू कुंवर सिंह के सुपुर्द करते हैं। हम चाहते हैं कि बाबू कुंवर सिंह आजमगढ़ के बाकी इलाकों से अंग्रेजों को निकाल कर बाहर करें।
4: बेगम साहिबा, आपके इस सम्मान से हम आपके एहसानमंद हैं। आपने एक नई जमीन दी है। अल्लाह को मंजूर होगा तो हम आजमगढ़ से भी अंग्रेजों को निकाल बाहर करेंगे।

ये एक ऐतिहासिक क्षण था। जगदीशपुर पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। कुंवर सिंह को एक नई रियासत का मालिकाना हक देकर बेगम हजरत महल ने उन्हें राज सम्मान प्रदान किया था। कहते हैं कि वहीं से लोग कुंवर सिंह को राजा कुंवर सिंह के नाम से संबोधित करने लगे। कुंवर सिंह ने बेगम हजरत महल के विश्वास को नहीं तोड़ा। 17 मार्च को कुंवर सिंह और देशी सिपाहियों की टुकड़ियां अतरौलिया के मैदान में इकट्ठा हुईं। 22 मार्च को आजमगढ़ जिले में तैनात कर्नल मिलमैन ने कुंवर सिंह के सिपाहियों पर भारी हमला किया।

0: अतरौलिया का मैदान सिपाहियों के खून से लथपथ हो गया। छब्बीस मार्च को मिलमैन को पराजित करते हुए कुंवर सिंह ने आजमगढ़ और अन्य इलाकों पर कब्जा कर लिया।
1: आजमगढ़ पर विजय के बाद कुंवर सिंह जगदीशपुर लौटने लगे। रास्ते में ब्रिगेडियर डगलस की सेना के साथ घमासान युद्ध हुआ। ब्रिगेडियर डगलस की हार हुई। अंग्रेजी सेना फौजी सामान छोड़कर भाग गई। दूसरी ओर जनता ने राजा कुंवर सिंह का स्वागत किया।

0: कुंवर सिंह गाजीपुर पहुंचे, पर डगलस ने उनका पीछा जारी रखा। कहा जाता है शिवपुर घाट से गंगा नदी पार करते हुए राजा कुंवर सिंह की दाहिनी बांह में गोली लगी, जिसे बाएं हाथ की तलवार से काट कर उन्होंने गंगा में बहा दिया।
1: लो मां गंगे, आज तुझको ही देता हूं ये।
0: दुश्मन तट पर पहुंच गए जब कुंवर सिंह करते थे पार, गोली आकर लगी बाह में, दायां हाथ हुआ बेकार। हुई अपावन बाहुजान, बस काट दिया लेकर तलवार। ले गंगे ये हाथ, आज तुझको ही देता हूं उपहार। वीर भक्त का वही जानवी को मानो नजराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था।
2: कहते हैं कुंवर सिंह को अपना हाथ काटते देख ब्रिगेडियर डगलस अवाक रह गया।
3: ओह माय गॉड, देखाओ शाहबाद खबर करो कि कुंवर सिंह नदी पार कर गया है।
4: यस सर।
2: घायल अवस्था में कुंवर सिंह जगदीशपुर पहुंचे। कंपनी ने 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांट के नेतृत्व में तोपों से लैस एक बड़ी फौज जगदीशपुर भेजी। ये 1857 के संग्राम का चरम सीमा का समय था, जब पहली बार देशी फौज ने कुंवर सिंह के नेतृत्व में अंग्रेजों की एक बड़ी संगठित फौज को पराजित किया था। कहते हैं जगदीशपुर के लोगों ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों को हरा दिया, लेकिन लंबी लड़ाई में कुंवर सिंह घायल हो गए। उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया। इस युद्ध में वे और भी घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 को उनका निधन हो गया। पूरा शाहबाद शोक में डूब गया। इस तरह 1857 के अमर सेनानी वीर कुंवर सिंह की स्मृतियां दर्ज हैं। वहां के लोकगीतों के वे नायक हैं। ऐसे नायक बार बार जन्म नहीं लेते।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम वीर कुंवर सिंह, और आइए अब सुनते हैं ओज और वीर रस से परिपूर्ण सुंदर कविता वीर तुम बढ़े चलो।
1: हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि द्वारका प्रसाद महेश्वरी द्वारा रचित ये कविता बच्चों और युवाओं को साहस, संकल्प और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ और प्रतिकूल परिस्थितियाँ क्यों न हों।
0: जी,

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वीर तुम बढ़े चलो। श्रोताओं, इस कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब मुझे यानी अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुमलता, जगबंधु
1: और मंजू जी के साथ विमलेश को कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। लोकसभा में आज चार विधेयक पेश किए जाने हैं। इनमें ट्रिब्यूनल सुधार विधेयक 2026, खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक शामिल हैं। राज्यसभा में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंकर वही साक्ष्य विधेयक 2026 पर विचार विमर्श और पारित करने के लिए पेश करेंगी। जेपीएससी और

एसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों और झारखंड सरकार के बीच तीन दौर की वार्ता के बावजूद गतिरोध जारी है। छात्रों ने सरकार के प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा का घेराव करने के अपने कार्यक्रम पर अडिग हैं। भारत ने गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में 300 गीगावाट का आंकड़ा पार कर लिया है। पिछले महीने की 31 तारीख को हासिल की गई यह ऐतिहासिक उपलब्धि 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने कहा है कि देश की कुल स्थापित विद्युत उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। भारतीय नौसेना और अमरीकी नौसेना का संयुक्त विस्फोटक आयुध रोधक ईओडी अभ्यास 2026 आज से कोची स्थित दक्षिणी नौसेना कमान में शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य दोनों नौसेनाओं की ईओडी टीमों और विशेषज्ञ गोताखोरों के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और पेशेवर सहयोग को सशक्त बनाना है। रूस ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों पर निर्भरता कम करने के लिए हिंद महासागर और भारत तक रेल मार्ग विकसित करने का प्रस्ताव रखा है। रूसी उप प्रधानमंत्री मरार खुसुनुलिन ने कहा कि वैकल्पिक मार्ग होर्मुज जलडमरू मध्य और बोस्पोरस जलडमरू मध्य सहित दो रणनीतिक जल मार्गों से जुड़े जोखिमों को कम करने में सहायक हो सकते हैं। रूस की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार श्री खुसनोलिन ने कहा कि भारत तक पहुंच प्रदान करने के लिए तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अफगानिस्तान से होकर गुजरने वाले रेल मार्गों का पता लगाया जा सकता है। ईरान की संसद ने होर्मुज जलडमरू मध्य और खाड़ी की सुरक्षा और सतत विकास सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक रणनीतिक कार्य योजना की रूपरेखा को मंजूरी दे दी है। समिति के प्रवक्ता हसन कशकवी के हवाले से ईरान के स्थानीय मीडिया ने बताया कि इस योजना पर संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति समिति में चर्चा हुई और बिना किसी विरोध के इसे मंजूरी दी गई। इस विधेयक को 13 जुलाई को संसद में औपचारिक रूप से पेश किया गया। प्रधानमंत्री

0: 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं।
1: घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
2: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: तिरंगा, हर घर तिरंगा।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत में एशियाई शेरों की संख्या 2020 में 674 से बढ़कर 2025 में 891 हो गई है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारतीय भारोत्तोलक महाराजन अरु मोंगपंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीत लिया है। महाराजन ने स्नैच में 128 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 157 किलोग्राम भार उठाकर अपना व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए कुल 285 किलोग्राम का भार उठाया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग ने आज जम्मू कश्मीर, झारखंड, आंध्र प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में तेज हवाओं के साथ बारिश का भी अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi has urged citizens to participate enthusiastically in the Har Ghar Tiranga movement and renew their collective resolve to contribute towards building a Viksit Bharat. In a social media post, Mr. Modi said, "Our tricolour is our pride and a constant source of inspiration to always give our best for the nation." The Prime Minister said he is glad that this year's efforts are dedicated to Vande Mataram and that too at a time when we are marking its 150th anniversary. In his Mann Ki Baat program on Akashwani last month, Mr. Modi urged people to hoist tricolour at homes.
4: पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। हर घर हर गली में तिरंगे का उत्सव दिखाई देता है। इस वर्ष भी हमें हर घर तिरंगा अभियान को पूरे उत्साह के साथ आगे बढ़ाना है, अपने घर पर पूरे सम्मान के साथ तिरंगा फहराना है।
3: The Har Ghar Tiranga movement is gaining momentum across the nation. In Maharashtra, the Har Ghar Tiranga campaign has begun with patriotic fervor. Tiranga rallies were organized in various districts of Maharashtra, including Bid, Thane and Buldhana. In Bihar, a grand Tiranga Yatra will be organized in Patna today under the Har Ghar Tiranga campaign. Several state ministers, legislators, officials and a large number of people will participate in the Tiranga Yatra. Manipur also joined the rest of the country in organizing the Har Ghar Tiranga campaign. State Chief Minister Yumnam Khemchand participating in the campaign from his residence at Singjamai under Imphal West District urged the people to recognize themselves as Indians first, then a Manipuri. Meanwhile, Delhi Metro Rail Corporation has unveiled a special metro train wrapped with the Har Ghar Tiranga theme on the yellow line to celebrate the spirit of independence. The Indian Navy US Navy Explosive Ordnance Disposal Exercise 2026 will be conducted at Southern Naval Command, Kochi, from today till 14th of this month. The Defence Ministry said the bilateral exercise aims to enhance interoperability and strengthen professional cooperation between the specialist diving and EOD teams of the two navies. India has crossed 300 gigawatts of non-fossil fuel-based installed electricity generation capacity. The milestone of crossing 300 gigawatts of non-fossil fuel-based installed electricity generation capacity represents more than 60% of the 500 gigawatts capacity target set for 2030. The Ministry of New and Renewable Energy said that the share of non-fossil fuel-based electricity capacity in the country's total installed electricity generation capacity has reached over 54%. It added that the growth in clean energy generation has been driven by strong contributions across sectors. Russia has proposed

0: exploring a railway route to the Indian Ocean and India to reduce dependence on strategically important maritime routes, Russian Deputy Prime Minister Marat Khusnulin said. Alternative routes could help address risks associated with the two strategic waterways, including the Strait of Hormuz and the Bosphorus Strait. At least three people have been killed and 10 others injured in multiple shootings in Chicago over the weekend. According to media reports, as many as 8 shootings took place on Sunday. 3 people were killed and 9 others injured, including 2 who are in critical condition. A 35-year-old man was also shot in the head in the early hours of Saturday. He remains in critical condition. Statistics show that 1,878 victims of gun violence were reported in Chicago in the last 12 months, with 356 people killed. India settled for the silver medal in the team event at the FISU World University Squash Championships 2026 after losing to Hong Kong, China in the final in Mumbai yesterday. The Indian quartet of Om Sembal, Shamina Riaz, Suraj Kumar Chand and Nirupama Dubey lost the final to Hong Kong, China on game difference after the tie ended 2-2. Despite missing out on gold, a silver medal is India's best ever finish in the team event at the FISU World University Squash Championships. Indian weightlifter Maharajan Aruga Pandian won the silver medal in the men's 65-kilogram category at the Asian Junior Weightlifting Championships in Tashkent, Uzbekistan. Maharajan produced a personal best total of 285 kg, lifting 128 kg in the snatch and 157 kg in the clean and jerk. And that is the end of this news bulletin.
1: लेकिन दिशा का एक एस ऑफ स्पेड्स कहो या ट्रम्प्स कहो, क्या है कौन सा सीन, तो वो अंधे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं.
2: हाँ,
1: इससे और क्या चाहिए. अब वो मैं बैठ के थोड़े ना सोचा है वो सीन, वो देखा तो लिख लिया, क्योंकि एक्चुअली वो करते हैं बच्चे वैसे. वो क्रिकेट खेलना चाहते थे और उनका गेंद क्या है, एक रिंग है, और उस रिंग में उन्होंने बॉटल टॉप्स होते हैं ना सॉफ्ट ड्रिंक्स के, उनको छेद करके उनको पिरोए हैं और रिंग फिर फिक्स कर दी, ताकि वो रिंग में वो सब झुनझुन झुनझुन करके बचते हैं ढक्कन सब, और फिर वो रिंग फेंको तो झुनझुनाती हुई जाती है हवा में झुन झुन झुन झुन झुन. फिर जो बैट्समैन है उसको एक बड़ा सा चौड़ा सा क्रिकेट बैट से भी चौड़ा फट्टा दिया होता है, प्लाईवुड का कहो या लकड़ी का फट्टा, नॉट वेरी हेवी, तो लकड़ी का फट्टा उसकी बैट है. तो ये बॉलर फेंकता है, ये झुनझुना या बॉल कहो का बॉल है, वो बॉल फेंकता है, ये सुनता है और जैसे पास आया ठाक करके
2: क्या
1: मारता है, तो या तो सिक्सर या तो कैच.
2: वाह वा.
1: और ये खेल देख के रोंगटे खड़े हो गए. अभी मैं आपको बता रही हूँ तब फिर भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए. इट इज सो ब्यूटीफुल, इट वॉज सो ब्यूटीफुल. तो बस ये बच्चे खेले सुंदर तरीके से, स्क्रीन पे सैनी ने उनको उतारा और मैंने फिल्म में दिखाया.
2: इसीलिए तो सेलुलाइट के पर्दे पर जीवन धड़का
1: जी,
2: क्योंकि जीवन से चीजें निकाली गई थी. मैं एक चीज का और जिक्र करना चाहता हूँ ताकि वो इस इंटरव्यू में दर्ज हो, और वो ये है कि ये जो चौल है, मिनिस्टर ऑफ चॉल्स ने ये चौल ढूंढने में जो जमीन आसमान एक किया और वो मुंबई में नहीं मिली.
1: नहीं क्या मजे की बात है ना, मुंबई की खास चौल पुणे में.
2: पुणे में
1: दिस इज फिल्म यार, यू नो फिल्म ए टू जेड फिल्मी एवरीथिंग इज फेक. तो ये भी फेक ही है, चौल भी फेक है हमारी, लेकिन चौल फेक नहीं है, पोजिशनिंग फेक है.
2: पोजिशनिंग फेक है कि वो आपको बंबई में मिलती ही नहीं.
1: नहीं ना, बंबई में कितनी चौल है रे बाबा बाबा बाबा, हम पागल हो गए ढूंढते ढूंढते, मतलब दादर से लेके गोरेगांव तक, उधर थाना तक, कहाँ कहाँ नहीं घूमे हम. तो कई चौल तो होती थी, वहाँ के मालिक बहुत बदतमीज होते थे, बेतहाशा पैसा मांगते थे, या वहाँ सुना कि कोई गुंडागर्दी थी बहुत ज्यादा. कई चौले तो इतनी खराब थी, मतलब सीढ़ियां लगे पैर रखो तो कब कोलैप्स हो जाए, और कहीं तो इतनी गंदगी थी, कहीं कुछ था, कहीं भीड़ जा ही नहीं पाते थे चौल तक. तो इस तरह से एक भी चौल हमें रास नहीं आई, और फिर परेशान हो गए. फिर हमने सोचा चलो किसी स्टूडियो में नकली चौल बनाते हैं, अब क्या करें. तो मैंने कहा कि अरे ये चौल करना और वो भी सेट बनाना, हाय हाय कभी नहीं ये हो सकता, लेकिन क्या करे मानना पड़े. फिर किसी ने बताया कि पुणे में देखो ना, पुणे में जरूर मिल जाएगी चौल. तो मैंने कहा नहीं नहीं, बंबई की चौल पुणे में क्यों. तो कहता है अच्छा तुम स्टूडियो में नकली चौल लगाने को तैयार हो, लेकिन पुणे में असली चौल नहीं चाहिए क्योंकि वो पुणे में है. मैंने कहा हाँ ये तुम ठीक कह रहे हो, यू आर राइट. फिर मैं भी समझ गई कि मतलब अड़ियलपना नहीं करना चाहिए ज्यादा.

0: तो फिर हम पूना गए
1: जी
0: और पूना में तो उल्टा ही हुआ, जो चौल देखो हमें पसंद आए,
1: वाह
0: जो चौल देखे वो हमें रास आए। तो फिर हमने 5 चावलें शॉर्टलिस्ट
1: शॉर्टलिस्ट
0: की।
1: की।
0: हाँ, और फिर एक जो बहुत हमारे मतलब की थी, जो हमारे घर से दूर नहीं थी, सेंट्रल भी थी, जहाँ के लोग भी बड़े माशाल्लाह अच्छे थे वगैरह वगैरह, और वो एक ताड़ुग के चौल करके केसरीवाड़ा के बिल्कुल करीब में थी, सेंट्रल पूना में। तो वो बढ़िया चौल थी, और चारों ओर वो बीच में ये था पूरा एक ग्राउंड सा, चौल
1: आंगन
0: के बीच में आंगन, और चारों ओर बालकनीज थी, बैलुस्टेज और कटघरे लगे हुए, एक एक एक एक फ्लैट था चौल का। हाँ, मतलब कोई भी आदमी चौल वाला किसी भी चौल वाले को पुकार सकता था अपने घर से
1: बिल्कुल
0: बैलुस्टेज। और फिर इतनी वो सुंदर चौल, और वो क्या चौल वाले, और वहां के बच्चे भी और ये भी, और इतना उन्होंने हमें सहयोग दिया कि मैं क्या बताऊं। फिर हम कुछ बहुत ही ढीठ बन गए कि कहने लगे, तात्या कल आपके घर हम आ रहे हैं। हाँ, तो वो सब वो तोते का पिंजरा जरूर लगा के रखी है वगैरह वगैरह वगैरह, और बड़े प्यार से फिर हमको सब शूटिंग करने देते, कहीं खुद चले जाते बगल में पड़ोस में।
1: इस तरह पूना की साड़ुम के चौल
0: या
1: कथा
0: कथा
1: फिल्म
0: में
1: में बंबई की चौल बन
0: बन
1: के
0: गई।
1: हमेशा के लिए अमर हो गई,
0: बिल्कुल,
1: है ना। ये कमाल है। इस फिल्म का वो गाना बजाते हैं
0: कौन सा
1: जो हमने तब बजाया था जब आपने विविध भारती की पहली सीडी पे
0: कितनी
1: कदम
0: वो
1: रखा
0: इतना
1: था।
0: प्यारा लगा मुझे। अगर सुनो, एक से जल्दी से बताती हूँ
1: जी
0: कि जिंदगी में प्यारे प्यारे इंसिडेंट्स फिल्मी करियर में मेरे बहुत आए, उसमें से ये एक दर्ज हो गया जो
1: ये भी
0: आपने गाना बजाया विविध भारती में।
1: क्या बात है। कौन आया कौन आया। हम अपने सुनने वालों को बता दें कि जब सई जी विविध भारती के स्टूडियो में आ रही थी तो जैसे ही वो गाड़ी से उतरी और पहले स्टेप पर उन्होंने कदम रखा और तुरंत गाना बजा, कौन आया। तो यही गाना सुनते हैं,
0: जी
1: कौन आया।

0: आग की तरफ चलते हैं। आपकी जिंदगी की आपकी नजर में
1: हाँ
0: सबसे महत्वपूर्ण फिल्म है ये,
1: या बिल्कुल
0: और इसका बीज विलासराव सालुंके से मिलके पड़ा था।
1: विलासराव सालुंके वॉज द फर्स्ट स्टेप और द फर्स्ट थिंग कि वेरी डियर फ्रेंड्स ऑफ माइन विजय एंड सरोजा परुलकर पूना में, दोनों अब नहीं रहे लेकिन बहुत ही प्यारे दोनों पति पत्नी थे और हमेशा कुछ न कुछ सोशल काम में लगे रहते थे। कहीं कुछ किसी के साथ जाती हो तो ये दोनों वहां हाजिर, लड़ने के लिए, उनको ये दिलवाने के लिए वगैरह वगैरह। तो उन्होंने मुझे कहा कि सही, ये तुमने विलासराव की पानी पंचायत नहीं देखी, उनके गांव में वो गांव पूरा पानी को उन्होंने अर्पित किया है जैसे, और पानी पर उनका बहुत रिसर्च हो रहा है और उनका कहना है कि बारिश की हर बूंद पर हर गांव वाले का हक होना चाहिए।
0: बहुत बढ़िया बात
1: हाँ,
0: है
1: और उन्होंने क्या क्या परियोजनाएं बनाई है। एनीवे, मैं देखने गई हाँ
0: जी।
1: उनके गांव में,
0: नायगांव
1: नायगांव, नायगांव गई थी। तो वहां नायगांव में उन्होंने कहा सब पूरा देख लिया, ये हो गया वो हो गया। उन्होंने कहा अच्छा, एक हस्ती से आप नहीं मिलिए, हमारे नायगांव में एक बड़ा मशहूर आदमी है, मिलवाइए। तो एक किसान सामने आया, दुबला पतला ठिंगना सा, एक टोपी सर पे जिसका ऊपर का हिस्सा पूरा गायब हो गया था, धूप में काम कर करके सिर्फ उसका दे रहा था चारों ओर का, ये है हमारे सोमा। तो मैं जरा सी चौंके, मैंने कहा ये अच्छा, नमस्कार, बड़ी खुशी हुई। सोमा अपना कुआं दिखा दो सही टाई को। तो मुझे सोमा ने अपना कुआं दिखाया, बाकायदा कुआं, पत्थर से चारों ओर बांध बनाया हुआ, ये वो, नीचे पानी, अंदर कुएं में पानी। कहता ये सोमा ने खुद खोद खोद के पानी निकाला। 12 साल सोमा कुआं खोद रहा था क्योंकि
0: बाप रे।
1: सोमा को पूरा यकीन था कि मेरे खोपटे के बाहर, मेरे झोपड़े के बाहर जो छोटी सी बंजर जमीन है खरकाली, उसके अंदर पानी है। ऐसे उसको पता नहीं कहां और क्यों और कैसे, लेकिन उसको ये पूरी उसकी धारणा थी। और वो उस हिसाब से पूरे दिन काम पे जाता था, बेचारा करेगा क्या, पैसे तो कमाने थे, तो वो काम पे जाता, मेहनत से कमाता रोजी रोटी, घर आके कुआं खोदता।
0: बाप रे।
1: और बीवी उसकी झगड़ा करके कितनी बार पता नहीं मायके चली गई, फिर वापस आ गई, बेचारी जाएगी कहाँ, बच्चे उसके 3-4, और पूरा गांव सोमा पे हंसता था। उसका नाम था पगला सोमा क्योंकि सारे देखते थे कि यार सोमा क्या है वो, अरे खोद रहा होगा और क्या करेगा सोमा। और जब सोमा को पानी मिला तो फिर पूरा गांव पगला गया बिल्कुल। तो ही हैड द लास्ट लाफ। फिर गांव वालों ने आगे बढ़ बढ़ के फिर उसका कुआं बांधा, ये किया वो किया। तो विलासराव ने कहा सही, ये फिल्म बनाने लायक है। मैंने कहा जरूर है, और ये मैं अपने दिमाग में दर्ज कर ली,
0: इंसान की जुझारूपन की मिसाल।
1: जुझारूपना की क्या मतलब, किस हद तक उफ। और फिर ये जब हुई फिल्म, ओम पुरी ने ये रोल किया
0: जी
1: और शबाना ने उसके बीवी का किया, और वो इतना उनके प्यारे सीन है, वो कहती है कि अरे इस चुड़ैल को लेके मैं क्या करूं, कोई औरत होती तो मैं देख लेती, लेकिन ऐसी सौत का क्या करूं जो कुआ, मतलब उसकी सौत। तो
0: बिल्कुल
1: और हाँ, तो वहां से शुरुआत हुई,
0: जी।
1: फिर वो कुआ हो गया। लेकिन मैंने सोचा कि ये एक पूरी फिल्म के लिए ये शायद इट्स नॉट मीटी इनफ, नॉट फ्लेशी इनफ। हाँ, आगे अपना रोजमर्रा के काम में लग गई। और फिर काफी साल गुजरे और मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त सुभाषिनी अली,
0: जी जी
1: हाँ
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: मालूम है, कैप्टन लक्ष्मी की बेटी और खुद मार्क्सिस्ट है, और बहुत धड़ल्ले वाली औरत और मेरी बड़ी प्यारी दोस्त है। तो वो बहुत मिल मजदूरों का काम करती थी मुंबई में, और वो एक दिन मेरे घर के पास ही रहती थी तब। तो मेरे घर आई और दो चटाइयां देखी सुभाषिनी ने, कहती है सही दो दो चटाइयां क्या करनी। मैंने कहा है पड़ी है। कहते एक चटाई तो दे दो ना मुझे। मैंने कहा तुम क्या करोगे चटाई लेके। कहते मेरे लिए नहीं रे, मुझे अपने गाड़ा में काम आएगी। मैंने कहा क्या, कहाँ काम आएगी। कहते गाड़ा, गाड़ा, गाड़े में जाती हूँ ना मैं, तो गाड़े में काम आएगी। मैंने कहा गाड़ा मतलब क्या बोल रही हो, क्या गाड़ा। तो सुभाषिनी ने ऐसी आंखें फाड़ के मुझे देखा, कहती है तुम मराठी औरत अपने आप को डायरेक्टर कहती हो, लेखिका कहती हो, और तुम्हें गाना नहीं मालूम हाँ बम्बई में रहकर।
0: जी
1: मैंने कहा नहीं नहीं सच्ची नहीं मालूम मुझे क्या गाना मतलब। कहती है चल मेरे साथ चल। और फिर मैं सुभाषिनी का पल्लू पकड़ के उसके साथ गई, और हम चिंचपोकड़ी और यहाँ वहां वो सब मिल एरिया में वो मुझे ले गई, और गाड़ा देखा मैंने। गाड़ा क्या होता है, इट्स अ डॉर्मेटरी, बड़ा कमरा जिसमें 20 से लेकर 40 बंदे एक साथ रहे,
0: एक लंबा सकरा
1: लंबा बड़ा एक हॉल, हॉल
0: जी।
1: ही गाड़ा मतलब हॉल कमरा। हाँ, लेकिन उस कमरे में साथ रहते हैं, साथ काम करने वाले मिल मजदूर,
0: जी
1: 40-40 मिल मजदूर एक कमरे में। हाँ, तो वो जैसे मैं दहलीज पर खड़ी हुई, सुभाषिनी तो अंदर गए, थका।

0: पटक करके, और मैं आंखें फाड़ के देखती रही 40 जने अंदर कमरे में, और अलग अलग उनका हर एक का कुछ ना कुछ चल रहा था। कोई पेपर पढ़ रहा था दिन का, कोई लेटर लिख रहा था पोस्ट कार्ड पे, कोई फ्लूट बजा रहा था, चार जने पत्ते खेल रहे थे, ताश खेल रहे थे, एक जन स्टोव पे चाय बना रहा था, एक जन कुछ भी, मतलब अलग अलग अलग अलग उनके सवाल। और बहुतेरे लोग सोए थे चटाइयों पे, गहरी नींद सो रहे थे। चारों तरफ ये झमेला चल रहा है, लेकिन बीच बीच में लोग बड़े मजे के खर्राटे भी भर रहे हैं। तो मैं देखती रह गई, देखती रह गई, खड़ी रह गई। फिर उसने कहा, अरे आओ ना, क्या देख रही हो? फिर मैं अंदर गई और फिर बातें करने लगी लोगों का। वो सब कहते, हम अपना देहात छोड़ के आए हैं, अपने माँ बाप, अपने बीवी बच्चे, अपने घर बार सब छोड़ के हम वो अपने पेट भरने के लिए, रोजी ढूंढने के लिए बम्बई शहर में आ गए हैं, लेकिन हमारा दिल तो गांव में रह गया पीछे, दिल छोड़ के आए हैं, बाकी सब लेके आए। तो मैंने कहा, तो फिर आपको सिर्फ ये 6 फुट जगह मिलती है? कहते हाँ, ये हक की हमारी 6 फुट जगह जहाँ हम सो सकते हैं आराम की नींद। कहते हाँ, सो सकते हैं लेकिन करवट नहीं बदल सकते। मैंने ये फिल्म में डायलॉग इस्तेमाल किया है कि हम सो सकते हैं, करवट नहीं बदल सकते। किसी ने मुझे कहा, क्या तुम बहुत अच्छा डायलॉग लिखती हो? मैंने कहा, मैं डायलॉग चोरी करती हूँ, मेरा अपना
1: आम जीवन से आया है जी।
0: तो एनीवे, तो ये इस तरह वो देख के मैंने कहा, ये तो इट्स टू टू ड्रामेटिक, टू फिल्मी टू नॉट डील विथ। तो फिर ये भी वो कुएं के साथ ये
1: जुड़ गया।
0: और देन द लास्ट थिंग वॉज विजय सरोजा अगेन, दे वर रिटर्निंग फ्रॉम निपानी। निपानी इफ यू नो
1: इंडस्ट्रियल एरिया,
0: इज द इंडस्ट्रियल एरिया नोन फॉर बीडी वर्क्स। हाँ, निपानी की तंबाकू और निपानी की बीड़ियां मशहूर है। तो वहां औरतों ने एक जंग खड़ा किया था क्योंकि उन पर बहुत अत्याचार हो रहे थे, उनको पैसे ठीक से नहीं दे रहे थे, उन पर वो बहुत ही क्या क्या तरह तरह के जुल्म होते थे वगैरह वगैरह। तो विजय और सरोजा वो के साथ शामिल होने के लिए गए थे निपानी, वहां से लौट रहे थे। और विजय ने मुझे जो किस्से कहानियां सुनाई, तो मुझे लगा मैं चारों तरफ मेरे तमाकू ऐसे
1: उड़ रहा है
0: और मेरा दम घुट रहा है ऐसे। तो ये फिर तमाकू वाली औरतें भी खड़ी हो गई लाइन में, और फिर देखते ही देखते जैसे जादू हुआ, और फिर 7 दिन के अंदर इसका मेल हो गया और फिर पटकथा मेरी बन गई।
1: क्या बात है। और मैंने हमेशा हर जगह ये दिखा है कि आप ये कहती हैं कि आपकी नजर में ये आपकी सबसे अच्छी फिल्म है।
0: जी जी, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि ये इस तरह कह सकते हैं कि ये परिपूर्ण फिल्म है
1: जी।
0: इसका अब तक मुझे लगा कि एक तो ये मेरी 4थी 5वीं फिल्म थी, मतलब फीचर फिल्म, बाकी छोटी मोटी छोड़ो, डॉक्यूमेंट्रीज और टेलीफिल्म, लेकिन तब तक मुझे ये मीडियम भी खासा समझ में आया था, और लोग भी बहुत बढ़िया मिल गए, एक्टर्स भी नाना पाटेकर और रघुवीर यादव, निरू फुले, शमाना आजमी, ओमपुरी और बाकी सब मिल वाले, एक्चुअल मिल वाले, ऐसे एक से एक बढ़कर लोग मुझे मिल गए फिल्म के लिए। और म्यूजिक के लिए आनंद मोडक ने बहुत बढ़िया एक गाना, जो सबसे मेरा अच्छा गाना मैं सोचती हूँ, लिखा हुआ बम्बई बम,
1: वो आपने खुद लिखा है
0: जी?
1: ये भी कमाल की बात।
0: मैंने खुद लिखा
1: जी।
0: और दिशा के सारे गाने मैंने लिखे, और म्यूजिक उसका आनंद मोडक ने दिया, और राहुल रानडे ने बढ़िया पार्श्व संगीत दिया, बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत बड़ा हिस्सा है उसका, बैकग्राउंड म्यूजिक का इस फिल्म में। और फिर एडिटिंग क्या, फोटोग्राफी क्या, फोटोग्राफी के लिए 2 जने थे, गांव की फोटोग्राफी मधु अंबट ने की, केरल का मशहूर कैमरामैन, और जीएस भास्कर ने बंबई की फोटोग्राफी की।
1: क्या
0: तो
1: बात,
0: दोनों
1: है?
0: ने कमाल किया, मतलब इट वाज अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस।
1: जब एक काम की ऊर्जा आगे बढ़ती है तो समान विचार के लोग जुड़ते चले जाते हैं।
0: सही बात है,
1: है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी। यहाँ मैं 2 चीजों का जिक्र करना चाहता हूँ, एक तो नाना पाटेकर से हुई लड़ाई और उनकी दादागिरी, और दूसरा रघुवीर यादव का आगमन इस फिल्म में।
0: तो नाना की तो दादागिरी क्या बताऊं, कि नाना का मेरा बहुत पुराना परिचय, दोनों थिएटर के बंदे
1: जी,
0: और कभी काम नहीं किया था हालांकि, लेकिन हाँ, नाना का जो फिल्म इंडस्ट्री में पदार्पण हुआ वो मेरी तरफ से है
1: जी जी।
0: हाँ, बिकॉज मुजफ्फर वॉज मेकिंग गमन एंड ही सेड, सही, आई वॉन्ट सम अ गुड एक्टर, इट्स नॉट अ बिग रोल बट ही शुड बी हैव अ लॉट ऑफ पैशन, ये वो। सो आई सेड आई गिव यू अ फर्स्ट क्लास एक्टर फॉर द रोल, एंड आई गेव हिम नाना पाटेकर। एंड नाना, इट वॉज सच अ स्मॉल रोल, वो आया गया ऐसा ही रोल था, कुछ था नहीं उसमें, लेकिन वो पहली बार जो स्क्रीन पे आया वो गमन में आया मुजफ्फर के, और वो मैंने उसको मुजफ्फर से मिलवाया। खैर, लेकिन मेरी अपनी फिल्म में तो कहीं

0: का ऐसा लगा नहीं कि उसको लिया जाए। और देन फॉर दिशा आई सेड कि नाना एक्चुअली सच बताऊं तो मुझे परशुराम के रोल के लिए चाहिए था। परशुराम मतलब कुआं खोदने वाला
1: जी,
0: क्योंकि वो जो उसका एक हल्का सा पागलपन, उसका एक
1: जुनून
0: एग्जैक्टली उसका जुनून बिल्कुल मुझे नाना में नजर आया कि ये जरूर कुआं खोदेगा 12 साल बिना रुके। तो मैंने नाना को बुलाया, नाना आ गया मेरे घर और चटाई पे लेटे उसने स्क्रिप्ट पढ़ा एक ही दम में, जो एक टांग पे दूसरी टांग लेट के वो पढ़ता गया।
1: ये भी कितना सुंदर दृश्य है।
0: हाँ, और मैं आसपास मैं कुछ अपना करती रही, उसने कहा तुम करो तुम्हारा, मेरी तरफ मत देखो। और फिर पढ़ा उसने, बंद किया, फर्स्ट क्लास बनाया, करना रपन, हाँ मैं करूंगा। तो मैंने कहा अरे वाह वाह बहुत अच्छा, कहता हाँ लेकिन परशुराम नहीं, मैं वसंत। ऐसे क्या वसंत कैसे, तुम वसंत की तो फिल्म की शुरुआत में शादी होती है और वो बहुत जवान है ये वो। तो नाने ने कहा कि बताओ क्या मैं 30 से ऊपर लगता हूँ। तो मैं चुप रही, फिर हमारी थोड़ी बहसबाजी हुई इस बात को लेकर और आखिर में वसंत का रोल नाना ने किया तो जीत किसकी हुई जाहिर है।
1: मुझे लगता है पहली बार किसी ने आपको हराया होगा।
0: पहली बार तो नहीं लेकिन हाँ ऐसा कम ही मौका था, लेकिन उसने हराया, यस इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये भी मानना पड़ेगा कि ऐसा किसी ने भी नहीं कहा कि अरे वो बहुत बड़ा लगता है उस रोल के लिए, नहीं वो सही लगता है अपनी जगह पे, उसने अच्छा काम किया। लेकिन हुआ क्या कि लोगों ने मुझे फिर बहुत आगाह किया, दादा को ले रही हूँ देखो तुम्हें मालूम है ना वो झगड़ा करता है, बहुत उल्टी खोपड़ी का आदमी है और कभी कभी गुस्सा आता है तो इतना वो शोर मचाता है, ये करता है वो करता है। मैंने कहा देख लूंगी। और वाकई में फिर एक बार ऐसा हुआ कि बकुरी गांव में हमारा शूटिंग था और वो किसी बात को लेकर खूब बिगड़ गया, खूब चिल्ला चिल्ली ये वो, मैं नहीं करूंगा मैं जा रहा हूँ फला। तो फिर विनी मेरी बेटी, विनी की नाना की अच्छी दोस्ती थी तो विनी ने फिर जाके उसको समझाया दादा बाबा करके, फिर वो शाम तक ठंडा हो गया, फिर शूटिंग चालू रही। ऐसे और एक बार कभी हुआ, अब वो मुझे डिटेल याद नहीं है। तो ये दो बार हुआ, दो बार निपटाया, दोनों बार हम बड़े डरे हुए थे और मैंने भी कि नाना ऐसा कहे ये वो, मन में ना होते हुए भी बड़ा प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ऐसे हुआ। फिर तीसरी बार डबिंग कर रहे थे हम, तैयार हो गई थी, शूटिंग पूरा हुआ था और अब डबिंग बाकी, तो बीआर में अगेन बीआर में डबिंग चल रही थी और किसी बात को लेके वो बिगड़ा स्क्रिप्ट, ये वो करके चिल्लाने लगा। अब मेरा भी माथा ठनका और गुस्सा मेरा भी थोड़ा सा वो
1: खतरनाक वाला है,
0: खतरनाक वाला हो सकता है कभी कभी। तो फिर इस बार मेरा भी एकदम से मेरी घंटी बजी, फिर मैंने कहा नाना तुमको इस तरह पेश आना है तो यहाँ जगह नहीं है, बाहर हो जाओ एकदम, यहाँ कोई जगह नहीं है तुम्हारे लिए, और यहाँ अगर रहना है तो तमीज से पेश आना पड़ेगा वगैरह वगैरह जो भी है, तू मैं बहुत हुई। फिर कहता तुम मुझे बाहर निकाल रही हो, मैंने कहा हाँ बिल्कुल। तो गया दरवाजे तक, जा रहा हूँ वापस नहीं आऊंगा, मैंने कहा यही आइडिया है जाओ। तो गया और सब हक्का बक्का, अंदर 7-8 लोग थे हम बाकी, अब सब एक दूसरे को देख रहे, कह तो दिया जोर से। फिर किसी ने कहा अब क्या होगा, मैंने कहा एनीवे बाकी लोग अभी काम अपने पास है तो काम जारी रखते हैं। नाना फिर आ गया दरवाजा खोल के,
1: कितनी देर बाद,
0: कुछ 20 मिनट बाद, आधा घंटा बाद। मैंने कहा अरे तुम आने वाले नहीं थे आगे, कहते हाँ सुनो इसलिए आया हूँ तुम्हें बताने के लिए कि तुम औरत जात हो इसलिए बच गई, नहीं तो कोई ठिकाना नहीं था।
1: अरे बाप,
0: तो तुम औरत हो इसलिए बच गई करके धड़ाम से बड़ा ड्रामेटिकली निकल गया, तो वो निकल गया। फिर अब चुप,
1: ये बहुत ड्रामेटिक सीन,
0: वेरी ड्रामेटिक। और फिर सबने कहा कि फलाने को कहें जाके, अब क्या दूसरे ने डबिंग करने का सवाल ही नहीं था और हाँ। वो ये कर सकता था बिल्कुल कायदे से, कानून के खिलाफ होगा। तो मैंने कहा नहीं सुनो देखते हैं जरा, अभी आज तो कुछ नहीं करेंगे, आज बाकी काम करेंगे देखते हैं। सब घर गए, अब मैंने कहा पता नहीं क्या होगा क्या होगा। सुबह बड़ी जल्दी फोन आया, फोन उठाया, सही नाना, अगर मैं नाना भूलते, बड़ी मीठी प्यारी आवाज हमेशा वाली, काय रे नाना, मैं भी उतनी ही मीठी आवाज में, अगर आज कितनी बजे शिफ्ट है, कितने बजे की शिफ्ट है आप। तो मैंने कहा दो शिफ्ट है, एक 9 बजे और एक 3 बजे, तुम्हें कौन सी पसंद है? वो कहता है मैं

0: बजे आऊँ तो चलेगा? मैंने कहा हाँ हाँ जरूर चलेगा, आ जाओ, अच्छा मिलते हैं, बात खत्म।
1: क्या
0: मतलब
1: बात है,
0: प्याले में, मराठी में कहते हैं ना
1: प्याले में तूफान।
0: प्याले में तूफान, वैसे वो हुआ। लेकिन ये अच्छा, तो अभी किस्सा खत्म नहीं हुआ।
1: जी
0: अभी फ्लैश फॉरवर्ड तो कुछ मेरे ख्याल से 15 साल बाद की बात होगी, और
1: जी
0: मे बी इवन मोर, अब साल वाल मुझे याद नहीं रहते। लेकिन महाराष्ट्र टाइम्स से मुझे फोन आया
1: हाँ
0: कि इस साल का जीवन गौरव पुरस्कार हम नाना पाटेकर को दे रहे हैं।
1: जी जी
0: मैंने कहा बहुत अच्छी बात है,
1: जी
0: तो मुझे क्यों बता रहे हैं आप? कहते इसलिए कि वो आपके हाथों देने का हमारा इरादा है, हमें बहुत अच्छा लगा, आप देंगी क्या? मैंने कहा दूंगी, जरूर दूंगी। हाँ, तो बड़े खुश हुए, अच्छा, तो फला वक्त ये वो आपको लेने आएंगे वगैरह। तो फिर मैं स्टेज पे गई और मैंने ये किस्सा सुनाया नाना का। मैंने कहा आज मैं हूँ तो एक छोटा सा किस्सा सुनाती हूँ, नाना भी खड़ा पास में। फिर बाद में मैंने कहा कि अंत में मुझे इतना ही कहना है कि देवा परमेश्वरा मला स्त्री जन्माला घातलं से फार उपकार केलेस, कारण आज मी म्हणून नानाला हा मुजरा देऊ शकते।
1: बहुत शानदार
0: एंड नाना लॉफ्ट
1: अद्भुत
0: एंड आई गॉट अ स्टैंडिंग ओवेशन। सब
1: जी
0: लोग उठ के तालियां बजा रहे और नाना ने जो मुझे जप्पी लाई, बहुत हंसा नाना, बहुत हंसे हम दोनों।
1: क्या
0: और
1: बात है। उसका हिंदी
0: तो
1: बता देते हैं कि स्त्री के रूप में जन्म लिया इसलिए
0: हाँ
1: आप बच गईं
0: हाँ
1: और इसीलिए आज नाना को आप जीवन
0: मैं
1: गौरव
0: भगवान की
1: पुरस्कार दे
0: दुआ
1: पा रही
0: मानती
1: हैं।
0: हूँ कि हे भगवान मुझे आपने स्त्री जन्म दिया, इसका लाख लाख शुक्रिया, ताकि आज मैं ये दे पाई नाना को
1: बिल्कुल क्या
0: सुना।
1: बात है, बड़े प्रेम से आपने नाना को याद किया। ये गाना सुनते हैं।
0: जी क्या बात।

0: रघुवीर यादव का इस फिल्म में आना भी एक घटना है।
1: रघुवीर यादव का मेरे समझ में नहीं आ रहा कि क्या मतलब है। रघुवीर मेरा हमेशा का बहुत लाडला एक्टर रहा है, बहुत ही प्यारा, एंड आई लव हिम एज अ पर्सन, आई लव हिम एज एन एक्टर। और इसलिए मैंने ये जब लिखी कहानी तो सोमा तो और कोई हो ही नहीं सकता था, रघु तो मतलब ओमपुरी का छोटा भाई
0: जी जी,
1: जो देखता है कि अपना भाई और भाभी कितने परेशान हैं और मैं बोझ बन के रह रहा हूँ, इसलिए वो बेचारा छोड़ के जाता है। तो रघु किसी और फिल्म में बिजी था
0: जी,
1: तो उसने कहा सही जी ये तो डेट बिल्कुल नहीं हो सकती किसी तरह, मैं बिल्कुल बुरी तरह फंस गए हो, मैं नहीं मना कर सही ये वो। मैंने कहा नहीं नहीं तुम किसी तरह पटा लो उनको ये वो। कहता हाँ कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कोशिश मतलब, और नहीं हुआ तो फिर क्या करोगे? कहता है फिर तो आपको पटाऊंगा।
0: बिल्कुल मासूमियत इंटैक्ट।
1: और उसने किया रोल, और क्या रोल, बहुत सुंदर रोल किया, वेरी ही लिव्स द रोल, रियली लिव्स द रोल।
0: जी जी, और ये दिशा जिसकी बात हम कर रहे हैं सई परांजपे की नजर में उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म है
1: जी।
0: आपने बीच में एक कहा था कि अगर आपके फिल्माए गए बेस्ट सीन की बात करें तो मैंने चश्मे बद्दूर के जिस सीन का जिक्र किया था वो शामिल है,
1: वो एक है।
0: तो एक सहज जिज्ञासा है कि हाँ, बाकी कौन से सीन है?
1: बाकी दो जो है वो दिशा के ही है
0: जी।
1: हाँ, एक वो है जहाँ परशुराम को पानी लगता है कुएं में।
0: वाह वाह वाह,
1: क्या वो सीन है, मैं बताऊं कि परशुराम खोद रहा है कुदर से और वो देखता है, है, है, है? फिर हाथ डालता है, देखता है तो कीचड़, कहता है पानी पानी, और चिल्लाने लगता पानी लग गया मेरे कुएं में, पानी लग गया, हौसा मतलब बीवी का नाम, बच्चों के नाम। और इधर घर में शबाना मतलब उसकी बीवी हौसा अपने बेटी के बाल बना रही है, वो छोटी कंघी होती है ना वो मराठी, और वो एक हमारा करंडा होता है ये रखने का, वो तो वो लेके, तो एक छोटा बच्चा आता है कि कद्दू की माँ कद्दू की माँ, उसके छोटे बच्चे का नाम कद्दू है, कद्दू की माँ वहाँ परसा चाचा चिल्ला रहा है कुएं पे पानी लग गया करके। तो ये कहते हे राम मुझे मालूम ही था पगला ही गया आखिर। और वो बिचारी इतनी वो तैयार है ये झेलने के लिए कि अब मियाँ की तो फाइनली घंटी बज गई, इज गॉन मैड। तो वो उठती है उसके पीछे बच्चे और दौड़ दौड़ के, वो कांटे कटोरे में वो कांटे लगता रहता है, दौड़ के बेचारे जा रहे कुएं की तरफ, और फिर वो देखते हैं नीचे और वो फिर दिखाता है कीचड़ और ये कहते हैं कुआ, एंड देन दे कांट बिलीव इट, एंड देन दे गो इन, एंड देन यू नो वो पानी लेके पहले तो अपना
0: माथे
1: पे लगाती है, फिर बच्चे एक दूसरे को लगाते हैं, पानी डालते हैं एक दूसरे पे, और फिर रघुवीर को पोस्टकार्ड एक आता है, और वो पोस्टकार्ड के जैसे हमारे यहाँ शुभ तिलक करके केसर का लगाते हैं किसी की शादी का ये बताना हो या कुछ है केसर का, तो इसे मिट्टी का लगाया हुआ है
0: किचन
1: के, कि ये जो शुभ तिलक है ये अपने कुएं की मिट्टी का है पानी, तो और फिर वो कुएं का ये होता है। तो फिर शबाना जो आज तक गालियां देती है कुएं को, वो कहती है कुआ माता आपको हमारी वगैरह वगैरह करके बोलती है, तो वो छोटा बच्चा कहता है कि बाबा सौत माता बन गई। छोटा बच्चा कहता
0: कितना सुंदर, कितना
1: सुंदर। तो दैट्स आई जस्ट लव दिस फिल्म बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी ट्रू फिल्म एंड इट कीप्स यू एब्सॉर्ब्ड एंड इट्स अ वेरी सीरियस सब्जेक्ट बट इट इज सो एंटरटेनिंग इन द राइट सेंस, आई मीन यू नो उसमें बहुत हंसी मजाक भी है, बहुत ह्यूमन गिव एंड टेक है, बहुत चीजें है। मैं सोचती हूँ उसमें सचमुच मैंने अपना सब कुछ डाला है दिशा
0: जी। एक और किसी दृश्य की बात आप करना चाह रही
1: हैं? हाँ, वो दृश्य बहुत ही कमाल का दृश्य है कि एक दिन ऐसा होता है कि नाना भी अब पहुंच गया है, नाना मतलब वसंत और सोमा अब दोनों दोस्त बंबई पहुंच गए हैं, और वसंत की बेचारे की नई नई शादी हुई है लेकिन उसको छोड़ना पड़ता है गाँव, पैसे ही नहीं है, और वो तरसता रहता है बीवी के लिए, बहुत प्यार करता है उससे। फिर एक उनका मिल वाला है जिसका एक छोटा कमरा होता है कहीं, तो वो कोई कहता है कि अरे वो बापू का एक कमरा है, वो कभी कभी दे देते हैं किसी को जरूरतमंद को, तुम क्यों नहीं भाभी को बुलाता यहाँ वगैरह वगैरह, तो बापू को पूछता है, कहता है हाँ हाँ बुलाओ बेशक बीवी को। तो एनीवे वो आती है फूलवंती उसकी बीवी, वो आती है और एक शाम को फिर वो कमरा उसका हाँ, और वो दिखाता है जो बहुत अच्छा एक्टर है जिन्होंने कमरे का मालिक बताया, वो किशोर नांदलस्कर,
0: जी
1: हाँ
0: जी
1: ग्रेट कॉमेडियन, तो किशोर नांदलस्कर ही हैज द कमरा. ही सेज कि हाँ भाभी पानी आता है सुबह 4 बजे, हाँ, और फिर वो निकल जाता है. फिर ये दोनों बहुत मशगूल किए प्राइवेसी और इतने दिनों बाद वगैरह वगैरह, और वो दोनों लेटते हैं इतने में खट खट खट खट खट खट, तो दरवाजा खोलो खोलो दरवाजा.

0: कि कौन है रात के सोए थे, तो कौन है हमें और कौन है, तो जिसका कमरा है उसकी बहन कोल्हापुर से आई है अपने बच्चे लेकर, और टू कट अ लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इन दोनों को खाली करना पड़ता है फिर। और अब दिस इज द सीन दैट आई एम टॉकिंग अबाउट,
1: जी
0: दे रीच द गाड़ा, गाला के बाहर एक गली सी है छोटी बहुत पतली गली, वहां वो फुलवंती सर पे पल्लू और उसके साथ ट्रंक उसका छोटा बसंत और सोमा भी साथ है, और वो रो रही है, और वो कहते कि 40 बंदों के साथ एक कमरे में मैं सोऊं, तो वो कहता है सोमा और चारा भी तो नहीं है ना भाभी, शीशे और कुछ तो चारा होगा, तो बसंत कहता है सड़क पे सोना होगा, फुटपाथ पे सो सकते हैं वगैरह, तो सोमा कहता है रुको, अंदर आता है और अंदर पर एकदम सब बंदे कोई ये बनियान पहना हुआ तो छोटी छोटी अपने कच्छे में है चड्डियां पहने, और वो सब चिल्ला चिल्ली तो कहता है क्या एक औरत यहाँ, ये कैसे हो सकता है, नहीं हम ये नहीं होने देंगे, आज एक आई ये कल ये दूसरा कोई ले आएगा वगैरह वगैरह। फिर वो सयाजी शिंदे भी है उन गाले वाले में, वो
1: जी
0: कहता है अरे लानत भेजी तुम पर, तुम अपनी गांव की बहन को सड़क पे सोने दोगे वगैरह वगैरह, कहता है लेकिन जगह कहाँ है, तो फिर सोमा कहता है मैं बाहर सो रहा हूँ तुम मेरी जगह वगैरह वगैरह, फिर सब मानते हैं, कहते हैं रुको रुको रुको, और फिर हमने ऊपर कैमरा लगाया था
1: जी
0: क्योंकि एक वहां ये था जहां कैमरा रख के हम ऊपर से देख रहे थे, हाँ तो टॉप शॉट था, और सब ये लोग आधे लोग सोए हुए हैं, और ये भगदौड़ मची है कि अब औरत आएगी तो कोई पैजामा पहन रहा है, कोई ये डाल रहा है, कोई एक लुंगी के लिए दोना खींचा खींचा होती है, एक जना तो एक सोया हुआ आदमी उसको उठो उठो कहते हैं वो गहरी नींद सोया, तो उसका चटाई के साथ उसको ऐसे ऐसे से ये दोनों लेते हैं, दैट्स अ ब्यूटीफुल, इट्स अ वेरी फनी दिस थिंग। तो ये सब होके फिर नाना और ये दोनों चुपके से अंदर आते हैं, सब सन्नाटा, अब सब लेट जाते हैं, और फिर नाना सोता है वो भी सोती है, और जैसे दोनों सोते हैं उनके बगल में एक बुजुर्ग उनमें से जो है वो उनकी तरफ पीठ करता है और साइड वाले को इशारा करता है, फिर वो भी पीठ करता है और सब लोग उनकी तरफ पीठ करते हैं ताकि थोड़ी प्रिवेसी उनको मिले,
1: अद्भुत
0: मतलब ये
1: अद्भुत
0: क्या चाहे की प्रिवेसी है पीठ करने से, लेकिन उतने में वो कोशिश करते हैं अपनी तरफ से शराफत दिखाना, तो सब एक एक एक एक करके ऐसे, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल, यू सीइंग इट फ्रॉम द टॉप, सब एक करते हैं और फिर सन्नाटा है, ठीक, आई थिंक दैट्स वन ऑफ माई फेवरेट शॉट्स,
1: क्या बात है, अद्भुत दृश्य। राजश्री सावंत थी वो एक्ट्रेस।
0: राजश्री सावंत थी
1: जी कमाल। अब पपीहा है जो चिपको आंदोलन पर बनी, तो
0: हाँ।
1: इसलिए मैं चाहता हूं कि पपीहा का जिक्र करें।
0: तो पपिया का जल्दी जल्दी मैं बताती हूँ, ये फिल्म कह सकते हैं कि अपने भारत के वन अरण्य, हाँ जंगल और आदिवासी, इनको ये मेरा एक सलाम है,
1: वाह,
0: हाँ इसका ये पढ़ के
1: चिपको आंदोलन की
0: चिपको
1: प्रथा।
0: आंदोलन का मैंने कहा ये तो कुछ इसको तो करना ही चाहिए, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं अपन एक फेरी टेल फॉर एडल्ट करें, हाँ बड़ों के लिए एक परी कथा, हाँ तो अभी तक मैंने कभी प्यार का ट्रायंगल नहीं हैंडल किया था, तो एक प्यार का ट्रायंगल करें, एक कोना फॉरेस्ट ऑफिसर हीरो जिसके लिए वन और जंगल और उनकी रक्षा यही सब कुछ है, ही इज ऑन अ मिशन मिलिंद गुना जी, देन द गर्ल विनी माई डॉटर हु इज अ सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट हु स्टडिंग समाजशास्त्र,
1: समाज
0: लेकिन
1: मानवी की।
0: हाँ लेकिन आदिवासियों की,
1: जी
0: शी इज स्टडिंग ट्राइबल्स और इसलिए वो इस जंगल में आई है, और तीसरा एंगल है फॉरेस्ट खुद जंगल, तो ये इन तीनों को लेके ये ऐसे एक कहानी ये की, और बहुत आदिवासी है उसमें नेचुरली, तो अब उस पे एक जैसे प्रॉब्लम्स आते हैं और वो कैसे सुलझते हैं, ये भी एक मजे का बता सकती हूँ इस फिल्म को लेकर, कि हमने सोचा कि ये आदिवासी तो दिखाया है बड़े चाव से कि हाँ आदिवासी है, लेकिन अब कौन से आदिवासी, देर आर 300 आदिवासी ट्राइब्स इन इंडिया, वो भील या डागर या महादेव कोळी या वारली या कौन, मतलब इतने हैं और उनकी भाषाएं अलग है थोड़ी सी, उनके रिवाज अलग है, तो क्या करे फिर, बहुत है, और गलत भी नहीं करना चाहिए, इफ यू आर मेकिंग अ फिल्म यू कांट टेक लिबर्टीज विथ एक्चुअल फैक्ट, फिर सोचा कि कह तो रहे कि ये परी कथा है बड़ों के लिए,
1: जी
0: तो व्हाई नॉट टेक लिबर्टी एंड हैव एन जेनेरिक ट्राइबल, यू ना भींड है ना भील है ना महादेव कोड़ी है, वो ट्राइबल है बस, एंड ट्राइबल्स हैव अ वेरी यूनिक कॉमन फैक्टर, दे आर ऑल वेरी इनोसेंट,

0: they're all very believing, and they're all very scared, insecure, and they're all very helpful and very loving. तो ये सब जो है तो वो सब लेके हमने ट्राइबल्स तो बना दिए, और जंगल को भी जूटी बूटी का जंगल किया, मंत्र वन नाम दिया जंगल को, मंत्र वन
1: जी।
0: और फिर भाषा, भाषा क्या करें, फिर ये सोचा कि एक नई भाषा बनाई जाए, क्योंकि वो जो हर कहीं हम गए और आदिवासियों से बोले तो उनकी भाषा समझ में आती थी, बेशक अपने में अलग अलग हो लेकिन समझ में इसलिए आती थी कि बहुत मराठी की झाग थी उसमें,
1: बिल्कुल,
0: मतलब मराठी को ही ट्विस्ट करके कुछ उन्होंने अपना बनाया था। तो हमने कहा हम भी क्यों नहीं ऐसा ही करें, फिर हमने अपनी भाषा बनाई, और मेरे दो फैंटास्टिक असिस्टेंट्स, एक सुहेल अब्बासी,
1: अरे वाह,
0: और एक श्रीधर रंगायन, फैंटास्टिक, दोनों इतने मजे के, तो उन्होंने ये भाषा को लेके तो वो बहुत ही मतलब पगला गए, और उन्होंने फिर बहुत ये सब लिखा पढ़ी की, ये किया, उसका व्याकरण बनाया, और फिर वो तो इतना मुझे इरिटेशन है, तो गलतियां निकालते थे, नहीं नहीं सही, वो न्यूट्रल है, ये नहीं स्त्रीलिंग ही नहीं है पुल, अरे चुप कर यार, ऐसे सही भाषा थोड़ी ना
1: गजब गजब गजब,
0: इतना सीरियसली वो लेते थे, अरे नहीं नहीं वो गलत बोला गलत बोला, मैंने कहा भाषा ही गलत है तो क्या गलत बोला। तो एनीवे, तो बहुत मजा आता था वो सब, हम जंगल में वो किया, और वो फैंटास्टिक, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, इट वेंट टू वन फेस्टिवल इन इटली, बट अनफॉर्चुनेटली प्रोडक्शन में लकीली मेरा जेब का पैसा नहीं खर्च हुआ, लेकिन हमको मिनिस्ट्री ने दिया काफी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, दैट वेंट ऑफ वेरी वेल, एंड इट हैड अ लॉन्च ऑन दिल्ली दूरदर्शन
1: जी।
0: तो वो जेब से गया नहीं, लेकिन फिल्म ने कमाया नहीं कुछ और दिखाई भी नहीं गई, लेकिन उसकी कैसेट्स बिकती थी, बहुत कैसेट्स, तरह तरह के वन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स में या फॉरेस्ट के शिक्षा केंद्रों में या स्कूलों में कॉलेजों में, ऐसे बहुत कैसेट्स खरीदे लोगों ने
1: जी।
0: और द फिल्म वॉज यूज फॉर वर्कशॉप्स
1: जी। ये गाना सुनते हैं
0: जी, क्या बात।

0: जीवन की नाटकीयता की एक मिसाल और है इस फिल्म से जुड़ी हुई, और वो ये है कि चुनाव में जिस व्यक्ति ने आपको हराया था।
1: यस यस,
0: मैं पूरी नहीं करूंगा ये बात, आप ही बताएंगी।
1: जब कॉलेज में मैं थी तो पहली बार मैंने जो एक प्ले डायरेक्ट किया, अंग्रेजी प्ले था डियर डिपार्टेड, विच वन द बेस्ट इंटर कॉलेजिएट प्राइज फॉर द बेस्ट प्ले। I won the best director award and I acted in that actress. play. I won the best actress. तो ये हो गया। तो anyway तब थोड़ा सा हौसला बढ़ गया। मैंने कहा there used to be different elections in the college. For different posts. They were like sports secretary,
0: cultural secretary,
1: ladies representative, fanatic kind of. So there was a post called secretary entertainment. So I said I want to stand for that. तो लोग हक्का बक्का नहीं, लेकिन आज तक कोई लड़की नहीं कभी ये पोस्ट के लिए खड़ी। मैंने कहा क्यों, क्या ऐसा कानून थोड़ा है कि लड़की नहीं है? नहीं नहीं ऐसा नहीं, लेकिन लेडीज रिप्रेजेंटेटिव है ना, तो उसके लिए खड़ी रहो। मैंने कहा मुझे नहीं लेडीज रिप्रेजेंटेटिव होना, ये दिस इज कंसर्निंग द वर्क दैट आई डू, प्लेज वगैरह, सो आई वॉन्ट टू स्टैंड फॉर दैट। एंड आई गॉट इलेक्टेड इन अ वेरी थम्पिंग मेजोरिटी, बहुत अजूबा था ना उन दिनों, लड़की खड़ी वगैरह वगैरह, और मेरा ये प्ले भी जीता था। तो ये हुआ। अच्छा, उससे एक बड़ी पोस्ट थी ड्रामा सेक्रेटरी। तो अगले साल मैंने कहा ड्रामा सेक्रेटरी के लिए
0: चुनाव लड़ा जाए,
1: तो वो नाम दिया। और अब पूरा मामला पलट गया, सब लड़के कहने लगे ये लड़कियां सर पे बैठ जाती है, जरा सा मौका दो तो अब ये ड्रामा सेक्रेटरी बनेगा। तो देन देयर वाज अ हवा चलती है ना, जैसे हवा चली कि इसको हराना है, तो मुझे अच्छी मेजोरिटी से हराया, बहुत बुरी तरह पिटाई हुई मेरी। तो अब फ्लैश फॉरवर्ड, और ये हम इसका कर रहे थे, एंड मिनिस्ट्री हैड गिवन अस देयर ब्लेसिंग्स कि करो फिल्म वगैरह,
0: पपीहा बनाओ।
1: और मैं फिर जंगल का सबसे कौन फॉरेस्ट ऑफिसर, सबसे नंबर वन था माशेलकर, उनके पास पहुंच गई। तो बड़ा सीनियर सा आदमी और बहुत तमीज वाला वगैरह वगैरह, हमारे अच्छी बातें हुई। फिर उन्होंने कहा पहचाना नहीं? मैंने कहा नहीं पहचाना। ही सेड क्यों पहचानोगी? क्या ही सेड वो फर्ग्यूसन कॉलेज अबू कमक साल हो मी तुमच्याच वर्गात होतो, मैं आप ही के बैच में था, आप ही के क्लास में मैं। ओह, मैंने कहा ही सेड येस ऑफ कोर्स, एंड ही सेड यू वर स्टैंडिंग फॉर द ड्रामा पोस्ट, एंड ही सेड समवन फॉरगेट हिज नेम स्टूड ऑपोजिट मी हु वन, ही सेड आई वाज हिज नंबर वन सपोर्टर। तो एंड वी सॉ टू इट दैट यू लॉस्ट, सो आई सेड अच्छा तो ये है वगैरह। फिर बड़ी हंसी मजाक की बातें हुई। ही सेड अच्छा तो मुझे अब कुछ पापक शालन करना चाहिए, आई हैव टू मेक अप फॉर दैट। सो आई सेड हाँ करो। ही मेड एवरी थिंग पॉसिबल, वेर एवर वी वेंट वी हैड द फॉरेस्ट गेस्ट हाउस टू स्टे, वी हैड अ फॉरेस्ट एक्सपर्ट कमिटी टू गाइड अस, वी हैड अ फॉरेस्ट रेटिन्यू, बॉडीगार्ड्स एक्सेट्रा, वी हैड जीप्स, क्या नहीं बोलो, एंड परमिशन एवरीवेयर। ताड़ोबा जाना है जाओ, संजय गांधी उद्यान जाओ, महाबलेश्वर जाना है जाओ, नागजीरा जाना है जाओ, यू नो। सो वी शॉट ऑल ओवर, फैंटास्टिक, एंड इट रियली वेंट अप वेरी वेल।
0: क्या बात है,
1: इट्स सैड दैट द फिल्म डिडंट, पीपल हैव नॉट सीन इट सो मच।
0: जी, अभी हाल ही में आपको जी गौरव अवार्ड मिला आपके नाट्य कर्म के लिए। आपने अभूतपूर्व काम किया है, अप्रतिम काम किया है। मुझे लगता है कि इस लंबी बातचीत के आखिर में कुछ बातें आपके बहुत महत्वपूर्ण नाटकों की कर ली जाएं।
1: बात यह है यूनुस कि ये मेरे नाटकों के बारे में मैंने बहुत अच्छा लिखा है, और क्यों नहीं आप वो पढ़ते, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी। और अब मेरी ये जो किताब है, जो मेरे क्या कहते हैं, जो मेरे क्रिएटिव एक्सपीरियंस पे लिखी है, तो वो अब हिंदी में छप रही है
0: जी।
1: और वो पब्लिकेशंस डिवीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा छपी जाएगी। तो मैं आपसे बहुत प्यार से रिक्वेस्ट करती हूँ, बल्कि इनवाइट करती हूँ आपको कि आप उसमें पढ़ें, मैंने बहुत तफसील से लिखा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, और हम अपने सुनने वालों को ये भी बताना चाहते हैं कि ये जो आपकी किताब है ये मराठी में उपलब्ध है, और उसके अलावा ये किताब अंग्रेजी में भी उपलब्ध है
1: जी,
0: और अब हिंदी वर्जन भी आ रहा है।
1: मराठी में उसका नाम है सय।

0: जो राजहंस प्रकाशन ने किया है, फिर अंग्रेजी हार्पर कॉलिंस की छपी है, इट्स कॉल्ड अ पैचवर्क क्विल्ट। अ पैचवर्क क्विल्ट इसलिए कि वो टुकड़े टुकड़े जोड़ के क्विल्ट बनाया जाता है ना सुंदर
1: जी
0: सा,
1: जी
0: तो
1: जी
0: मेरी माँ कहती थी हमेशा कि तुम एक चीज पे क्यों नहीं ध्यान देती हो, आज
1: जी
0: नाटक, कल टेलीविजन, परसों फिल्म, हाँ ये 50 एक ना भर मारा भर चिंदिया, दैट मीन्स ना एक कुछ ठीक से करती है, ये टुकड़े टुकड़े जमा कर बैठती है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये टुकड़े जोड़कर मैंने ये क्विल्ट बनाया है, तो
1: जी
0: पैचवर्क क्विल्ट। और अब ये हिंदी में जो छपरी है उसके दो टाइटल्स हैं, अभी पक्का नहीं तय हुआ, आप बताओ कौन सा आपको अच्छा लगता है। एक है सहनामा या सही नामा, और दूसरा है सही बात या सही बात।
1: क्या बात है, अब ये तो बड़ा मुश्किल है। हम अपने
0: तो अपने
1: श्रोताओं से कहते हैं
0: श्रोताओं
1: कि
0: से
1: वो तय
0: पूछो
1: करेंगे
0: कि लवली
1: कि क्या
0: लवली,
1: नाम
0: आई
1: होगा।
0: लव टू हियर व्हाट दे फील, आई ट्रूली वुड
1: जी
0: सिंसियरली, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस,
1: जी
0: थैंक यू
1: सही जी, एक बात कहना चाहता हूं।
0: जी।
1: आज से तकरीबन 20 बरस पहले मैंने बड़े डरते डरते आपसे फोन पर बात की थी और आपसे इंटरव्यू चाहा था। तब मैं बहुत नया था और तब भी आपसे डरता था, अब भी डरता
0: अभी तो
1: हूं।
0: मैं ये कहूंगी कि ऐसे ही आप डरते रहिए, अच्छी बात है। ये अच्छा लगा कि कोई मुझसे डरता है
1: जी, तो
0: सुनकर।
1: आपने
0: हाँ
1: कहा था कि इंटरव्यू करने का अभी मन नहीं है,
0: बर
1: आगे कभी बात करेंगे।
0: तो किए ना,
1: मुझे
0: हाँ
1: पता नहीं
0: वादा
1: था
0: निभाया
1: कि 20
0: निभाया
1: साल
0: ना।
1: इस वादे में लग जाएंगे।
0: नहीं
1: मैं बहुत खुश हूं कि आपने इतनी लंबी बात इतने धीरज के साथ की।
0: नहीं
1: थोड़ी
0: मुझे
1: ज्यादती
0: बहुत
1: है इतने
0: अच्छा
1: सारे
0: लगा,
1: सवाल कर। बहुत बहुत
0: क्या क्या
1: शुक्रिया।
2: उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में आप सुन रहे थे निर्देशिका और पटकथा लेखिका पद्म भूषण सई परांजपे से यूनुस खान की बातचीत की चौथी और अंतिम कड़ी, संपादन नेहा शर्मा और मनीषा सिंह का। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता तेज श्री कामले। अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे किसी और मशहूर हस्ती की यादों के उजाले लेकर। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।
3: उजाले उनकी यादों के।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है कार्यक्रम रंग तरंग।
3: रंग तरंग।

रंग तरंग इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के कार्यक्रम के साथ मैं हूं मंजू द्विवेदी, आप सभी को हमारा सप्रेम नमस्कार। सबसे पहले शिव शंभू इस एल्बम का गीत सुरेश वाटकर की आवाज में, नवाब आरजू के बोल, नटराज दस्तीदार का संगीत है।

0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग।
1: इश्क की ये शम्मा अपने दिलों में।
0: मिताली सिंह और भूपिंदर सिंह की आवाजें, शब्दकार सुदर्शन फाकिर और संगीत है भूपिंदर सिंह का। एल्बम ये प्यार का मौसम है।

0: और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं है।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: तलत अजीज की आवाज है, शब्दकार तस्लीम फाजिल, संगीत मोहम्मद अशरफ का, एल्बम ये मिलन ख्वाब सा।

रूप कुमार राठौड़ और साधना सरगम की आवाज़ों में गुलजार का लिखा हुआ गाना, उस्ताद अमजद अली खां का संगीत, एल्बम वादा।

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आपकी

0: आ रहे हैं
1: महबूबा महबूबा महबूबा
0: विविध भारती पर 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
2: श्याम अनुरागी के बोल चार्ल्स श्रीनिवासन का संगीत विस्पी की आवाज एल्बम तेरी मर्जी

0: ये आवाजें थी साबरी ब्रदर्स की, शब्दकार निदा फाजली, संगीत आदेश श्रीवास्तव का एल्बम तरकीब।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है।
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम।

उस्ताद सुल्तान खान और चित्रा की आवाजों में पिया बसंती। इस एल्बम का गाना संगीत है संदेश शांडिल्य का।

रंग तिरंग कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए सपना अवस्थी की आवाज में परदेसिया एल्बम का ये गाना। गीत और संगीत है पी के मिश्रा का।

आज के रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम प्रस्तुति। रूप कुमार राठौड़ और सोनाली राठौड़ की आवाजें, मदन पाल के बोल, जय विजय का संगीत। एल्बम का नाम है मोहब्बत हो गई।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। लोकसभा की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दिन के 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। आज सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, पीठासीन अधिकारी एनके प्रेमचंद्रन ने प्रश्नकाल चलाने का प्रयास किया, लेकिन विपक्ष ने विद्यार्थियों पर कथित पुलिस कार्रवाई का मुद्दा उठाया और इस पर गृह मंत्री अमित शाह से बयान की मांग की। शोर शराबे के कारण सदन की कार्यवाही दिन के 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। उधर राज्यसभा की कार्यवाही भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित

0: अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों और राज्य सरकार के बीच तीन दौर की वार्ता के बावजूद गतिरोध जारी है। विद्यार्थियों ने सरकार के प्रस्तावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया है और आज विधानसभा का घेराव करने के अपने फैसले पर कायम है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1 लाख 55 हजार करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने बताया है कि देश की कुल स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित विद्युत क्षमता की हिस्सेदारी 54% से अधिक हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के लिए अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष के समारोहों का प्रमुख आकर्षण सूर्य पथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
1: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। अभी समाचार मिला है कि संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। आज विश्व सिंह दिवस के अवसर पर

0: दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के भारोत्तोलक महाराजन अरुमुंग पंडियन ने पुरुषों के 65 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश में भी आज तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको परवरिश फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं। मोहम्मद रफी, किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाजें हैं। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: चलती का नाम गाड़ी इस फिल्म का गाना किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में आपको सुनवा रहे हैं। मजरू सुल्तानपुरी के बोल और संगीत एसडी बर्मन का।
1: बाजू।

0: यूं ही साथी
1: भाई बंदी मुट्ठी लाख की हर खुली तो प्यारे खाक की
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी
1: भाई बंदी मुट्ठी लाख की हर खुली तो प्यारे खाक की।

अंतराल का समय पूरा हो चुका, अब आपके लिए लेकर आए हैं पड़ोसन फिल्म का गाना, किशोर कुमार मन्नाडे और महमूद की आवाज में। राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है आरडी बर्मन का।

0: ಗೋಳ ಚತುರ ಏಕ ಪೇರ ಇಲ್ಲ ಯಾ ಗೋಳ ಬೋಲ ಯಾ ಚತುರ ಬೋಲ ಗಾ
1: ಯಾಕ ಚತುರ ನಾರ

पड़ोसन फिल्म का ये गाना आपने सुना। आज यादों की महफिल कार्यक्रम में जो गाने आप सुन रहे हैं, अगर उन पर आपने गौर किया होगा तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज के कार्यक्रम में या तो पुरुष आवाजों में जो युगल गीत हैं वो, या तीन पुरुष आवाजों में जो गाने हैं वो हम आपको सुनवा रहे हैं। बैजू बावरा फिल्म का गाना उस्ताद अमीर खान और पंडित डी वी पलुस्कर की आवाजों में। लीजिए अब सुनिए शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद।

Sani sani sani bamu bani sani sani sani bamu bani.

0: पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गिवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहां से हुजूर।
3: अरे सुनो आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा 3 बज रहे हैं 3।
0: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
3: सखी सहेली?
0: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
3: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
4: सखी सहेली।
5: ये है मासूम फिल्म का गाना, भूपिंदर सिंह और सुरेश वाडकर की आवाजों में, गुलजार के बोल, संगीत आरडी बर्मन का।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला जो गीत है ये समझौता फिल्म का गाना मुकेश और मोहम्मद रफी की आवाजों में, गीतकार इंदिवर, संगीतकार कल्याण जी आनंद जी।

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आप।

0: आ रहे हैं
1: महबूबा महबूबा महबूबा
0: विविध भारती पर। बारह अगस्त दिन में और रात में 11 बजे अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
0: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी सेल्यूलॉइड के सितारे 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गीत किशोर कुमार और मन्ना डे की आवाजों में, आनंद बख्शी के बोल, संगीत आर डी बर्मन का, फिल्म का नाम शोले।

सागर फिल्म का गाना आइए सुनते हैं, किशोर कुमार और एस पी बाला सुब्रमण्यम की आवाजों में। जावेद अख्तर के बोल संगीत है आर डी बर्मन का।

यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला गाना आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफी और मुकेश की आवाजों में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म का नाम उजाला।

यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यारो सूरत हमारी पे मत जाओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न कतराओ, यहाँ भी दिल है यूँ हमसे न

0: कॉमिक क्रिएटर है।
1: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में।

0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
1: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
1: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आज के यादों की महफिल कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आदमी और इंसान, ये फिल्म का नाम, महेंद्र कपूर, बलबीर जोगिंदर और साथियों की आवाजें, साहिल उद्यानवी के बोल, संगीत है रवि का।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में विपक्ष के शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति, योग्यता में एकरूपता तथा प्रशासन और कामकाज में कुशलता बढ़ाने, स्वतंत्रता पारदर्शिता सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर मंत्रियों ने अपने अपने मंत्रालयों के दस्तावेज सदन के पटल पर रखे, लेकिन सदन में लगातार नारेबाजी के कारण कार्यवाही पहले 12 बजे फिर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों का आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च किया। सरकार का दावा है कि विद्यार्थियों की 98% मांगे स्वीकार कर ली गई हैं। मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुरानी विधानसभा के पास पुलिस बैरिकेडिंग तोड़ दी और नई विधानसभा की ओर बढ़ते रहे। रांची में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 विद्यार्थी अब भी अनिश्चितकालीन अनशन है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं। इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। 42,000 से अधिक स्टार्टअप भी पोर्टल पर पंजीकृत हैं। उन्होंने कहा कि जेम पोर्टल ने डिजिटल खरीद के माध्यम से जवाबदेही मजबूत की है। भारत में गैर जीवाश्म ईंधन आधारित स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता 300 गीगावाट से अधिक हो गई है। 31 जुलाई तक हासिल की गई ये उपलब्धि वर्ष 2030 के लिए निर्धारित 500 गीगावाट क्षमता के लक्ष्य का 60% से अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष के समारोहों का प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी में वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशिष्ट प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने इस आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर पीओजेके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। उन्होंने पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ नारे लगाए और नागरिक संगठन

0: रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम करकट्टा। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विधानसभा घेराव जारी। मामले की सीबीआई जांच और सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर छात्र अड़े। झामुमो ने भाजपा पर छात्र आंदोलन और विधानसभा घेराव को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। भाजपा ने आरोपों को बताया निराधार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्र आंदोलन के बीच छात्रों की बात, छात्रों के साथ अभियान शुरू करने की पहल की। श्रावणी मेले के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम पहुंचने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे स्पेशल ट्रेनों का करेगा परिचालन। और मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतम जिलों में बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने की जताई संभावना। कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन तेज हो गया है। आंदोलनकारी छात्र मार्च करते हुए विधानसभा की ओर लगातार बढ़ रहे हैं। भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो भी मार्च में शामिल हुए हैं। इधर रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि छात्रों ने शांतिपूर्वक मार्च करने का पुलिस को भरोसा दिया है। वहीं एसडीएम सौरभ कुमार ने कहा कि प्रदर्शन के बीच कुछ असामाजिक तत्वों के शामिल होने की संभावना है, जिसे लेकर पुलिस सतर्क है।
1: सभी व्यवस्था ठीक ठाक से है। बच्चों ने भी हम लोगों को आश्वस्त किया है कि बहुत ही शांतिपूर्वक हम लोगों का मार्च रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि शांतिपूर्वक ये प्रोटेस्ट बच्चों का हम लोग निकाल देंगे। या
2: आज जो है ये इनका जो कंडक्ट है वो पीसफुल रहेगा, उनके द्वारा भी अश्योर किया गया है कि ये प्रोटेस्ट पीसफुल रहेगा। और स्टूडेंट्स ने ही बोला है कि अगर कोई पीसफुल नहीं है तो वो हमारे प्रोटेस्ट का पार्ट नहीं है।
0: गौरतलब है कि सरकार के साथ तीन दौर की वार्ता के बाद भी मांगों पर पूरी सहमति नहीं बन पाई। सरकार ने अधिकांश मांगे मान ली हैं, लेकिन छात्र परीक्षा में कथित धांधली पर सीबीआई जांच की मांग और सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई कथित अनियमितता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस संबंध में जवाब की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। घेराव में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, विधायक नवीन जायसवाल, सीपी सिंह और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल रहे। झामुमो की राज्यसभा सांसद महुआ माझी ने आरोप लगाया है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के बहकावे में छात्रों ने विधानसभा मार्च निकालने का फैसला किया, जबकि सरकार 98% मांगों को मान ली है।

0: न्याय किया है, आपने परिवार रिश्तेदारों को उन्होंने नौकरी दी है और हम इस आंदोलन के साथ।
1: जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं को लेकर छात्रों के आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं से सीधे संवाद की पहल की है। उन्होंने छात्रों की बात, छात्रों के साथ अभियान शुरू करने की जानकारी एक्स पर दी। इसके तहत छात्र परीक्षा व्यवस्था से जुड़ी अपनी परेशानी और सुझाव सरकार तक पहुंचा सकेंगे। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित आदिवासी महोत्सव के तहत झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड की ओर से कल अमर शहीद चांद भैरव मुर्मू मंडप में आदिवासी जीवन और संस्कृति पर आधारित फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई। कार्यक्रम में कई शॉर्ट फिल्में दिखाई गईं। महोत्सव में युवाओं के लिए फिल्म निर्माण पर विशेष मास्टर क्लास आयोजित की जाएगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प को नवीकृत करने का आग्रह किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: हर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा।
3: संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसे मंत्रालय ने अपनी तरह की पहली पहल बताया है। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: तिरंगा, हर घर तिरंगा।
1: सावन महीने की दूसरी सोमवारी पर आज देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम, दुमका स्थित बासुकीनाथ धाम और रांची के पहाड़ी मंदिर में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। देवघर में 3 लाख से अधिक लोगों के जलाभिषेक करने का अनुमान है। दुमका के बाबा बासुकीनाथ धाम में पहली सोमवारी से अधिक कांवरियों का जुटान हुआ है। दुमका SP पीताम्बर सिंह खेरवार ने बताया कि भक्तों को सुगमतापूर्वक जलार्पण का अवसर सुलभ कराया जा रहा है।
4: आज सावन का दूसरी सोमवार है, इसमें हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि श्रद्धालुओं की काफी भीड़ आने वाली है। ट्रेन सिटी में भी हम लोगों ने देखा और रोड में भी काफी लोग हैं जो सब उत्साह के साथ है, तो सही तरीके से जलार्पण हम लोग करा पाए इसलिए प्रशासनिक तैयारी कर ली गई है।
1: श्रावणी मेले के दौरान देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम और वासुकीनाथ धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए पूर्व रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया है। इन ट्रेनों में जसीडीह वासुकीनाथ स्पेशल, वासुकीनाथ पटना स्पेशल, पटना जसीडीह स्पेशल और मधुपुर नरकटियागंज स्पेशल शामिल है। इन ट्रेनों से कांवड़ी और श्रद्धालुओं को यात्रा में सुविधा मिलेगी। ये ट्रेनें 10 अगस्त 11 17 18 24 और 25 अगस्त को चलेंगी। पलामू जिले के चर्चित विनीत तिवारी हत्याकांड में फरार आरोपी रोशन तिवारी ने आज मेदिनीनगर शहर थाना परिवार के साथ सरेंडर कर दिया। गौरतलब है कि 25 अप्रैल 2026 को मेदिनीनगर शहर थाना क्षेत्र के रेडमा में विनीत तिवारी के घर के निकट से उसका अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई थी। राजधानी रांची के सर्राफा बाजार में आज 22 कैरेट सोने की कीमत 1,41,300 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि चांदी की कीमत 2,40,000 रुपए प्रति किलो है। मौसम। झारखंड में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। आज राज्य के अधिकतम जिलों में बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने की संभावना।

0: संभावना है। वहीं रांची, धनबाद, गिरिडीह समेत 13 जिलों में जमकर बारिश हो सकती है। इसके अलावा कुछ जिलों में भारी बारिश, वज्रपात और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का अलर्ट जारी किया गया है। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर छात्रों का विधानसभा घेराव जारी। मामले की सीबीआई जांच और सीजीएल परीक्षा रद्द करने की मांग पर छात्र अड़े। झामुमो ने भाजपा पर छात्र आंदोलन और विधानसभा घेराव को बढ़ावा देने का लगाया आरोप। भाजपा ने आरोपों को बताया निराधार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्र आंदोलन के बीच छात्रों की बात, छात्रों के साथ अभियान शुरू करने की पहल की। श्रावणी मेले के दौरान बाबा बैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम पहुंचने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे स्पेशल ट्रेनों का करेगा परिचालन। और मौसम विभाग ने आज राज्य के अधिकतम जिलों में बादल छाए रहने और रुक रुक कर बारिश होने की जताई संभावना। कुछ जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बताइए, चलिए अब हरे कांच की चूड़िया इस फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज, गीतकार और संगीतकार कौन है ये आप हमें बताइए। बिस्वजीत और नैना साहू पर फिल्माया गया ये गाना।

हरे कांच की चूड़ियां इस फिल्म का गाना सुना, शैलेंद्र का लिखा हुआ, शंकर जयकिशन का संगीतबद्ध किया हुआ। एक साथी लिख रहे हैं कि आज आप श्रृंगार की बातें कर रही हैं, कभी हमारी पत्नी साथ थी तो हमें इस सावन में मेघों, बिजलियों, बरसात को देखते थकते नहीं थे, उसके साथ भीग भी जाते थे। आज ये हरियाला सावन हमें घर में बंद रहने को मजबूर कर रहा है, क्योंकि वो चूड़ी बिंदी वाली नहीं रही। क्या कहें इस बारे में। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक हमारे साथी की ये बात है कि जब पति शाम को थका हुआ घर पर आता है तो घर पर पत्नी इंतजार करती है, अगर पत्नी सजी संवरी मिलती है तो अच्छा लगता है, सारी थकावट और परेशानी समाप्त हो जाती है और फिर शुरू होती है श्रीमती जी की फरमाइश, जो कि उनका हक है। एक साथी लिख रहे हैं कि सावन के महीने में हरा रंग, प्रकृति के सौंदर्य, सुख समृद्धि और भगवान शिव के प्रति अटूट शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सावन में हरे रंग का बहुत महत्व है। और एक साथी ये लिख रही है कि सावन के महीने में हरा रंग प्रकृति में प्रेम, सौभाग्य और भगवान शिव की उपासना से जुड़ा है, बारिश के कारण चारों तरफ हरियाली छा जाती है और हरा रंग जीवन में नई शुरुआत, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं से भगवान शिव को प्राकृतिक वातावरण और बेलपत्र प्रिय है, हरा रंग प्रकृति का रूप है, इसलिए इसे पहनकर भक्त शिव के प्रति अपना प्रेम और भक्ति प्रकट करते हैं, इसलिए नारियां हरे रंग से श्रृंगार करके भोलेनाथ की पूजा करती है। धन्यवाद आपका। और हाँ, एक साथी ने यह बात लिखी कि क्षेत्रवार सजने संवरने की प्रथा अलग अलग है, यानी जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ के कुछ अलग रिवाज होते हैं। सजी संवरी जो स्त्रियाँ हैं वो अलग अलग उनका जो रूप होता है वो दिखाई देता है। एक साथी लिख रहे हैं कि माथे की बिंदिया में सपनों की चमक, आंखों के काजल में अनकहे जज्बात है, चूड़ियों की खनक में बसी है यादें, पायल के रुंझुन में दिल की सौगात है, नारी जब स्नेह और मुस्कान से श्रृंगार करती है तो केवल उसका रूप नहीं संवरता, उसके साथ घर, आंगन, रिश्ते और कई बिखरे हुए एहसास भी खिल उठते हैं। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि सावन हरेक के लिए मनभावन होता है, धरती साथ श्रृंगार करके हरी भरी बन जाती है, उसी तरह महिलाएं हरी भरी साड़ी और हरे कांच की चूड़ियां पहनकर सजधज कर उनके मुख पर निखार आता है, उसी तरह विविध भारती भी प्रसारण तरंगों पर निखार आ जाता है और गीत बज उठता है, चांद जैसे आकाशवाणी के मुखड़े पर विविध भारती जैसा सितारा नहीं भूलेगा, मेरी जान नहीं भूलेगा। जी आप मत भूलिए, याद रखिए विविध भारती का ये कार्यक्रम सुनते रहिए, विविध भारती के और अन्य कार्यक्रम भी है उन्हें भी आप जरूर याद रखिएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक सवाल यहाँ करते चलते हैं कि जो नई नई बेटियों की शादियाँ हुई हैं और वो अपने ससुराल से मायके आई हैं, तो ससुराल से कुछ भेंट उनके लिए भेजी जाती, उसे क्या कहा जाता है और उसमें खास तौर पर क्या होता है जो उन बेटियों के लिए, नई शादी जिनकी हुई है, जिनका पहला साल है, ये पहला सावन है, तो उनके लिए भेजा जाता है, तो इस बारे में आपके यहाँ क्या रिवाज है और क्या भेजा जाता है, उसे क्या कहा जाता है, इस बारे में आप हमें बताइए। चलिए गैम्बलर फिल्म का गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ है, नीरज के बोल है, संगीत किसका है ये आप हमें बताइए।

गैम्बलर फिल्म का ये गाना आपने सुना, इसमें संगीत SD बर्मन का। एक हमारी साथी ने ये बात लिखी है कि मंजू जी प्यारी सी इबारत लेकर आप आई हैं और आपने हमें सज धज के विविध भारती के इस प्रोग्राम में बुलाया है, वो भी इतने प्यार से, और अगर हम सज धज के ना आए तो क्या करेंगे आप, शामिल नहीं करेंगे हमें? ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ज़्यादा सजना तो हमें पसंद नहीं है, पर चूड़ी बिंदी बहुत प्रिय है। बिंदी तो हमने लगाना आप छोड़ दी है क्योंकि अब हम बिंदी नहीं लगाते हैं, लेकिन हाँ सजना संवरना ये हर स्त्री का अधिकार है, इसके बारे में इन्होंने लिखा है। धन्यवाद आपका। और हमने आपसे सवाल किया था कि जिन बेटियों की अभी शादी हुई है उनके लिए क्या भेजा जाता है ससुराल की तरफ से, तो हमारे एक साथी ने लिखी है कि हम लोगों के यहाँ उसे सावनी कहते हैं, जिसमें राखी, रुमाल, कपड़े, श्रृंगार सामग्री और मिठाइयाँ भेजी जाती है। एक साथी लिख रहे हैं कि श्रावण में समूची धरती की वर्षा ऋतु के परिणाम से अपने सब धर्मी गुण से हरी भरी चादर ही ओढ़ लिया करती है, फिर ऐसे में हरे रंग का प्रयोग कोई क्यों ना करे। और एक साथी ने लिखा है कि साल होने पर जो तोहफा भेजा जाता है उसे शगुन कहा जाता है। और एक साथी ने ये बात लिखी कि हरा रंग सृजन का प्रतीक है, सावन में धरती और पर्जन्य का मिलने से नव चैतन्य, हरी फसल, पेड़ पौधे, फूलों फलों का सृजन हो जाता है, इसलिए व्रत वैकल्य में भी हरा रंग शुभ माना जाता है और हरे रंग का श्रृंगार किया जाता है। जी धन्यवाद आपका। चलिए एक सवाल तो हमने आपसे किया था और कि क्या भेजा जाता है, लेकिन हमने जहां तक हमारी जानकारी है उसके अंदर एक लहरिया भी भेजा जाता है। लहरिया किसे कहते हैं?

कहते हैं लहरिया, कौन कौन से प्रदेशों में इसका ज्यादा उपयोग होता है और लहरिये में कौन से जो रंग है वो प्रधानता लिए होते हैं, इसके बारे में अगर आपको जानकारी हो तो हमें बताइएगा। और अब सावन को आने दो इस फिल्म का गाना, येसुदास की आवाज, राजकमल का संगीत, कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया आप बताइए हमें।

अरुण गोविल और जरीना वहाब पर फिल्माया गया ये गाना है। हमारे साथी की बात है कि जिस कपड़े पर तिरछी लाइंस बनी हो उसे लहरिया कहते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि राजस्थान में नवविवाहिता बहू के लिए लहरिया भेजा जाता है, वह मुख्यतः पचरंगी या रानी कलर में होता है और उसके साथ श्रृंगार का सामान, लहरिए का चूड़ा और घेवर मुख्य रूप से भेजे जाते हैं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि पति पत्नी का जो आपस का प्यार होता है वही सच्चा श्रृंगार होता है। एक साथी लिख रहे हैं कि हमारे यहाँ इसे सावनी कहते हैं और इसमें न्यूली मैरिड जो लड़कियों के लिए नई साड़ी, चूड़ियाँ और पूरा सुहाग का सामान, खिलौने, मिठाइयाँ और छोटे भाई बहनों के लिए भी कपड़े लाते हैं और मेरी बेटी के लिए भी सावनी अभी आएगी। और एक साथी लिख रहे हैं कि ससुराल से आने वाला उपहार जो हमारे यहाँ आता है उसे हरियाली कहते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि पहले सावन पर दुल्हन को, चाहे वो मायके में हो या ससुराल में, भेजे जाने वाले सामान को हमारे यहाँ संधारा कहते हैं। इसमें एक खास मिठाई, फिरनी और घेवर तीन रंगों से बना

झूले के लिए रस्सा, कपड़े, बर्तन और एक दो आभूषण भेजे जाते हैं। और एक साथी लिख रहे हैं कि शादी के बाद पहले सावन या हरियाली तीज पर सिंजारा नवविवाहिता स्त्री के मायके से जो उपहार भेजा जाता है उसे कहा जाता है, उसे सिंधारा हम यहाँ पर कहते हैं। तो ये बहुत सारी बातें हैं। जी हाँ, लहरिया के बारे में हमने बात की। खासतौर पर राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी इसे पहना जाता है और विभिन्न रंगों में ये होता है और बहुत सारे रंगों की लाइनें आड़ी एक तिरछी लाइनें होती है और इस तरह से वो लहरिया सावन के महीने में मुख्य रूप से पहना जाता है और बड़ा ही सुंदर दिखाई देता है। चलिए अब हम अगला गाना आपके लिए लेकर आए हैं, दो रास्ते फिल्म का गाना, लता जी की आवाज़ से, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत है।

दो रास्ते फिल्म का ये गाना हमने सुना। एक साथी हमारी लिख रही है कि मौसम कोई भी हो, त्योहार कोई भी हो, इस सवाल सदियों से सभी के मन में रहता है कि स्त्रियां इतना क्यों सस्ती है। घर में कितना भी काम धाम हो, वे सजने के लिए वक्त निकाल ही लेती है। स्त्रियों

अधिकार के अलावा एक मुख्य तथ्य है कि सजने से स्त्रियों में आत्मविश्वास की एक अलग अनुभूति प्रकट होती है। सलीके से लगाया गया काजल, बिंदी, मेहंदी, चूड़ी में स्त्रियों का सौंदर्य निखर कर सामने आता है। सादगी के सौंदर्य में नहाई हुई किसी स्त्री को देखिए, वे नेह में नत और विनीत लगती है। किसी भी मौसम में नेह की तरह बरसती हुई स्नेह और संवेदना के रस में सिंचित नारी का असल सौंदर्य यही है। जी हाँ, सादगी का भी अपना आकर्षण होता है। ये सवाल हम आपसे करने ही जा रहे थे। सजना तो अच्छा लगता ही है, लेकिन सादगी का भी अपना आकर्षण होता है। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, ये हमें बताइएगा। चलिए, अगला गाना परिणीता फिल्म का गाना, आशा भोसले की आवाज और अरुण कुमार मुखर्जी का इसमें संगीत है। गीत किसका है ये आप हमें बताइएगा। कौन सी अभिनेत्री पर फिल्माया गया है ये भी बता सकते हैं।

भरत व्यास का लिखा हुआ ये गाना है और मीना कुमारी पर फिल्म आया गया है। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज तो गानों की हरियाली ही हरियाली है जी, एक के बाद एक अपने लिस्ट तो सुपर हिट है, बहुत आभार विविध भारती का। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हर एक स्त्रियों को सजना संवरना बहुत अच्छा लगता है, बिंदिया काजल कजरा गजरा पायल मेहंदी चुनर हरी हरी चूड़ियां ये सब पहनकर अपने आप खुश होती है और सोचती है साजन भी जरूर कहेंगे कि तेरी बिंदिया रे और गजरा लगा के गजरा सजा के, ये वो कहेंगी जी। धन्यवाद आपका। चलिए अब मधु फिल्म का गाना हम आपको, देखिए हमने सोचा था कि कौन सी फिल्म का गाना है ये आपसे पूछेंगे लेकिन हमने ही बता दिया, मधु फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, नक्श लायलपुरी के बोल है, संगीत किसका है आप बताइए।

एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि लता मंगेशकर द्वारा गाया गया धानी चुनर मोरी हाय रे मधु फिल्म का ये गाना एक कालजयी गीत है। नक्श लायलपुरी द्वारा रचित इस फिल्म में चुनरी के माध्यम से यौवन और प्रेम की चंचलता को दर्शाया गया है। रोशन का संगीत और लता मंगेशकर की आवाज़ इस क्लासिक को और भी मनमोहक बना देती है। एक साथी लिख रहे हैं कि महाराष्ट्र में श्रावण महीने से त्यौहार शुरू हो जाते हैं। पहले के जमाने में स्त्रियाँ 9 गज की साड़ियाँ पहनती थी, बाद में वो 5 गज पर आ गई है। सज धज कर त्यौहार में हर्षोल्लास के साथ वो शामिल होती है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। एक फूल चार कांटे इस फिल्म का गाना है, मुकेश की आवाज है, शैलेंद्र के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप बताइए।

सुनील दत्त और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया ये गाना एक साथी की ये बात कि हमारे शहर में बरखा रानी बड़े प्यार से धरती का साथ सिंगार कर रही है और सुरीला सफर में हम नारी के आंतरिक और बाह्य साथ सिंगार की बातें कर रहे हैं, उस पर सुंदर से गीत सुन रहे हैं। ऐसी प्यारी अनुभूति के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। एक साथी ये लिख रहे हैं कि सजने संवर लेख के लिए तो शहरों में आज पार्लरों की बाढ़ सी आ गई है, घर पर सस्ती महिलाओं का अब मन कहां भरता है, काम से फुर्सत मिलते ही बैग टांग कर पर्स लिए एक हाथ में मोबाइल और आज जा पहुंचती शहर के व्यस्ततम पार्लर में और नख से शिखर तक पूरा मेकअप कराकर ही लौटती हैं। वे ये जो पतिदेव हैं बड़े नाराज हमें लग रहे हैं, तो श्रृंगार जरूरी है लेकिन सीमाएं तय करना भी बहुत जरूरी है। चलिए कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना अभिमान फिल्म से, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें, मजरू सुल्तानपुरी के बोल, संगीत किसका है आप बताइए।

अभिमान फिल्म का ये गाना आपने सुना और इसमें बहुत खूबसूरत सा जो ये संगीत है ये एसडी बर्मन का संगीत है। बहुत सारे श्रोताओं ने हमें सही जवाब लिख करके भेज दिए हैं। आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे बिल्कुल साथ साथ रहे, हर बात का आपने जवाब दिया और खूबसूरत आपके कमेंट्स थे और आपने ये भी लिखा कि गीत आपको पसंद आए, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हमारी मुलाकात होगी। आज का ये कार्यक्रम बस यहीं तक। आज्ञा दीजिए मंजू द्विवेदी को। नमस्कार।

0: पेश किया गया तीन अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज कहा कि सरकार विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में श्री रिजिजू ने ये बात कही।
1: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
0: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृह मंत्री के वक्तव्य की मांग की थी।
2: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
0: इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही आज विभिन्न मुद्दों को लेकर विपक्ष के हंगामे के कारण बाधित हो रही है। लोकसभा में आज शोर शराबे के बीच अधिकरण सुधार 2026 पेश किया गया। दिन के 12 बजे तक स्थगित रहने के बाद सदन की कार्यवाही जैसे ही शुरू हुई, विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया। ये विधेयक विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता तथा नियुक्ति में एक रूपता सुनिश्चित करने और प्रशासन तथा कामकाज में कुशलता, स्वतंत्रता और पारदर्शिता बढ़ाने का प्रावधान करता है। इसके तहत राष्ट्रीय अधिकरण आयोग के गठन का भी प्रस्ताव है। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खदान और खनिज विकास तथा नियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। ये विधेयक 1957 के संबंधित अधिनियम में संशोधन करेगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम संशोधन विधेयक 2026 सदन के समक्ष रखा। ये विधेयक केरल राज्य के नाम में परिवर्तन का प्रावधान करता है। सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल ने राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इसके माध्यम से 1962 के संबंधित अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव है। उधर राज्यसभा में भी ऐसी ही स्थिति देखने को मिली। विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि संबंधित हितधारकों से परामर्श पूरा होने के बाद राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 का मसौदा अंतिम रूप देने के चरण में है। फिलहाल दोनों सदनों की कार्यवाही जारी है। केंद्रीय मंत्री और रांची से सांसद संजय सेठ ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा में कथित अनियमितताओं की स्वतंत्र जांच का आदेश देने में राज्य सरकार की अनिच्छा पर सवाल उठाया है। संसद भवन परिसर में आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में श्री सेठ ने कहा कि यदि विद्यार्थी ये परीक्षा रद्द करने की मांग कर रहे हैं तो राज्य सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि वे इससे मानने से क्यों इनकार कर रही है।
3: छात्र अडिग हैं कि हम तो जाएंगे और विधानसभा घेरेंगे। कई मांग है कि सीबीआई जांच करा दो और जेएसएससी के एग्जाम कैंसिल करा दो, जो दोषी है उनको पकड़ो और ईडी जांच करा दो। सरकार को क्या आपत्ति है।
0: भाजपा सांसद तरुण चुघ ने विपक्ष के कुछ नेताओं पर झारखंड में जारी विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन को जानबूझकर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि ये नेता इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन है, जबकि राज्य में उनके गठबंधन सहयोगियों की सरकार है।
4: मेरा निवेदन है कि छात्रों को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए और मेरा सभी से निवेदन है, आंदोलन हम सबका राइट है, सत्याग्रह हम सबकी ताकत है, लेकिन हमें कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए।
0: उधर झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के

0: विरोध में जारी विद्यार्थी आंदोलन का आज 17वां दिन है। विद्यार्थी विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं। पुलिस ने किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के नेतृत्व में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने तथा कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। सरकार का दावा है कि छात्रों की 98% मांगों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन छात्र अपनी प्रमुख मांगों पर अड़े हुए हैं। मार्च के दौरान छात्रों ने पुरानी विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और 7वें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। 6 छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू समेत कई बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। 3 जेपीएससी सदस्यों के इस्तीफे स्वीकार किए जाने के बाद आंदोलन और तेज हुआ है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेने और विकसित भारत के निर्माण में योगदान देने के अपने सामूहिक संकल्प के अनुपालन का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि तिरंगा हमारा गौरव है और राष्ट्र के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देने की निरंतर प्रेरणा का स्रोत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें प्रसन्नता है कि इस वर्ष के प्रयास वंदे मातरम को समर्पित हैं और वो भी ऐसे समय में जब हम इसकी 150वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। संस्कृति मंत्रालय ने कहा कि इस वर्ष का हर घर तिरंगा अभियान तिरंगा यात्राओं, तिरंगा रैलियों, तिरंगा संगीत कार्यक्रमों और सामूहिक रूप से वंदे मातरम के गायन के माध्यम से देश भर की सड़कों और घरों में देशभक्ति की भावना लाने का प्रयास करेगा। मंत्रालय ने कहा कि वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ नागरिकों को स्वतंत्रता दिवस समारोह के हिस्से के रूप में राष्ट्रगीत का उत्सव मनाने का अवसर प्रदान करेगी। इस वर्ष के समारोहों का एक प्रमुख आकर्षण सूर्यपथ तिरंगा होगा। इसका उद्देश्य दुनिया भर में रह रहे भारतवंशियों को तिरंगे के वैश्विक उत्सव में एकजुट करना है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपने घरों में राष्ट्रीय ध्वज फहराने और अपनी सेल्फी हर घर तिरंगा वेबसाइट पर अपलोड करने की अपील की है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कश्मीर के सभी जिलों में तिरंगा यात्राएं और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: अभियान की शुरुआत के साथ ही पुलवामा के त्राल इलाके, अनंतनाग, बारामुल्ला और कई दूसरी जगहों पर तिरंगा यात्राएं निकाली गई, जिनमें युवाओं, छात्राओं, कर्मचारियों और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। श्रीनगर में भी इस अभियान के तहत एक बड़ी तिरंगा रैली की तैयारी चल रही है। कश्मीर भर में जिला प्रशासन आने वाले दिनों में कई तिरंगा यात्राएं और जन भागीदारी कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। स्थानीय लोग भी इस अभियान के तहत तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर उत्साहपूर्वक इसमें भाग ले रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
0: बिहार में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत आज राजधानी पटना में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
4: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में गांधी मैदान स्थित जेपी सर्कल से शुरू यह यात्रा कारगिल चौक के पास समाप्त हुई। यात्रा में स्कूली बच्चों, एनसीसी और एनएसएस कैडेट्स और आम लोगों ने बड़ी संख्या में भागीदारी की। इस दौरान पूरा शहर तिरंगे के रंगों में सराबोर होने के साथ ही वंदे मातरम और हर घर तिरंगा के नारों से गुंजायमान रहा। इधर तिरंगा यात्रा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों से इस अभियान के तहत जिला, नगर निकाय और पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाली यात्राओं में शामिल होने का आग्रह किया। सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना।
0: उधर नागालैंड के कोहिमा में आज भारतीय जनता पार्टी की नागालैंड इकाई ने हर घर तिरंगा दोपहिया रैली का आयोजन किया। अभी अभी समाचार मिला है कि लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई है। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है। सरकारी क्रय विक्रय जेम पोर्टल पर कुल व्यापार का मूल्य पिछले दशक में 422 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जेम पोर्टल पर 12 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उपक्रम पंजीकृत हैं, इनमें 2 लाख से अधिक महिलाएं हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए

0: आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, विदर्भ, असम और मेघालय में भी कल तक तेज वर्षा की संभावना है। जम्मू कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरलम, माहे, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में कल तक बिजली चमकने और गरज के साथ बौछारें पड़ने की स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा आज शाम दिल्ली के कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज सुबह से रुक रुक कर वर्षा हो रही है। तेज बारिश के कारण हुए भूस्खलन से राज्य के कई हिस्सों में 100 से अधिक सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। एक रिपोर्ट।
1: हिमाचल प्रदेश में मॉनसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है और राजधानी शिमला सहित राज्य के अनेक क्षेत्रों में रुक रुक कर हल्की वर्षा हो रही है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश के 4 जिलों कांगड़ा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर लोगों को एहतियात बरतने और नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई है। इस बीच भारी वर्षा से हुए भूस्खलन के कारण राज्य में 100 से अधिक सड़कें यातायात के लिए अवरुद्ध हैं, जबकि 255 बिजली ट्रांसफार्मर और लगभग 20 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हैं। कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: आज विश्व सिंह दिवस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सिंह दिवस पर कहा कि भारत में एशियाई शेरों की आबादी बढ़ रही है और उनके पर्यावास में विस्तार हो रहा है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का आलेख साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सामुदायिक भागीदारी से वन्य जीव संरक्षण की सरकार की प्रतिबद्धता विशेष प्रजातियों को पीढ़ियों तक संरक्षित रखने का प्रेरक उदाहरण है। श्री भूपेंद्र यादव ने अपने आलेख में कहा है कि वर्ष 2015 में 523 शेरों की संख्या बढ़कर वर्ष 2025 में 891 हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
2: आपके इस

0: चाहते हैं और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
1: इटली के बोलोनिया में कश्मीरी मूल के हजारों लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की कार्रवाई में निर्दोष नागरिकों की हत्या की निंदा की। दुनिया के विभिन्न देशों में कश्मीरी प्रवासी समूहों के ऐसे ही विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में पूर्व राष्ट्रपति वीवी गिरी को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित की। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में आज दोपहर के कारोबार में मामूली वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 86 अंक बढ़कर 78,585 जबकि निफ्टी 28 अंक की बढ़त के साथ 24,599 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की विपक्ष से अपील। गृह मंत्री अमित शाह को संसद में उठाए जा रहे मुद्दों पर बिना शोर शराबे के वक्तव्य देने दें। अधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और कुशलता बढ़ाने के लिए लोकसभा में अधिकरण सुधार विधेयक पेश किया गया। 3 अन्य विधेयक भी पेश। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों का विधानसभा की ओर मार्च। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत देश भर में तिरंगा रैलियों का आयोजन। पूर्वी राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट। और आज विश्व सिंह दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का जो पहला गाना है तूफान और दिया। इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज, संगीत है वसंत देसाई का।

लता मंगेशकर की आवाज में ये मीरा भजन आपने सुना, संगीत वसंत देसाई का, फिल्म का नाम तूफान और दिया। और अब श्रीमती 420 इस फिल्म का गाना आपको हम सुनवा रहे हैं। गीता दत्त की आवाज, जानेसार अख्तर के बोल, संगीत है ओपी नैयर का।

मुझको ये भी पता।

0: सजा ये जिंदगी है तू मुस्कुराए जा।
1: एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ बहा कर ले जाती है। एक आवाज जिसके साथ जुड़ी है आप।

0: आ रहे हैं
1: महबूबा महबूबा महबूबा
0: विविध भारती पर
1: सुंदरा
0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
2: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है सदाबहार नगमे। अब जो गीत आपके लिए लेकर आए हैं ये लता मंगेशकर और हेमंत कुमार की आवाजों में शतरंज फिल्म का गाना है। राजेंद्र कृष्ण के बोल, संगीत है सी रामचंद्र का।

रंगीन रातें, ये फिल्म का नाम है जिसका गीत अब आप सुनेंगे लता मंगेशकर की आवाज में, केदार शर्मा के बोल, संगीत है रोशन का।

0: और उसके बनने की दास्तान।
1: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं थी।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
1: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: राजहट फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।

लीजिए अब सुनिए सीआईडी फिल्म का गाना गीता दत्त की आवाज में, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार ओपी नैयर।

आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गाना अब आपको सुनवाते हैं, पॉकेट मार फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर और साथियों के आवाजों में, राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं, संगीत है मदन मोहन का।

0: विधानसभा के पास बैरिकेडिंग पार की और सातवें तथा आखिरी बैरिकेडिंग तक पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल शुरू कर दिया। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को एम्बुलेंस से विधानसभा लाया गया, जहां उन्होंने स्ट्रेचर पर समर्थकों के साथ मार्च में हिस्सा लिया। छह छात्र अब भी अनिश्चितकालीन अनशन पर हैं। छात्रों ने कहा है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच सहित प्रमुख मांगे पूरी होने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। वहीं ईडी ने कथित जेपीएससी परीक्षा अनियमितताओं के संबंध में ईसीआईआर दर्ज किया है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: परीक्षा विवाद को लेकर विधानसभा की ओर मार्च कर रहे आंदोलित छात्रों और पुलिस के बीच आज हल्की झड़प हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के प्रयास में दो छात्र और एक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस घटना के बाद राजधानी रांची के संवेदनशील इलाकों और विधानसभा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था और अधिक कड़ी कर दी गई है। जेपीएससी और जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने आज रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। प्रदर्शन में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर खेलगांव स्थित कैंप जेल भेज दिया है। श्री मरांडी ने सरकार पर हठधर्मिता का आरोप लगाया है।
2: एसएससी से लेकर के जेपीएससी सभी एग्जाम में गड़बड़ी हुई है, नौकरी को बेचा गया है। बच्चों की एक ही मांग है, उसकी सीबीआई जांच कर। हम सब लोग चाहते थे मुख्यमंत्री से हम लोग मिले और बात करें, लेकिन हम सब लोगों को गेट पर ही रोक दिया गया और वहीं से गिरफ्तार करके खेलगांव में पूरे झारखंड में हम सब इस लड़ाई को लड़ेंगे।
1: भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा

0: कि राज्य सरकार तानाशाही पर उतारू है और पुलिस के बल पर छात्रों की आवाज को दबाना चाहती है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन आज सदन की कार्यवाही में भारी राजनीतिक सरगर्मी देखने को मिली। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायकों की अनुपस्थिति पर चिंता जताई। इस बीच सदन में मंत्री सुदिव्य कुमार ने आरोप लगाया कि भाजपा ने छात्र आंदोलन को हैक कर लिया है। उन्होंने छात्रों से दोबारा वार्ता की मेज पर आने की अपील करते हुए कहा कि सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है। भाजपा महानगर इकाई द्वारा आज राजधानी रांची में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस देश प्रेम यात्रा में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू मुख्य रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर श्री सेठ ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की।
1: हजारों किलोमीटर की सरहद पर जब लाखों सैनिक -40 डिग्री टेम्परेचर कितना भी ऊंचा हो कोई परवाह नहीं, नारा गाते भारत माता की जय वंदे मातरम। तो आज हम सब भी जब स्वाधीनता दिवस के 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो यह हमारी आन बान शान है।
0: रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 के तहत आज विशेष फिल्म स्क्रीनिंग का आयोजन किया जा रहा है। इसमें कुल्लूई भाषा में बनी निर्देशक प्रिंसिपाल के फिल्म व्हाट आर यू सर्चिंग दिखाई जाएगी, जो आदिवासी समाज की सोच और पहचान को दर्शाती है। इसके साथ ही अशोक वेलु द्वारा निर्देशित भावनात्मक फिल्म लुक एट द स्काई का भी प्रदर्शन होगा, जो दर्शकों को प्रकृति से जुड़ाव का भावपूर्ण अनुभव कराती है। सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर आज पूरे राज्य के शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। देवघर के प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम में लाखों श्रद्धालु कतारबद्ध होकर पवित्र ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक कर रहे हैं। वहीं कोडरमा के चंदवारा में हजारों शिव भक्तों ने गोरी नदी से जल भरकर 12 किलोमीटर की भव्य कांवर पदयात्रा निकाली और दोमुहानी धाम में जलाभिषेक कर राज्य की सुख समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 4 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को मंजू द्विवेदी
2: और सोनाली पाठक का नमस्कार।
1: क्या हालचाल है? देखिए, हम किसी से जब बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो सबसे पहले यही पूछते हैं कि क्या हालचाल है, क्या हो रहा है आजकल, क्या चल रहा है आजकल। और ये हालचाल पूछना बहुत ही ज्यादा जरूरी है,
2: बहुत जरूरी बात है। और आजकल ऐसे हो रहा है मंजू जी,
1: हाँ?
2: कि ये बात जो है ना, ये युवा के ना पीछे भी छूटता जा रहा है।
1: अच्छा,
2: लोग मोबाइल में इतने व्यस्त हो गए, इतने झुके रहते हैं कि वे हालचाल पूछना भी भूल रहे हैं।
1: बहुत गलत बात है ना।
2: तो हालचाल पूछते रहना चाहिए, फिर आपस में हो या फिर बुजुर्गों का हो।
1: हाँ बिल्कुल, सभी का हालचाल पूछ लेने से क्या होता है कि सामने वाले के मन में भी एक बात आ जाती कि हाँ, मेरी परवाह करने वाला कोई है। और जब ये बात बुजुर्गों के संदर्भ में आती है तो ये और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है कि आप उनके बारे में जानते रहिए, उनके हालचाल के बारे में जानते रहिए, और अगर उन्हें कोई समस्या है तो बड़े प्यार से उसे सुलझाइए, क्योंकि आखिर वे हमारे घर के बुजुर्ग हैं, यानी हमारे घर की नींव हैं। और अगर हम उनकी चिंता नहीं

0: करेंगे, उनकी परवाह नहीं करेंगे, उनकी कद्र नहीं करेंगे या उन्हें सम्मान नहीं देंगे, तो ये बहुत गलत बात होगी।
1: और ऐसा है ना, हर किसी को इस अवस्था से गुजरना है।
0: बिल्कुल,
1: अगर हम बुजुर्गों की परवाह करेंगे, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो देख के वो भी बुजुर्गों की परवाह करना सीखेंगे।
0: हाँ।
1: अगर हम उनके साथ में बुरा व्यवहार करते हैं तो यही हमारे साथ भी हो सकता है।
0: आज सीढ़ी के जिस पायदान पर बुजुर्ग खड़े हैं, कल हम भी उसी पायदान पर खड़े होंगे। तो इस बात का हमें ज्ञान होना चाहिए, इसीलिए आज हमने विषय चुना है कि बढ़ती उम्र और बुजुर्गों का हठीलापन। तो ये हट वाली जो बात है, तो ऐसा नहीं कि सभी में होती है, लेकिन कई कारण होते हैं इसके पीछे,
1: जिसके पीछे वो हटेले हो जाते हैं।
0: शारीरिक अवस्था भी होती है और बाहर के भी बहुत सारे कारण होते हैं। आसपास का वातावरण हो सकता है, आसपास के लोग हो सकते हैं, परिस्थितियां हो सकती, कोई भी कारण हो सकता है। तो उन कारणों का आज हम विश्लेषण करेंगे। इसके अलावा
1: कथासुधा, जिसका सारे श्रोतागण, सारी सखियां इंतजार कर रहे हैं, 73 भाग 1, इसे हम सुनेंगे। और व्यंजन,
0: ये तो एक बहुत ही एक मुख्य हमारा जो कहते हैं सेक्शन हो सकता है या होता है बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि खाना पीना सभी को पसंद होता है। तो आज कौन से व्यंजन हम खिलाएंगे?
1: पश्चिम बंगाल के व्यंजन में बसंती पुलाव और संदेश, ये इसे सौंदेश भी कहते हैं।
0: जी हाँ जी हाँ। तो हमारा सौंदेश ये है कि आप सुनते रहिए विविध भारती सखी सहेली कार्यक्रम, सुनिए और ये जो व्यंजन हम थोड़ी देर में बनाने वाले हैं या इसकी रेसिपी जो बनाने वाले हैं, तो इसके बारे में आप बिल्कुल सजग रहिएगा कि किस, देखिए एक व्यंजन होता है लेकिन रेसिपी जो है बहुत अलग तरह से, अलग अलग जगहों पर अलग तरीके से बनाई जाती है। उसका स्वाद भी जैसे जैसे हम अलग अलग जगहों पर जाते हैं थोड़ा थोड़ा सा अलग होता
1: बदलता जाता है।
0: हाँ।
1: और तो, उसकी जो उसकी मिट्टी की खुशबू है ना, हाँ, वो उस व्यंजन में नजर आती है, है ना।
0: लेकिन विविध भारती एक ऐसा मंच है कि जहाँ पर हर क्षेत्र के श्रोता इसे सुनते हैं और अपने अपने क्षेत्र के बारे में वो बताते हैं कि वहाँ इसे किस तरह से बनाया जाता है, कब खाया जाता है, इसका रंग कैसा होता है, इसका स्वाद कैसा होता है, इसकी सुगंध कैसी होती है।
1: तो हम श्रोताओं से कहेंगे आप भी लिखकर भेजिए,
0: हाँ,
1: कि आपने ये बसंती पुलाव या सौंदेश बनाया है या नहीं बनाया है,
0: हाँ,
1: और अगर नहीं बनाया तो बनाने वाले हैं क्या, या फिर जिनके घर में बनता है तो वो लिखकर भेजिए। साथ ही बुजुर्गों वाली जो बात कही हमने, तो आपके घर में बुजुर्ग है क्या और किस तरह से उनका हट होता है, कभी बालहट की तरह भी होता है उनका हट, तो आप उनका हट पूरा करते हैं या नहीं, इस तरह से कमेंट्स हमें जरूर लिखकर

0: सोनाली, गाना हमने सुन लिया और अब कथा सुधा का वक्त हो गया है। तो आज की जो कहानी है तेतर, इसका पहला भाग हम सुनेंगे। इसके बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने कुछ बातें लिखी है कि इस ये जो शब्द है तेतर, इसका अर्थ क्या होता है, इसके बारे में लिखा है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि तेतर महान कथाकार मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक प्रसिद्ध मार्मिक कहानी है, जो तीन पुत्रों के पश्चात पैदा होने वाली कन्या और उससे जुड़े समाज के अंधविश्वासों पर आधारित है। और कहानी का परिचय और मुख्य बिंदु कथानक तीनों बेटों के बाद घर में बेटी यानी कि तेतर का जन्म होता है, तो उसके बारे में जो बातें हैं, बहुत मान्यता है उसके बारे में ये कहानी है। हमारे श्रोताओं ने ये जानकारी हमें लिख करके भेजी है, सुन लें अपन।
1: सुनते हैं। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
2: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। कहना न होगा कि प्रेमचंद ने अपने समय के समाज में जो कुछ भी देखा उसका हूबहू सजीव चित्रण भी किया, जो आज के समय में हमें रास्ता दिखाने का भी काम करता है। लड़कियों के जन्म को लेकर बनी हुई मान

0: मानसिकता और घोर निराशा व चिंता को देखते हुए एक लेखक ने इस कहानी के माध्यम से सभी को आगाह करने का प्रयास किया है। तेतर नाम की कहानी में लेखक ने तीन लड़कों के बाद जन्म लेने वाली लड़की का उल्लेख किया है, जिसे पहले से ही हमारे पुरुष प्रधान समाज में एक आफत और चिंता के रूप में देखा जाता है। कहानी में मुख्य रूप से समाज में एक तेतर लड़की को लेकर फैले हुए अंधविश्वास पर चोट की गई है, जो कहीं न कहीं हमारे बीच के कुछ लोगों द्वारा प्रसारित किया जाता है और इस अंधविश्वास को पुख्ता करने के लिए तरह तरह का स्वांग किया जाता है। जो व्यक्ति इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं करता, उसे भी इन अंधविश्वास से भरे समाज में डर लगने लगता है। जैसे कि कहानी में लड़की का पिता, जिसका नाम दामोदर है, वो इन अंधविश्वास पर यकीन नहीं करता, पर कहीं न कहीं वो भी अपनी माँ की बातों से थोड़ा घबराया हुआ था। तो आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। आज आपको सुनवा रहे हैं इस कहानी का पहला भाग।
1: आखिर वही हुआ जिसकी आशंका थी, जिसकी चिंता में घर के सभी लोग, विशेषतः प्रसूता पड़ी हुई थी। तीन पुत्रों के पश्चात कन्या का जन्म हुआ। माता सौर में सूख गई, पिता बाहर आंगन में सूख गए और पिता की वृद्धा माता सौर द्वार पर सूख गई। अनर्थ महा अनर्थ, भगवान ही कुशल करे तो हो, ये पुत्री नहीं राक्षसी है। इस अभागिन को इसी घर में आना था, आना ही था तो कुछ दिन पहले क्यों ना आई। भगवान सातवें शत्रु के घर में भी तेतर का जन्म ना दे। पिता का नाम था पंडित दामोदर दत्त, शिक्षित आदमी थे, शिक्षा विभाग में ही नौकर भी थे, मगर इस संस्कार को कैसे मिटा देते जो परंपरा से हृदय में जमा हुआ था कि तीसरे बेटे की पीठ पर होने वाली कन्या अभागिन होती है, या पिता को लेती, या माता को, या अपने को। उनकी वृद्धा माता लगी नवजात कन्या को पानी पी पी कर कोसने।
2: अरे कलमुही है कलमुही, न जाने क्या करने आई है यहाँ। अरे किसी ऐसे के घर जाती जिसके औलाद नहीं है तो उसके तो दिन फिर जाते।
1: दामोदर दत्त दिल में तो घबराए हुए थे, पर माता को समझाने लगे।
3: अम्मा तेतर वेतर कुछ नहीं, भगवान की जो इच्छा होती है वही होता है, ईश्वर चाहेंगे तो सब कुशल ही होगा। गाने वालियों को बुला लो अम्मा, नहीं तो लोग कहेंगे तीन बेटे हुए तो कैसे फूली फिरती थी, एक बेटी हो गई तो घर में कोहराम मच गया।
2: अरे बेटा तुम क्या जानो इन बातों को, मेरे सिर तो बीत चुकी है, प्राण तो उसी में समाया हुआ है। तेतर ही के जन्म से तुम्हारे दादा का देहांत हुआ, तभी से तेतर का नाम सुनते ही मेरा कलेजा कहां उठता है।
3: अम्मा इस कष्ट के निवारण का कोई तो उपाय होगा।
2: उपाय बताने वाले तो बहुत तेरे हैं, और पंडित जी से पूछो कोई ना कोई उपाय बता ही देंगे, पर इससे कुछ होता नहीं है। मैंने कौन से अनुष्ठान नहीं किए, पर पंडित जी की तो मुठ्ठियां गर्म हुई, यहां जो सिर पर पड़ना था वो पड़ ही गया, अब टके के रह गए पंडित जी, जजमान मरे या जिए उनकी बला से, उन्हें दक्षिणा मिलनी चाहिए बस। लड़की तो जरा देखो दुबली पतली भी नहीं है, तीनों लड़कों से हृष्ट पुष्ट है ये, बड़ी बड़ी आंखें हैं, पतले पतले लाल लाल होंठ हैं, जैसे गुलाब की पत्ती, गोरा चिट्टा रंग तो देखो, लंबी सी नाक। कलमुही नहलाते समय रोई भी नहीं, ठुकुर ठुकुर ताकती रही, ये सब लक्षण कुछ अच्छे थोड़े ही हैं। हाँ
1: दामोदर दत्त के तीनों लड़के सांवले थे, कुछ विशेष रूपवान भी ना थे, लड़की के रूप का बखान सुनकर उनका चित्त कुछ प्रसन्न हुआ। बोले,
3: अम्मा तुम भगवान का नाम लेकर गाने वालियों को बुला भेजो, गाना बजाना होने दो, भाग्य में जो कुछ है वो तो होगा ही।
2: क्या बताएं, जी तो हुलसता ही नहीं, लेकिन करूं क्या।
3: अम्मा गाना न होने से कष्ट का निवारण तो होगा नहीं कि हो जाएगा, अगर इतने सस्ते में

0: जान छूटे तो न कराऊंगा ना।
1: अब बुलाए लेती हूँ बेटा, जो कुछ होना था वो तो हो ही गया।
2: इतने में सौर में से पुकार कर लक्ष्मी ने कहा,
3: अम्मा जी, ओ अम्मा जी, बहू जी कहती हैं गाना वाना कराने का कोई काम नहीं है।
1: भला उनसे कहो चुप बैठी रहें, बाहर निकलकर मनमानी करेंगी। 12 ही दिन हैं, बहुत दिन नहीं है। बहुत इतराती फिरती थी, ये ना करूंगी वो ना करूंगी, देवी क्या है देवता क्या है। मर्दों की बातें सुनकर वही रट लगाने लगती थी, तो अब चुप से बैठी क्यों नहीं रहती हैं? मेमें तो तेतर को अशुभ नहीं मानती, और सब बातों में जब मेमों की बराबर करती हैं तो इस बात में भी करें, कहो चुप बैठी रहें। और सुनो लक्ष्मी, जाओ जरा गाने वालियों को बुला लाओ, और हाँ सब जगह न्योता दे दो, और पड़ोस में भी कहती जाना। हाँ।

0: सवेरा होते ही लड़का सोकर उठा और आंखें मलता हुआ जाकर दादी से पूछने लगा,
1: बड़ी अम्मा बड़ी अम्मा, कल अम्मा को क्या हुआ बताइए ना।
2: अरे लड़की तो हुई है बेटा।
1: क्या? ओहो हो हो हो, पैजनिया पहनकर छुन छुन चलेगी? जरा मुझे दिखा दो दादी जी, थोड़ा दिखा दो ना।
2: अरे तो क्या सौर में जाएगा है, पागल हो गया क्या? चल बाहर चल, लड़के नहीं जाते अंदर।
0: लड़के की उत्सुकता न मानी, सौर के द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और बोला,
1: अम्मा अम्मा जरा बच्ची को मुझे दिखा दो, एक बार दिखा दो अम्मा।
3: कहाँ जाते हो, बच्ची भी सोई है, चलो बाद में आना।
1: बच्ची को मुझे दिखा दो, जरा दिखा दो, गोद में लेकर देखूंगा।
0: लक्ष्मी ने कन्या उसे दिखा दी तो वहाँ से दौड़ता हुआ वो अपने छोटे भाइयों के पास पहुँचा और उन्हें जगा जगा कर खुशखबरी सुनाने लगा।
1: अरे छोटू सुनो, अरे छोटू सुनो, उठो उठो। अरे मैं अभी गुड़िया देखकर आ रहा हूँ।
4: कोई लगाओ भैया, नन्ही सी होगी?
1: अरे बिल्कुल नन्ही सी, एकदम गुड़िया जैसी है, गोरी तो ऐसी कि क्या किसी साहब की लड़की होगी। ये लड़की तो मैं लूंगा।
4: हम भी देखेंगे। कोई लगाओ।
1: देखा कैसी सुंदर है,
4: ऐसा के मन करके सोए, देखो ना भैया, हमको भी दिखाओ। नहीं नहीं, हमें तो हम भी देखेंगे।
1: खूब द्वार पर बारात आएगी, हाथी घोड़े आतिशबाजी, क्या मजा आएगा,
4: बड़ा मजा आएगा।
0: मंझला और छोटा ऐसे मग्न हो रहे थे मानो वो मनोहर दृश्य आंखों के सामने है। उनके सरल नेत्र मनोल्लास से चमक रहे थे।
4: फूल आविया भी होंगे, फिर सारे फूल होंगे, हम भी फूल लेंगे, बड़ा मजा आएगा। कितनी सुंदर है।
0: छठी भी हुई, बरही भी हुई, गाना बजाना, खाना खिलाना, देना दिलाना, सब कुछ हुआ, पर रस्म पूरी करने के लिए दिल से नहीं, खुशी से नहीं। लड़की दिन दिन दुर्बल और अस्वस्थ होती जाती थी। माँ उसे दोनों वक्त अफीम खिला देती और बालिका दिन और रात नशे में बेहोश पड़ी रहती। जरा भी नशा उतरता तो भूख से विकल होकर रोने लगती। माँ कुछ ऊपरी दूध पिलाकर अफीम खिला देती। आश्चर्य की बात यह थी कि अब की उसकी छाती में दूध ही नहीं उतरा। यूं भी उसे देर से उतरता था, पर लड़कों की बेर उसे नाना प्रकार की दूधवर्धक औषधियां खिलाई जाती। बार बार शिशु को छाती से लगाया जाता, यहां तक कि दूध उतर ही आता था। पर अब की ये आयोजनाएं न की गईं।

फूल से बच्ची कुम्हलाती जाती थी। मां तो कभी उसकी ओर ताकती भी न थी। हां, लक्ष्मी कभी चुटकियां बजाकर चमकारती तो शिशु के मुख पर ऐसी दयनीय, ऐसी करुण वेदना अंकित दिखाई देती कि वो आंखें पोंछती हुई चली जाती थी। बहू से कुछ कहने सुनने का साहस ना पड़ता था। बड़ा बेटा सिद्धू बच्चे को बाहर ले जाकर खिलाने के लिए बार बार जिद करता तो मां उसे झिड़क देती।

0: तीन चार महीने हो गए। दामोदर दत्त रात को पानी पीने उठे तो देखा कि बालिका जाग रही है। सामने ताख पर मीठे तेल का दीपक जल रहा था। लड़की टकटकी बांधे उसी दीपक की ओर देखती थी और अपना अंगूठा चूसने में मग्न थी। चुप चुप की आवाज आ रही थी। उसका मुख मुरझाया हुआ था, पर वो ना रोती थी ना हाथ पैर फेंकती थी। बस अंगूठा पीने में ऐसी मग्न थी मानो उसमें सुधा रस भरा हुआ है। वो माता की ओर मुंह भी ना फेरती थी, मानो उसका उन पर कोई अधिकार नहीं, उसके लिए वहां कोई आशा नहीं। बाबू साहब को उस पर दया आई।
1: अरे बच्चे, कितनी प्यारी है गुड़िया। इस बेचारी का मेरे घर जन्म लेने में क्या दोष है? मुझ पर या इसकी माता पर जो कुछ भी पड़े उसमें इसका क्या अपराध? हम कितनी निर्दयता कर रहे हैं। कुछ भावी अनिष्ट की आशंका के कारण उसका इतना तिरस्कार कर रहे हैं। माना कि कुछ अमंगल हो भी जाए तो क्या उसके भय से इसके प्राण ले लिए जाएंगे? अगर अपराधी है तो मेरा प्रारब्ध है। इस नन्हे से बच्चे के प्रति हमारी कठोरता क्या ईश्वर को अच्छी लगती होगी? आ जाओ गुड़िया, आ जाओ।
0: उन्होंने उसे गोद में उठा लिया और उसका मुख चूमने लगे। लड़की को कदाचित पहली बार सच्चे स्नेह का ज्ञान हुआ। वो हाथ पैर उछालकर गुंगुंग करने लगी और दीपक की ओर हाथ फैलाने लगी। उसे जीवन ज्योति सी मिल गई।

0: प्रातःकाल दामोदर दत्त ने लड़की को गोद में उठा लिया और बाहर लाए।
1: अरे यहाँ क्यों ले आए, पड़ी रहने दो ना वहीं पर। ऐसी कौन सी बड़ी सुंदर है, अभागन कहीं की, रात दिन तो प्राण खाती रहती है, अब मर भी नहीं जाती कि जान छूट जाए।
2: अरे बस भी करो, मैं इसे बाहर ले जाता हूँ।
0: दामोदर दत्त उसे बाहर लाए और अपने बच्चों के साथ बैठकर खिलाने लगे। उसके मकान के सामने थोड़ी सी जमीन पड़ी हुई थी, पड़ोस के किसी आदमी की एक बकरी उसमें आकर चरा करती थी। इस समय भी वो चर रही थी। बाबू साहब ने बड़े लड़के से कहा,
2: सिद्धू सिद्धू जरा उस बकरी को पकड़ो, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, ला ला ला ला ला, लाओ तेरी बहन को दूध पिलाएंगे, शायद भूखी है बेचारी। देखो तुम्हारी नन्ही सी बहन है ना, इसे रोज हवा में खिलाया करो।
0: सिद्धू को दिल लगी हाथ आई, उसका छोटा भाई भी दौड़ा। दोनों ने घेर कर बकरी को पकड़ा और उसका कान पकड़े हुए सामने लाए। पिता ने शिशु का मुंह बकरी के थन में लगा दिया। लड़की चुबलाने लगी और एक क्षण में दूध की धार उसके मुंह में जाने लगी, मानो टिमटिमाते दीपक में तेल पड़ जाए। लड़की का मुंह खिल उठा, आज शायद पहली बार उसकी शुधा तृप्त हुई थी। वो पिता की गोद में हुमक हुमक कर खेलने लगी। लड़कों ने भी उसे खूब नचाया कुदाया।

कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी तेतर। आज आपने सुना इस कहानी का पहला भाग। पिता का प्यार, भाइयों का दुलार मिलने से नन्ही बच्ची दिन ब दिन निखरती जा रही है। आगे क्या होता है इसके लिए सुनिए इस कहानी का दूसरा भाग। इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। कहानी में भूमिका सहित पात्रों का परिचय इस प्रकार है। सूत्रधार जी श्याम, वृद्ध दादी रेणु चतुर्वेदी, दामोदर दीपक के सावलेकर, दामोदर की स्त्री स्वप्निल श्रीवास्तव, लक्ष्मी चंचल वर्मा, बाल कलाकार प्रज्वल सिंह, वेदांत सिंह और रुद्र सिंह, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, संकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी।

0: सोनाली, हमने बरखा फिल्म का ये गाना सुन लिया और उससे पहले हमने मुंशी प्रेमचंद की कहानी तेतर उसका पहला भाग भी सुन लिया। अगला भाग हम जरूर सुनेंगे अगले सोमवार के दिन, लेकिन अभी
1: अब ब्रेक लेते हैं।
0: हाँ

ब्रेक का समय पूरा हो चुका है और हम फिर से हाजिर हैं सखियों से बातचीत करने के लिए। और अब अपने विषय पर आते हैं, उससे पहले तुम कुछ कह

0: लिखना चाहती हो?
1: एक हमारे साथी ने लिखा है
0: हाँ?
1: मंजू जी कि इस समय मेरी धर्म पत्नी और मैं स्वयं डल लेक के सामने श्रीनगर के होटल के रूम में आनंद ले रहे हैं और अपने शहर अजमेर से लगभग 1,500 किलोमीटर दूर ये हमारी दीवानगी विविध भारती मुंबई के प्रोग्राम सुन रहे हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है। जो सुबह सुरीला सफर जो प्रोग्राम चल रहा था ना, तब भी हमारे इन्हीं श्रोता का फोन आया, मैसेज आया था, और उसमें भी उन्होंने कुछ इसी तरह की बात लिखी थी कि वो घूमने गए हैं और वहां पर जो नजारे हैं उसके बारे में लिखा था। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप इस तरह के अपडेट्स जो है वो हमें देते रहते हैं। और आज हमारा जो विषय है बुजुर्गों में बढ़ता हठीलापन, इसके बारे में हमारे साथियों ने बहुत सारी बातें लिखी है। पहले कुछ बात हम अपनी यानी जो हम कहना चाहते हैं वो करते हैं कि कहा जाता है कि बचपन और बुढ़ापा जीवन के दो ऐसे पड़ाव होते हैं जहां व्यक्ति को सबसे अधिक स्नेह, धैर्य और अपनापन चाहिए होता है। फर्क केवल इतना ही होता है कि बचपन की जो जिद होती है वो मासूमियत भरी होती है, लेकिन बुढ़ापे की जो जिद होती है वो कई बार हट का रूप ले लेती है। यानी बच्चों की जिद तो हमें समझ में आती है, हमें ऐसा लगता है कि हाँ बच्चे हैं जिद तो करेंगे, लेकिन वही जब बुजुर्ग व्यक्ति करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं इन्हें ये कैसे हट कर सकते हैं,
1: ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, है ना। वैसे मंजू जी आज के समय में ये शिकायत अक्सर सुनने को मिलती है कि हमारे पिताजी या माताजी बहुत जिद्दी हो गए हैं, लेकिन यदि इस व्यवहार के पीछे के कारणों को अगर समझा जाए तो पता चलता है कि उनका हट केवल स्वभाव नहीं बल्कि परिस्थितियां, अकेलापन और भावनात्मक असुरक्षा का ये परिणाम हो सकता है।
0: तो हमें इन कारणों को जानने के बारे में सोचना चाहिए या जानना चाहिए। तो हठीलापन वो स्थिति होती है जब व्यक्ति अपनी बात, अपनी आदत या अपने निर्णय पर अड़ जाता है और दूसरे के विचारों को स्वीकार करने में उसे कठिनाई महसूस होती है। बुजुर्गों में ये जो व्यवहार ये अक्सर उम्र, अनुभव, स्वास्थ्य और बदलते सामाजिक परिवेश के कारण दिखाई देते हैं। यानी कारण कोई भी हो सकता है,
1: हमें समझ कारण होते हैं।
0: हाँ, हमें समझना पड़ेगा।
1: अब जैसे बदलते समय में ये जो स्वीकारना है, इस बदलते समय में खुद को यानी उसके हिसाब से ढालने, इसमें उन्हें कठिनाई आ सकती है। और जिस समाज में उन्होंने जीवन बिताया आज वही समाज पूरी तरह बदल चुका होता है। नई तकनीक है, नई सोच है, नई जीवन शैली है और नई पारिवारिक मूल्य उनके लिए सहज नहीं होते हैं।
0: बिल्कुल। और जैसे कि इसके बारे में अगर हम एक उदाहरण दें तो हमारे घर में कोई भी बुजुर्ग हो सकते हैं, दादा दादी, नाना नानी, ससुर, कोई भी हो सकते हैं। तो वो ये चाहते हैं कि पूरा परिवार जो है वो रोज एक साथ बैठ करके भोजन करे, लेकिन होता क्या है कि आजकल जिस तरह से नौकरी लोग कर रहे हैं और उनका समय बहुत ज्यादा होता है, नौकरी का, पढ़ाई है या अलग अलग समय के कारण ऐसा संभव नहीं हो पाता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि परिवार टूट रहा है, जबकि अगर वास्तविकता की तरफ अगर हम नजर डालें तो यही कहा जा सकता है कि दिनचर्या सबकी अलग अलग है, तो परिस्थितियां कुछ बदल गई हैं, लेकिन कुछ लोगों को इन परिस्थितियों से सामंजस्य बिठाने में थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो ये भी एक कारण हो सकता है उनके हठीलेपन का।
1: पर हम एक उसमें बीच का एक रास्ता चुन सकते हैं कि भाई ठीक है, दादाजी का मन है, उनकी इच्छा है, तो हम हफ्ते में एक बार या दो बार तो हम कर ही सकते हैं।
0: हाँ, जब संभव
1: तो कर ही सकते हैं
0: जी। हाँ।
1: तो होता यूं है कि लोग खाना खाने बैठे हैं उस वक्त भी उनका ध्यान नहीं होता है कि खाने में नमक ज्यादा है या कुछ कम है या कुछ है, वो तो उस मोबाइल देखते हुए खाते हैं।
0: हाँ, और या तो टीवी देखते हुए या मोबाइल देखते हुए, जबकि पहले के समय में ऐसा नहीं होता था, पूरा परिवार साथ में बैठ करके एक दूसरे से बातचीत करते हुए भोजन करते थे, तो उसमें सुख दुख का बंटवारा भी हो जाता था। सब अपने मन की बात कहते थे, दिन भर क्या हुआ उसके बारे में एक विश्लेषण होता था। तो वो एक बहुत ही अच्छा एक तरीका था जो अभी भी होना चाहिए, लेकिन जब नहीं होता है तो कई बार बुजुर्ग लोगों को ये बात ठीक नहीं लगती है,
1: तकलीफदायक हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: और एक बात है मंजू जी कि आजकल ना सम्मान थोड़ा सा कम देने लगे हैं लोग, कि पुराने जमाने में हमारे जो दादाजी हुआ करते थे वे अपने पिताजी को या उनके दादाजी को बहुत सम्मान देते थे, उन्हें महत्व देते थे, हर काम में कोई भी बड़ा या छोटा काम करने से पहले उनकी सलाह ली जाती थी। पर आजकल हर व्यक्ति चाहता है कि जैसे ना कि खुद की जैसी इच्छा हो उसी तरह से व्यवहार करे, पर बुजुर्गों को थोड़ा सा अगर मान सम्मान दिया, उनसे पूछ परख लिया, अगर उनसे सलाह ले ली तो उन्हें भी अच्छा लगता है। फिर ऐसी बात अगर उन्हें इस तरह से उन्हें शामिल नहीं किया गया तो वे नाराज हो जाते हैं। स्वाभाविक सी बात है कि हमारे जमाने में कैसे बुजुर्ग बैठ कर आपस में पूछते थे, परखते थे, फिर कोई घर का निर्णय लेते थे। आजकल तो हमें सब काम होने के बाद में पता चलता है कि भी नया घर खरीदा जा रहा है या फिर कोई

0: शादी विवाह का मामला है या फिर कोई अन्य मामला है, बच्चों के एडमिशन की भी बात हो तो भी, अरे हमें तो पूछा भी नहीं कि एडमिशन भी हो गया, तो ये छोटी छोटी बातें ना बुजुर्गों को थोड़ी
1: चुभ
0: तकलीफदायक
1: जाती
0: हो
1: है,
0: सकती है।
1: बिल्कुल। और पहले के जमाने की तुम बात कर रही हो, तो जो बड़े लोग होते थे ना, एक बार अगर उन्होंने कह दिया कि ये होना है, यही होगा, तो हमारे जो पिताजी थे वो उनकी बात को बिना सोचे समझे मान लिया करते थे। लेकिन अब शायद थोड़ी सी परिस्थितियां बदली हैं और लोग ये सोचते हैं कि नहीं, नए जमाने या नई तकनीक या नए जो चाल चलन या जो तरीका जो है, चलन में जो तरीका है, उसके बारे में शायद बुजुर्गों को इतना पता ना हो। तकनीक बहुत कुछ बदल गई है, तो हमें क्या करना है ये हमें ही ज्यादा अच्छी तरह से मालूम है। शायद इस सोच की वजह से भी हम पूछते नहीं हैं उनसे, और ये भी एक कारण है कि ये उनके मन में कुछ इस तरह की भावनाएं पैदा करते हैं बुजुर्गों के मन में कि अरे अब हमारी तो कोई आवश्यकता ही नहीं बची, हमें तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। और फिर वो अपने महत्व को शायद ये चाहते हैं कि हमारा भी कुछ महत्व बताने के लिए भी हो सकता है, ये एक कारण कि उनमें हटीलापन आ जाए।
0: और कभी कभी रूठ भी जाते हैं वो
1: बिल्कुल, तो उन्हें मनाना ये भी हमारी
0: जिम्मेदारी
1: जिम्मेदारी
0: है।
1: होती है। गीत सुन लें यहाँ पर।
0: सुनते हैं गीत।

0: मंजू जी, हमारे एक सखी ने लिखा है, मैं इस समय बेटी के घर बर्लिन से सखी सहेली कार्यक्रम सुन रही हूँ। इस समय यहाँ 12:05 हुए हैं, इंडियन टाइम से 3.5 घंटे पीछे हैं।
1: क्या
0: कितना
1: बात
0: अच्छा
1: है।
0: लगता है ना।
1: हाँ, समय कोई भी हो, लेकिन अगर आप विविध भारती सुन रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं, तो ये हमारे लिए भी आनंद की बात है। चलिए, हमारा जो विषय है उस पर हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारी बातें लिखी। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि आज के मोबाइल और डिजिटल युग में सबसे बड़ा बुरा हाल जो है वो

0: दराज और बुजुर्गों का है, जो कभी समाज के ऊपरी पायदान पर होते थे उसे आज समाज कोई पूछता भी नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा जीवन का अनुभव उनके पास होता है और उनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पहले समाज और परिवार के सभी बड़े काम जिन वडिलों को पूछे, वडिल यानी बड़े लोगों से पूछे बिना नहीं होता था, आज उनको पूछा नहीं जाता है। तो ये गलत है, अगर आप किसी भी घर में ऐसा होता है
1: तो वो
0: तो ये
1: गलत
0: नहीं
1: है
0: होना
1: जी।
0: चाहिए।
1: एक साथ ही लिखते हैं मंजू जी कि मैं भी 75 साल का बुजुर्ग व्यक्ति हूँ, मुझमें कोई हठीलापन नहीं है, घर के सभी सदस्य मेरा बहुत ख्याल रखते हैं और मैं उन सभी की खबर ख्याल रखता हूँ। सुबह विविध भारती पर जागो, सुबह हो गई सुनते हुए व्यायाम प्राणायाम कर लेता हूँ, शाम को इवनिंग वॉक करने चला जाता हूँ। इन सभी के अलावा विविध भारती फेसबुक पेज से कई श्रोता मित्र उनसे जुड़ा हुआ हूँ मैं, और उनके लिए विविध भारती के लिए यही कहता हूँ कि तेरे पास आकर मेरा वक्त गुजर जाता है, दो घड़ी के लिए नहीं जिंदगी की हर घड़ी के लिए, गम जाने किधर चला जाता है पता ही नहीं
0: क्या
1: चलता।
0: बात है, जिंदगी के प्रति हमारा जो नजरिया होता है ना
1: जी
0: वो बहुत महत्वपूर्ण होता है।
1: सकारात्मक होना चाहिए।
0: बिल्कुल, शारीरिक अवस्था चाहे कुछ भी हो, चाहे हम जवान हो या ढलती उम्र हो या बुढ़ापा हो, लेकिन जब हमारा नजरिया सही होता है तो जो शारीरिक परिस्थितियां हैं उनमें भी कुछ तो बदलाव आ ही
1: आ
0: जाता
1: ही
0: है।
1: जाता है, यानी और है ना छोड़ देने की आदत कि ठीक है उनके हिसाब से चलो, या फिर है ना कि हर चीज को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है।
0: हमें भी ये सोचना चाहिए कि अगर हमारी उम्र इतनी बड़ी है तो परिस्थितियों में बदलाव आना स्वाभाविक बात है। उन परिस्थितियों से अगर थोड़ा सा सामंजस्य बनाने की कोशिश की जाए, अपने नजरिए को थोड़ा बदल दिया जाए कि हाँ ये बदलाव तो होगा ही, हमारे जमाने में ऐसा होता था लेकिन इस जमाने में ऐसा हो रहा है तो हमें भी इस समय के अनुसार चलना है, ये अगर सोच थोड़ी सी कर ली जाए तो भी बहुत सारी परेशानियों से हम बचे रह सकते हैं। एक हमारे साथी लिखते हैं कि बढ़ती उम्र और बुजुर्गों का हठीलापन। भाई, बढ़ती हुई उम्र एक तो वैसे ही खतरे की घंटी है, ऊपर से उनका हठीलापन, यह तो ऐसे ही हुआ जैसे सोने पे सुहागा नहीं। ये हमारा सोचना ऐसा है कि ऐसी बात नहीं है, सोने पे सुहागा वाली बात नहीं है ये। तो इन्होंने ऐसा कहा है कि हठीले लोगों से लगता है कि आप सभी का पाला पड़ा नहीं है, और इस तरह की बात लिखी है। हमारा इनसे ये कहना है कि बुजुर्गों के बारे में आप इस तरह से ये लिखना थोड़ा ठीक नहीं है, उन्हें थोड़ा आदर भाव से
1: वे
0: कहें।
1: सिर्फ
0: उनकी
1: सम्मान
0: समस्या,
1: चाहते।
0: बिल्कुल उनकी जो समस्या है उसकी तरफ हमारी नजर होनी चाहिए, और उसे कैसे दूर किया जा सकता है और उनकी समस्या को समझने का प्रयास हमें जरूर करना चाहिए। कि जैसे कई बार होता है कि उम्र के हिसाब से हमारे जो सिर के बहुत सारे अंग होते हैं वो थोड़े से मंद पड़ने लग जाते हैं, सोचने समझने की क्षमता धीरे धीरे कम होने लग
1: भूलने
0: जाती है,
1: लगते हैं।
0: भूलने लगते हैं, तो इस तरह के जो बदलाव आते हैं उससे भी ये समस्या होती। हमें ऐसा लगता है कि हठीलापन है, जबकि ऐसा वो करते नहीं हैं, बल्कि ऐसा हो जाता है कि वो अपनी एक बात से चिपक जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो हठीलापन कर रहे हैं, तो हमें इन बातों को समझना होगा।
1: एक साथ ही लिखते हैं कि बुजुर्गों की जिद से निपटने के उपाय, धैर्य से सुने, उनकी बातों को काटे नहीं, उन्हें महसूस कराए कि उनकी राय क्या में महत्वपूर्ण क्या है, सम्मान दे, उनके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाए, आदेश देने के बजाय प्यार से सुझाव दे, सक्रिय रखे, उन्हें सैर, योग या पारिवारिक गतिविधियों में शामिल करे।
0: बिल्कुल, एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि बुजुर्गों का हठीलापन कोई बीमारी नहीं बल्कि उनके जीवन के इस पड़ाव की एक पुकार है, जो अपनों का साथ और सम्मान चाहती है। उन्हें बदलने की कोशिश करने के बजाय उनके इस व्यवहार को धैर्य और प्रेम से संभालना ही एक परिपक्व समाज और परिवार की पहचान होता है। तो ये बहुत सारे श्रोताओं ने बातें लिखी है, और भी कोई बात अगर तुम्हारे पास है तो तुम पढ़ के बता सकती हो हमें।
1: जी, एक साथ ही लिखते हैं कि बढ़ती उम्र में बुजुर्गों में हठीलापन आना एक बहुत ही मुख्य समस्या है, आम समस्या है। मुख्य कारणों में बढ़ती उम्र तो है, इसके चलते मुख्य कारणों में स्वतंत्रता खो देने का डर होता है, शारीरिक या संज्ञात्मक कमी, डिमेंशिया के कारण पराधीन होने का मनोवैज्ञानिक डर बना हुआ रहता है, जिसके कारण हमें उनमें बच्चों की तरह हठीलापन का एहसास होने लगता है, खासकर जब बढ़ती उम्र में उनकी उपेक्षा होने लगती है तब उनके स्वभाव में परिवर्तन आने लगता है। इसलिए उनकी बातों को ध्यान से सुनिए, प्यार से समझाकर उनकी भावनाओं का सम्मान करें।
0: बिल्कुल, अब हम संगीत का भी सम्मान करते हैं, एक गीत सुन लेते हैं यहाँ
1: सुनते हैं
0: पर।
1: गीत।

0: ये फिल्म अगर देखी हो ना, तो इसमें जो ये गाना है ना, दादी अम्मा मान जाओ, तो दादी के जो पोते होते हैं वो किस तरह से बड़े प्यार से दादी अम्मा को मनाते हैं, तो वो वाकई में देखने लायक है।
1: और ऐसे ही अगर दादी को या दादा को मनाया जाए तो दादी या दादा रूठेंगे ही नहीं, बिल्कुल से मान जाएंगे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही प्यार और ऐसा ही सम्मान उनके प्रति होना बहुत आवश्यक है। अब कुछ खाने पीने की बातें हो जाए।
1: हाँ, आज हम
0: देखिए,
1: पश्चिम बंगाल की ओर जाने वाले हैं।
0: हाँ, जो बसंती चावल और सौंदेश की हम बात कर रहे हैं, एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि बसंती चावल पंजाब के बहुत सारे प्रांत में बसंत पंचमी के दिन बनाया जाता है, जिसमें बासमती चावल को घी में पकाते हैं और उसमें केसर, ड्राई फ्रूट और चीनी का सिरप मिलाकर बनाते हैं। और मैंने अपने पड़ोसी के घर ये खाया है और बहुत ही अच्छा लगता है। और इसी के साथ एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि सौंदेश तो खाने के लिए मिठाई की दुकानों से मिल जाता है, बंगाली सहेली के घर पर बहुत सारे हमने बंगाली व्यंजन खाए हैं।
1: एक ने सौंदेश की रेसिपी लिखकर भेजी है हमारे एक साथी ने। इसकी सामग्री और तैयारी, तो दूध 1 लीटर फुल क्रीम दूध लेना है, चीनी 3 से 4 बड़े चम्मच लेना है, इलायची पाउडर छोटा आधा चम्मच और नींबू का रस या सिरका 2 बड़े चम्मच दूध को फाड़ने के लिए।
0: बिल्कुल।
1: बनाने के लिए छेना बनाए, दूध को उबाले, फिर गैस बंद कर दे और नींबू के रस या सिरके में थोड़ा सा पानी मिलाकर धीरे धीरे दूध में डाले ताकि वे आराम से फट जाए। अब पानी निकाल ले। अब फटे हुए दूध को सूती कपड़े में छान ले और साफ पानी से धोकर अतिरिक्त पानी निकालकर उसे निचोड़ ले। अब उसको अच्छे से मैश करना है, उसको मसलना है। छेने को प्लेट में निकालकर हथेलियों से 7 से 8 मिनट तक चिकना होने तक मस ले। अब इसको पकाना है। इसमें अब पकाने के लिए इसमें पीसी चीनी डालना है मसलने के बाद में, और इलायची पाउडर मिलाए और मिश्रण को पैन में धीमी आंच तक 3 से 4 मिनट तक नरम होने तक पकाए और ठंडा करें, और इसे आकार देना है। हाथों में घी लगाकर मिश्रण की छोटी छोटी लोइयां बनाएं और मनचाहा आकार देकर पिस्ता से या फिर काजू या फिर बादाम से सजा दे।
0: बिल्कुल सही बात तुमने कही है कि किस तरह से सजाया जाए। लेकिन सोनाली, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि पहले के जमाने में चाहे कोई त्योहार आए या कोई पर्व हो, कोई उत्सव हो, तो घर में ही सारी मिठाइयाँ बनती
1: बनाई
0: थी।
1: जाती थी।
0: हाँ, और वो बड़ी स्वादिष्ट भी लगती थी और कई कई दिनों तक

0: मुंह से खाते थे। स्वाद मुंह से जाता ही नहीं था। लेकिन आजकल हम क्या करते हैं कि बनाने का समय ही नहीं है तो बस बाजार से ले आओ और खा लो
1: और फ्रिज में रख दो।
0: हाँ, फ्रिज में रख दो। तो इसकी बजाय हम कभी कभी ये बनाने की अगर कोशिश करें तो बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि घर की बनी हुई जो मिठाइयां होती है उसका स्वाद एकदम अलग होता है और शुद्धता की भी तो बात है ना। हमें पता है कि हमने कौन कौन सी सामग्री इसके अंदर मिलाई है, किस तरह से बनाया है। और अगर घर में बनता रहेगा तो ये जो रेसिपी है ना, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये ट्रांसफर होती रहेगी। अन्यथा अगर आगे हम नहीं बनाएंगे तो आगे वाली पीढ़ी को तो पता ही नहीं चलेगा कि इन पर्वों पर, इन उत्सवों पर क्या बनता था हमारे घर में और कैसे बनाया जाता है। तो ये भी एक बात है ना।
1: और जब हम घर में बनाते हैं तो अच्छे हाइजीन का ध्यान रखते हैं।
0: हाँ,
1: साफ हाथ धोकर फिर हम ढक कर रखते हैं, उसमें कुछ कीड़ा ना लग जाए, इसलिए हम कितना ध्यान रखते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये ध्यान रख के बनाना बहुत जरूरी है।
0: हाँ, और पहले के जमाने में तो मैंने ये भी देखा है कि जब ये ऐसे पर्व उत्सव आते थे तो अपने घर में क्या बना है एक प्लेट भर के हम अपने पड़ोसियों के और रिश्तेदारों के घर भी देने के लिए जाते थे और वहां से भी प्लेट भर के आता था। तो हमें ये पता चलता था कि वहां क्या बनता है और उनकी उसी जो मिठाई है उसका स्वाद वहां का कैसा है। अगर हमें ऐसा लगता था कि नहीं ये हमारे स्वाद से ज्यादा अच्छा है तो हम कोशिश करते थे कि
1: वैसा
0: बनाया जाए।
1: यानी संस्कृतियों का भी आदान प्रदान पहले हुआ करता था,
0: होता था। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि घर में इस तरह की रेसिपी बनाना चाहिए हमें। चलिए, बसंती पुलाव किस तरह से बनाया जाए हमारे श्रोता ने ये बात लिख करके भेजी है। तो बसंती पुलाव एक पीले सुनहरे रंग का सुगंधित मीठा सा चावल का व्यंजन है। बसंती नाम इसके सुंदर पीले रंग से जुड़ा है। इसे विशेष अवसरों, पूजा और पारिवारिक समारोहों में बनाया जाता है। मुख्य विशेषताएं उन्होंने लिखी कि आमतौर पर सुगंधित चावल का इस्तेमाल किया जाता है। घी, हल्दी या केसर से इसका आकर्षक रंग और खुशबू आती है। इसमें किशमिश और काजू जैसे मेवे डाले जा सकते हैं। इलायची, दालचीनी, तेजपत्ता आदि मसाले इसकी सुगंध बढ़ाते हैं और बंगाली भोजन में इसे अक्सर आलू की या दम या अन्य सब्जियों के साथ परोसा जाता है। और बसंती पुलाव की खासियत यह है कि इसमें मीठे और मसालेदार स्वाद का एक सुंदर संतुलन मिलता है। ये बात इन्होंने लिख करके भेजी है। और अगर इसकी रेसिपी भी हमारे साथियों ने लिख करके भेजी है तो वो भी हमें बताना चाहिए
1: कितना उसमें, यानी 2 कटोरी चावल है तो उसमें कितना तेल लेना है, फिर कौन से खड़े मसाले का इस्तेमाल किया जाता है, पानी कितना डालना है, इस तरह से भी अगर लिख के भेजे ना तो अन्य श्रोता जो घर में सुन रहे हैं उन्हें भी और भी सहूलियत होगी बनाने
0: बिल्कुल।
1: में।
0: और यहाँ एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि जैसे हमारे इन व्यंजनों की इन्होंने बात की कि इसमें गर्म मसाले भी मिलाए जाते हैं और मीठा भी स्वाद आता है, तो जो गर्म मसाले एक संतुलित मात्रा में मिलाए जाते हैं वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बड़े हितकर होते हैं। तो पहले के जमाने के जो भी मीठे व्यंजन, चाहे कोई भी और व्यंजन हो, तो उनमें स्वाद के साथ सेहत का भी पूरा खजाना छिपा हुआ था। तो ये इसलिए भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि घर में बनाएंगे तो हम इन बातों का भी ख्याल रखेंगे।
1: और है ना, घर में मंजू जी जो बनाए जाते हैं ना मौसम के हिसाब से बनाए जाते हैं कि जैसे सर्दियों में गोंद के लड्डू सबके घर में बनते ही बनते थे उस जमाने में, फिर अभी बारिश का मौसम आएगा तो अभी मकई आ रही तो मकई के व्यंजन बनते ही थे, क्योंकि हम साल भर उस वक्त सब चीजें नहीं मिलती थी।
0: बिल्कुल, तो इन बातों का ख्याल रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलो गीत सुनते हैं।
1: सुनते हैं।

0: सुना ली, इस गाने में जो एक शब्द है ना, धीरे से तेरा ये मुस्काना, बड़ा प्यारा लगता है। घर में भी जब कोई अच्छी सी कोई मिठाई मम्मी दादी नानी के हाथ से बनती है और वो हमें पसंद हो, तो धीरे से एक मुस्कुराहट हमारे भी चेहरे पर आती है ना।
1: और वो खुशबू है ना, वो
0: हाँ
1: खुशबू से ही हमारे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है।
0: बिल्कुल,
1: खाने के पहले, चखने के पहले ही उस खुशबू से जो घर में इतनी खूबसूरत महक आ जाती है ना,
0: हाँ
1: कि हमें ऐसा लगता है अरे वाह, आज तो कुछ अच्छा खाने को मिलेगा हमें।
0: बिल्कुल।
1: और एक हमारी सखी ने भी लिखा है कि हम जो संदेश है वो हम गुड़ का हमारी सहेली बनाती है,
0: अच्छा
1: तो आजकल जो हेल्दी ऑप्शन लोग चुन रहे हैं कि शक्कर के बजाय गुड़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी बहुत अच्छी बात है। उसमें स्वाद भी बहुत अच्छा होता है और सेहत का भी ध्यान रख सकते हैं।
0: बिल्कुल। और कहते हैं कि रसोई घर तो एक प्रयोगशाला होती है, जितने प्रयोग करेंगे उतनी नई नई बातें हमें पता चलेगी। चलिए, अब एक बात हमें ये पता चल गई कि कार्यक्रम का समय पूरा हो चुका है, तो अब हमें सखियों सखाओं से आज्ञा लेनी होगी। तो आज्ञा दीजिए आप सभी को मंजू द्विवेदी
1: और सोनाली पाठक का
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। राज्य में कथित भर्ती परीक्षा अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन आज 17वें दिन भी जारी है। बड़ी संख्या में छात्र विधानसभा की ओर मार्च कर रहे हैं, जबकि पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। परीक्षा विवाद को लेकर विधानसभा की ओर मार्च कर रहे आंदोलित छात्रों और पुलिस के बीच आज हल्की झड़प हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों को नियंत्रित करने के प्रयास में दो छात्र और एक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विधानसभा ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 8,399 करोड़ रुपए से अधिक के पहले अनुपूरक बजट को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी है। इसमें सर्वाधिक राशि ग्रामीण विकास विभाग को दी गई है। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। भाजपा महानगर इकाई द्वारा आज राजधानी रांची में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता

0: दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस देश प्रेम यात्रा में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू मुख्य रूप से शामिल हुए। साहिबगंज के उपायुक्त दीपक कुमार दुबे ने जिले के दुर्गम क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी सुधारने के लिए दूर संचार समिति की बैठक की। उन्होंने पलाशगाछी और दुर्गा टोला जैसे नेटवर्क विहीन दियारा एवं पहाड़ी गांवों में मोबाइल टावर स्थापित करने और ग्रामीण आबादी को बेहतर संचार सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश BSNL को दिया। सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर आज पूरे राज्य के शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा है। देवघर के प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम में लाखों श्रद्धालु कतारबद्ध होकर पवित्र ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक कर रहे हैं। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 5 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: इसका काम क्या है?
2: अगर आपको मैं सिंपल शब्दों में समझाना चाहूंगा तो एंडोक्राइन डिपार्टमेंट या एंडोक्राइन जो ब्रांच है हार्मोन से डील करती है
1: जी।
2: और हार्मोन्स एक तरह से एक पदार्थ है जो आपके शरीर में है जो बहुत सारी ग्लैंड्स इसको सिक्रीट करती है और ये बहुत ही कम मात्रा में होते हैं लेकिन इसका असर बहुत ही सीरियस होता है। चाहे वो कम हो जाए तो भी उसका असर बहुत सिग्निफिकेंट होता है और वो जरूरत से ज़्यादा हो जाए तो भी उसका असर काफ़ी गंभीर होता है। तो एक तरह से एक बैलेंस होना चाहिए हार्मोन के लेवल में। अगर हार्मोन्स के लेवल का बैलेंस खराब हो गया तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होंगे और ये बहुत सारे हार्मोन्स है बॉडी के अंदर और नए नए और निकलते जा रहे हैं जैसे जैसे रिसर्च हो रहा है साइंस प्रोग्रेस कर रहा है वैसे वैसे।
1: महिलाओं में ये समस्या आमतौर पर ज़्यादा देखी जाती है।
2: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि हमारी जो डिसऑर्डर्स है एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है वो महिलाओं में अगर मैं बोलूंगा तो 70% महिलाएं और 30% मेल इसमें अफेक्ट होते हैं। तो जो हमारे वार्ड में एडमिशंस होते हैं उसमें भी फीमेल पेशेंट्स ज्यादा होते हैं कंपेयर टू मेल पेशेंट्स के।
1: जी डॉक्टर साहब, स्टूडियो में आने से पहले जब मैं आपसे कुछ बातें कर रहा था तो आपने कुछ दिलचस्प बिंदु उठाए थे अपने अनुभव के और उसमें हार्मोन्स के जरिए हड्डियों पर होने वाले असर की आपने बातें की तो हम सब इसे सुनकर चौंक गए। तो मुझे लग रहा है कि क्यों ना इस कार्यक्रम में वो बातें आप बताएं कि ये कितना महत्वपूर्ण है। हार्मोन्स आपकी हड्डियों पर सीधे असर करते हैं।
2: बहुत ही अच्छा सवाल है और इस सवाल का जवाब देने में मुझे बहुत मजा आएगा
1: जी,
2: क्योंकि ये जो एरिया आपने चूज किया या अपन ने जो चूज किया कि कैसे बोन्स हार्मोन्स को अफेक्ट करती है तो इसके बारे में जो जानकारी, तो सबसे पहले मैं इसमें आपसे और हमारे विविध भारती के पूरे हिंदुस्तान के सुनने वाले श्रोताओं को ये बताना चाहता हूँ कि बोन डिसऑर्डर्स हार्मोन्स के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं। और सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे महिलाओं में महीना बंद हो जाता है जिसको हम मीनोपॉज बोलते हैं या महावारी का बंद होना बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो हार्मोन्स बनता है उसका नाम होता है एस्ट्रोजन। वो एस्ट्रोजन का हार्मोन का लेवल एकदम कम आने लग जाता है और उसकी वजह से जो कॉमन सिम्टम्स तो महिलाओं में होता ही है कि जैसे चेहरे पे पसीना आना है, घबराहट होना है, मन उदास होना है, ये सारे सिम्टम्स उस टाइम पे होते हैं। इस्ट्रोजन हार्मोन का इफेक्ट बोन्स पे भी बहुत होता है। तो अगर वो हार्मोन का जो एक पर्टिकुलर लेवल चल रहा है अचानक हार्मोन्स लेवल गिर जाता तो उससे बोन्स वीक होना शुरू हो जाती है और उससे जो प्रॉब्लम होती है उसको हम बोलते हैं पोस्ट मीनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये बहुत ही कॉमन बीमारी है और ऑलमोस्ट 30-40% 50% महिलाओं को होता है और वो पीरियड बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जबकि उस टाइम में उसको इंटरवीन करके उनकी बोन हेल्थ को अपन अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं।
1: क्या ये मुमकिन है कि इस तरह के मरीज पहले ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स के पास जाएं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि उनकी समस्या की जड़ क्या है और चीजें दूसरी दिशा में चली जाएं?
2: बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा और उसका एक रीजन है कि आम पब्लिक को एंडोक्राइन डिपार्टमेंट की बारे में ज़्यादा पता नहीं है और ज़्यादा पता है तो उनको यही जानते हैं कि एंडोक्राइनोलॉजिस्ट मतलब है कि वो डायबिटीज़ को देखता है, थायराइड डिसऑर्डर्स को देखता है या मोटापे को देखता है। तो ये एक तीन डिसऑर्डर्स के लिए उनको पता है कि ये एंडोक्राइनोलॉजिस्ट देखते हैं लेकिन हमारी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं जो आपकी बोन्स की देख रेख करते हैं। उसमें जैसे एक हार्मोन का नाम होता है पैराथायरॉयड हार्मोन, एक होता है विटामिन डी, एक होता है और भी कुछ कुछ हार्मोन्स होते हैं वो तो मैं यहाँ पे बताने का फायदा नहीं, पर ये दो इम्पोर्टेंट हार्मोन होते हैं और इन दोनों इम्पोर्टेंट हार्मोन के बारे में जिनका कैसे बनता है ये कैसे काम करता है इसका जो अंडरस्टैंडिंग है वो उसके अंडरस्टैंड

जो पढ़ाई जाती है, समझी जाती है, वो एंडोक्राइन डिपार्टमेंट वालों के थ्रू होती है। तो अगर इससे कोई बीमारी होती है तो अगर आप एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का कंसल्ट करेंगे तो वो बीमारी जल्दी से पता चल सकती है और जल्दी से उसका इलाज हो सकता है, उसका आउटपुट बहुत अच्छा हो सकता है। पर आम पब्लिक को ये पता है कि

0: 4 साल के या जन्म के तुरंत बाद उनको मल्टीपल फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो इस तरह के फ्रैक्चर्स डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं हॉर्मोन्स के इन्वॉल्वमेंट की वजह से, तो उसका अगर टाइम पे पता चले तो उसका बहुत अच्छा इलाज हो सकता है। ऐसे एक दूसरा डिसऑर्डर्स होता है पैराथायराइड ग्लैंड की वजह से, जब हार्मोन ज़्यादा बन जाता है तो उसकी वजह से आपके शरीर के अंदर कैल्शियम ज़्यादा बनता है, आपको रीनल स्टोन्स हो जाते हैं, आपको बार बार पथरी बनती है और आप बार बार डॉक्टर के पास जाते हैं, इलाज करवाते हैं, पथरी का ऑपरेशन करके निकलवाते हैं, पर आप उसकी जड़ में नहीं पहुँच रहे। और उसकी जड़ में नहीं पहुँचने की वजह से कि आपका बीमारी ठीक नहीं हो रहा है, उसका सही इलाज नहीं हो रहा, तो आपको प्रॉब्लम चलता ही रहता है और अल्टीमेटली इसकी वजह से किडनी खराब हो जाती है, आपको किडनी डिजीज होता है, किडनी फेलियर हो जाता है। तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आपको, जैसे मैंने एक और चीज बता दी एक तरह से, कि आपको बार बार पथरी बन रही तो आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए। ये एक
1: यहां
0: दूसरा
1: मुझे
0: ही
1: एक कंफ्यूजन हो रहा है, और वो ये हो रहा है कि अब जैसे आपने कहा कि हड्डियों की समस्याएं हैं, तो अब अमूमन क्या होता है कि हड्डियों के डॉक्टर के पास व्यक्ति जाता है, तो कैसी परिस्थितियों में व्यक्ति को ये समझना चाहिए कि ये पथरी की समस्या है तो मुझे किडनी स्टोन के डॉक्टर के पास नहीं जानी है, ये हड्डियों की समस्या है तो मुझे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास नहीं जाना है, ये यूरोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना है, ये डिसाइड कैसे होगा?
0: तो मैं सबसे पहले ही आपको बोलता हूँ, अपन एक ही क्वेश्चन में तीन चार आंसर पूछे हैं तो वन बाय वन लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको हड्डी के फ्रैक्चर के बारे में।
1: जी,
0: तो मैं ये बोलूँगा कि कोई भी फ्रैक्चर जो कि ट्रोमा की वजह से हुआ है, जैसे रोड साइड एक्सीडेंट हो गया, जैसे और किसी वजह से चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया, तो उसका बेस्ट डॉक्टर है ऑर्थोपेडिक सर्जन। वो
1: जो
0: उसके
1: टूट फूट हुई है।
0: टूट फूट हुई उसके लिए जाना, क्योंकि उनका डिपार्टमेंट का नाम ही हड्डी जोड़ तोड़ विभाग है
1: अच्छा
0: ना, तो उनके पास जाना है। लेकिन सपोज आप बाथरूम में स्लिप कर गए,
1: जी
0: फ्रैक्चर हो गया, या हल्का धक्का लग गया, फ्रैक्चर हो गया, दो सीढ़ी स्किप हो गए, गिर गए, फ्रैक्चर हो गया, या अपने आप फ्रैक्चर हो गया, इन सब के लिए आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो अगर फ्रैक्चर एक्सटेंसिव ट्रॉमा की वजह से हुआ तो आपको जाना है ऑर्थोपेडिक्स के पास, पर जो माइनर ट्रॉमा से फ्रैक्चर हो रहा है, अपने आप हो रहा है, फैमिली में फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, उसके लिए आपको जाना है एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास।
1: बिल्कुल साफ कर दिया आपने
0: बिल्कुल।
1: इस मामले को।
0: अब उसके बाद दूसरी बात जो आती है कि आपने पूछा पथरी के बारे में,
1: जी
0: तो पथरी क्या होता है कि आम तौर पे पथरी 2-4% लोगों को पानी कम पीने की वजह से बन जाती है, पर अगर पथरी बार बार बन रही है, अगर जिंदगी में किसी को पथरी एक बार बन गई ठीक है वो बन सकती है, लेकिन आपको बार बार पथरी बन रही, बार बार दर्द हो रहा है, इमरजेंसी जाना पड़ रहा है, या आपके यूरोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, वो आपको ऑपरेशन करके पथरी निकाल रहे हैं, 3 साल बाद फिर पथरी बन गया, इस तरह का तो प्रॉब्लम हो रहा है, इसका मतलब है कि वो यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं, क्योंकि उसका इलाज लेना हो सकता है, लेकिन उसको क्यों बन रहा है उसका कारण जानने के लिए आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा।
1: जी, मेनोपॉज की बात चल रही थी और आपने कहा कि कुछ खास लक्षण होते हैं जिनसे हर महिला को उस समय गुजरना पड़ता है, अचानक वजन बढ़ जाना, वाटर रिटेंशन, है ना, ये तमाम चीजें हैं, तो क्या ऐसे समय में ये दौर अपने आप निकल जाता है या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट की मदद लेनी जरूरी होती है?
0: इसका आंसर ऐसा हो सकता है कि बहुत बार जो ये सिम्टम्स होते हैं सभी महिलाओं को एक जैसे नहीं होते हैं,
1: जी
0: कुछ महिलाओं को पता भी नहीं चलता कि उनका मेनोपॉज हुआ और निकल गया, तो उनको लिए कुछ करने का जरूरत नहीं है, बट उनके लिए करना है कि अच्छा एक्सरसाइज करना चाहिए। अक्सर अमूमन ये होता है कि हमारे घर परिवार में माताएं बहनें अपने आप को इग्नोर करती है अपनी हेल्थ को, और घर के सब लोगों के हेल्थ का ध्यान रखती है कि उन्होंने खाना खाया कि नहीं खाया, बेटे ने खाना खाया कि नहीं खाया, पोते ने दूध पिया कि नहीं पिया, लेकिन वो अपने दूध पीने का ध्यान नहीं रखती है, अपना दही खाने का ध्यान नहीं रखती है, अपनी एक्सरसाइज नहीं करती, वो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अगर बिना किसी सिम्टम के लिए निकल जाए तो कुछ नहीं करना, अपना एक्सरसाइज चालू रखो, अपना कैल्शियम विटामिन डी का डाइट अच्छा रहो और वजन नहीं बढ़ने दो। लेकिन कुछ लोगों को बहुत मूड स्विंग होता है, अचानक पसीना आ जाता है, घबराहट होता है
1: जी
0: और ऐसा लगता है कुछ हो जाएगा, इस तरह के जो सिम्टम्स होते हैं वो इस्ट्रोजन हार्मोन की डेफिशिएंसी से होते हैं, तो इस तरह के लोगों को आपको कंसल्ट करना चाहिए विदाउट टाइम वेस्टिंग। जैसे हम हमारे मैं एक इंस्टीट्यूट में काम करता हूँ, तो हमारे जो रेसिडेंट्स आते हैं उनको पढ़ाने के लिए जब बात चलती है तो किसी महिलाओं की हिस्ट्री लेनी होती है, तो मैं उनको पहला एक सवाल पूछता हूँ कि उनको उनके महीने के बारे में आप जरूर पूछें कि माहवारी कैसी चल रही है। माहवारी ठीक चल रही है तो उनको कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं होने का चांस है, इसलिए हम बोलते हैं कि वुमेन्स के अंदर माहवारी रेगुलर होना एक बैरोमीटर ऑफ हेल्थ है, अगर आपकी माहवारी ठीक चल रही है तो आपका हेल्थ बिल्कुल ठीक है। और हमने ऐसा देखा भी हमारे घर परिवार में, बचपन में

0: मम्मी कहती थी कि अरे महीना, एक महीना भी चूक गया तो आगे लग गया तो घर वालों को टेंशन रहता है, ये क्यों हो रहा है, होना नहीं चाहिए। तो सेम चीज है यहाँ पे भी, वो हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, उस हिस्ट्री से बहुत सारी डिजीज आपको पता चल सकती है। अगर किसी का महीना गड़बड़ हो रहा है तो एंडोक्राइन डिसऑर्डर से बहुत कॉमन होता है,
1: तो डॉक्टर के पास तुरंत जाना
0: बिल्कुल
1: चाहिए।
0: जाना चाहिए और बताना चाहिए ये। और बहुत सारी चीजें शक्ल देख के डायग्नोज कर सकते हैं हम,
1: तो इस बारे में बात करेंगे कि शक्ल देख के आप कैसे डायग्नोस
0: बिल्कुल
1: करते हैं,
0: बिल्कुल
1: बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि आप कहीं नहीं जाइएगा,
0: बिल्कुल।
1: पहले डॉक्टर साहब से एक गाने की फरमाइश करते हैं, उसके बाद शक्ल देख के कैसे आप मरीज पहचानते हैं ये बात होगी।
0: हाँ, तो हम इसमें माताओं बहनों की बात कर रहे हैं, तो एक अच्छा फेमस गाना है, फूलों का तारों का सबका कहना है मेरी एक बहना है,
1: क्या
0: तो
1: बात
0: उसके
1: है,
0: बारे
1: हरे
0: में बात
1: रामा
0: करें।
1: हरे कृष्णा
0: हरे
1: फिल्म का
0: रामा,
1: ये गीत आनंद बख्शी की बोल, आर डी बर्मन की तर्ज, सुनते
0: बिल्कुल
1: हैं ये गाना।

0: पहना है।
1: डॉक्टर साहब, ये तो बहन को समर्पित गाना, और आप इस गाने से पहले कह रहे थे कि आप चेहरा देखकर मर्ज भांप लेते हैं, ये तो बड़ी चमत्कारिक बात
2: और
1: है।
2: बहुत ही अच्छा सवाल है। एक्चुअली मैं जब उदयपुर मेडिकल कॉलेज में ग्रेजुएट था तो हमारे प्रिंसिपल होते थे डॉक्टर सूरवीर सिंह,
1: जी जी
2: तो उनके बारे में ये फेमस था कि वो इतने बड़े डॉक्टर हैं, इतने अच्छे डॉक्टर, कि जब मरीज उनके कमरे में घुसता तभी बीमारी बता देते।
1: अरे गजब।
2: तो अब वो
1: ऑब्जर्वेशन
2: ऑब्जर्वेशन उस टाइम हमारा इतना अंडरस्टैंडिंग नहीं था कि ये कैसे बता देते बीमारी। लेकिन जब मैं एंडोक्रिनोलॉजी के अंदर मेरा सुपर स्पेशलाइजेशन किया तो मुझे पता चलता है कि हाँ, कुछ ऐसी बीमारियां हमारी है जो हम बता सकते हैं कि ये मरीज अंदर घुस रहा है, इसको ये बीमारी होने की संभावना है। मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि हम 100% बता देंगे, ऐसा नहीं, लेकिन 80% 90% बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पर्सन को ये बीमारी होने की ज्यादा संभावना है, इसको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे।
1: जी जी
2: जैसे अभी आपने एक दो बीमारियां होती है कि

0: ऑस्टियोपोरोसिस का एग्जाम्पल देता हूँ, बोन की बात कर रहे हैं। तो अगर कोई पर्सन जिसको कोई फ्रैक्चर नहीं हुआ, कोई हिस्ट्री नहीं है ट्रॉमा की, और वो ऐसे झुक के चलने लग जाए, आगे झुक करके चलने लग जाए,
1: जी
0: तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका स्पाइन का हाइट कम हो गया।
1: अच्छा
0: उसका स्पाइन का हाइट कम होने की वजह से वो आगे झुक गया। तो ये बीमारी क्या है? ऑस्टियोपोरोसिस है। और
1: जी
0: आपने बहुत बार देखा होगा अपने आस पड़ोस में महिलाएं बहुत झुक जाती है। हम जनरली ये समझते हैं तो उम्र के हिसाब से हो गया, ये कोई बीमारी नहीं है, बट वो एक्चुअली ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी की वजह से हो गया। अगर
1: जी
0: उनका टाइम पे इंटरवेंशन किया जाए तो वो ऐसे नहीं झुकेंगे।
1: जी
0: तो
1: कई बुजुर्गों को दिखाई कि उनकी कमर दोहरी हो जाती है, और ये
0: बिल्कुल
1: पुराने जमाने में
0: ज्यादा होता
1: ज्यादा
0: था।
1: देखा जाता था।
0: और दूसरा बीमारी होता है हमारे जो एड्रिनल ग्लैंड होती है, जो किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होती है, वो एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम होता है कॉर्टिसोल।
1: जी
0: तो वो हार्मोन जब ज्यादा बनता है तो शरीर भारी हो जाता है, चेहरा लाल हो जाता है, गोल हो जाता है, और कहीं भी छोट हल्का चोट लगी तो निशान बनने लग जाते हैं, नील पड़ जाती है। ये सारी बीमारियां आप बहुत बार शक्ल देख के बता सकते हैं इस पर्सन को ये बीमारी है।
1: कॉर्टिसोल तो हार्मोन ऑफ हैप्पीनेस है ना।
0: ये बिल्कुल कॉर्टिसोल स्ट्रेस का हार्मोन है, कि
1: जी
0: अगर
1: जी
0: आपका जब भी स्ट्रेस होगा तो ये बढ़ जाएगा।
1: हाँ, तो वो
0: ये
1: कम हो तब हैप्पी है आदमी।
0: हाँ, वो उसका ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए। जैसे
1: जी
0: कि मैं इसको लाइन को शायद मैं बार बार जब भी अपना डिस्कशनों को बोलूंगा कि हमारे सारे हार्मोन के लेवल ऑप्टिमम होने चाहिए। अगर आप बढ़ गया तो भी खतरनाक है। कॉर्टिसोल कम हो गया आपका ब्लड प्रेशर चला जाएगा।
1: ओके ओके
0: हाँ, तो इसीलिए हर चीज बैलेंस में चलती है। इसलिए एंडोक्राइनोलॉजी को हम बोलते हैं ब्रांच ऑफ डिसिप्लिन।
1: क्या
0: सब
1: बात
0: चीज
1: है,
0: वैसे रहना चाहिए,
1: अनुशासित एकदम।
0: अनुशासित। जैसे डायबिटीज भी एक ऐसा बीमारी जिसमें अनुशासन रहना चाहिए।
1: हाँ
0: अगर आप
1: एकदम,
0: अपना खाना ठीक से नहीं करेंगे, आप अपना एक्सरसाइज ठीक से नहीं करेंगे, दवाई ठीक से नहीं लेंगे, तो आपको बहुत मुश्किल होने वाली है। लेकिन अगर आप ये तीन चीजों को प्रॉपर करेंगे तो आप जितना जी सकते हैं उतना जिएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
1: और चेहरा देख के कौन कौन सी चीजें समझ में आ जाती हैं?
0: और चेहरा देखने से, जैसे कि हॉर्मोन्स होते हैं, जिन हॉर्मोन्स को मेल हॉर्मोन्स और फीमेल हॉर्मोन्स बोलते हैं,
1: जी
0: तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि महिलाओं के अंदर फेशियल हेयर नहीं होंगे।
1: जी
0: पर अगर महिलाओं में फेशियल हेयर आना शुरू हो गए तो इसका मतलब उनको ये पर्टिकुलर जो मेल हार्मोन्स का लेवल बढ़ गया है। तो वो मेल हार्मोन्स लेवल बढ़ने के मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं। वो कितना सीवियरिटी है, जैसे बहुत सारी महिलाओं में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव फेशियल हेयर आ जाते हैं, तो इसका मतलब वो कोई ट्यूमर हो सकता है जो कि ये हार्मोन ज़्यादा बना रहा है,
1: ओके
0: तो वो पता कर सकते हैं। फिर उसके बाद में कि कोई पुरुष है उसके चेहरे पे बाल नहीं है, तो वो इसका मतलब उसके अंदर मेल हार्मोन है वो नहीं है, उसकी वजह से चेहरे पे बाल नहीं आ रहे हैं, तो वो हम बीमारी बता सकते हैं, कह सकते हैं कि इसको ये हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की डेफिशिएंसी। फिर एक हार्मोन होता है जिसको हम ग्रोथ हार्मोन बोलते हैं, वो आपकी
1: जी
0: ग्रोथ को रेगुलेट करता है। अगर ग्रोथ हार्मोन एक्सेस हो जाए तो बंदा
1: 6 फुट के
0: सवा
1: ऊपर।
0: छः नहीं 7 फीट का हो सकता है, और चेहरा बड़ा हो जाएगा, हाथ बड़े हो जाएंगे। जैसे
1: अच्छा
0: आपने WWF में कुछ लोगों को देखा होगा, मैं नाम नहीं
1: जी
0: लेना चाहता हूँ, बट वो जैसे बहुत बड़े हो
1: हाँ
0: जाते हैं, हेल्थ लंबा चौड़ा, तो वो उनको बेसिकली एक तरह से वो ग्रोथ हार्मोन का एक बीमारी है, वो ज़्यादा है, उसकी वजह से वो ज़्यादा बढ़ गए हैं।
1: क्या बात। मध्य प्रदेश में एक पुलिस के व्यक्ति हुआ करते थे जो
0: हाँ,
1: एशिया के सबसे
0: वो
1: लंबे।
0: पंजाब में भी कुछ है, वो
1: जी
0: भी है। और दूसरा उसका उल्टा है, अगर आप वो हार्मोन नहीं बना आपको तो आपका हाइट कम रह जाएगा। तो इसलिए फिर मैं बोल रहा हूँ हार्मोन ऑप्टिमम इज रिक्वायर्ड टू हैव ए नॉर्मल। अगर कम है ग्रोथ हार्मोन तो आपका लंबाई नहीं बढ़ेगा, अगर ज़्यादा हो गया तो आपका बहुत लंबाई बढ़ जाएगा, वो भी ठीक नहीं। तो ये हर हार्मोन जैसे ज़्यादा है तो अलग प्रॉब्लम करता है, कम है तो अलग प्रॉब्लम करता है, और नॉर्मल है तो ठीक रहता है। तो आप बहुत सारी चीज़ें इसलिए देख के पहचान सकते हैं कि इसको क्या पॉसिबिलिटी है बीमारी होने की।
1: बिल्कुल, बड़ी दिलचस्प बात आपने बताई है। और यहाँ एक चीज जो हड्डियों से जुड़ी बातें हो रही हैं, हड्डियों और हार्मोन्स के रिलेशन की बातें, तो कुछ केसेस जो आपने देखे हैं जिनके जरिए हमारे सुनने वालों को मदद मिलेगी कि ये क्या सिम्टम्स थे और इनका क्या उपाय हुआ।
0: तो ऐसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और
1: जी
0: उदयपुर मेडिकल कॉलेज से मेरी अपनी पढ़ाई करी। तो जब मैं एक किसी कॉन्फ्रेंस में वहाँ पे गया तो मेरे टीचर थे डॉक्टर DC शर्मा साहब, तो उन्होंने कोई पेशेंट उनके पास गया तो उनको समझ नहीं आया, उन्होंने बोला कि यहाँ पे फैसिलिटी नहीं कि हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते। तो संजय तुम अगर ठीक समझते हो तो इसको वहाँ भेज देता हूँ। वो वहाँ पे आ गए पेशेंट। जब उन पेशेंट का हमने हिस्ट्री लेना शुरू किया तो पता कि मैं पूरे सब जगह में गया हूँ, दिल्ली बॉम्बे सब जगह, पर कोई बीमारी का ठीक से पता नहीं चला। तो फिर वो पेशेंट हमारे पास आ गया, वो जब आया था स्ट्रेचर पे आया था, हमने उसको एडमिट करा और उसको हम धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन शुरू करें कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। हम 1-1.5 महीने में उसका बीमारी का हम पता लगाए कि ये बीमारी है, और दुनिया में उस बीमारी केवल उस टाइम में 25 केसेस थे केवल पूरी दुनिया के अंदर,
1: इतनी दुर्लभ।
0: इतनी दुर्लभ। अब दुर्लभ बीमारी है तो उसका बारे में ज्यादा पता नहीं है, दुर्लभ बीमारी उसका इलाज भी नहीं है, तो
1: जी
0: इलाज कैसे किया जाए?
1: जी
0: तो हमने उसको स्टडी करके एक प्लान किया कि भाई ये दवाई कोशिश करना चाहिए, और भगवान की दया से, गॉड्स ग्रेस, वो बीमारी के अंदर वो दवाई लग गई और चल गई, और वो पेशेंट हमारे पास से लेट के आया था और चल के गया। फिर उसका छोटा भाई भी आया, उसको भी यही बीमारी थी, वो भी ऐसे ही चल के गया। और उसके जब हिस्ट्री पूछा तो उसकी मदर, उसकी मामी, मामा जी, उनको भी ये बीमारी थी। तो एक तरह से एक काइंड ऑफ जेनेटिक हो सकता है या एक एनवायरमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो पेशेंट को हमने ग्रोथ हार्मोन से ट्रीट किया और वो बिल्कुल ठीक होके गए।
1: महिलाओं में इस तरह के कुछ केसेस जिनका जिक्र आप करना चाहें?
0: महिलाओं में इस तरह की बीमारियों में, अगेन मैं अगर बोन्स की बात करूंगा तो क्या होता है कि मीनोपोज के टाइम पे बोन्स खराब होना शुरू होता है,
1: जी
0: और अगर उनको पहले से कोई बीमारी अंडरलाइंग चल रही बोन की तो वो एकदम एग्जजर्बेट हो जाती है।
1: ओ
0: जैसे आपको ऑलरेडी मीनोपोज में कैल्शियम कम होना शुरू हो जाएगा, एस्ट्रोजन चला गया, और आपको ऑलरेडी कुछ बीमारी है। जैसे हमारे एक पेशेंट थी सीलिएक डिजीज, जिसको हम बोलते हैं व्हीट एलर्जी, मे बी नॉर्थ इंडिया में काफी कॉमन है जहाँ पे व्हीट मेन डाइट है, साउथ इंडिया में उतना कॉमन नहीं होगा। तो उसमें उस लेडी को क्या हुआ कि 45 साल की उम्र में जब महीना बंद होना शुरू हुआ तो उसको अचानक बोन्स वीक होना शुरू हो गई, और बोन्स इतनी वीक हो गई कि वो बेड पे आ गई, और उसकी मालिश करने से उसकी फ्रैक्चर हो गया हाथ का।
1: ये
0: मालिश
1: मालिश
0: करने
1: करना
0: से,
1: कितना गलत हो गया।
0: हाँ मतलब मालिश करने से ही फ्रैक्चर हो गया, मतलब हल्का ही किया होगा ये तो पता नहीं, बट उससे फ्रैक्चर हो गया। तो उसका बोन्स इतना वीक हो गया, और
1: ओहो
0: जब उसको हम भर्ती करके इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो उसमें पता चला कि उसको वीट एलर्जी है, और वीट एलर्जी पहले भी होगी लेकिन जब महीना बंद होना, तब वीट एलर्जी और महीना बंद होना दोनों साथ जुड़ गए, तो एक और एक 2 की जगह 1 और 1 11 हो गया, और उसको फ्रैक्चर हो गया। उसको फिर एडमिट करा और उसका इन्वेस्टिगेट किया, उसका कुछ नहीं किया हमने, उसका केवल वीट बंद कर दिया,
1: जी
0: और वो 3 महीने बाद में हमारे पास चलती हुई आई। तो पहले हम उसका वजन कम हो रहा उसके लिए इलाज कर रहे हैं, उसके मोटापे का इलाज करना पड़
1: तो
0: रहा
1: ऐसे दिलचस्प मामले भी आते हैं, लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात यह है कि हार्मोन्स का असर
0: है।
1: हड्डियों पर भी पड़ता है, जो आज के इस कार्यक्रम का फोकस है।
0: बिल्कुल,
1: और डॉक्टर साहब, अब एक गाने पर फोकस किया जाए, आपकी पसंद का अगला गाना बताइएगा।
0: तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था।
1: क्या बात है, ये गाना सुनते हैं, चांद सी महबूबा हो। आनंद बख्शी साहब के ये बोल हैं, सुनते हैं।

0: डॉक्टर साहब, बातें हो रही हैं हार्मोन्स और हड्डियों के कनेक्शन की, और आपने बताया कि किस तरह से बीमारी कुछ और है और उसको समझा कुछ और जा रहा है।
1: बिल्कुल,
0: ये आम आदमी के लिए भी उतनी बड़ी चुनौती है जितनी डॉक्टर्स के लिए?
1: या एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कुछ हद तक, पूरे तरह से नहीं पर कुछ हद तक, बिकॉज बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज होती है जिसके बारे में लोगों को उतना अवेयरनेस नहीं होता है
0: जी
1: या उसका प्रॉपर रेफरल समझ में नहीं आता। उसका रीज़न ये भी हो सकता है, अगर बीमारी पता नहीं तो कैसे रेफर करें, किसको रेफर करें। तो ऐसा डॉक्टर्स में भी हो सकता है, आम आदमी तो होता ही है पर डॉक्टर्स में भी हो सकता है। और दूसरा, बोन्स की प्रॉब्लम का एक दूसरा दिक्कत उसमें है कि एक कहावत आपने सुना होगा, राजस्थानी में बोलता हूँ मैं, बहुत मामे के भांजे भूखे रह जाते हैं। समझ गए?
0: जी
1: मतलब उसमें ऐसा होता है कि भाई वो भांजा उस मामा जी के यहाँ खाना खा लेगा, उसके यहाँ खा लेगा, उसके यहाँ खा लेगा, और अल्टीमेटली भूखा रह जाता है कोई। तो उसी तरह से हड्डी भी, बहुत सारे डिपार्टमेंट देखते हैं इसको। अब
0: जी
1: जैसे आपने बताया मीनोपॉज का जिक्र कर रहे, तो अभी ऑब्वियसली मीनोपॉज पे महिला गायनी वाले के पास जाएंगी।
0: जी
1: फ्रैक्चर की बात करें तो पर्सन ऑर्थोपेडिक्स वाले के पास चला जाएगा, और हो सकता है एंडोक्रिनोलॉजिस्ट के पास आ जाए, या कभी कभी वो रूमेटोलॉजी की बीमारी से कंफ्यूज हो जाता है कि जोड़ में दर्द हो रहा है,
0: संधिवात
1: शायद
0: जैसी कुछ
1: संधि है।
0: चीज है।
1: तो उस तरह से बंदा कंफ्यूज रहता है, उसको खुद तो पता नहीं होता कहाँ जाना होता है, तो वो फिर चक्कर लगाता रहता है। तो
0: जी
1: उसमें वो अगर सही डॉक्टर के पास पहली बार ही पहुंच गया तो बहुत अच्छा है, अगर वो नहीं पहुंचा, घूमते घूमते लास्ट में उस डॉक्टर के पास आया जिसका ये बीमारी है, तो उसमें उसको काफी टाइम लग जाता है और बीमारी काफी बढ़ भी जाती है, तो उसको फिर नियंत्रण करने के लिए भी थोड़ा और ज्यादा टाइम लग जाता है।
0: एक सही मार्गदर्शन कितना ज्यादा महत्वपूर्ण
1: बहुत ही
0: है।
1: महत्वपूर्ण है। और मेरे को लगता है आपका ये जो प्रोग्राम आप जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हॉर्मोन्स एंड डायबिटीज, इससे हमारे श्रोताओं को काफी समझ में आएगा और वो सही जगह पे सही डॉक्टर से कंसल्ट कर पाएंगे।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, हड्डियों की बातें तो हमने की, अब दो चीजों की बातें मुझे लगता है कि करना चाहिए, एक तो डायबिटीज की बात और दूसरी थायराइड की बात।
1: बिल्कुल,
0: ये बताइए कि किन हार्मोन्स से ये तब्दीली आती है और किसी को थायराइड उभर के आता है, दोनों तरह के थायराइड, और इसको पहचाना कैसे जाए अर्ली स्टेज पर?
1: थायराइड हार्मोन का भी ऐसा होता है, ऑप्टिमम रहना चाहिए।
0: जी
1: अगर कम हो गया लेवल तो उसको हम बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म,
0: जी
1: और अगर लेवल ज्यादा हो गया उसको हम बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म।
0: दो तरह के हो
1: दो
0: गए
1: तरह
0: ये।
1: के हो गए। अब इनमें हाइपोथायरॉयडिज्म काफी कॉमन होता है, ज्यादा कॉमन होता है, और जैसा कि हमने पहले भी बताया महिलाओं में काफी कॉमन होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, और उसका प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ही महत्वपूर्ण रोल होता है, जो कि पहले, आज के कुछ सालों पहले, ज्यादा उसके बारे में ध्यान नहीं होता था। और उसकी वजह से क्या होता था कि माँ को तो प्रॉब्लम है पर बच्चे को भी प्रॉब्लम होता, होने वाले बच्चे को। तो इसीलिए प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड का टेस्टिंग और उसका इलाज बहुत ही जरूरी होता
0: ये
1: है,
0: बहुत याद रखने वाली बात
1: बहुत
0: है
1: ही
0: सभी
1: जरूरी होता
0: श्रोताओं
1: है।
0: के लिए।
1: बिल्कुल। फिर हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में होता है, उसके सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड होते हैं, कि जैसे थकान हो रहा है, सुस्ती हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है, किसी को भी कभी भी हो सकते हैं, तो उसमें समझ में नहीं आता कि क्या है। लेकिन इसमें बात ये कि अगर वो सिम्टम लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं, कि आपको कब्ज रह रहा है अभी 3 महीने 6 महीने से चलता जा रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको कुछ बीमारी हो सकती है, उसमें हाइपोथायरॉयडिज्म एक बीमारी हो सकती है।
0: जी
1: जैसे कि आपका चेहरे का एक, भगवान ने बहुत ही फीचर्स हमारे शार्प बनाए, अगर इन पूरी दुनिया में अरबों लोग हैं लेकिन किसी की शक्ल एक दूसरे से बहुत कम मिलती है, तो ये जो कंप्यूटर भगवान ने जो बनाया, चेहरे का कंप्यूटर, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एक दूसरी शक्ल नहीं मिलती है।
0: जी
1: लेकिन जब थायराइड डिसऑर्डर्स होता है, अगर वो बहुत एक्सटेंसिव हो जाता है, मतलब बहुत ही हाइपोथायरॉयडिज्म एक्सटेंसिव ग्रेड में पहुंच जाए, तो उसमें एक शक्ल एक धुंधली हो जाती है, जैसे आपने फोटो कोई खींचा है, फोटो हिल गया है, जो
0: जी
1: धुंधला हो जाता है, तो एक चेहरे की जो शार्पनेस है वो चली जाती है
0: नूर चला जाता है।
1: या नूर चला जाता है, तो वो एक हाइपोथायरॉयडिज्म में होता है। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में सिम्टम्स कॉमन होते हैं लेकिन अगर लंबे हो तो आपको डॉक्टर्स को कंसल्ट करना है। फिर
0: महिलाओं में भी इस समस्या को
1: महिलाओं
0: लेकर?
1: में दूसरी समस्या, उनका अगर महीने में कुछ गड़बड़ हो रही है
0: जी
1: तो ये थायराइड की बीमारी की वजह से हो सकती है, तो इसलिए उसको जरूर से टेस्ट करना चाहिए, अगर गड़बड़ है तो, और इलाज होने से बिल्कुल ठीक हो जाता है।
0: क्या थायराइड की दवा जीवन भर खानी पड़ती है?
1: बहुत ही कॉमन सवाल है, सब लोग पूछते हैं। मैं ये बोलूंगा कि यस, 99.9% हाइपोथायरॉयडिज्म है, तो 99.9% लोगों, हमने एक ओपीडी में एक सील बनवा के रखी है
0: जी
1: कि लाइफ लॉन्ग फॉलोअप,
0: अच्छा वो सील ही बना ली,
1: सील लगा दी, क्योंकि अब मरीज को कभी कभी बताना भूल जाते तो सील लगा दी कि भैया उस पर रेड कलर में उनको पढ़ने को मिल जाता है कि इसमें लिखा हुआ
0: जी
1: लाइफ लॉन्ग फॉलोअप, मतलब बराबर लेना है
0: बहुत ध्यान
1: कुछ।
0: रखना है।
1: हाँ कुछ एक पेशेंट्स को रिवर्स हो जाता है बट जनरली नहीं होता है,
0: ये
1: क्यों
0: कौन सा वाला है, हाइपो?
1: हाइपोथायरॉयडिज्म बात
0: जी
1: करें।
0: जी
1: अब दूसरा इसका कारण क्या होता है, भगवान ने जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स बनाई उसकी कैपेसिटी बहुत बनाई है,
0: जी
1: जब तक उस ग्लैंड का 90% हिस्सा खराब नहीं होता है, काम करना बंद नहीं करता, तब तक वो बीमारी नहीं होती है।
0: ओके
1: तो अगर आपका जब बीमारी हो रहा था इसका मतलब 90% पर्टिकुलर ऑर्गन पर्टिकुलर ग्लैंड की सेल्स ने काम करना बंद कर दिया, तो केवल 10% बची है। अब वो 10% में कितना रिवाइव

0: हो सकता है कुछ भी करने से उसका कहना थोड़ा मुश्किल होगा, तो
1: जी
0: इसीलिए 90% डैमेज होने में टाइम भी लगता है, और अगर एक बार 90% डैमेज हो गए आपके सिम्टम्स आ गए तो फिर आपको ट्रीटमेंट लगभग लाइफ लॉन्ग ही लेना
1: और इस
0: पड़ेगा।
1: 90% डैमेज होने के सिम्टम्स नहीं होते
0: वो धीरे धीरे होते हैं, कुछ कुछ
1: जी?
0: होना शुरू हो जाते हैं, बट पूरा 100% नहीं होते हैं, कुछ कुछ होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए क्या हो गया, आजकल जो एक इंपॉर्टेंस बढ़ गया रेगुलर चेकअप का, ईयरली
1: जी
0: ईयरली चेकअप में आपको उस बीमारी का पता चल जाता है कि आपका ये बीमारी एबनॉर्मल आना शुरू हो गया, और एबनॉर्मल आना शुरू होने के बाद में आप उसके पीछे लग करके इन्वेस्टिगेट करेंगे तो पता चल जाएगा ये तो आपको टाइम से ट्रीटमेंट शुरू हो जाएगा, तो फिर उसका दवाई का मात्रा भी उतना नहीं लेना पड़ेगा,
1: जी
0: नहीं तो जब 90% डैमेज हो गया तो दवाई का मात्रा भी ज़्यादा लेना पड़ेगा। ये हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। अब रहा हाइपरथायरॉयडिज्म, जब ग्लैंड ज़्यादा है तो इसमें उल्टा हो जाता है कि इसमें पसीना कम आता है उसमें पसीना ज़्यादा आता है, उसमें वजन थोड़ा बढ़ सकता है उसमें काफ़ी कम हो जाता है, उसके अंदर कॉन्स्टिपेशन होता है उसमें डायरिया होता है,
1: जी
0: इसमें कलर हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है हाइपोथायरॉयडिज्म में, उसमें कलर गहरा हो जाता है, डार्कनिंग हो जाती है, और इसके अलावा हाइपरथायरॉयडिज्म में आंखें बाहर आना शुरू हो जाता है, मोटी हो जाती है, उसमें आंखों पे काफ़ी असर होता है, तो वो भी एक उसका सिम्टम है। तो बहुत सारे लोगों का आंखें प्रोमिनेंट होता है, तो ये हाइपर थायरॉयडिज्म की वजह से हो सकता है, थायरॉयड हार्मोन के एक्सेस की वजह से हो सकता है।
1: तो ये सब जो सिम्टम्स हैं उन पर एक तो नजर रखनी चाहिए, और दूसरा
0: बिल्कुल
1: आपने जोर दिया कि सालाना चेकअप करा लेना सबसे
0: हाँ,
1: अच्छा उपाय
0: मतलब
1: है।
0: जैसे 35 साल की उम्र के बाद में अभी गवर्नमेंट भी बोलती है कि भाई आपको कुछ कुछ टेस्ट कराने चाहिए, तो
1: जी
0: ऐसे ही खास तौर से उनकी पारिवारिक हिस्ट्री है थायराइड की बीमारी की, महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान है, या कुछ जो सिम्टम्स हमने आपको बताए वो लॉन्ग टर्म से चल रहे हैं, तो उन लोगों को अपने थायराइड का टेस्ट जरूर कराना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, थायराइड की बात हमने की, डायबिटीज की बात अब कीजिए।
0: बिल्कुल, उसके बिना तो ये टॉक पूरा नहीं होना चाहिए।
1: तो बताइए कि ये जो मामला है।
0: डायबिटीज एक तरह से कभी किसी जमाने में इसको राज रोग बोलते थे,
1: जी जी
0: क्या बोलते थे, राज रोग, मतलब ये
1: मतलब
0: राजा
1: बहुत
0: महाराजाओं
1: शाही
0: में
1: लोगों
0: होता
1: को
0: है शायद वो, अभी ये
1: होता
0: क्या हो गया आम रोग,
1: था। जी
0: अब हर
1: हाँ,
0: किसी को डायबिटीज हो रहा है,
1: इंडिया एक तरह से डायबिटीज कैपिटल
0: आप ये
1: बनता जा
0: कह
1: रहा है।
0: सकते हैं कैपिटल बनता जा रहा है। ऑब्वियसली हमारे श्रोताओं के इसके कारण सबको पता है, बट
1: जी
0: मैं जस्ट इसको कोरम को कंप्लीट करने के लिए बोल देता हूं कि किस वजह से डायबिटीज ज्यादा हो रही है।
1: जी
0: तो एक कंसेप्ट होता है कि कुछ बीमारियां होती है जेनेटिक्स की वजह से होती है, कुछ एनवायरनमेंट की वजह से होती है, ये
1: बिल्कुल
0: नेचर एंड नर्चर।
1: नर्चर
0: तो आपके एनवायरनमेंट में जो भी प्रॉब्लम हो रही है वो तो आपके एक्सपोजर से हो रही है, लेकिन आपको जीन्स की वजह से जो प्रॉब्लम वो तो पिताजी माताजी से आपको जो मिले उसकी वजह से होगा। तो इन जनरल हिंदुस्तान में ये जेनेटिकली वी आर डायबिटीज के लिए प्रीडिस्पोज्ड हैं जेनेटिकली, और उसका बेस्ट आइडिया जैसे आप दुबला पतला पर्सन है उसको भी थोड़ा सा तो पेट निकला होगा, वैसे दुबला पतला लेकिन पेट थोड़ा निकला होगा, तो ये जो पेट निकला हुआ होता है ये एक तरह से आपका खराब हेल्थ का निशानी है। मे भी आज के 40 साल पहले लोग बोलते यार बहुत ही हेल्दी बंदा है, मोटा अच्छा खासा हट्टा कट्टा है वो, तो उसको हम हेल्दी बोलते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग हो गया वो हेल्दी नहीं है, वो अनहेल्दी है।
1: जी
0: तो जब इस तरह का ये जो पेट आगे निकल गया, ये जो प्रॉब्लम है ये एक तरह से प्रीडिस्पोज करता है डायबिटीज को, तो हम सब लोगों के लिए एक मैसेज है कि आपका पेट नहीं निकलना चाहिए, उसको कंट्रोल में रखना चाहिए, क्योंकि जो वजन बढ़ता है सबसे पहले यहीं बढ़ता है
1: जी जी
0: और सबसे बाद में यहां से जाता है, जो
1: जी
0: ट्रेन वाला सिस्टम है, जो ट्रेन लेट होगी उसको लेट होती रहती है। तो ये भी इस तरह से,
1: जी
0: तो वजन नहीं बढ़ना चाहिए। अब वजन बढ़ना कॉमन हो गया आजकल, क्यों,
1: जी
0: कि हम खान पीन है उधर, जैसे सिस्टर स्विगी और मदर जोमेटो 24 आवर्स खाना सप्लाई करता
1: अरे
0: है
1: गजब।
0: ना,
1: जी
0: तो रात को 11 बजे भी खाना खा रहे हैं, 12 बजे भी खाना खा रहे हैं हम लोग,
1: ऐप के
0: तो
1: जरिए खाना मंगा रहे
0: ऐप
1: हैं।
0: के जरिए खाना मंगा रहे, तो उससे क्या हो रहा है कि आपका खाने का टाइमिंग गड़बड़ हो गया, वो खाने का टाइमिंग गड़बड़ होने की वजह से आपका वजन बढ़ जाता है।
1: जी
0: इसीलिए अगर आपने देखा होगा तो अपने माइथोलॉजी में, इंडियन माइथोलॉजी में ऐसे बोलते हैं कि सूरज के टाइम पे खाना खाना चाहिए, जब सूर्यास्त होने के बाद खाना नहीं खाना, जैसे खास तौर से जैन समाज वगैरह में ऐसा होता है कि वो लोग सूर्यास्त हो गया तो खाना नहीं खाते और सुबह में टाइम पे, तो उसका मतलब ये होता है कि आप खाना खाने के बाद आपको घूमने फिरने का टाइम रहता है थोड़ा, तो आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है। और आपने एक नया शब्द सुना होगा इंटरमिटेंट फास्टिंग,
1: जी आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है, बहुत
0: वो
1: ज्यादा चल रहा
0: इस पे एक चीज कहना चाहूंगे, हम लोगों ना अंग्रेजों से बहुत सीखते हैं, अपने आप से नहीं सीखते हैं,
1: है।
0: ठीक है।
1: जी
0: अब इंटरमिटेंट फास्टिंग हिंदुस्तान में कोई नई चीज़ नहीं है।
1: जी
0: जैसे रमजान रखते तो हम लोग 12 घंटा खाना खाते, 12 घंटा भूखे रहते हैं,
1: हाँ

0: ठीक है, अब कुछ नवरात्र व्रत रखते हैं तो उसके
1: जी
0: अंदर अब दिन में खाना नहीं खाते हैं, फलाहार लेते हैं,
1: जी बिल्कुल
0: ठीक है, तो पहले से कंसेप्ट है, या हमारी दादी नानी जो व्रत उपवास रखती हैं वो कॉमन है, उनको भी अमावस्या करेंगी, पूर्णिमा करेंगी, या और अलग अलग धर्म में अलग अलग तरह से होता है, मुझे वो दूसरों का उतना शायद पता नहीं, तो ऐसे फास्ट रखते थे, तो वो इंटरमिटेंट फास्टिंग होती थी। पर अब क्या, जब अंग्रेजों ने बोला कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है तो हमने उसको लपक लिया भी, अरे इंटरमिटेंट फास्टिंग होना चाहिए,
1: जी जी जी
0: जबकि हमारे कंसेप्ट में पहले से ही
1: ऑलरेडी
0: इंटरमिटेंट
1: है
0: फास्टिंग है। तो ये एक अच्छा चीज़ हो सकता है कि हम ये एक हैबिट डेवलप करें कि खाने का हम टाइम फिक्स करें कि हम 7 बजे बाद नहीं खाएंगे। जैसे कुछ कंट्री के अंदर डिनर टाइम होता है, अगर आप उसके बाद डिनर के लिए ऑर्डर करोगे तो डिनर नहीं मिलेगा आपको।
1: जी जी
0: तो उसका रीज़न ये है कि आपको अच्छा हेल्थ रखने के लिए खाना टाइम पे खाना चाहिए। तो ये एक चीज़ अच्छा आपके डे टू डे हैबिट में हम कर सकते हैं। और मैं अपने श्रोताओं को एक छोटा सा टिप दे रहा हूँ कि वो अगर अपना खाना शाम का खाना 7 बजे के पहले खा सकें और सुबह का खाना 8 बजे खाएं ब्रेकफास्ट से, तो आपका पूरा लगभग 12 से 14 घंटे आप भूखे रह गए, तो आप हर रोज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हो
1: क्या बात
0: और
1: है
0: उसका बहुत अच्छा असर होने वाला है आपकी हेल्थ के ऊपर में। कोई अगर इस चीज़ को 15 दिन भी करके देखेगा तो उसका मुरीद हो जाएगा कि मुझे यही सिस्टम करना चाहिए।
1: आपने जो बताया उसमें लंच नहीं है ना, उसमें सुबह
0: उसमें
1: 8 बजे
0: लंच
1: एक
0: आप,
1: ब्रंच जैसा कुछ
0: हाँ
1: है
0: नहीं, उसमें आप लाइट लंच ले सकते हैं कि जैसे
1: जी।
0: आप ऑफिस में हैं तो आप ऑफिस में एक फ्रूट ले सकते हैं, एक सिंपल एक चपाती ले सकते हैं, या आधा एक सैंडविच ले सकते हैं, ऐसा लाइट रख सकते हैं। ब्रेकफास्ट ले लिया, फिर ऑफिस आवर्स में आप
1: कुछ ले लिया
0: कुछ
1: हल्का
0: लाइट ले
1: सा,
0: लिया तो आपको 7 बजे फिर से भूख लग जाएगी, तो फिर आप खाना टाइम पे खा पाओगे।
1: यही हो गई इंटरमिटेंट
0: ये
1: फास्टिंग,
0: इंटरमिटेंट
1: बारह
0: फास्टिंग
1: बारह
0: होगी,
1: तेरह घंटे
0: बारह
1: की।
0: तेरह घंटे होगी, आपकी सेहत बिल्कुल फिट रहेगी।
1: बिल्कुल। तो अब यहां एक गाना सुनते हैं
0: हाँ,
1: और उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
0: इसका गाना आप सुन, चांद सा रोशन चेहरा,
1: क्या बात है, कश्मीर की कली फिल्म का ये गाना है, ओपी
0: बिल्कुल
1: नय्यर का संगीत, सुनते हैं।
0: ये

0: डॉक्टर साहब, आप एक एंडोक्राइनोलॉजिस्ट हैं, मैंने ठीक बोला ना?
1: बिल्कुल ठीक।
0: आप मुझे ये बताइए कि आपकी जो शाखा है वो और क्या क्या चीजें देखती है?
1: बहुत ही बढ़िया सवाल है और मेरे को जवाब देने में बहुत मजा आएगा।
0: अच्छा,
1: एंडोक्राइनोलॉजी एक ऐसा ब्रांच है जिसमें मल्टीपल ग्लैंड्स इन्वॉल्व होती है
0: जी,
1: और ये ग्लैंड्स टॉप से लेके बॉटम तक आपकी बॉडी में रहती है।
0: हाँ, ये बात हमें नहीं पता
1: तो
0: थी।
1: सबसे पहले मैं बोलूंगा तो ब्रेन में दो ग्लैंड्स होती है, तीन ग्लैंड्स होती है।
0: अच्छा,
1: एक ग्लैंड होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरी ग्लैंड होती है हाइपोथैलेमस और तीसरी ग्लैंड होती है पीनियल ग्लैंड। जो पीनियल ग्लैंड होती है उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है, जो आपका स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है
0: अच्छा,
1: कि आप कितनी बजे उठ रहे हैं तो उसका क्या असर होगा, कितनी बजे सो रहे हैं तो उसका क्या असर होगा, ये सब कंट्रोल करती है। हाइपोथैलेमस होता है और एक पिट्यूटरी होता है, दोनों
0: जी
1: पेयरिंग
0: चलिए।
1: में काम करते हैं, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी। तो हाइपोथैलेमस एक तरह से पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है और ये करीब 6 हार्मोन सिक्रीट करती है ब्रेन से,
0: जी
1: और ये 6 हार्मोन्स

0: बाकी की बॉडी की रिमेनिंग ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, जिसमें आपका थायराइड ग्लैंड आता है, जिसमें आपका एड्रिनल ग्लैंड आता है जो कि किडनी के ऊपर होता है, जिसमें आपका ओवरीज होती है जो महिलाओं के अंदर अंडा
1: प्रजनन
0: बनाती
1: का
0: है,
1: काम है।
0: या और मेल में टेस्टिस होती है जो कि जहाँ से स्पर्म बनते हैं। तो इन सबको ये इसके ऊपर के थ्रू कंट्रोल करती है। तो एक तरह से आपका एक सिस्टम हो गया, एक हाइपोथैलेमस, एक पिट्यूटरी और फिर उसके बाद में सारी ग्लैंड्स,
1: तो पूरा शरीर कवर हो गया।
0: पूरा शरीर करोगे। उसके अलावा दो और इम्पोर्टेंट ग्लैंड जो रह गई है, एक है पैराथायरॉयड ग्लैंड जो
1: जी
0: थायराइड के पास में होती है और उसका बोन पे बहुत इफेक्ट होता है,
1: जी
0: और एक पेनक्रियाज आपका जिससे डायबिटीज का रिलेशन है। इनका अभी ऊपर से कंट्रोल पता नहीं है, पर मेरा ऐसा मानना कुछ कंट्रोल होगा, हम रिसर्च करेंगे तो मिल जाएगा, कुछ रिलेशन होना चाहिए,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: क्योंकि बाकी सब चीजें कंट्रोल हो रही तो ये कैसे कंट्रोल नहीं हो गया ऊपर से,
1: जी
0: ऐसा
1: जी
0: शायद होगा। तो ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो सारी की सारी पूरी बॉडी में है। तो अब बॉडी का कोई भी प्रॉब्लम होगा एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास हो सकता है। इसलिए कभी कभी मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि अगर आपको कोई बीमारी समझ में नहीं आ रही है, जो MD स्टूडेंट्स, उनको एक बार एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जरूर भेज देना, हो सकता है कि वो बीमारी वहां से पता चल जाए कि इनकी क्या बीमारी है।
1: बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। आपने पेंक्रियास का जिक्र किया, इससे जुड़ी बीमारियों के बारे में मैं आजकल यहां वहां काफी पढ़ रहा हूं, क्या ये बढ़ रहा है?
0: तो पेनक्रियाज का बीमारी सीधा सीधा डायबिटीज ही है एक तरह से, आप देखेंगे तो पेनक्रियाज से रिलेटेड डायबिटीज है। पेनक्रियाज का टाइप 2 डायबिटीज सबसे कॉमन है, तो डायरेक्टली उसमें नहीं होता, पर उसमें एक तरह से वजन बढ़ने से आपका जो इंसुलिन सिक्रीट होता है पेनक्रियाज से वो इफेक्टिव नहीं रहता है। तो इसी तरह का कि आपके पास ताला लगा हुआ है, चाबियां बहुत सारी है पर कोई चाबी उसमें फिट नहीं हो रही है,
1: जी
0: तो आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया। तो आपका इंसुलिन तो बहुत है बॉडी के अंदर, लेकिन वो आपकी सेल में नहीं जा पा रहा है, क्यों? कि वो सही सिग्नल नहीं दे रहा वहां पे। ठीक है, ऐसे कमरे में जाना, आपको ताला की चाबी खोल के जाना, लेकिन आपके पास सही चाबी नहीं तो ताला नहीं खुलेगा। इसी
1: क्या
0: तरह
1: वजह
0: से
1: होती होगी इसकी?
0: इसकी वजह, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वजह है कि वजन ज्यादा होना,
1: अच्छा
0: डायरेक्ट रिलेशन है उसका इंसुलिन रेजिस्टेंस का वजन ज्यादा होना से। और या फिर आप पेनक्रियाज को खराब कर लेते किसी कारण से, जो कि कॉमन है हमारी सोसाइटी में, अल्कोहल, उसकी वजह से आपका पेनक्रियाज खराब हो जाता है, तो उससे फिर वो आपका पेनक्रियाज का बीटा सेल्स डैमेज हो जाएगा, तो फिर इंसुलिन बनेगा ही नहीं। जब बनेगा ही नहीं तो आपको डायबिटीज हो जाएगा।
1: जी
0: टाइप 2 में इंसुलिन ज्यादा बन रहा है लेकिन वो काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, अतिवृष्टि और अनावृष्टि दोनों ही हो रही है।
1: दोनों हो रही हैं, मतलब बैलेंस की जो आपने बात की थी
0: हाँ, फिर
1: वो
0: से
1: फिर से
0: बैलेंस
1: यहां आ
0: का
1: गया।
0: जरूरत है, बिल्कुल।
1: डॉक्टर साहब, महिलाओं में हार्मोनल इम्बैलेंस किस किस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आता है? एक अधेड़ उम्र में पहुंचने के बाद जिस तरह का हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उससे महिलाएं कैसे निपटें, खासतौर पर ये
0: या
1: बातें बताइए।
0: अधेड़ उम्र में मैं ये बोलता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन्स जो रोल प्ले करता है वो मीनोपॉज में जो चेंजेज होते हैं वही महत्वपूर्ण है। और उसमें ऐसा देखा गया कि जैसे मन उदास रहना है, या काम में कंसंट्रेशन नहीं करना है, या आपको अचानक पसीना आना है, घबराहट होना है, धड़कन बढ़ जाना है, ये सारा कुछ होता है। तो जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इन सब चीज़ों का एक तो जानना ज़रूरी है। बहुत बार पेशेंट्स को हम बोल देते हैं कि भाई आपको ये बीमारी है, चिंता करने का जरूरत नहीं, आप ठीक हो जाओगे, तो 50% पेशेंट ठीक हो जाते हैं। कि यार पहले वो सोचें कुछ बड़ी बीमारी तो नहीं है हमारे को, तो अगर उनको आप एक्सप्लेन कर देते हो कि भाई आपका बीमारी नहीं है, ये आपका जो भी सिम्टम्स हो रहे हैं मोस्ट लाइकली आपका महीना बंद होने की वजह से हो रहे हैं, आप ठीक हो जाओगे, तो काफ़ी लोग ठीक हो जाते हैं, फिर उनको प्रॉब्लम नहीं आती ज़्यादा। लेकिन कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होती है, क्योंकि उनको थोड़ा सीवियरिटी ज़्यादा होता है, तो सीवियरिटी ज़्यादा, तो ऐसे लोगों को फिर आपको दवाई देना पड़ता है।
1: ये दवाएं हार्मोन्स की होती हैं।
0: हाँ, एक तरह से हॉर्मोन्स होते हैं, तो अगर बहुत पसीना आ रहा है, घबराहट, उसके लिए हॉर्मोन्स दे सकते हैं, बट वो भी एक प्रॉपर तरीके से सुपरविजन में होता है। तो इसमें गायनेकोलॉजिस्ट का भी काफ़ी रोल रहता है और एंडोक्राइनोलॉजिस्ट का भी रोल रहता है, तो ये दोनों मिलकर के इस तरह की बीमारी के लिए ट्रीटमेंट लिखते हैं।
1: क्या बालों का झड़ना जो है वो हार्मोन से जुड़ा हुआ है?
0: या फिर मैं आपको बोलूंगा कि ये ऑप्टिमम लेवल ऑफ हॉर्मोन्स बहुत ज़रूरी है बालों के हेल्थ के लिए, क्योंकि बॉडी को क्या लगता है कि जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनका देख रेख करना ज़्यादा ज़रूरी है, न कि जो बाहर की सुंदरता है। बॉडी को बाहर की सुंदरता से लेना देना नहीं है ज़्यादा, तो
1: जी
0: आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो पहले हॉर्मोन्स या बॉडी अपने इंटरनल जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनका देख रेख करेगी,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और उसके बाद में बाहर की चीज़ों पर आएगी।
1: हाँ, तो एक पूरा बैलेंस होना और
0: बिल्कुल, अगर
1: प्रक्रियाएं
0: बैलेंस
1: सही
0: नहीं है तो
1: चलना
0: आप
1: ज्यादा जरूरी
0: जैसे
1: है।
0: थायराइड हार्मोन का प्रॉब्लम है तो बाल गिर सकते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन एक्सिस में तो बाल गिर सकते हैं, तो ये इस तरह के अगर उनका हार्मोन्स का इम्बैलेंस है तो ये प्रॉब्लम होती है।

0: जी डॉक्टर साहब, आप न केवल मरीजों को देखते हैं बल्कि आप एक प्रोफेसर भी हैं एक बहुत बड़ी संस्था, बहुत बड़े हॉस्पिटल में। तो ये दोनों चीजों का जो अनुभव है ये बहुत ज्यादा बड़ा होता है, तो इससे जुड़े कुछ दिलचस्प अनुभव हमारे साथ बांटिए।
1: या तो इसमें ऐसा है कि बड़े हॉस्पिटल में काम करने का एक सबसे बड़ा फायदा होता है कि हम बहुत पेशेंट्स देखते हैं, जो आम डॉक्टर्स उतने पेशेंट नहीं देखते हैं।
0: अमूमन आप दिन भर में कितने पेशेंट्स देखते हैं?
1: अमूमन पीजीआई चंडीगढ़ का जो मेरा डिपार्टमेंट है, एंडोक्राइन डिपार्टमेंट है, उसमें एक दिन के 1200 पेशेंट्स आते हैं लगभग,
0: अरे
1: ट्वेल्व
0: बाप रे,
1: हंड्रेड
0: 1200!
1: पेशेंट्स। हाँ, तो ये 3 दिन हमारा ओपीडी होता है, उसमें लगभग 1200 पेशेंट आते हैं।
0: जी
1: तो ऑब्वियसली आप जितने पेशेंट देखोगे उतना आप सीखोगे,
0: अनुभव बढ़ेगा।
1: उसका आपका एक्सपीरियंस उतना होगा। आप कॉमन डिजीज तो देखोगे देखोगे, बहुत रेयर से रेयर डिजीज भी देखोगे, आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। फ्यूचर में आपने एक कोई पेशेंट देख लिया जिसका ये प्रॉब्लम आपने डायग्नोस कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम में जैसे ही वो पेशेंट है, आप पहचान जाओगे, अरे ये पेशेंट तो इस तरह का हमने देखा। तो हमारा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस बहुत कई गुना ज़्यादा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू जो लोग दूसरी जगह काम करते हैं जिनको उतना पेशेंट एक्सपोजर नहीं है।
0: जी,
1: तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो रेयर डिजीज आप डायग्नोस करते हो, आप ट्रीट करते हो, कि आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है, ग्रेटिफिकेशन मिलता है कि यार हमने ये काम अच्छा किया है, तो उसमें बहुत मज़ा आता है। तो आपको इसके साथ साथ फिर उसके अलावा इंस्टीट्यूट में रहने से, जैसे मेरा इंस्टीट्यूट में एक रिसर्च जुड़ा हुआ, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, तो रिसर्च करते हैं, तो हम नया कोई दवाई उसका ट्रायल करते हैं, कोई नया दवाई बनाते हैं। या बहुत बार अभी हम ऐसा भी करते हैं कि हमारी बहुत सारी इंडियन मेडिसिन्स हैं उनके बारे में प्रॉपर डॉक्यूमेंट करके हम बताते हैं कि ये दवाई काम करता है, इसको इस तरह से यूज़ करने से बेटर काम करेगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा एंगल है,
0: जी
1: और मेरे को लगता है कि इस फील्ड में और ज़्यादा काम करने का ज़रूरत भी है, ताकि हम स्वदेशी चीज़ों का जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके पेशेंट्स के ट्रीटमेंट में, क्योंकि अल्टीमेटली सारी दवाइयाँ आई कहाँ से, नेचर से आई है। कोई भी दवाई आई पहले तो नेचर से आई, फिर उसको केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन करके हमने फैक्ट्री में बनाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब है कि हर बीमारी का इलाज नेचर
0: संभव है
1: में कहीं
0: नेचर के जरिए।
1: कहीं कहीं है। तो हमें जो हमारे हिस्ट्री में, या जैसे हमारा यजुर्वेद है, वो एक तरह से मेडिसिन का वेद है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है, तो हमें वो पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए उसमें क्या चीज़ है। तो हम उस तरह से कुछ कुछ फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस जो बीमारी बताया, उसके लिए हमने हड़ जोड़ करके एक प्लांट होता है, वो प्लांट का इफेक्ट हमने देखा है कि इट इज़ वेरी इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस।
0: क्या बात है!
1: हाँ,
0: तो रिसर्च एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है
1: हाँ, उसमें
0: मेडिकल की
1: एक
0: दुनिया में।
1: एक्साइटिंग है, जैसे वो इस तरह से एक्साइटिंग है, जैसे आप सुबह सुबह उठ करके फटाफट ईमेल चेक करते हो, यार रात को क्या ईमेल आया देखते हैं क्या है ना,
0: जी
1: ऐसा
0: जी
1: लगता है ना कि आप उठ करके व्हाट्सएप देखते हैं, अरे कुछ मैसेज तो नहीं आया। तो इसी तरह से रिसर्च में आपको अगर इंक्विजिटिवनेस है, कुछ सीखना नया करना है, कोई बीमारी आपको पता है यार इसका क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, तो आपको बहुत उसमें यू एन्जॉय दैट, और पेशेंट एक्सपीरियंस तो हाई है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: और गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो इस तरह के बड़े हॉस्पिटल जो इंडिया में तो रिनाउंड है ही है, पर बाहर भी कभी जाते तो दे वे लॉट ऑफ रेस्पेक्ट वर्किंग इन सच इंस्टीट्यूशंस।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, यहां कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: जोधा अकबर का एक फेमस गाना है, वो
0: जी
1: सूफी संगीत जो डांस कर रहे होते हैं उस
0: हाँ
1: तरफ,
0: हाँ
1: भैया
0: हाँ
1: दैट्स कहने
0: वो
1: का
0: ख्वाजा मेरे ख्वाजा,
1: ख्वाजा मेरे ख्वाजा। हाँ
0: क्या बात है!
1: या
0: सुनते राजस्थान कनेक्शन सामने आ रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: बिल्कुल
1: राजस्थान
0: सुनते,
1: मेरी जन्मभूमि कर्म भूमि सब रहा है, तो
0: बिल्कुल
1: रहना ही चाहिए।
0: ये गाना सुनते हैं, राजस्थान से जुड़ा हुआ गाना
1: बिल्कुल
0: है।

0: डॉक्टर साहब, बॉटम लाइन ये है कि कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जो हमें नियमित रूप से कराने चाहिए, खासतौर पर हार्मोनल इम्बैलेंस होने का अगर अंदेशा हो तो महिलाओं को?
1: या तो मैं ये बोलता हूं कि दो कॉमन बीमारी जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है, डायबिटीज और थायराइड।
0: जी
1: बाकी डिसऑर्डर्स है वो काफ़ी अनकॉमन है, मतलब उनको रूटीन टेस्ट का ज़रूरत नहीं है, वो आपको अगर डॉक्टर कहे तो कराना, बाकी ज़रूरत नहीं है। तो दो जो बीमारियां कॉमन है, डायबिटीज़ और थायराइड डिसऑर्डर्स, तो इनके टेस्ट रेगुलर होते रहना चाहिए। क्योंकि डायबिटीज़ के बारे में ऐसा है कि 50% लोगों को डायबिटीज़ होती है पर उनको पता नहीं चलता है,
0: जी तो इसलिए टेस्ट बहुत
1: तो
0: मायने
1: टेस्ट
0: रखता
1: से
0: है।
1: ही पता चलेगा कि आपको डायबिटीज़ है कि नहीं है। जैसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास, जब डायबिटीज़ पता चलता था, बात है कि वो आँख का ऑपरेशन कराने के, तो आँख के डॉक्टर ने बोला अभी शुगर टेस्ट कराओ और शुगर आ गया, है ना। या कोई
0: जी
1: हर्निया का ऑपरेशन कराने गया और हर्निया के ऑपरेशन की चेकलिस्ट दी, भी ये टेस्ट कराओ, तो डायबिटीज़ का टेस्ट कराया तो आ गया। तो इसका मतलब है उनको डायबिटीज़ चल रहा था, उनको पता नहीं था। तो इसलिए आप रेगुलर बेसिस पे टेस्ट कराएंगे तो बीमारी का टाइम पे पता चल जाएगा। तो
0: जी
1: डायबिटीज़ के रिलेटेड जो टेस्ट होते हैं, उसमें एक तो शुगर टेस्ट होता है, और एक होता है कि आपका एवरेज शुगर होता है 3 महीने में एक बार, जो 3 महीने का रीडिंग देता है उसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन A1C।
0: जी
1: तो ये दो टेस्ट आप डायबिटीज़ के लिए कर सकते हैं।
0: और सबसे आखिर में ये बात बताइए कि हार्मोनल इम्बैलेंस का पता चलता है तो घबराने की जरूरत नहीं है?
1: बिल्कुल, ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, और इसका मैं जवाब ऐसे देना चाहूँगा कि जब मैं MD मेडिसिन कर रहा था तो मेरा पोस्टिंग CCU में लगा। कभी कभी ऐसा होता था कि मरीज़ को बचाने की बहुत कोशिश करते पर हार्ट की वजह से हम फिर बचा नहीं पाते, तो रात भर जग रहे पर पेशेंट तो चला गया। तो एंडोक्राइन इसका उल्टा है, अगर आपने बीमारी सही पकड़ ली तो इलाज होगा, बिल्कुल परफेक्ट इलाज होगा और बराबर चलेगा।
0: जी
1: तो ये मतलब कोई ब्रांच खराब और अच्छा नहीं होता है, सबका ज़रूरत है, सबका वैल्यू उतना ही है। पर मुझे खास तौर से ये पसंद आता है कि इसमें ऑलमोस्ट हर बीमारी का हमारे पास इलाज है, और इसलिए हम बहुत बार मरीज को ये बोलते हैं कि तुम एक बार हमारे चक्कर में पड़ोगे तो जिंदगी भर हमारे चक्कर में रहोगे, अब निकलोगे नहीं। तो उसका वही है कि जिसको एक बार एंडोक्राइन डिसऑर्डर तो ऑलमोस्ट रहता ही है, तो रेगुलर दिखाना है और रेगुलर चेकअप कराना है। और थायराइड डिसऑर्डर्स को भी आपको रेगुलर चेक कराते रहना चाहिए, उसमें T3, T4, TSH एक टेस्ट होता है
0: जी जी
1: थायराइड का, ज़्यादा

0: महंगा नहीं होता है। अगर एक हर साल नहीं तो 2 साल में 3 साल में एक बार करा लेना चाहिए, क्योंकि उसको भी इनिशियल सिम्टम्स पता नहीं चलते हैं।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत ही दिलचस्प बातें आपने आज के इस कार्यक्रम में की हैं, और पूरी उम्मीद है कि हमारे श्रोताओं को बहुत सारी नई जानकारियां मिली होंगी और वो ज्यादा अवेयर हुए होंगे। तो
0: बिल्कुल
1: इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर संजय भदादा। विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और हमें इतना वक्त दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं।
0: धन्यवाद, और मैंने बहुत एंजॉय किया आपका डिस्कशन, एंड उम्मीद है हमारे श्रोताओं को पसंद आएगा और उनको कुछ को एटलीस्ट जो बोन रिलेटेड इश्यू है जो कि आपने क्वेश्चन की तरह हाईलाइट किया, उनको फायदा होगा उससे। धन्यवाद।
1: बहुत शुक्रिया। ये थी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट यानी हार्मोन विशेषज्ञ डॉक्टर संजय भदारा से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरगे, प्रस्तुति जुबैर खान।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम।
3: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर सरगम, ये आकाशवाणी रांची है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक मुख्य समाचार।

नमस्कार, अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। जेपीएससी की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार मामले में सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया है। ख्यांगते पर परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी से रिश्वत लेने और सांठगांठ का आरोप है। विधानसभा घेराव के लिए निकले आंदोलित छात्र सुरक्षा घेरा तोड़कर विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार यानी गेट नंबर 1 मार्ग तक पहुंच गए हैं और वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। गौरतलब है कि इसी गेट नंबर 1 से मुख्यमंत्री और अन्य अति विशिष्ट महानुभावों का विधानसभा में आना जाना होता है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। सरायकेला खरसावां जिले में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर 11 से 14 अगस्त तक जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने बताया कि प्रशिक्षण में योजना की कार्यप्रणाली, कार्यों की स्वीकृति, मजदूरी भुगतान और सामाजिक अंकेक्षण की विस्तृत जानकारी दी जाएगी। साहिबगंज के उपायुक्त दीपक कुमार दुबे की अध्यक्षता में समाहरणालय में आत्मा शासकीय निकाय की बैठक आयोजित की गई। इसमें किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण और परिभ्रमण कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। लातेहार पुलिस ने एक बड़े मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 146 किलो गांजा जब्त कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मकैयाटाड़ पिकेट से बिहार जा रही कार को रेकी में इस्तेमाल की जा रही एक बोलेरो को भी जब्त किया है। सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर खूंटी के प्रसिद्ध बाबा आमरेश्वर धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। सुबह से ही भक्तों ने कतारबद्ध होकर बनई नदी से लाए पवित्र जल से भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार शाम 6 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

उड़ान वालों, उड़ानों पे वक्त भारी है, परों की नहीं अब हौसलों की बारी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये एक चिराग कई आंधियों पे भारी है।

उदास आसमां है, दिल मेरा कितना अकेला है। परिंदा शाम के पुल पे बहुत खामोश बैठा है। तुम्हारे शहर के सारे दरीचे तो सो गए, लेकिन हवा से पूछना दहलीज पे ये कौन जलता है।

0: छाया या गीत जारी रहेगा इस अंतराल के बाद, और अंतराल के बाद जब हम आएंगे आपके लिए लाएंगे ये नगमा।
1: बेदर्दी बालमा तुझको मेरा मन याद कर।
0: हम अभी हाजिर हुए

उन्हें कभी मत बताना मैं उनकी आंखों में हूं। वो लोग फूल समझकर मुझे मसलते हैं, उदास आंखों पे आंसू नहीं निकलते हैं, ये मोतियों की तरह सीपियों में पलते हैं।

याद किसी की चांदनी बन कोठे कोठे उतरी है, याद किसी की धूप हुई है, जीना जीना उतरी है।

0: 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
2: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
1: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
3: मैं अगले दिन आशुतोष गवारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जितवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विविध भारती की प्रसारण सेवा हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5:30 हो चुके हैं। हम आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं कार्यक्रम विवरण द्वारा और जानते हैं अभी से लेकर रात्रि 11:10 तक के कार्यक्रम को कार्यक्रम विवरण द्वारा। अभी से थोड़ी देर बाद हम लेकर हाजिर होंगे कार्यक्रम घर आंगन, महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। हर दिल में देश, हर घर में तिरंगा, हर नौकरी और दोहरी जिम्मेदारी, इस पे चर्चा होगी। स्वरोजगार अपनाएं और सशक्त बने। वार्ताकार हैं स्वाति सहाय। शाम 6:00 आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी रांची केंद्र से। 6:02 पर आप सुनेंगे ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेती बाड़ी। चर्चा में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और साथ ही धान में कीट प्रबंधन पर बातें होगी। वार्ता में प्राकृतिक खेती। वार्ताकार हैं सुषमा श्रीवास्तव।

शाम 6:02 पर श्रोताओं आप सुनेंगे कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा। चर्चा में नवजात बछड़ों की देखभाल, साथ ही आज की बात में अंतर्वर्ती खेती के लाभ। भेंटवार्ता में किसान से ली गई भेंटवार्ता सुनेंगे। भेंटवार्ताकार हैं अनिरुद्ध महतो भोंगा पाटन पलामू, भेंट करता है संतोष कुमार। आज की नसीहत में आप सुनेंगे मृदा में पर्याप्त नमी जरूरी, आज का मौसम, आज का बाजार भाव। इस कार्यक्रम के तहत हमेशा की तरह आप सुनेंगे शाम 6:55 पर आप सुनेंगे, हम जुड़ेंगे आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रसारण सेवा में 7:00 प्रादेशिक समाचार, 7:10 पर जिले में आजकल, 7:15 पर विधानसभा समीक्षा आप सुनेंगे, 7:20

कल्याणी कार्यक्रम हम लेकर हाजिर होंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे, गीतों का कार्यक्रम एक रंग शाम 7:35 पर, 7:45 पर आप सुनेंगे कल्याणी भेंटवार्ता। हम भूलने क्यों लग गए। भेंटवार्ताकार हैं डॉक्टर सुरजीत प्रसाद रांची, भेंट करता है संजीव कुमार लाल। रात्रि 8:00 संसद समीक्षा आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से, 8:15 पर चित्रपट से फिल्म संगीत का कार्यक्रम श्रोताओं आप सुनेंगे। और साथ ही 8:45 पर, 9:15 में उर्दू में समाचार, 9:30 पर आप सुनेंगे आज के फनकार कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबई केंद्र से, और रात्रि 10:00 हम लेकर हाजिर होंगे। रात्रि 10:00 आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल, और 11:00 आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 11:05 में अंग्रेजी में समाचार। और अपनी सभा का समापन करेंगे श्रोताओं हमेशा की तरह रात्रि 11:10 पर। तो ये थी हमारी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। कुछ ही पलों में हम लेकर हाजिर हैं महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन।

0: घर आंगन सुनने वाली तमाम श्रोता बहनों की बहनों को प्रतिमा वर्मा का प्यार भरा नमस्कार
1: और साथ ही रागिनी कुमारी का भी नमस्कार।
0: आप सभी का हमारे विशेष रेडियो कार्यक्रम हर दिल में देश हर घर तिरंगा में हार्दिक स्वागत है। तिरंगा केवल तीन रंगों से बना एक झंडा नहीं है बहनों, यह हमारे गौरव, स्वतंत्रता, एकता और देशभक्ति का प्रतीक भी है। जब तिरंगा आसमान में लहराता है तो हर भारतीय का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है।
1: बहनों, हमारे देश की आज़ादी के पीछे अनगिनत वीरों और वीरांगनाओं का त्याग और बलिदान है। उन्होंने अपना वर्तमान हमारे उज्ज्वल

0: भविष्य के लिए समर्पित कर दिया। आज हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश की स्वतंत्रता और सम्मान को बनाए रखें। हर दिल में देश का अर्थ है कि हमारे हृदय में भारत के प्रति प्रेम और सम्मान हो। देशभक्ति केवल राष्ट्रीय पर्व मनाने तक सीमित नहीं है। ईमानदारी से अपना कार्य करना, स्वच्छता रखना, पर्यावरण की रक्षा करना, जरूरतमंदों की सहायता करना और बच्चों को अच्छे संस्कार देना भी देश सेवा है। और हर घर तिरंगा का संदेश हमें याद दिलाता है कि हमारा तिरंगा हर भारतीय के घर में सम्मान के साथ लहराए और हमारे मन में राष्ट्र प्रेम की भावना जगाए।
1: हम तिरंगे का सम्मान करेंगे, हम देश की एकता और अखंडता बनाए रखेंगे, अपने बच्चों में देश प्रेम के संस्कार जगाएंगे और अपने छोटे छोटे प्रयासों से भारत को और मजबूत बनाएंगे। बहनों, ये हमें हमेशा याद रखना चाहिए। जब हम तिरंगे को हवा में लहराते हुए देखते हैं तो हमारे मन में गर्व और देशभक्ति की भावना उठती है और फिर हम सब एक हैं, हम भारतीय हैं, ये भावना भी आती है। आज़ादी है बहुत संघर्ष और बलिदान के बाद मिली है। हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इसलिए तिरंगे का सम्मान करना केवल हमारा अधिकार नहीं बल्कि हमारा कर्तव्य भी है। बहनों, देशभक्ति केवल सीमा पर जाकर देश की रक्षा करने से ही नहीं होती। हम अपने घर और गांव से भी देश सेवा की शुरुआत कर सकते हैं। अपने आसपास स्वच्छता रखना, पानी और बिजली बचाना, पेड़ लगाना, बच्चों को शिक्षित करना, बेटियों को आगे बढ़ाना और ज़रूरतमंदों की मदद करना, ये सभी देश के प्रति हमारी जिम्मेदारियाँ हैं। एक माँ जब अपने बच्चे को ईमानदारी, मेहनत और देश प्रेम की सीख देती है तो वह भी राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देती है। एक बहन जब अपनी दूसरी बहन को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती है तो वह भी देश को मजबूत बनाती है। आइए, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम अपने घर पर तिरंगा फहराएंगे और उसके सम्मान का ध्यान रखेंगे। इस बात का भावना जरूर रखें कि देश सबसे पहले है। हर घर तिरंगा लहराए, हर दिल देशभक्ति से भर जाए, एकता का दीप जलाएं हम, भारत को और मजबूत बनाएं हम।
0: बहनों, हमारे देश की शान है हमारा तिरंगा। तो आइए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: बहनों, आज के समय में आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, ख़ासतौर पर महिलाओं के लिए। महिला के पास यदि कोई हुनर, कला या कार्य करने की क्षमता है तो वह उसे स्वरोजगार का रूप देकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकती हैं और अपने जीवन में आत्मविश्वास ला सकती हैं। आइए इसी विषय पर आपको एक वार्ता सुनवाते हैं, स्वरोजगार अपनाएं और सशक्त बने। वार्ताकार है स्वाति सहाय।
1: तमाम श्रोताओं को आपकी बहन स्वाति सहाय की तरफ से नमस्कार। आज का मेरा विषय है स्वरोजगार अपनाएं और सशक्त बने, महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक सशक्त कदम। आज का युग परिवर्तन, अवसर और आत्मनिर्भरता का युग है, जहां हर व्यक्ति अपनी पहचान स्वयं गढ़ने की क्षमता रखता है। इस बदलते परिदृश्य में महिलाओं की भागीदारी केवल आवश्यक ही नहीं बल्कि अनिवार्य बन चुकी है। भारत जैसे विकासशील देशों में महिलाओं की भूमिका केवल परिवार तक सीमित नहीं रही है, बल्कि वे आज समाज, अर्थव्यवस्था और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। फिर भी अनेक महिलाएं आज भी आर्थिक निर्भरता, सामाजिक बंधनों और अवसरों की कमी के कारण अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग नहीं कर पाती। ऐसे में स्वरोजगार, जिसे हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, एक ऐसा माध्यम बनकर उभरता है जो महिलाओं को आत्मनिर्भर, सशक्त और आत्मविश्वासी बना सकता है। सदियों से महिलाओं ने अपने परिवार और समाज की आधारशिला को मजबूती दी है, परंतु अब समय आ गया है कि वे अपने सपनों को भी उतनी ही प्राथमिकता दें। स्वरोजगार इसी देश में एक सशक्त माध्यम है जो महिलाओं को अपनी प्रतिभा, कौशल और इच्छा शक्ति के बल पर आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। स्वरोजगार केवल आजीविका का साधन नहीं, बल्कि यह आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और आत्मविश्वास का प्रतीक है। यह महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से सक्षम बनाता है, बल्कि उन्हें अपने निर्णय स्वयं लेने की शक्ति भी देता है। जब एक महिला अपने प्रयासों से कुछ हासिल करती है तो वह अपने भीतर छिपी संभावनाओं को पहचानती है और समाज में एक नई पहचान स्थापित करती है। स्वरोजगार का अर्थ है अपने कौशल, ज्ञान और संसाधनों का उपयोग कर स्वयं के लिए रोजगार उत्पन्न करना। यह न केवल आय का स्रोत है, बल्कि आत्मसम्मान और स्वतंत्रता का भी प्रतीक है। जब महिलाएं स्वरोजगार अपनाती हैं तो वे न केवल अपने जीवन को बदलती हैं, बल्कि अपने परिवार और समाज को भी सकारात्मक दिशा देती हैं। सबसे पहले स्वरोजगार महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता प्रदान करता है। आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर महिला अपने निर्णय स्वयं लेने में सक्षम होती है, उसे किसी पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती। उदाहरण के लिए, आज कई महिलाएं सिलाई, ब्यूटी पार्लर, ऑनलाइन व्यवसाय, हस्तशिल्प, खाद उत्पाद जैसे अचार, पापड़ आदि के माध्यम से अच्छी आय अर्जित कर रही हैं। यह न केवल उनकी आय बढ़ाता है, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करता है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है आत्मविश्वास का विकास। जब एक महिला अपने प्रयासों से कुछ हासिल करती है तो उसमें आत्मविश्वास स्वतः बढ़ता है। वह समाज में अपनी पहचान बनाती है और अपने अस्तित्व को महसूस करती है। स्वरोजगार महिलाओं को यह अवसर देता है कि वे अपनी प्रतिभा को पहचाने और उसे निखारे। तीसरा, स्वरोजगार सामाजिक परिवर्तन का भी माध्यम। जब एक महिला सफल होती है तो वह अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बनती है। इसमें समाज में महिलाओं के प्रति दृष्टिकोण बदलता है, लैंगिक समानता को बढ़ावा मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह, जिसे हम सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कहते हैं, इसका एक अच्छा उदाहरण है, जहां महिलाएं मिलकर छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करती हैं और सामूहिक रूप से आगे बढ़ती है। वर्तमान समय में सरकार भी महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है, जैसा केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाते हैं, बल्कि उनके आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को भी बढ़ाते हैं। नए कौशल सीखकर ग्रामीण महिलाएं अपने खुद का व्यवसाय शुरू कर सकती हैं, कार्यबल में शामिल हो सकती हैं या अपने समुदायों में नेतृत्व कर सकती हैं। इससे न केवल महिलाओं के लिए बल्कि उनके परिवारों और समुदायों के लिए भी दीर्घकालिक सकारात्मक बदलाव आते हैं। कौशल विकास के लाभ केवल व्यक्तिगत महिलाओं तक ही सीमित नहीं है। यह ग्रामीण महिलाएं कौशल प्राप्त करती हैं तो वे अपने समुदायों में आदर्श बन जाती हैं। वे अपने परिवारों का बेहतर भरण पोषण कर सकती हैं, अपने बच्चों की शिक्षा में निवेश कर सकती हैं और अपने जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार कर सकती हैं। कुशल महिलाएं स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। उदाहरण के लिए कृषि या खाद्य प्रसंस्करण में प्रशिक्षित महिलाएं अपनी उत्पादकता बढ़ा सकती हैं और अपने समुदायों को भोजन और सामान उपलब्ध करा सकती हैं। छोटे व्यवसाय शुरू करने वाली महिलाएं दूसरों के लिए रोजगार सृजित कर सकती हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को और बढ़ावा मिलता है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र होती हैं तो उनके पास अपने जीवन और विकल्पों पर अधिक नियंत्रण होता है। वे अपने स्वास्थ्य, आवागमन और व्यक्तिगत विकास के बारे में निर्णय ले सकते, जिसे मजबूत और स्वस्थ समुदाय बनते हैं। बेशक इस प्रकार हम पाते हैं कि कौशल विकास कार्यक्रम स्वरोजगार के विकल्प का सशक्त माध्यम है। वहीं हम मानते हैं कि स्वरोजगार अपनाते समय महिलाओं को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या पूंजी, पैसे की कमी होती है, क्योंकि व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रारंभिक निवेश आवश्यक होता है। इसके अलावा पारिवारिक जिम्मेदारियां जैसे बच्चों की देखभाल और घर का काम महिलाओं के समय और ऊर्जा को सीमित कर देती हैं। कई बार समाज की संकीर्ण सोच और सहयोग की कमी भी उनके आत्मविश्वास को प्रभावित करती है। उचित प्रशिक्षण, व्यवसायिक ज्ञान और बाजार की जानकारी का अभाव भी एक बड़ी बाधा बनता है। डिजिटल तकनीक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की जानकारी न होना भी आज के समय में पीछे कर सकता है। इन सब के बावजूद यदि महिलाओं को सही मार्गदर्शन, परिवार का सहयोग और आत्मविश्वास मिले तो वह इन चुनौतियों को पार कर स्वरोजगार में सफलता प्राप्त कर सकती हैं। शिक्षा भी इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि महिलाओं को सही शिक्षा और प्रशिक्षण मिले तो वे किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकती हैं। व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रम महिलाओं को स्वरोजगार के लिए तैयार करते हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि स्वरोजगार महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का एक प्रभावी और अस्थायी माध्यम है। यह उन्हें आर्थिक, सामाजिक और मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। जब महिलाएं सशक्त होंगी तभी समाज और राष्ट्र का समग्र विकास संभव है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हर महिला अपने भीतर की क्षमता को पहचाने, आत्मनिर्भर बने और यह संकल्प ले कि हम सदैव आत्मनिर्भर रहेंगे और स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाए। साथ ही समाज को यह भी समझना होगा कि महिलाओं का सशक्तिकरण केवल एक आवश्यकता नहीं बल्कि एक अनिवार्यता है। जब महिला सशक्त होती है तो परिवार सशक्त होता है और जब परिवार सशक्त होता है तो राष्ट्र सशक्त बनता है। धन्यवाद।
0: अभी हमारी बहनें सुन रही थी स्वाति सहाय की वार्ता। विषय था स्वरोजगार अपनाएं और सशक्त बने। और आइए बात करते हैं घर और नौकरी की दोहरी जिम्मेदारियों की। बहनों, घर और नौकरी की दोहरी जिम्मेदारियां निभाना एक कठिन काम तो है ही। इसमें व्यक्ति को ऑफिस के काम के साथ घर के कामकाज और परिवार की देखरेख दोनों को एक साथ संभालना होता है। इस संतुलन को बनाए रखने के लिए समय का सही प्रबंधन और अपनों का साथ बहुत ज़रूरी है।
2: समय और काम का प्रबंधन में सबसे पहले आप समय बांटें, सूची बनाएं, सीमाएं तय करें और परिवार का सहयोग करें। जिम्मेदारियां बांटें, खुलकर बात करें, खुद की सेहत का ध्यान रखें, आराम करें और मानसिक शांति बनाए रखें। ऑफिस और घर के लिए अलग अलग समय तय करें। रोज़ के ज़रूरी कामों की एक लिस्ट बनाएं ताकि कोई काम न छूटे। ऑफिस के बाद घर पर काम से जुड़ी बातें या तनाव कम रखें। घर के कामों में परिवार के बाकी सदस्यों की मदद लें।
0: बहनों, हमें यह भी समझना होगा कि अपनी सेहत और आराम के लिए समय निकालना स्वार्थ नहीं है। स्वस्थ और खुश महिला ही परिवार और कार्यस्थल दोनों में बेहतर योगदान दे सकती है। आइए हम ऐसा परिवार और समाज बनाएं जहां महिला से केवल त्याग की अपेक्षा न की जाए बल्कि उसके समय, मेहनत और सपनों का भी सम्मान किया जाए। याद रखिए, घर भी हमारा, काम भी हमारा, लेकिन जिम्मेदारी हो सबकी साझी। आइए महिलाओं का साथ दें, उनकी मेहनत को सम्मान दें, उन्हें आगे बढ़ने का समय अवसर समान अवसर प्रदान करें।
2: तो बहनों, इसी चर्चा के बाद अब हमारा समय भी आपसे विदा लेने का हो चला है, इसलिए बातें आज बस यहीं तक। तो इसी के साथ कार्यक्रम घर आंगन से अब दीजिए रागिनी कुमारी को अनुमति
0: और प्रतिमा वर्मा को भी दीजिए इजाजत।
2: नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे महिलाओं को संबोधित कार्यक्रम घर आंगन। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। अब से थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे रांची केंद्र से। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

नमस्कार। अब तक के मुख्य समाचारों के साथ मैं कामिनी। जेपीएससी की 14वीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितता और भ्रष्टाचार मामले में सीआईडी ने जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया है। ख्यांगते पर परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी से रिश्वत लेने और सांठगांठ का आरोप है। विधानसभा घेराव के लिए निकले आंदोलित छात्र सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए विधानसभा के मुख्य प्रवेश द्वार यानी गेट नंबर 1 के मार्ग तक पहुंच गए हैं और वहीं सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं। गौरतलब है कि इसी गेट नंबर 1 से मुख्यमंत्री और अन्य अति विशिष्ट महानुभावों का विधानसभा में आना जाना होता है। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले दागे। सरायकेला खरसावां के गम्हरिया थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत 2,00,000 रुपए मूल्य के 12 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। साहिबगंज में आज वीबीजी रामजी योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर प्रखंड स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डीआरडीए निदेशक विजय कुमार ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य प्रखंड स्तर पर कुशल मानव संसाधन तैयार करना है। गुमला के उपायुक्त दिलेश्वर महतो ने शिक्षा विभाग की बैठक में ई विद्यावाहिनी पोर्टल पर लापरवाही बरतने के आरोप में गुमला सदर के बीपीओ का वेतन रोकने का निर्देश दिया है। उन्होंने दोनों समय ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज न कराने वाले शिक्षकों को कड़ी चेतावनी देते हुए छात्र शिक्षक उपस्थिति डेटा में तत्काल सुधार सुनिश्चित करने को कहा है। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर पर्यावरण धर्म के प्रणेता डॉ. कौशल किशोर जायसवाल ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के नई दिल्ली स्थित आवास पर जाकर उन्हें थाई किंग प्रजाति के जामुन का पौधा भेंट किया। डॉ. कौशल ने पूरी दुनिया से एकजुट होकर प्रकृति संरक्षण का संकल्प लेने का आह्वान किया। इसके साथ ही अब तक के मुख्य समाचार समाप्त हुए। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन शाम 7 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी देर में हम ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे, खेती बाड़ी।

0: खेतीबाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले तमाम ग्रामीणों को रागिनी कुमारी का प्यार भरा नमस्कार
1: और साथ ही प्रतिमा वर्मा का भी नमस्कार।
0: स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम खेतीबाड़ी में। ग्रामीण भाइयों, आज हम बातें करेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई

0: सिंचाई योजना की।
1: ग्रामीण भाइयों, हमारे देश में खेती किसानों की आजीविका का मुख्य आधार है, लेकिन कई बार बारिश पर निर्भरता और पानी की कमी के कारण फसलों को सही समय पर सिंचाई नहीं मिल पाती, जिससे उत्पादन प्रभावित होता है। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य है हर खेत में तक पानी पहुंचाना और हर बूंद अधिक फसल के लक्ष्य को पूरा करना।
0: इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई के आधुनिक साधनों जैसे ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर सिस्टम यानी फव्वारे सिंचाई अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इससे पानी की बचत होती है और फसल की पैदावार भी बढ़ती है। ग्रामीण भाइयों, इस योजना का एक बड़ा लाभ यह है कि इससे छोटे और सीमांत किसानों को भी अपने खेतों में बेहतर सिंचाई सुविधा मिल पाती है, साथ ही जल संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है। और सरकार का प्रयास है कि खेती को अधिक लाभकारी बनाया जाए और किसानों की आय में वृद्धि हो, इसके लिए सिंचाई सुविधाओं का विस्तार लगातार किया जा रहा है।
1: आइए हम सब मिलकर जल का सही उपयोग करें, आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाएं और खेती को अधिक समृद्ध बनाएं। याद रखिए ग्रामीण भाइयों, पानी का सही उपयोग खेती में लाएगा नया उजास। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ उठाएं और अपने कृषि भविष्य को मजबूत बनाएं। और इसके बाद आइए सुनते हैं एक लोकगीत।

प्राकृतिक खेती टिकाऊ खेती। प्राकृतिक खेती एक रसायन मुक्त पारंपरिक खेती पद्धति है जिसे कृषि पारिस्थितिकी आधारित विविध कृषि प्रणाली माना जाता है जो फसलों, पेड़ों और पशुधन को कार्यात्मक जैव विविधता के साथ एकीकृत करता है। प्राकृतिक खेती ऐसी खेती होती है जिसमें फसलों पर किसी भी प्रकार का रासायनिक कीटनाशक एवं उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है, सिर्फ प्रकृति के दौरान निर्मित उर्वरक और अन्य पेड़ पौधों के पत्ते, खाद, पशुपालन, गोबर खाद एवं जैव कीटनाशक उपयोग में लाया जाता है। यह एक प्रकार से विविध प्रकार की कृषि प्रणाली है। इसमें अन्य लाभों के अलावा मिट्टी की उर्वरता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य की बहाली और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का शमन या निम्नीकरण प्रदान करते हुए किसानों की आय बढ़ाने का मजबूत आधार प्रदान करती है। इससे टिकाऊ खेती को बल मिलता है। प्राकृतिक खेती को समझने के लिए हमें कि टिकाऊ खेती को भी समझना होगा। टिकाऊ कृषि पद्धतियों का लक्ष्य खेती के कारण होने वाले पर्यावरणीय क्षरण को कम करना है, साथ ही फसल और खाद्य उत्पादन में वृद्धि करना भी है। छोटे पैमाने के कृषक समुदायों के भीतर ग्रामीण आर्थिक विकास को बढ़ाने के लिए टिकाऊ खेती की कई रणनीतियां हैं। इस दिशा में विशेष रूप से वर्षा आधारित क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सतत कार्यक्रम मिशन NMSA तैयार किया गया है, जिसमें एकीकृत खेती, जल उपयोग दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, संसाधन संरक्षण में तालमेल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वास्तव में टिकाऊ खेती को अपनाने का मतलब है कि आप बिना पर्यावरण यानी मिट्टी, हवा, पानी को प्रदूषित किए और बिना किसी भी प्राकृतिक संसाधन को समाप्त किए अपने कार्यों से पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को बिना बाधित किए किसी विशिष्ट फसल में पर्याप्त उत्पादन कर सकते हैं। किसान भाई, टिकाऊ

खेती के तरीकों को अपनाने से पहले यह जरूर जानना चाहेंगे कि टिकाऊ खेती या प्राकृतिक रूप से खेती करने के क्या लाभ हैं, और किसान भाइयों को जानना भी चाहिए। आज जब पूरे विश्व में पर्यावरण असंतुलन की समस्या बनी हुई है, एक चुनौती बनी हुई है, भारत जैसे बड़ी जनसंख्या वाले देश में टिकाऊ खेती अत्यंत ही लाभदायक है। पर्यावरण संरक्षण में योगदान, टिकाऊ खेती अगर किसान भाई अपनाते हैं तो उससे पर्यावरण संरक्षण में बहुत बड़ा योगदान दिखाई देता है। पर्यावरण जीवन का संबल है और हमारी अनेक प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इसी से हमें स्वच्छ वायु, साफ पानी, हरे भरे जंगल, विविध पशु पक्षी और आधारभूत मिट्टी प्राप्त होती है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम पर्यावरण को उसी अवस्था में अपनी आगामी पीढ़ियों को सौंप दें जिस अवस्था में यह हमारे पुरखों से मिली है। टिकाऊ खेती प्राकृतिक आधारित खेती होने के कारण पर्यावरण संरक्षण में हमारी पूरी सहायता करती है। प्रदूषण की रोकथाम, टिकाऊ कृषि के फायदे में एक बहुत बड़ी बात है कि इससे प्रदूषण की रोकथाम होती है। टिकाऊ खेती में प्रयुक्त होने वाली कृषि अवशेष अपनी उपयोगिता से हमें लाभान्वित करके अंतिम रूप से प्राकृतिक परिवेश में घुल मिल जाती है और पर्यावरण को किसी प्रकार से हानि नहीं पहुंचाती। उदाहरण स्वरूप, इसमें प्रयुक्त होने वाली सड़ी गली गोबर की खाद, फसलों के अवशेष मिट्टी में मिलकर उसे किसी प्रकार से विषाक्त नहीं करती। टिकाऊ कृषि अपनाने से लागत में भी कमी होती है। टिकाऊ खेती की विधियों में कृत्रिम संसाधनों का प्रयोग कम से कम किया जाता है, इसलिए इससे खेती की लागत में कमी हो जाती है। इसके अंतर्गत कृत्रिम खाद, कृत्रिम कीटनाशियों एवं जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता समाप्त हो जाती है, जिससे किसान के लाभ में बढ़ोतरी तो होती ही है, समूची मानवता लाभान्वित होती है। जैव विविधता में बढ़ोतरी, टिकाऊ खेती के अंतर्गत खेतों में अनेक वनस्पतियों एवं जीवधारियों को पलने बढ़ने का सुअवसर प्राप्त होता है, जिससे कृषि परिवेश की जैव विविधता में बढ़ोतरी हो जाती है। साथ ही साथ पशुधन के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी होता है। टिकाऊ खेती की प्रक्रिया ऐसी है जिसके अंतर्गत खेती एवं पशुपालन को साथ साथ किया जाता है। ऐसे में पशुधन की संख्या में बढ़ोतरी होती है। यही नहीं, टिकाऊ खेती मत्स्य पालन, सुकर पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, कुक्कुट पालन, बत्तख पालन आदि को प्रोत्साहित करती है। जैसे गाय पालन से गोबर मिलता है, उसी प्रकार मुर्गी पालन से जो अवशिष्ट निकलता है वह मछलियों का भोजन बनता है। इस प्रकार एक दूसरे के पूरक के रूप में कार्य करके लागत में कमी और पशुधन के लिए लाभकारी है। हरियाली में भी वृद्धि होती है टिकाऊ कृषि से। टिकाऊ खेती की प्रकृति के अंतर्गत बागवानी एवं कृषि वानिकी को अपनाने पर अत्यधिक जोर दिया गया है, जिससे परिवेश की कुल हरियाली में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है और हो जाती भी है। इससे एक ओर किसान को लंबे समय तक लाभ तो होता ही रहता है, इसीलिए कि पेड़ जब लगते हैं तो उससे मिलने वाले लाभ किसान भाइयों को होते रहते हैं, जबकि पर्यावरण की भी सुहावना एवं संतुलित बना रहता है। किसानों के लिए आर्थिक रूप से लाभकारी, टिकाऊ खेती की पद्धति के अंतर्गत एक ओर किसानों की लागत में कमी होती है तो दूसरी ओर खेती में वृक्षारोपण, पशुपालन आदि के परस्पर उपयोग का एक ऐसा चक्र विकसित हो जाता है जिससे व्यर्थ पदार्थों का निकास शून्य हो जाता है। इससे किसान

किसान का आर्थिक लाभ बढ़ जाता है। साथ ही इससे केवल तात्कालिक लाभ ही प्राप्त नहीं होता, वरन लंबे समय तक लाभ मिलता रहता है। टिकाऊ खेती को जब किसान भाई अपनाते हैं तो सामाजिक समानता में भी वृद्धि होती है। टिकाऊ खेती सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से किसान, श्रमिक समुदाय एवं परिवेश के मानवीय संबंधों पर आधारित है। इसके अंतर्गत सभी लाभ के बराबर भागीदार होते हैं, इसलिए इससे सामाजिक समानता व समरसता में वृद्धि होती है। किसान को जहां आर्थिक लाभ मिलता है, वहीं श्रमिक को निरंतर कार्य व मजदूरी की प्राप्ति सुनिश्चित होती है। साथ ही साथ अक्षय स्रोतों में भी वृद्धि टिकाऊ कृषि के द्वारा होती है। टिकाऊ खेती एक ओर खेती के कृत्रिम संसाधनों से परहेज करती है, जबकि दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहित करती है। इससे पर्यावरण में अक्षय स्रोतों की वृद्धि होने लगती है। उदाहरण स्वरूप, रासायनिक खाद के स्थान पर जैविक खाद के स्रोतों में वृद्धि होती है। सुख, शांति और सौंदर्य के स्रोतों में भी वृद्धि टिकाऊ खेती के द्वारा होती है। टिकाऊ खेती से जैव विविधता, पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक समानता एवं परस्पर निर्भरता का जो समग्र जीवन संतुलन निर्मित होता है, वह मानवीय परिवेश में सुख, शांति एवं सौंदर्य के स्रोतों में वृद्धि एवं अनुकूलता के दर्शन सुलभ कराता है। इससे कृषि क्षेत्र एवं परिवेश में जीवन की सार्थकता एवं अनुकूलता के दर्शन सुलभ हो जाते हैं। इस प्रकार टिकाऊ खेती के अंतर्गत खेत खलिहान एवं फसलों, किसान व श्रमिकों से अत्यंत कोमल व्यवहार करते हैं और उन्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाते। टिकाऊ खेती पशुधन के लिए भी उपयोगी है एवं अनुकूल सिद्ध होती है। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अस्थाई कृषि या टिकाऊ खेती द्वारा खेती जनित सभी प्रकार की समस्याओं का स्वतः ही अंकुश लग जाता है और खेती प्रकृति का एक अवयव और अनुपम उपहार बन जाती है। टिकाऊ खेती के आधार पर विभिन्न फसलों का फसल प्रणाली में समावेश करने के प्रति इकाई लागत को कम किया जा सकता है। इससे विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न जैसे धान्य, दाल, तेल इत्यादि आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ साथ मृदा या मिट्टी स्वास्थ्य का संरक्षण होता है। इस तरह हम देखते हैं कि प्राकृतिक खेती के जल संरक्षण और पारिस्थितिक संरक्षण पहलू पानी की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन कृषि मूल्य श्रृंखला के विविध चरणों में CO2 उत्सर्जन में कमी में योगदान करते हैं। इन फायदों को देखते हुए किसान भाइयों को इसे अवश्य अपनाना चाहिए।

0: अभी आप वार्ता सुन रहे थे, सुषमा श्रीवास्तव की वार्ता थी, विषय था प्राकृतिक खेती। और अब आइए बात करते हैं धान में कीट प्रबंधन की। कृषक भाइयों, धान की अच्छी पैदावार के लिए फसल को कीटों से बचाना बहुत आवश्यक है। धान में मुख्य रूप से तनाछेदक पत्ती लपेटक, गंधी बग और भूरा माहू जैसे कीट फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं।
1: और इन कीटों के प्रकोप से पौधों की वृद्धि रुक सकती है, पत्तियां सूख सकती है और दानों की संख्या और गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। इसलिए खेत में नियमित रूप से फसल का निरीक्षण करते रहें और कीटों के शुरुआती लक्षणों को पहचानें। कृषक भाइयों, कीट दिखाई देते ही तुरंत रासायनिक दवा का प्रयोग करना हमेशा जरूरी नहीं है। समेकित कीट प्रबंधन यानी IPM अपनाना अधिक प्रभावी और सुरक्षित तरीका है। संतुलित मात्रा में उर्वरक का प्रयोग करें, खेत में उचित जल प्रबंधन रखें और खेत की नियमित निगरानी करें। यदि कीटों का प्रकोप आर्थिक क्षति स्तर से अधिक हो जाए तो कृषि विभाग या कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार ही अनुशंसित कीटनाशक यानी सही मात्रा और सही समय पर प्रयोग करें और दवा का छिड़काव करते समय सुरक्षा उपायों का भी ध्यान रखें। कृषक भाइयों, समय पर कीट की पहचान करें, सही विधि से उसका प्रबंधन करें, स्वस्थ रहे धान की फसल, बढ़े उत्पादन और किसान की खुशहाली। किसान भाइयों, वैज्ञानिक कृषि तकनीकों को अपनाएं, अपनी फसल को कीटों से सुरक्षित रखें और बेहतर उत्पादन की ओर कदम बढ़ाएं।

0: खेती में मेहनत किसान करता है, लेकिन कई बार छोटे-छोटे कीट उसकी पूरी मेहनत पर पानी फेर देते हैं। धान की फसल को ऐसे नुकसान से बचाने के लिए हम बात कर रहे हैं धान में कीट प्रबंधन की। कृषक भाइयों, धान की फसल में कीटों का प्रकोप अलग अलग अवस्थाओं में दिखाई देता है। तनाछेदक के कारण पौधे के बीज की पत्ती सूखने लगती है, जबकि बालियां निकलने के समय प्रकोप होने पर सफ़ेद बालियां दिखाई दे सकती है। पत्ती लपेटक पत्तियों को मोड़कर उनके अंदर का हरा भाग खाता है। इसी तरह कुछ कीट दानों को नुकसान पहुंचाकर उपज और गुणवत्ता दोनों को प्रभावित करते हैं। इसलिए खेत में केवल सिंचाई और खाद पर ही ध्यान न दें, बल्कि फसल की नियमित निगरानी भी करते रहें। सप्ताह में कई बार खेत का निरीक्षण करें और पत्तियों, तनों और बालियों को ध्यान से देखें। शुरुआती अवस्था में कीट की पहचान हो जाने पर उसका प्रबंधन आसान हो जाता है। अनावश्यक कीटनाशकों का छिड़काव ना करें, इससे खेती की लागत बढ़ती है और मित्र कीटों को भी नुकसान पहुँच सकता है। खेत में लाभकारी कीटों को बचाना ही प्राकृतिक रूप से कीट नियंत्रण में सहायक होता है। आवश्यकता पड़ने पर कृषि विशेषज्ञ या कृषि विभाग की सलाह लें और केवल अनुसंधित दवा उचित मात्रा और सही समय पर ही प्रयोग करें। दवा का छिड़काव करते समय हाथों में दस्ताने, चेहरे पर मास्क आदि सुरक्षा साधनों का उपयोग जरूर करें। कृषक भाई, याद रखें, स्वस्थ फसल ही अच्छी पैदावार की पहली सीढ़ी है। जागरूक रहें, वैज्ञानिक तरीकों को अपनाएं और अपनी मेहनत की फसल को सुरक्षित रखें।
1: धान की फसल में तना छेदक, भूरा माहू यानी BPH और कंथी बग जैसे प्रमुख कीटों का खतरा रहता है। नियंत्रण के लिए संतुलित खाद का प्रयोग करें। जैविक उपायों में फेरोमोन ट्रैप या नीम का तेल लगाएं और ज़रूरत पड़ने पर पाइमेट्रोजन या क्लोरेंट्रो नीलीप्रोल जैसी अनुमोदित दवाओं का छिड़काव करें। तना छेदक जो कीट है उसके लक्षण सुंडी तने को अंदर से खाती है, जिससे बालियां सफ़ेद और सूख जाती है। भूरा माहू जो कीट है वो तने के निचले हिस्से से रस चूसते हैं, जिससे खेत में गोल घेरे में फसल सूखने लगती है। और गंधी बग जो कीट है इसके लक्षण है या दूधिया अवस्था में दानों का रस चूसता है, जिससे दाने खाली या काले पड़ जाते हैं। बात करते हैं समेकित और प्रभावी कीट नियंत्रण की, तो इसके निवारक उपाय आप कर सकते हैं। खेत की मेड़ों को साफ रखें, अत्यधिक नाइट्रोजन खाद का प्रयोग ना करें और बीच बीच में खेत का पानी सुखाएं। जैविक और यांत्रिक नियंत्रण की बात करें तो प्रति एकड़ 4 से 5 फेरोमोन ट्रैप लगाएं। कीटों को आकर्षित करने के लिए लाइट ट्रैप का प्रयोग करें या नीम आधारित कीटनाशकों का छिड़काव करें। रासायनिक नियंत्रण में आप तना छेदक के लिए क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल या कार्टॉप हाइड्रोक्लोराइड का उपयोग करें। भूरा माहू के लिए पाइमेट्रोजन 75% WG यानी 120 ग्राम या डाइनो टफ्यूरन 20% SG ग्राम प्रति एकड़ की दर से छिड़कें। ध्यान रखें किसान भाइयों कि स्प्रे का रुख पौधों के निचले तने की ओर हो।

और कृषक भाइयों, चलते चलते अगस्त माह के कृषि कार्य की कुछ बातें कर लें। अगस्त का महीना खरीफ फसलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस समय खेतों में फसल की पैदावार तेज होती है, इसलिए समय पर निराई गुड़ाई, उर्वरक प्रबंधन, सिंचाई और कीट रोग नियंत्रण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। धान

0: की फसल में खेत का नियमित निरीक्षण करें, अनावश्यक पानी भराव से बचें और आवश्यकता के अनुसार जल प्रबंधन करें। खरपतवारों को समय रहते नियंत्रित करें, क्योंकि ये फसल के पोषक तत्व पानी और प्रकाश के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। मक्का, अरहर, सोयाबीन और अन्य खरीफ फसलों में भी खरपतवार नियंत्रण और कीट रोगों की नियमित निगरानी करें। फसल में किसी प्रकार की कीट और रोग के लक्षण दिखाई देने पर तुरंत पहचान करें और कृषि विशेषज्ञ की सलाह के अनुसार उचित प्रबंधन अपनाएं। कृषक भाइयों, अगस्त में पशुपालन पर भी ध्यान देना जरूरी है। पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था करें, साफ पानी उपलब्ध कराएं और पशुशाला में जल भराव ना होने दें।
1: और साथ ही खेत की मेड़ पर और खाली स्थानों पर उपयोगी वृक्ष और चारा फसलों का रोपण करें। इससे मिट्टी और पर्यावरण दोनों को लाभ मिलता है। समय पर कृषि कार्य करें, फसल की नियमित निगरानी करें, मेहनत और वैज्ञानिक ज्ञान अपनाएं, बेहतर उत्पादन और खुशहाली पाएं। तो कृषक भाइयों, अगस्त माह के इन महत्वपूर्ण कृषि कार्यों को समय पर पूरा करें और अपनी खरीफ फसलों को स्वस्थ और मजबूत बनाएं। तो इसी चर्चा के साथ कार्यक्रम खेतीबाड़ी कार्यक्रम से अब दीजिए रागनी कुमारी और
0: प्रतिमा वर्मा को
1: अनुमति।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीणों को संबोधित कार्यक्रम खेतीबाड़ी। आकाशवाणी का ये डाल्टनगंज केंद्र है FM 103 MHz पर। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कृषकों को संबोधित कार्यक्रम ग्रामीण सभा। ग्रामीण सभा कार्यक्रम सुनने वाले सभी ग्रामीण भाइयों को रागनी कुमारी का प्यार भरा नमस्कार
1: और साथ ही प्रतिमा वर्मा का भी नमस्कार।
0: स्वागत है आप सबों का कार्यक्रम ग्रामीण सभा में। तो किसान भाइयों, आज हम सबसे पहले इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे नवजात बछड़ों की देखरेख की।
1: नवजात बछड़े या बछिया की सही देखभाल जन्म के तुरंत बाद से ही शुरू होती है। सबसे पहले बच्चे के मुंह और नाक की सफाई करें। नाभि को साफ प्लेट से काटकर उस पर टिंचर आयोडीन लगाएं। जन्म के 2 घंटे के भीतर उसे माँ का पहला काढ़ा दूध यानी खीस पिलाएं और उसे ठंडी हवा से बचाकर सूखे और साफ बाड़े में रखें।
0: और जन्म के तुरंत बाद आप ये ज़रूरी काम जरूर करें, जैसे सांस लेना। पैदा होने के तुरंत बाद बछड़े की नाक और मुंह की झिल्ली गंदगी साफ करें ताकि सांस लेने में दिक्कत ना हो। गाय को बछड़े को चाटने दें। यदि गाय ना चाटे तो साफ और सूखे कपड़े या टाट से बछड़े का पूरा शरीर पोंछ कर सुखाएं। पेट से 2 से 3 इंच की दूरी पर नाभि की नाल को साफ धागे से बांधकर नए ब्लेड से काटें। कटे हुए स्थान पर तुरंत टिंचर आयोडीन या एंटीसेप्टिक लगाएं ताकि संक्रमण ना फैले। जन्म के पहले 2 घंटे के भीतर 1 से 2 लीटर माँ का दूध पहला दूध जरूर पिलाएं। यह रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। बछड़े को उसके शरीर के वजन का 1/10 हिस्सा यानी लगभग 3 से 4 लीटर दूध प्रतिदिन बांट कर पिलाएं। और बछड़े की उम्र 3 से 4 सप्ताह होने पर उसे थोड़ा थोड़ा शिशु आहार यानी कॉफ स्टार्टर और साफ पानी देना शुरू करें। बछड़े की उम्र 10 से 14 दिन की होने पर पशु चिकित्सक की सलाह से पेट के कीड़े मारने की दवा दें। बाड़े के फर्श पर सूखी पुआल या भूसा बिछाकर बिस्तर लगाएं। फर्श को हमेशा सूखा और साफ रखें। और बछड़े की उम्र 3 से 4 महीने होने पर पशु चिकित्सक से संपर्क करें और ज़रूरी टीके लगवाएं। तो ये हुई बातें नवजात बछड़ों की देखरेख की।
1: आइए आपको एक भेंटवार्ता सुनवाते हैं। एक किसान से भेंटवार्ताकार हैं अनिरुद्ध महतो, भोंगा पाटन पलामू के रहने वाले हैं। बातचीत कर रहे हैं संतोष कुमार।
2: अपने खेतों से घर वापस आए, गांव घर के कार्य में लगे सभी किसान भाई बहन को

0: संतोष कुमार का प्यार भरा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। किसान भाइयों, आज हमारे साथ हैं पलामू जिला के पाटन प्रखंड के भोंगा गांव के एक सफल कृषक अनिरुद्ध महतो, जिनसे आज हम विस्तृत बातें करेंगे खेतीबाड़ी की। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: अभी क्या क्या लगाए हैं खेतों में?
1: अभी जैसे धान का बिचड़ा लगाए हैं, मक्का लगाए हैं, अरहर की फसल लग रहा है, और यही अन्य जैसे भिंडी है, बोदी है, ये उसमें बराई है, तिल है, यही फसल का मैंने खेती किया जा रहा है, कर रहे हैं।
0: धान के जो नर्सरी है उसकी तैयारी कैसे किए थे?
1: धान की नर्सरी को तैयार करने के लिए बारिश होने के पहले हम लोग खेत को उसको जोताई करते हैं, जिसके पास जो व्यवस्था हो, हल बैल, हर हलचल बैल या ट्रैक्टर, रोटावेटर जैसे भी, और हम तो अपना ट्रैक्टर से जोताई किए। इसके बाद बारिश हुआ, बारिश में हम लोग और खेत को लेबल मैंने पट्टा चलाकर और बिचड़ा को छिड़काव किए। अब इसके बाद उसमें पुनः एक बार पट्टा चला दिए और एक बहुत बढ़िया मैंने उसका जमा हुआ।
0: अच्छा अच्छा
1: और इसके बाद बारिश तो हो ही रहा है,
0: रुक रुक कर हो रहा है, थोड़ा
1: रुक रुक कर हो रहा है, बिचड़ा लगभग लगभग तैयार ही है। अब कुछ ही दिनों में हम लोग आगे रोपाई का वर्क काम करेंगे।
0: अच्छा, तो अभी रोपाई नहीं हुई, सिर्फ नर्सरी में लगा के रखे हुए
1: जी,
0: हैं।
1: नर्सरी में लगा के रखे हुए हैं, अब तैयारी स्थिति में है। कुछ ही दिनों में अगर बारिश हुआ तो हम लोग धान का फसल लगा देंगे।
0: अच्छा, अभी रोपाई की बात जहाँ तक आ रही है, तो हमारे कृषक वैज्ञानिकों द्वारा बहुत सारा यंत्र उतारा गया है खेतों खलिहानों में, तो रोपाई कैसे करते हैं आप?
1: रोपाई हमारे यहाँ जनरली बहुत पहले से जो पुराना रीति रिवाज से
0: अच्छा
1: चले आ रहा है, उसी को हम लोग अधिकांश लोग उसी को अपनाते हैं। कुछ कुछ किसान हैं जिसको हम लगाते हैं, कुछ और लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं कि अभी जो श्री विधि से खेती धान लगाने का, तो उसमें थोड़ा लगाने में लोगों को लगता है कि ये बड़ा महंगा काम है, लेकिन बहुत आसान काम है
0: जी,
1: और उससे हर तरह का मैंने बचत होता है, निकाई गुड़ाई करने में अच्छा होता है, कटाई करने में भी बेहतर सुविधा मिल होता है, और फसल का उपज भी बहुत अच्छा होता है। वो
0: मतलब श्री विधि से पंक्ति में बुआई करने की आवश्यकता है हमारे किसान भाइयों को
1: जी,
0: ताकि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त किया जा सके।
1: जी।
0: और यहाँ धान में मुख्यतः क्या क्या परेशानियाँ आती हैं आपको इस क्षेत्र में?
1: धान में विशेष कुछ ऐसा परेशानी नहीं, ऐसा नहीं समझा जाता है, लेकिन कुछ कुछ बीमारी हैं।
0: अच्छा।
1: जैसे पत्ती में पीले रंग का धब्बा होना, और उससे ऊपर जब गया तो बाली में आने लगा, तो बाली जब कुछ निकलता है इसके बाद कुछ बाली सूख जाते हैं, ये इसके बाद कुछ मक्खी चूसक कीड़ा होते हैं, तो उसमें परेशानी है, पर दवा का स्प्रे करते हैं, उससे सहूलियत तो मिलता है।
0: अच्छा।
1: लाभ होता है।
0: अच्छा, और घरेलू उपचार के लिए?
1: और घरेलू उपचार के लिए तो नीम का तेल हम लोग तैयार करते हैं, और नीम का तेल का भी छिड़काव करते हैं, और घरेलू उपचार तो यही है, इससे दूसरा कोई तो नहीं कर पाते हैं।
0: और इस प्रकार धान की खेती होती है
1: जी।
0: अभी कितने क्षेत्र में लगाए हुए हैं आप?
1: करीब करीब 1 एकड़ धान लगाना है, जिसके लिए हमको 8 केजी धान बीज का नर्सरी लगाए हैं।
0: ये तो धान की बात हुई
1: जी।
0: अब हम सब्जियां पर आते हैं, खासकर हमारे किसान भाई लोग सब्जियां बृहद पैमाने पर उगाते हैं, क्योंकि सब्जियां बहुत जल्द तैयार होती हैं और झटपट आमदनी दे जाती हैं, नकदी फसल हैं सब्जियां। तो सब्जियां में आपने बताया कि भिंडी लगाए हैं आप, और कुछ लत्तर वर्गीय सब्जियां के भी नाम आपने लिया
1: जी,
0: तो कौन कौन सी सब्जियां वो हैं एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे, और उसकी खेती कैसे कर रहे हैं आप?
1: जी, अभी सब्जी में वर्तमान भिंडी है, नेनुआ है,
0: हाँ,
1: करेला है,
0: हाँ,
1: झींगी है,
0: सब बरसात वाली,
1: सब बरसात वाली, और लोबिया जिसको
0: अच्छा,
1: बोदी हम लोग हिंदी में कहते हैं,
0: हाँ,
1: वो बोदी का भी फसल लगाए हैं।
0: अच्छा
1: सब्जी।
0: अच्छा, तो इसकी देख रेख कैसे करते हैं आप? जैसे भिंडी वाले बात जहाँ तक आती है, भिंडी बहुत से किसान भाई लोग उपजाते हैं, तो उसकी खेती कैसे करना चाहिए?
1: भिंडी का खेती सर्दी छोड़कर, सर्दी से बचते हुए सभी दिन भिंडी का खेती होता है।
0: अच्छा।
1: और हम देखते हैं कि अभी जो भिंडी का सब्जी जो निकल रहा है मंडी में, हम बेच रहे हैं, खा रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं, इसके लिए हमें मई महीना में खेत को जुताई करना पड़ता है।
0: अच्छा,
1: इसके बाद मई महीना के लास्ट, जून के फास्ट में उस भिंडी का बीज को खेत में हम लोग लगा देते हैं।
0: अच्छा अच्छा
1: उस समय थोड़ा अधिक धूप मैंने होता है, धूप में कुछ कष्ट तो होता है, पर पानी अवेलेबल है और पानी से हम लोग सिंचाई कर लेते हैं। और जैसे ही वो जुलाई लास्ट, जुलाई फर्स्ट हुआ और जुलाई मध्य होते होते वो फल आना मैंने चालू हो जाता है। और अभी भिंडी को मैंने रेट में भी कहा जाए तो बहुत मैंने लगभग बढ़िया रेट है, तो उससे हम लोग को आय अर्निंग भी हो जाता है। और उसको देख रेख के लिए अभी भिंडी में छोटे छोटे कीटनाशक, बहुत कीड़ा होते हैं, अगर उसमें दवा का स्प्रे नहीं किया, देखते रख रखाव ठीक से नहीं देखे, तो कीड़ा उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान करता है।
0: अच्छा,
1: सब फल टेढ़ा हो जाएगा तो मैंने थोड़ा कीड़ा लोग खा जाते हैं उसको, इसलिए उसमें स्प्रे का भी ज़रूरत पड़ता है। तो स्प्रे हम लोग बीज दुकान से
0: खरीद लेते हैं। अच्छा,
1: और वैसे कुछ कुछ किसान को हम स्वयं करते हैं और लोगों को बताते हैं कि नीम तेल, नीम तेल ब्लॉक में कृषि विभाग की तरफ से
0: दिया जाता है,
1: फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जिसको हर सप्ताह में उपयोग करने से किसी भी प्रकार के कीड़ा उसमें बाधक नहीं बनता है।
0: अच्छा, तो उसका भी उपयोग करते हैं?
1: जी, उसका उपयोग करते
0: हैं। तो ये तो भिंडी वाली बात आपने बताई, और लत्तर वर्गीय में जैसे बोदी बराई वगैरह जो है,
1: बोदी लोबिया हो गया, करेली नेनुआ हो गया, तो नेनुआ के सब्जी में विशेष मतलब दवा की जरूरत नहीं पड़ता है
0: ना,
1: और बहुत हल्का फुल्का दवा से कभी हुआ तो ठीक है, तो दवाई की कोई जरूरत नहीं है।
0: नेनुआ फल दे देता है,
1: नेनुआ ऐसी फल दे रहा है और देता भी है। और उसमें लेकिन जमीन पर जो नीचे जो पड़े रहते हैं बरसात के समय में ना, वो फल अधिकांशतः गंदा हो जाते हैं।
0: अच्छा,
1: उससे बचाव के लिए
0: मचान जरूरी है,
1: मचान का व्यवस्था हम लोग बनाते हैं, और मचान से ही बहुत अच्छा फसल
0: प्राप्त,
1: सब्जी प्राप्त होता है।
0: तो ये तो आप सब जितने भी लतर वाली सब्जियां हैं सब में उपयोग करते होंगे मचान?
1: जी, मचान बरसात के समय में जितने भी सब्जियां हैं उसमें सभी में मचान का व्यवस्था अनिवार्य जरूरी है। अगर वो नहीं किया गया, आपको जो लाभ मिलना चाहिए वह लाभ आपको नहीं मिल पाएगा।
0: जी, और लतर वर्गीय सब्जियां हम ही अनाज फसल में हमने बातें की धान की, और इसके अतिरिक्त जैसे दलहन की अगर हम बात करें, तो जो कि दलहन पर काफी विशेष बल दिया जाता है, इसलिए कि दलहन एक ऐसी फसल है जिसमें पानी की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है और अच्छा खासा उपज भी हमारे किसान भाई बहन प्राप्त कर लेते हैं। तो दलहन की क्या स्थिति, दलहन में किसकी खेती अभी करने जा रहे हैं?
1: दलहन की खेती में अभी अरहर जैसे मुख्य दलहन फसल है, हमारे यहाँ जो अरहर होता है
0: जी,
1: हम लोग लगाते हैं, होता भी है, और अभी वही दलहन का फसल लग रहा है अरहर। और ये बराई भी एक दलहनी फसल है, वो बहुत कम मात्रा में अभी लगाया
0: लेकिन
1: जाता है,
0: लेकिन इसका दाल बहुत चाव से लोग,
1: लेकिन कम मात्रा में लगाया जा रहा है, अब उसको उसके तरफ ध्यान लोग कम दे रहे हैं, पर उसका शारीरिक लाभ की ओर देखा जाए तो बहुत बेहतर, खाने में भी अच्छा लगता है और लाभ भी होता है उसका।
0: बराई के लिए मुख्यतः कैसे तैयारी करते हैं आप?
1: बराई लगाने के लिए मुख्यतः बहुत विशेष आजकल तैयारी नहीं हो किया करते हैं, इसलिए कि बरसात के समय में खेत को जोतिए वो बारिश हो जाएगा, तो तैयारी के लिए इसलिए हम लोग लगातार ही खेत को जोतते हैं, उसमें लगा देते हैं। अब हो भी जाता है, ऐसा भी नहीं कि नहीं होता है, बहुत ज्यादा तो नहीं होता है, लेकिन जो हुआ वो ठीक है, नहीं
0: मतलब बराई में दिक्कत नहीं आती है?
1: नहीं, वैसे दिक्कत।
0: और अरहर की अगर बात की जाए तो
1: अरहर भी उसी तरह से, सबसे पहले अरहर का बारिश होने से पहले खेत को हम लोग जुताई कर देते हैं, और जैसी बारिश हुआ तो उसको लगा देते हैं, उसे सिंचाई सिंचने की कहीं का भी जरूरत नहीं है, और बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। और उसमें कभी कभी परेशानियां आती है, जैसे ठंडी के समय आता है तो उसमें देहात में लोग कहते हैं कि धुन आ गया, पाला आ गया, तो उसमें कोई नुकसान होता है। अभी कुछ वर्तमान तो नीलगाय से भी कुछ परेशानी हो रही है।
0: अच्छा,
1: अगर ये सब से बच गया अरहर भी मैंने बहुत बढ़िया हो जाता है।

0: और कुछ किसान लोग हैं जो कुछ मतलब खाने वाले लोग हैं ग्राहक जो घर का दाल समझकर वो बहुत चॉइस से अपना
1: लोकल समझते हैं वो
0: लोकल समझ के वो पसंद करते हैं।
1: जी, स्थानीय होने के नाते और भी बहुत फायदे हो
0: जी
1: जाते हैं।
0: जी जी
1: और
0: बराबर
1: जो भी ग्राहक हैं, खासकर स्थानीय सब्जियां की अगर बात की जाए, तो इसकी मांग बराबर बनी रहती है
0: बराबर बनी रहती है
1: और
0: सही
1: अच्छा
0: बात।
1: खासा मुनाफा हमारे किसान भाई प्राप्त करते
0: जी जी
1: हैं।
0: जी
1: तो अभी सब्जी की जो मैंने बातें की, तो सब्जी में अभी क्या हाइब्रिड लगाए हैं या सब स्थानीय वाले हैं?
0: कुछ स्थानीय जो लोकल प्रभेद है वो भी लगाए हैं और कुछ हाइब्रिड का भी लगाए हैं,
1: जी
0: जैसे भिंडी है, नेनुआ है,
1: हाँ
0: तो हमें लगता है कि अधिकांशतः हाइब्रिड ही लग रहा है
1: अच्छा
0: और लोकल वाले में कुछ उस तरह के लाभ, पूंजी तो कम लगता है पर लाभ उससे थोड़ा कम दिखता है।
1: उपज में कमी
0: हाँ,
1: आती
0: उपज में कुछ कमी आता है वो।
1: है, तो इसके लिए जो वैज्ञानिक विधियां तकनीकियां बताई जाती हैं तो उसका प्रयोग नहीं करते?
0: जो बन पाता है करते हैं,
1: जी
0: कुछ वैज्ञानिक नियम को अपनाते हैं, कुछ अपना नियम घरेलू अपनाते हैं। जैसे उर्वरक में कहा जाए तो उर्वरक के लिए ये जो रासायनिक खाद पदार्थ हैं
1: जी जी
0: और उससे बेहतर तो हम लोग का घर का है
1: गोबर खाद।
0: गोबर खाद, तो उससे ज़्यादा बेहतर लाभ होता है, खेत भी दुरुस्त रहता है, फसल भी बढ़िया रहता है और खाने में भी अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल। ये तो बातें हो गई सब्जियां की,
0: जी
1: थोड़ी थोड़ी बातें हम सारी फसलों की कर रहे हैं,
0: जी
1: खासकर धान फसलों की भी हमने कर ली, दलहन की और सब्जियां की। अब हम बातें करते हैं पशुधन की। भोंगा गांव में पशुधन की क्या स्थिति है?
0: पशुधन का लगभग बहुत अच्छा स्थिति है।
1: अच्छा,
0: जी,
1: किस तरह के गाय यहाँ पाले जाते हैं?
0: गाय कुछ देसी नस्ल के हैं,
1: जैसे
0: जैसे अब देसी नस्ल में क्या कहें, छोटा छोटा गाय है वो लोग,
1: अच्छा
0: और अभी अधिकांश गाय साहिवाल नस्ल के हैं गाय, और हर घर में एगो दुगो गाय अपना घरेलू उपयोग के लिए
1: रखे हुए हैं सब।
0: सभी किसान भाई रखे हुए हैं।
1: तो निश्चित रूप से कंपोस्ट वगैरह की कमी नहीं होती होगी?
0: नहीं, कंपोस्ट की कोई कमी नहीं है, उसी लाभान्वित है,
1: जी
0: लाभ उठा रहा है उसका।
1: और तो यहाँ समूह में भी बकरी पालन करते हैं?
0: वैसे समूह में तो सर बकरी पालन विशेष लोग नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं उन लोग को सभी को बता रहा हूँ कि समूह के द्वारा बकरी पालन का भी एक गवर्नमेंट के तरफ से स्कीम चल रहा है, उससे
1: हाँ,
0: सभी लोग लाभ उठाएं।
1: और सरकार द्वारा ढेर सारी योजनाएं चलाई गई हैं जिसमें
0: हाँ
1: बकरी पालन के लिए भी लाभ दिया जाता है,
0: जी
1: और शेड निर्माण वगैरह का भी
0: जी
1: मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम के तहत दिया जाता है, उनको शेड वगैरह बनवाए
0: जी
1: जाते हैं
0: जी
1: गांव में,
0: जी
1: तो इसका लाभ गांव में लेते हैं कि नहीं लोग?
0: ले रहे हैं,
1: अच्छा
0: ले रहे हैं सर। काउ शेड बहुत सारा बना जो
1: अच्छा
0: गाय के लिए बना,
1: मनरेगा के तहत।
0: जी,
1: अच्छा
0: और बकरी के लिए, बकरी पालन के लिए अभी आवेदन हो रहा है,
1: अच्छा
0: और कुछ एक मुर्गी फॉर्म भी है,
1: अच्छा अच्छा
0: पोल्ट्री फॉर्म, उसके लिए भी अप्लाई हो रहा है।
1: अच्छा
0: हमें विश्वास है कि सरकार जो मदद कर रही है और आगे भी मदद करते रहेगी और
1: तो
0: इसका
1: शेड का
0: लाभ
1: नाम यहाँ करवाया गया, शेड निर्माण
0: शेड निर्माण, जी,
1: जी। आ तो
0: उससे बहुत अच्छा हम लोग को सहयोग मिला और लाभ उठा रहे हैं
1: अभी
0: उसका।
1: कितना लेते हैं लोन?
0: अभी करीब करीब हम 1,50,000 रुपया का लोन ले चुका हूँ।
1: अच्छा, तो हर सीजन में लेते हैं, हर मौसम में लेते हैं,
0: जी,
1: खरीफ हो गया चाहे रवि?
0: जैसे वो एक हमें खेती लगाने के लिए पैसे, अभी हम खेती लगा लिए उनका पैसे से,
1: हाँ
0: जब खेती हुआ उसको बेच दिए,
1: हाँ
0: कुछ
1: जी
0: कुछ खाए या कुछ बेच दिए, तो उनका पैसा मैं वापस कर देता हूँ,
1: जी
0: पुनः फिर जब ज़रूरत पड़ा तो पैसा वहाँ से ले लाएंगे
1: हाँ
0: और ले लाते हैं और फिर उसका अगले फसल में उपयोग कर लेते हैं, और जब फिर अगला फसल को तैयार हुआ, कुछ खाए या कुछ बेच दिए, इसके बाद बेच जो बेच

0: बेचते वो पैसा उनको फिर वापस कर देते हैं। अब इसी कड़ी से सरकार का योजना जो कृषि लोन है उसका लाभ उठा रहे हैं।
1: किसान क्रेडिट कार्ड का,
0: जी
1: तो प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ आप उठाते हैं और वर्षों से उठा रहे हैं, आप 2005 से उठा रहे
0: जी
1: हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और 1,50,000 रुपया आप खरीफ रवि में
0: उपयोग
1: लेते
0: करते
1: हैं,
0: हैं।
1: उपयोग
0: जी
1: करते हैं, और फिर इसकी वापसी भी समय पे कर देते हैं।
0: वापसी, बस फसल तैयार हुआ, फसल काटे और अपना खाने के लिए रखे ज़रूरत के अनुसार, और बाकी जो बचा उसे बेचकर बैंक का पैसा वापस कर देते हैं।
1: जी, और उससे फिर आपका शक जो है वो बना हुआ रहता है,
0: जी
1: ये बहुत बड़ी बात है। किसान भाइयों, हम ऋण को समय पे चुकता करें तो उससे बहुत फायदा हमें प्राप्त होता है। और अगर हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बात करें तो इसका लाभ कब से ले रहे हैं आप?
0: ये इसका लाभ हम 2020 से ले रहे हैं।
1: अच्छा,
0: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मैं 2020 से इसका लाभ ले रहे हैं, और ये इस तरह का मैंने कहा जाए कि ये मैंने डूबते का एगो तिनका का सहारा जो कहते हैं
1: जी,
0: उस तरह से इसका लाभ नज़र आता है कि जब हमें पैसे की जब मैंने दिक्कत होना अनुभव हुआ
1: हाँ,
0: तो हर 4 महीना पूरते पूरते बस 2,000 रुपया अकाउंट में आ जाता है, और उस पैसा को मैं अपने खेत में कभी कभी खाद की ज़रूरत
1: हाँ,
0: पड़ा,
1: खाद बीज जो भी आवश्यकता
0: बीज
1: पड़े।
0: का ज़रूरत पड़ा, या कभी कभी थोड़ा बहुत कुछ दवा जिसे
1: हाँ,
0: दवाई का स्प्रे करना हो उसमें बहुत सहयोग मिलता है उससे। हम लाभ उठा रहे हैं, हमारे क्षेत्र में बहुत सारे किसान भाई लोग वो लोग भी लाभ उठा रहे हैं।
1: आप थे पलामू जिला के पाटन प्रखंड के भोंगा गांव के एक सफल कृषक अनिरुद्ध मेहता जी। आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारियां साझा की, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
0: नमस्कार सर, धन्यवाद। नमस्कार सर।
2: अभी आप सुन रहे थे एक सफल किसान अनिरुद्ध महतो, जो भोंगा पाटन पलामू के रहने वाले हैं। इनसे ली गई भेंटवार्ता, बातचीत कर रहे थे संतोष कुमार। और अब आइए बात करते हैं आज की बात में अंतर्वर्ती खेती के लाभ की। किसान भाइयों, इस पद्धति का सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि खेत की भूमि, सबसे पहले हम बात कर लें अंतर्वर्ती खेती कहते किसको है। एक ही खेत में एक साथ दो या दो से अधिक फसलों की खेती करना, इसे हम अंतर्वर्ती खेती के अंतर्गत रखते हैं, जैसे मक्का के साथ अरहर, बाजरा के साथ अरहर या अन्य उपयुक्त फसल संयोजन। तो इस पद्धति का सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि खेत की भूमि, पानी, पोषक तत्वों और सूर्य के प्रकाश का बेहतर उपयोग होता है। किसान को एक ही खेत से एक ही अधिक फसलों का उत्पादन प्राप्त होता है।
3: अंतर्वर्ती खेती से खरपतवारों की वृद्धि को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। कई फसल संयोजनों में कीट और रोगों के फैलाव का जोखिम भी कम हो सकता है। इसके अलावा यदि किसी एक फसल को मौसम या कीट रोग के कारण नुकसान होता है तो दूसरी फसल से किसान को कुछ आय प्राप्त हो सकती है। दलहनी फसलों को अनाज वाली फसलों के साथ उगाने से मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने में भी मदद मिलती है। इससे खेती की उत्पादकता और टिकाऊपन को भी बढ़ावा मिलता है। अंतर्वर्ती खेती का लाभ तभी अधिक मिलता है जब किसान सही फसल संयोजन, उचित दूरी और अनुशंसित बुआई समय का ध्यान रखें, अपने क्षेत्र की मिट्टी और जलवायु के अनुसार कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेना लाभकारी रहता है। किसान भाइयों, एक खेत कई फसलें, कम जोखिम अधिक लाभ, अंतर्वर्ती खेती अपनाएं, खेती को बनाएं लाभदायक। वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को अपनाएं, संसाधनों का बेहतर उपयोग करें और अपनी खेती को अधिक लाभकारी बनाएं। तो इस चर्चा के बाद अब आइए आज का मौसम।
2: आज पलामू में अधिकतम तापमान रहा 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 93% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 70% रिकॉर्ड की गई।

0: मौसम के बाद अब चलते चलते आज की नसीहत।
1: आज की नसीहत में बात करेंगे मृदा में पर्याप्त नमी क्यों ज़रूरी है। कृषक भाइयों, अच्छी फसल के लिए उपजाऊ मिट्टी के साथ साथ उसमें उचित मात्रा में नमी होना भी बहुत आवश्यक है। पौधे अपनी जड़ों के माध्यम से पानी और मिट्टी में उपलब्ध पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं। पर्याप्त नमी होने पर पौधों की वृद्धि अच्छी होती है और फसल स्वस्थ रहती है।
0: यदि मिट्टी में नमी की कमी हो जाए तो पौधों की बढ़वार रुक सकती है, पत्तियां मुरझाने लगती हैं और उत्पादन प्रभावित हो सकता है। वहीं अधिक पानी या जल भराव भी फसल के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि इससे जड़ों को पर्याप्त हवा नहीं मिलती है और जड़ संबंधी रोग बढ़ सकते हैं। मिट्टी में नमी बनाए रखने के लिए खेत की समय समय पर सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण और मल्चिंग जैसी विधियाँ अपनाई जा सकती है। खेत में फसल अवशेष या जैविक पदार्थ का उचित उपयोग भी मिट्टी की नमी बनाए रखने में सहायक होती है। तो किसान भाइयों, इसी जानकारी के साथ कार्यक्रम ग्रामीण सभा से अब दीजिए रागिनी कुमारी और
1: प्रतिमा वर्मा को
0: अनुमति।
1: नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किसान वाणी। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं, 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं कुछ ही पलों में जुड़ेंगे आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रसारण सेवा में, सुनेंगे 7 बजे प्रादेशिक समाचार और जिले में आज

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती बाड़ी और हमारी दुनिया। 6:55 होने वाले हैं और 6:55 होने वाले हैं और आप सुनेंगे कुछ ही देर में समा

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
6: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
7: सुगंध, क्या हो रहा है?
6: बिल हो रहा है।
5: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
8: RBI कहता है अपना पिन, OTP, CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
9: जन जन तक पहुँचे पैगाम, डेंगू में रखें इन बातों का ध्यान।
10: यदि किसी को तेज बुखार, सिर दर्द, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द, नाक बहना, उल्टी होना, भूख न लगना जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत अपने चिकित्सक से संपर्क करें। साथ ही प्रत्येक रविवार दिन में 10 बजे 20 मिनट अपने घर के आसपास मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करें। मच्छरों से बचें, घर के आसपास सफाई रखें, पानी की टंकी, गमले, कूलर इत्यादि को साफ रखें, हमेशा मच्छरदानी लगाकर सोएं।
11: तो सुन लो भाई, सुन लो बहना, डेंगू से तुम बच के रहना।
10: वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित।
12: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
13: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
14: हर घर सूर्य घर।
3: आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने पूर्व अध्यक्ष एलख्यांगते को किया गिरफ्तार, अब तक कुल 20 गिरफ्तारियां। परीक्षा सुधार और सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलित छात्रों का विधानसभा मार्च, बैरिकेडिंग तोड़ने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी दागे। विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन 8,399 करोड़ रुपए से अधिक का पहला अनुपूरक बजट पारित, सदन कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। सावन की दूसरी सोमवारी पर राज्यभर के शिवालयों में उमड़ा शिव भक्तों का जनसैलाब, देवघर में 3,00,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। और रांची में 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 के दूसरे दिन विशेष फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई जनजातीय जीवन पर आधारित फिल्में। और अब समाचार विस्तार से। राज्य में कथित भर्ती परीक्षा अनियमितताओं को लेकर छात्रों के विधानसभा घेराव के दौरान आज रांची में तनाव की स्थिति बनी रही। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए वाटर कैनन, आंसू गैस और लाठी चार्ज किया। इस बीच सीआईडी ने पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष एलख्यांगते को गिरफ्तार कर लिया है। पेश है एक रिपोर्ट।
15: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद बल का प्रयोग किया गया। रांची सिटी एसपी पारस राणा और एसपी ग्रामीण गौरव गोस्वामी ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कहा कि पुलिस ने संयम बरता है। अनशनरत छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो 9 दिन के अनशन के बावजूद एम्बुलेंस से विधानसभा पहुंचे और स्ट्रेचर पर मार्च में शामिल हुए।
16: और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि जो आवाज उठाया हूँ लाखों युवाओं का दर्द है जो आज आपको दिखाई पड़ रहा है, और सरकार घबरा गई है, डर गई है, और कायर की तरफ पुलिस को आगे कर रही है, टियर गैस का प्रयोग कर रही है, तो इससे शासन नहीं चलता है लोकतंत्र में। अभी भी समय है, 5 मिनट में सरकार फैसला ले और छात्र को संतुष्ट करे।
15: प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। इसी बीच झारखंड सीआईडी ने कथित भर्ती परीक्षा अनियमितताओं के मामले में पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष एल ख्यांगते को गिरफ्तार किया है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई।

0: है। वहीं हजारीबाग के बीजेपी सांसद मनीष जायसवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं और छात्रों के आंदोलन का मुद्दा उठाया और सीबीआई जांच की मांग की। पुलिस कार्रवाई और पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष की गिरफ्तारी के बाद मामला और गर्मा गया है, जबकि छात्र अपनी प्रमुख मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने पर अड़े हैं। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी ने रांची में मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया। सुरक्षा बलों ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश सहित कई वरिष्ठ नेताओं को हिरासत में लेकर खेलगांव स्थित कैंप जेल भेज दिया है। गिरफ्तारी के बाद सरकार की कार्रवाई पर विरोध जताते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है।
2: सभी परीक्षाओं से पहले ही प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जाता है। विगत 17 दिनों से हमारे छात्र आमरण अनशन कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान में राज्य में चलने वाली सरकार को कोई सूझ लेने तक की फुर्सत नहीं है। वार्ता के नाम पर बच्चों को बुलाती है और सिर्फ उनका मजाक करने का काम करती है, कोई निचोड़ निकालने का काम नहीं करती है।
1: इस बीच विधानसभा में मंत्री सुदिव्य कुमार ने आरोप लगाया कि भाजपा ने छात्र आंदोलन को हैक कर लिया है। उन्होंने छात्रों से दोबारा वार्ता की मेज पर आने की अपील करते हुए कहा कि सरकार बातचीत के लिए हमेशा तैयार है।
3: तरफ से यह वक्तव्य दिया गया कि टीडीपीएल के द्वारा ली गई सारी परीक्षाओं को हम लोग जांच के घेरे में रखते हैं, अगर व्यापक गड़बड़ियों के कुछ प्रमाण उपलब्ध होंगे तो वैसी स्थिति में सरकार कार्रवाई करने को तत्पर रहेगी। और यह सदन छात्रों के प्रति पुनः इस बात को प्रदर्शित करता है कि छात्र हमारे बच्चे हैं, हम उनकी भावना और उनके उद्देश्यों के साथ हैं, वो वार्ता के टेबल पर आए, सरकार उनका समाधान करने को तत्पर है।
1: विधानसभा ने आज वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 8,399 करोड़ रुपए से अधिक के पहले अनुपूरक बजट को ध्वनिमत से मंजूरी दे दी है। इसमें सर्वाधिक राशि ग्रामीण विकास विभाग को दी गई है। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIRNews Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।

0: भाजपा महानगर इकाई द्वारा आज राजधानी रांची में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस देश प्रेम यात्रा में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू मुख्य रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर श्री सेठ ने नागरिकों से हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील की।
1: हजारों किलोमीटर की सरहद पर जब लाखों सैनिक -40 डिग्री टेम्परेचर कितना भी ऊंचा हो कोई परवाह नहीं, नारा गाते भारत माता की जय वंदे मातरम। तो आज हम सब भी जब स्वाधीनता दिवस के 80वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो यह हमारी आन बान शान है।
0: उधर गिरिडीह जिले में हर घर तिरंगा अभियान के तहत लोगों ने अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना शुरू कर दिया है। भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश मंत्री शालिनी वैश्ख्यार और स्थानीय नागरिकों ने इस पहल की सराहना की है। आम जनता का कहना है कि इस अभियान ने तिरंगे को हर नागरिक के लिए सुलभ बनाकर जन जन को राष्ट्र प्रेम और गौरव की अनूठी भावना से जोड़ दिया है। सावन की दूसरी सोमवारी के अवसर पर आज पूरे राज्य के शिवालयों में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। देवघर के प्रसिद्ध बाबा वैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम में लाखों श्रद्धालु कतारबद्ध होकर पवित्र ज्योतिर्लिंग का जलाभिषेक कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि देवघर में शाम तक 3,10,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक कर लिया था।
2: देवघर सामनी मेले के दूसरे सोमवारी को कांवरियों का जत्था लगातार बढ़ रहा है। शाम के 7 बजे तक करीब 3,10,000 कांवरियों ने जलाभिषेक कर लिया। कांवरियों की लंबी कतार शाम तक 10 किलोमीटर तक थी। श्रद्धालुओं को बेहतर ढंग से जलाभिषेक कराने की दिशा में पूरा जिला प्रशासन लगा हुआ है। इसके लिए अतिरिक्त पुलिस बल और दंडाधिकारी भी प्रतिनियुक्त किए गए हैं। साथ ही यातायात व्यवस्था में भी किसी तरह का दिक्कत न हो इसके लेकर भी जिला प्रशासन पूरी तरह से लगा हुआ है। पूरा देवघर के

सबसे अधिक यात्रियों का आवागमन रहा। महाप्रबंधक सुश्री गीतिका पांडे ने के निर्देशन में जसीडीह और देवघर सहित प्रमुख स्टेशनों पर विशेष ट्रेनों के साथ ही 24 घंटे चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। रांची में आयोजित दो दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव 2026 के दूसरे और आखिरी दिन विशेष फिल्म फेस्टिवल के तहत जनजातीय जीवन, संस्कृति और सामाजिक सरोकारों पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इस सिनेमाई उत्सव में कुल्लूई भाषा की व्हाट आर यू सर्चिंग और लुक एट द स्काई जैसी फिल्मों की स्क्रीनिंग के जरिए युवाओं को आदिवासी समाज की समृद्ध विरासत से रूबरू कराया गया। कोलकाता के सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में राज्य के सैकड़ों जनसंचार छात्रों ने मास्टर क्लास में भी हिस्सा लिया। और अब मौसम का हाल। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने राज्य के 9 जिलों के लिए तात्कालिक अलर्ट जारी किया है। अगले 1 से 3 घंटों में रांची, पूर्वी व पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, खूंटी, लातेहार, रामगढ़, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा के कुछ भागों में मेघ गर्जन और वज्रपात के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है। इस दौरान कुछ स्थानों पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। जेपीएससी परीक्षा गड़बड़ी मामले में सीआईडी ने पूर्व अध्यक्ष एल ख्यांगते को किया गिरफ्तार। अब तक कुल 20 गिरफ्तारियां। परीक्षा सुधार और सीबीआई जांच की मांग को लेकर आंदोलित छात्रों का विधानसभा मार्च। बैरिकेडिंग तोड़ने पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले भी दागे। विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन 8,399 करोड़ रुपए से अधिक का पहला अनुपूरक बजट पारित। सदन कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित। सावन की दूसरी सोमवारी पर राज्यभर के शिवालयों में उमड़ा शिव भक्तों का जनसैलाब। देवघर में 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। और रांची में 2 दिवसीय झारखंड आदिवासी महोत्सव के दूसरे दिन विशेष फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई जनजातीय जीवन पर आधारित फिल्में। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: ये कहानी है एक गृहिणी और उसके अंतर्मन की।
1: बिजली का बिल, किराना, स्कूल फीस सब हो गया।
2: बन गया बजट?
1: हाँ,
2: 5,000 बच गए।
1: तो नई साड़ी ले ले?
2: ना, पिछले महीने तो ली थी।
1: एक और?
2: नहीं, पहले बजट बनाओ, फिर छोटी छोटी बचत को बैंक में सेव करो और पैसों को बढ़ते देखो।
1: बढ़िया,
2: जाओ भाई।
3: आरबीआई कहता है।
4: प्रस्तुत है विलेनी आजकल।

0: आप सुनेंगे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। रिपोर्ट के साथ हमारे गिरिडीह संवाददाता।
1: भारत सरकार की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ धरातल पर दिखने लगा है। गरीब लोग आवास पाकर बेहद खुश हैं और सरकार के प्रति आभार प्रकट कर रहे हैं।
2: पहले मिट्टी का घर था, सरकार दिया तो घर बनाया। अभी सरकार बुतरू लेके बढ़िया से रहते हैं, पानी नहीं छूता है, बढ़िया अपना मकान से बना के बढ़िया से रहते हैं। प्रधानमंत्री का धन्यवाद, हम लोग को दिया घर बनाए, सब बुतरू लेके पक्का घर में रह रहे हैं।
1: राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने गिरिडीह जिले को हाल के दिनों में 64 नए वाहन उपलब्ध कराए हैं। गिरिडीह एसपी डॉक्टर बिमल कुमार ने बताया कि नए वाहन मिलने से पुलिस को अपराध रोकने में मदद मिलेगी।
3: डायल 112 को लेकर के जो गाड़ियां मिली हैं, जिससे पुलिस की एफिशिएंसी बढ़ेगी और जो भी थाने हैं हर एक थाने को उसके आवश्यकता के हिसाब से और उनका एरिया के हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट भी किया जाएगा। पूर्व में भी 32 गाड़ियां मिली थी पिछला बार।

0: हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। तो वो 32 गाड़ियां बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है और अब जो है विधि व्यवस्था को लेकर के लोगों के पास किसी तरह की समस्या है उस तक हम लोगों को पहुंचने में बहुत आसानी होगी और इसका काफी अच्छा सकारात्मक असर इधर हाल के दिनों में भी दिखा है। लोगों के द्वारा जो भी अगर कॉल किया जाता है डायल 112 में या हमारे कंट्रोल रूम में या जिला नियंत्रण कक्ष में, तो हम लोगों का रेस्पॉन्स टाइम 10 मिनट से कम हुआ है, जो पूरे स्टेट के एवरेज के से भी अच्छा माना जा सकता है उसको।
1: वन विभाग द्वारा समय पर एनओसी नहीं दिए जाने के कारण गिरिडीह में कई सड़क परियोजनाओं को मूर्त रूप नहीं दिया जा रहा है। कोडरमा की सांसद एवं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से उपाय ढूंढने का आग्रह किया है।
2: राज्य सरकार से कहना चाहेंगे कि राज्य के हित की बात जहां होती है, हमारे आदिवासी समाजों या जंगल में रहने वाले वैसे सभी लोगों के लिए कि बहुत ही परेशानी होती है जब सड़क नहीं होता, कितनी मुश्किल होती है उन महिलाओं को जब अगर उन्हें प्रसव के समय हॉस्पिटल आना होता है, कोई बीमार पड़ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में बहुत ही परेशानी होती है। तो निश्चित रूप से सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, कोई एक आप ऐसी व्यवस्था करें ताकि उसमें हर विभाग जिससे भी एनओसी की आवश्यकता है जंगल में बसे लोगों के सुविधा के लिए, तो उसकी आप व्यवस्था कराएं, ये हम चाहेंगे। और आपने जिस गांव की ओर इंगित किया है, निश्चित रूप से हम इसको लेके भी विशेष रूप से जिला अधिकारी से भी हम बात करेंगे और राज्य सरकार से भी।
1: गिरिडीह जिले में हाल के दिनों में बरसापात में वृद्धि हुई है। बरसापात होने से धान की रुपाई में तेजी आई है। बरसापात के साथ साथ वज्रपात की घटना में भी वृद्धि हुई है। बीते मंगलवार को गिरिडीह जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में वज्रपात से एक दिन में 10 लोगों की मौत हो गई और इतने ही लोग घायल हो गए। रमेश प्रभाकर, आकाशवाणी समाचार, गिरिडीह।
3: अभी आप सुन रहे थे गिरिडीह जिले की ताजा गतिविधियों पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट पर आधारित कार्यक्रम जिले में आजकल।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले में आजकल, आइए सुनते हैं विधानसभा समीक्षा।
1: प्रस्तुत है झारखंड विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं दैनिक उदितवाणी रांची के विशेष संवाददाता उमापद महतो। झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के तीसरे दिन आज प्रमुख विपक्षी दल भाजपा के विधायकों की अनुपस्थिति के बीच वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 8,399 करोड़ 31 लाख रुपए का प्रथम अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। भोजनावकाश के बाद सदन में अनुदान मांगों पर चर्चा हुई, जिसके बाद वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने सरकार की ओर से जवाब दिया। वित्त मंत्री ने कहा कि झारखंड के वित्तीय प्रबंधन की नीति आयोग ने भी सराहना की है। उन्होंने बताया कि चालू वित्तीय वर्ष के पहले चार महीनों में राज्य की राजस्व वसूली 25 से 26% रही है, जो संतोषजनक है। उन्होंने केंद्र सरकार पर केंद्रीय करों के अनुदान के बंटवारे में झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य को केवल 0.73% अनुदान राशि मिल रही है। वित्त मंत्री ने बताया कि प्रथम अनुपूरक बजट में ग्रामीण विकास से जुड़े विभागों को प्राथमिकता दी गई है। ग्रामीण विकास विभाग के लिए 4,258 करोड़ 67 लाख रुपए, ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 885 करोड़ 83 लाख रुपए तथा पंचायती राज विभाग के लिए 244 करोड़ 80 लाख रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के प्राथमिक एवं व्यसक शिक्षा प्रभाग के लिए 946 करोड़ 30 लाख रुपए, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आपदा प्रबंधन प्रभाग के लिए 490 करोड़ 68 लाख रुपए तथा गृह प्रभाग के लिए 144 करोड़ 16 लाख रुपए आवंटित किए गए हैं। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, स्वास्थ्य विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग, निर्वाचन विभाग तथा ऋण अदायगी और ब्याज भुगतान मद में भी राशि का प्रावधान किया गया है। इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने पूर्वाह्न 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू की। भाजपा विधायकों की अनुपस्थिति होने पर उन्होंने कहा कि सवाल देकर सदन में उपस्थित नहीं होना दुखद है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जन्मदिन पर संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने सदन की ओर से उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रश्नकाल के दौरान कांग्रेस विधायक नमन विक्सल को

0: अंगाड़ी ने किसानों की संख्या के अनुरूप कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के बजट में वृद्धि नहीं होने का मुद्दा उठाया। विभागीय मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा कि उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के आधार पर बजटीय प्रावधान किया जाता है। उन्होंने बताया कि बिरसा बीज उत्पादन एवं वितरण, फसल विस्तार, समेकित बिरसा, ग्राम विकास योजना, किसान समृद्धि योजना तथा कृषि यंत्र वितरण जैसी योजनाओं के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना और जोड़ा बैल वितरण योजना भी संचालित है तथा राज्य में पोल्ट्री फेडरेशन के गठन की प्रक्रिया शुरू की गई है। किसानों को अब भेड़ पालन के लिए भी आवेदन करने की सुविधा दी गई है। कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने जोल्हा, हिंदू, धुनिया और नदाफ जातियों को राज्य की जाति सूची में शामिल किए जाने का मुद्दा उठाया। प्रभारी मंत्री दीपक बीरवा ने बताया कि इन जातियों को अत्यंत पिछड़ा वर्ग की अनुसूची एक में शामिल करने की कार्रवाई चल रही है और इसे 3 महीने के भीतर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। विधायक जयराम कुमार महतो ने सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा में बीसी 1 और बीसी 2 वर्ग के लिए आरक्षण प्रावधान के पालन का प्रश्न उठाया। प्रभारी मंत्री सुदिव्य कुमार ने बताया कि रिक्तियों और आरक्षण सूची के अनुरूप नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी गई है। विधायक राजेश कच्छप ने प्रश्न पर प्रभारी मंत्री योगेंद्र प्रसाद से कहा कि आरक्षी चालक संवर्ग की भर्ती, प्रोन्नति और सेवा शर्तों से संबंधित नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया जारी है। भाकपा माले विधायक अरूप चटर्जी ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर आंदोलनरत छात्रों का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि जेपीएससी परीक्षा से संबंधित कई मांगों पर सरकार ने कार्रवाई की है, लेकिन सीजीएल परीक्षा को लेकर छात्र अब भी आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने आंदोलन में शामिल उपद्रवी तत्वों की पहचान करने की आवश्यकता बताई। झामुमो विधायक लुईस मरांडी के सवाल पर प्रभारी मंत्री इरफान अंसारी ने बताया कि प्राकृतिक आपदा में मकान क्षतिग्रस्त होने पर मैदानी क्षेत्रों में पक्के मकानों के लिए 1,20,000 रुपये तथा पहाड़ी क्षेत्रों में कच्चे मकानों के लिए 1,30,000 रुपये तक सहायता देने का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि क्षतिग्रस्त मकानों के लिए अनुदान राशि बढ़ाने का आग्रह केंद्र सरकार से किया जाएगा। अनुपूरक बजट पारित होने के बाद विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने सदन की कार्यवाही कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। अभी आप सुन रहे थे झारखंड विधानसभा में आज हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक थे दैनिक उदितवाणी रांची के विशेष संवाददाता उमापद महतो।
1: अभी आप सुन रहे थे विधानसभा समीक्षा, ये आकाशवाणी का रांची केंद्र है।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी रांची केंद्र की प्रसारण सेवा। अभी आपने सुना विधानसभा समीक्षा। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:22 हो चुके हैं। आई एम लेकर हाजिर है प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद कुछ ही पलों।

बुनियाद। नमस्कार, कैसे हैं? बुनियाद कार्यक्रम के साथ एक बार फिर से राजेश आ गया आप सबों के घर आंगन में। अभी तक फोन कॉल आ रहे हैं, हमने बातें ही ऐसी की थी कि फोन कॉल लगातार आ रहे हैं। बीएड की बातें की थी और बीएड इंटीग्रेटेड स्पेशल बीएड की बातें की थी, जो 4 साल का कोर्स होता है और अपॉर्चुनिटी ज्यादा होती है। आज उसके अगले हिस्से को हम लेकर आए हैं। ढेर सारे सवाल आए हैं, जिसमें एक सवाल ये कॉमन है कि बीएड और बीएड स्पेशल एडुकेशन जो इंटीग्रेटेड कोर्स है, उसके बारे में फिर से एक बार बता दिया जाए। जरूर बताएंगे, ये कार्यक्रम है आपके लिए, हम तो सिर्फ एक माध्यम है जानकारियां पहुंचाने के लिए। थैंक यू कहते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर।

0: सासाराम रोहतास बिहार को कि जिन्होंने बुनियाद जैसा कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। बहुत अच्छा लगता है जब आपके फोन कॉल्स आते हैं और उससे भी अच्छा लगता है जब आप यूनिवर्सिटी के कैंपस में आते हैं देखने के लिए। एक आध बार मुलाकात हो गई है कुछ लोगों से हमारी भी, बोला आप ही राजेश जी हैं, हमने कहा जी अच्छा लगता है सर, थैंक यू। तो अब थैंक यू, आभार, अभिनंदन आपका करना चाहते हैं कि आप हम पर इतना विश्वास करते हैं। बहरहाल टेक्निकल पढ़ाई की बातें हम लगातार कर रहे हैं कि टेक्निकल पढ़ाई करनी चाहिए। अगर आपने पैरामेडिकल की पढ़ाई की तो पैरामेडिकल के अंदर में टेक्नीशियन हो सकते हैं, ओटी असिस्टेंट हो सकते हैं, आप रेडियोलॉजी में जा सकते हैं, इसके अलावा फिजियोथेरेपी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, आप नर्सिंग में जा सकते हैं, एएनएम और जीएनएम बन सकते हैं, आप फार्मेसी में बी फार्मा, डी फार्मा या फार्म डी कर सकते हैं, या जर्नलिज्म में जा सकते हैं, 5 ईयर का इंटीग्रेटेड लॉ कर सकते हैं, बीबीए मैनेजमेंट के साथ लॉ, बीए के साथ लॉ, बीएससी के साथ लॉ, अगर आप 3 साल वाला भी लॉ करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप पत्रकारिता में जाना चाहते हैं तो जर्नलिज्म कर सकते हैं, लाइब्रेरी में किताबों से आपको बहुत प्यार है तो किताब के रख रखाव के लिए एक पढ़ाई होती है लाइब्रेरी साइंस, आप उसमें जा सकते हैं, ढेर सारी अपॉर्चुनिटी है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक बार फिर से डॉक्टर अवनीश रंजन से, जो पुनर्वास विभाग में डीन हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में, और हम स्पेशल की बात करते हैं, चैलेंज की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम नंबर बताए देते हैं, नंबर नोट कर लें, नंबर है 9431899002, 9431899002, और दूसरा नंबर है 1800121005, 1800121005। और दूसरे कोर्स के बारे में भी, या यूनिवर्सिटी के बारे में, हॉस्टल के बारे में अगर आप जानकारियां चाहते हैं तो www.gnsu.ac.in ये वेबसाइट का पता है, आप यहां जा सकते हैं। बहरहाल हाँ, एक जानकारी और ये है कि अगर पैसे की समस्या है ना, तो 4 लाख का स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है जो बिहार सरकार देती है, इससे भी बहुत सारे कोर्स किए जा सकते हैं। आप पता लगाइए और गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय आ जाइए, या ये जो नंबर है 9431899002 या 1800121005 पर पूछ लीजिए। बहरहाल डॉक्टर अवनीश रंजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर आप अपने बारे में बता दीजिए थोड़े में।
1: मैं डॉक्टर अवनीश रंजन और गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में फैकल्टी ऑफ रिहैबिलिटेशन साइंस के डीन के पोस्ट पे हूँ, और हमारे यहाँ मुख्य रूप से 3 कोर्सेज अभी संचालित हो रहे हैं इस फैकल्टी से, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी और इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन। बीएड स्पेशल एजुकेशन के 2 स्पेशलाइजेशन हैं, इंटेलेक्चुअल डिजेबिलिटी यानी बौद्धिक अक्षमता और हियरिंग इम्पेयरमेंट यानी श्रवण बाधिता, ये 2 में हमारे इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स 4 साल वाले चल रहे हैं।
0: चलिए, एक सवाल जो आपने पिछले सप्ताह बताया था उसमें एक बार फिर से ये बताने की बात कही गई है कि जो प्लेन बीएड 2 साल का ग्रेजुएशन के बाद होता था, और जो इंटीग्रेटेड बीएड है जो इंटर के बाद 4 साल का होता है, और जो स्पेशल शब्द जुड़ा है जिसमें, उसके बारे में एक बार फिर से बता दीजिए, फिर बातों को हम आगे बढ़ाएं।
1: बीएड का ये मतलब है कि बच्चे तभी एडमिशन लेते हैं जब उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है, मतलब 3 साल के कोर्सेज हैं। कई बार यूनिवर्सिटी लेट होने के कारण, एग्जामिनेशन लेट होने के कारण 4 साल 5 साल भी लड़कों को लगते हैं, उसके बाद फिर 2 साल का बीएड करना होता है और तब आप टीचर के लिए एलिजिबल होते हैं बीएड करने के बाद। लेकिन ये जो नया बीएड आया है इंटीग्रेटेड बीएड, जिसको इजी टेप बोलते हैं, कई लोग आप जानते होंगे एनसीटी जो नेशनल टीचर एजुकेशन काउंसिल है, उनके द्वारा भी आईटेप चलाया जाता है, इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, वो भी इंटीग्रेटेड बीएड ही है, वो 4 साल का वो भी है। वहां पे जनरल बीएड की पढ़ाई होती है और हमारे यहाँ स्पेशल बीएड की पढ़ाई होती है। अब स्पेशल ये है कि अभी जो कॉन्सेप्ट सीबीएसई ने या आईसीएसई बोर्ड ने या स्टेट बोर्ड ने ये कंपलसरी किया है कि हर स्कूल में एक स्पेशल एजुकेशन के टीचर को की का अपॉइंटमेंट जरूरी है, ये कंपलसरी हो गया है। और आप देखे होंगे पिछले 6 महीने के अंदर में सेंट्रल स्कूल जो है हमारा केंद्रीय विद्यालय संगठन भारत सरकार और नवोदय विद्यालय संगठन भारत सरकार, इसके द्वारा देश के स्तर में वैकेंसी निकाली गई हर नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय में,

0: साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट ने, और खासकर बिहार की बात हम करें तो बिहार ने बीपीएससी जो बिहार सर्विस पब्लिक कमीशन है वहां से भी वैकेंसी टीचर की आई और 29 जनवरी को ही करीब 7,500 पोस्ट पे वैकेंसी आई थी जिसका रिटन टेस्ट हुआ है और उसके बाद वो स्कूल गवर्नमेंट स्कूल के टीचर के रूप में वो अपॉइंट हो जाएंगे। तो वो जो डिग्री है जिसके बेस पर वो बीपीएससी की परीक्षा देंगे या सेंट्रल स्कूल या नवोदय विद्यालय में ज्वाइन करेंगे वो यही इंटीग्रेटेड बीएड है या यही बीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स है।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं जहां से हमने छोड़ा था। डॉक्टर अविनीश से हम कहना चाहेंगे कि डॉक्टर अविनीश आप ये पढ़ाई करके चाहे जहां के रहने वाले हों, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज, सहरसा या फिर और भी गोड्डा के रहने वाले हों या फिर आप डाल्टनगंज के रहने वाले हैं, कहीं भी आप ये पढ़ाई करके एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं और आप अपना क्लिनिक खोल सकते हैं, समाज की भलाई भी कर सकते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा?
0: मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी है वो एक रूरल एरिया में हमारा यूनिवर्सिटी है और ये रोहतास डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ पर भी हम लोग कैंपस के अंदर में इस तरह के न्यूरो डेवलपमेंटल सेंटर हमारे यहाँ चलते हैं जो इस तरह के बच्चों के रिहैबिलिटेशन के लिए, उनकी थेरेपी के लिए, उनके एजुकेशन के लिए हम लोगों ने डेवलप किया है। और आप जैसे लोग जो इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे, करने के बाद आप सक्षम ऐसे होंगे कि आप ऐसा सेंटर अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में खोल पाएंगे। आप उनको तो सर्विस देंगे ही, एक बहुत ही नोबल सर्विस है वो तो आप देंगे ही, साथ साथ आप एक अच्छी अर्न भी आपकी अच्छी होगी क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चे जो आज बॉम्बे में जाके, दिल्ली में जाके, बड़े शहर में जाके इलाज करा के लाखों रुपया खर्च कर रहे हैं, वो तो बच्चों का क्या होगा कि अपने पेरेंट्स के साथ भी रह पाएंगे और आपके यहाँ थेरेपी होगी तो आपका भी एक अच्छे से धनोपार्जन होगा और आप एक सोशल सर्विस के साथ साथ अपनी जीवन को का भी आपन भी अच्छे से कर पाएंगे।
1: एक बात और बताइए, हाँ, कि ये जो कोर्स है ना इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एडुकेशन का, ये सिर्फ गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी में हो रहा है या बिहार के और भी किसी हिस्से में हो रहा है, विश्वविद्यालय में हो रहा है, इसकी भी जानकारी भी हमें दे दीजिए, युवा साथियों को होनी चाहिए।
0: वर्तमान में झारखंड और बिहार की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी ही है जहां पे ये पिछले साल से ये कोर्स शुरू किया गया है और भारतीय पुनर्वास परिषद ने इन्हें दो कोर्स इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल एजुकेशन के दो कोर्सेज के लिए मान्यता दी है और अगले 5 साल तक के लिए ये मान्यता है। और यूपी में एक आध जगह कहीं शुरू हुआ है, वो भी बहुत ही छोटे स्तर पे भी अभी है, लेकिन आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है कि आपके ही राज्य में एक बड़ा एक कार्यक्रम शुरू हुआ है, एक प्रोग्राम शुरू हुआ है, आप चाहें तो इसमें एडमिशन लें और अपने भविष्य को सुरक्षित करें।
1: अच्छा, एक बात बताइए, इंटीग्रेटेड बीएड स्पेशल में बीए, बीएससी, बीकॉम कोर्सेज, हाँ, ये सारे उपलब्ध हैं, इसका मतलब क्या है?
0: ये ऐसा कोर्स है जिसमें कि आपको ड्यूअल डिग्री मिलेगी, मतलब कि आप ग्रेजुएशन भी आपका होगा, मतलब अगर आप बीए करना चाहते हैं, आप बीएससी करना चाहते हैं, बीकॉम करना चाहते हैं तो वो आप कर पाएंगे। साथ साथ इसी ड्यूरेशन में, मतलब 4 साल के ही अंदर में, आप बीएड स्पेशल एजुकेशन के भी पढ़ाई को करके उसकी भी डिग्री ले पाएंगे। मतलब ये ड्यूअल डिग्री है, आप दो कोर्स एक साथ कर रहे हैं और एक ही पीरियड में आपको दो तरह की डिग्री मिल जाएगी।
1: अच्छा, चलिए, आपके यहाँ जैसा कि आपने इस सवाल के पहले जवाब दिया कि संभवतः ये सिर्फ आपके यहाँ ही शुरू किया गया है गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में, तो अपने बारे में बताइए कि क्या इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, लोग कैसे हैं, हाँ, क्या एक नेशनल या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है कि नहीं है?
0: इस कोर्स को शुरू करने से पहले भारतीय पुनर्वास परिषद में हम लोगों ने जब अप्लाई किया था एफिलिएशन के लिए, रिकॉग्निशन के लिए, तो एक उनका एक अपना नॉर्म्स है कि कितने टीचर्स होने चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्लासरूम कैसे हो, लाइब्रेरी कैसे हो, आप हम लोगों के साथ एक स्कूल अटैच हो जहाँ पे टीचिंग प्रैक्टिस के लिए स्टूडेंट्स को हम लोग भेज सकें, तो ये सब कुछ के क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद ही हम लोगों ने अप्लाई किया था। वहाँ से हम लोगों के टीम एक आई, इंस्पेक्शन हुई, एक प्रोफेशनल्स की टीम आई थी, उन्होंने इंस्पेक्शन किया, इंस्पेक्शन करने के बाद हम लोगों को ये रिकॉग्निशन मिला कि आप इस कोर्स को चला सकते हैं। और ये चूंकि हमारा कैंपस करीब करीब 100 एकड़ में है और इसमें और भी कई दूसरे कोर्सेज भी हमारे यहाँ चलते हैं, तो हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, हमारे यहाँ टीचिंग की क्वालिटी को लेके, हमारे एग्जामिनेशन प्रोसेस को लेके ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छा माहौल है, जिसके का रिकॉग्निशन हमारी कई जो सेंट्रल जो काउंसिल्स हैं उन्होंने दिया है अलग अलग कोर्सेज के लिए। उसी तरीके से भारतीय पुनर्वास परिषद ने के मानक पे हम लोग खड़े उतरे हैं, जिसके कारण हमको ये मान्यता मिली है।
1: बहुत खूब। हाँ, डॉक्टर अवनीश रंजन, आपने बहुत सारे सवालों का जवाब दिया, और क्या कहना चाहते हैं चलते चलते लोगों से,
0: युवाओं से अपील है हमारी कि आप ये इस कोर्स को एक बार समझिए, एक बार देखिए, एडमिशन लीजिए। आप अगर आप ग्रेजुएशन आपका अगर प्लान है कि आगे जाके आपको टीचर बनना है या आगे आपको जाके ऐसे काम को करने हैं जिसमें कि आपकी अच्छी अर्निंग भी हो, आप सोशल सर्विस भी कर पाएं और आपका रिकॉग्निशन सोसाइटी भी अच्छा बने, तो आप तीनों आप अगर इस कोर्स को करेंगे तो तीनों आपके जो नीड है या आपके तीनों जो आपके जो ख्वाब हैं वो जरूर पूरे होंगे। क्योंकि ये कोर्स ऐसा है कि 4 साल के अंदर में आप जब पढ़ के निकलेंगे तो नौकरी आपके दरवाजे खड़ी होगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा वैकेंसी इसमें है और लोग कम है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूं कि अभी जो जस्ट 29 जनवरी को परीक्षा हुई है बिहार सरकार के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा, तो 7,500 सीट थे और करीब करीब 6,500 से 7,000 ही कैंडिडेट अपीयर हुए उसमें। तो आप ये अंदाज लगाइए कि डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। तो अगर जो लोग जितनी जल्दी इस फील्ड में आएंगे उनका नौकरी उतना ज़्यादा श्योर है, क्योंकि अभी सारी जगह वैकेंसीज हैं, सब जगह खाली सीट है, तो आप आएंगे तो आपको एक अच्छा चांस मिलेगा।
1: थैंक यू डॉक्टर अविनेश रंजन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो साथियों, एकदम नया कोर्स है, सीट भी कम है, हाँ बहुत ज्यादा सीट नहीं है, इशारा समझिए। अगर जो आप चाहते हैं कि बीएड स्पेशल एजुकेशन जो इंटीग्रेटेड कोर्स है 4 साल का, वो गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय में अभी नया नया इंट्रोड्यूस हुआ है और संभवतः अपने बिहार झारखंड में पहली दफा ये कोर्स आया है बहुत ही लिमिटेड सीट के साथ, आप चाहे तो कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए डायल करें 9431899002, 9431899002, और एक टोल फ्री नंबर है 1800121001, और एक वेबसाइट का पता भी है www.gnsu.ac.in। इसमें जितने तरीके के 13-14 तरीके के टेक्निकल पढ़ाई कराए जाते हैं सारी की जानकारियां आपको मिलेंगी। फिलहाल थैंक यू कहते हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर सासाराम रोहतास बिहार को कि उन्होंने ये कार्यक्रम लेकर आने का मौका दिया। राजेश को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे गोपाल नारायण सिंह यूनिवर्सिटी सासाराम।
3: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम बुनियाद, हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 7:37 और 3 सेकंड हो चुके हैं। आइए हम लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक।

0: कार्यक्रम सुनने वाले सभी।
1: अभी आपने सुना फिल्म कन्हैया के इस गाने को मुकेश की आवाज़ में शंकर जयकिशन के संगीत और शैलेंद्र के बोल थे। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक रंग।

0: ही।
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से आदमी मजबूर। फिल्म के इस गाने को आपने सुना श्रोताओं, किशोर कुमार की आवाज़ में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत थे और आनंद बख्शी के बोल। और अब आइए सुनते हैं कार्यक्रम कल्याणी भेंटवार्ता में हम भूलने क्यों लग गए। भेंटवार्ता कार हैं डॉक्टर सुरजीत प्रसाद रांची, भेंट करता है संजीव कुमार ला।
2: मित्रों, जब उम्र बढ़ती है तो याद रखने की क्षमता पर असर होने लगता है। बढ़ती उम्र में तन और मन दोनों स्तर पर बदलाव शुरू हो जाता है। कुछ नया करने या सीखने या याद रखने

0: अपनी रोजमर्रा की जिंदगी की छोटी छोटी जरूरतों को भूलने लग जाते हैं। जैसे हमने अपना चश्मा कहाँ रख दिया, चाबी कहीं और रख दिया, कागजात कहीं रख कर हम भूल गए और फिर उसे खोजने लग जाते हैं। यानी चीजें रख कर भूल जाने या उन्हें खो देने की घटनाएं अक्सर बढ़ने लग जाती है। देखा जाए तो ये लक्षण उम्र बढ़ने पर बुजुर्गों में ज्यादा होती थी, परंतु अब कम उम्र के युवा में भी भूलने के लक्षण तेजी से दिखलाई पड़ने लगे हैं। जब याददाश्त कमजोर होने लगती है तो रोजमर्रा की जिंदगी काफी मुश्किल भरी हो जाती है। तो हम भूलने क्यों लग जा रहे हैं, क्या कारण है? एक समय था कि हमारे बुजुर्ग साथी भूलने लग जा रहे थे, आजकल कम उम्र के हमारे साथी भी भूलने के शिकार हो जा रहे हैं। ऐसा क्यों हो जा रहा है? हमारी जीवन शैली कितनी हद तक जिम्मेदार है? हमारा रहन सहन और हमारा खान पान और हमारी लाइफ स्टाइल इसको किस प्रकार प्रभावित कर रहा है? इस विषय पर बातचीत करने के लिए आज आमंत्रित है केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान के सब प्राध्यापक डॉक्टर सुरजीत प्रसाद। डॉक्टर साहब स्वागत है। डॉक्टर साहब, आजकल भूलने की प्रवृत्ति लोगों में क्यों बढ़ते जा रही है?
1: आजकल भूलने की प्रवृत्ति लोगों में बढ़ती जा रही है, इसका मुख्य कारण अगर हम कहें तो हमारी जीवन शैली ही कहेंगे। ओल्ड एज में पहले भी लोगों में ये भूलने की प्रवृत्ति होती थी, जिसे हम लोग डिमेंशिया कहते हैं। उसमें भूलने के साथ साथ उनके अदर फंक्शन जो है, जैसे स्पीच में प्रॉब्लम होगा या एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग जो दिनचर्या के कार्य है उसमें प्रॉब्लम आने लगता है, किसी कार्य को करने में उनको कठिनाई होने लगती है, तो इसको हम लोग डिमेंशिया कहते हैं। ये कॉमन है 60 साल की उम्र के ऊपर के लोगों में बहुत कॉमन होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे एजिंग होती है वैसे वैसे हमारे ब्रेन सेल्स के लॉस होने लगते हैं, और एक बार जो ब्रेन के सेल्स डेड हो जाते हैं वो वापस रीजनरेट नहीं कर पाते पूरी तरह, क्योंकि सेल्स कम होते जाते हैं। तो सेल्स कम है इसलिए हमें समझने के लिए कि भूलने की जो क्षमता है वो बढ़ जाती है भूलने की शिकायत। यंग एज में जो भूलने की शिकायत है उसका मुख्य कारण एक तो भागदौड़ की जिंदगी हो गई है, और कहीं ना कहीं वो साथ उनको बहुत सारे कार्य उन्हें करना रहता है, तो उनमें बहुत सारे दिमाग में बातें चलती रहती हैं और उसी दौरान वो कार्य भी करते रहते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो कार्य वो कर रहे हैं उसे एकाग्रता से नहीं कर पाते हैं। एकाग्रता की कमी के कारण वो जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे ब्रेन में रजिस्टर नहीं हो पाता है, प्रोसेस नहीं हो पाता, जिसके कारण कि वो फिट हो सके, हमारे ब्रेन में किसी कोने में याद के रूप में वो संग्रहित हो सके। तो बाद में जब हम लोग रिकॉल करते कि अरे ये काम तो मैंने किया था लेकिन याद नहीं आ रहा है, तो मुख्य कारण वही है कि वो एकाग्रता से उन्होंने नहीं किया था, उनके दिमाग में उस तरह तरह तरह की बातें चल रही थी और काम कुछ और कर रहे थे, तो वो बाद में उन्हें लगता है कि अरे मैं तो ये भूल जा रहा हूँ, मुझे भूलने की शिकायत हो रही है। लेकिन यंग एज में जनरली जो डिमेंशिया जो कहते हैं वो बहुत ही अनकॉमन है, यूजुअली ये 60 के ऊपर होते हैं। कुछ कुछ कंडीशंस हैं जिसमें 40-45 साल में भी वो हो सकते हैं, जैसे फ्रंटोटेम्पोरल डिमेंशिया एक प्रकार का डिमेंशिया है, उसमें ये चीजें पाई जा सकती है। उसके साथ साथ कुछ कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर अगर उनको हो रहे हैं तो उसके साथ ये चीजें होती है, लेकिन अगर उन्हें इस तरह की कोई बीमारी नहीं है और सिर्फ भूलने की शिकायत हो रही है यंग एज में, तो मेनली उसमें एकाग्रता की कमी वो एक मुख्य कारण हो सकता है, और साथ ही साथ अवसाद या डिप्रेशन या एंग्जाइटी भी आप कह सकते हैं। उस कंडीशन में भी हम जो कार्य करते हैं उसे याद नहीं रख पाते, हमारा ब्रेन उसको रजिस्टर्ड नहीं कर पाता है, क्योंकि ब्रेन में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं जिसके कारण उन्हें लगता है कि वो भूल गए हैं। इसे हम लोग मेडिकल टर्म में स्यूडो डिमेंशिया कहते हैं कि फॉल्स डिमेंशिया, ये डिमेंशिया है नहीं एक्चुअली, ये फॉल्स है। तो ये कारण अभी जो है वो हो सकता है।
0: कभी कभी हमारे बुजुर्ग साथियों में ये होता है कि वो पुरानी चीजें तो याद रखते हैं लेकिन वर्तमान की चीजें, कोई उनसे मिल कर गया, उन्होंने क्या खाना खाया, वो भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है?
1: यस सर, ये बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन है आपका। इसे ही ये डिमेंशिया का प्राइमरी लक्षण है, जो रीसेंट इवेंट्स हैं उन्हें उसी में उनकी याददाश्त की कमी रहती है, क्योंकि सेल्स जो हैं, जैसे हमें हम कोई बात कैसे याद रखते हैं, हमें वो बात हमने सुनी, उसे ब्रेन में प्रोसेस किया और ब्रेन में कुछ कुछ वायरिंग सिनेप्स हम लोग बोलते हैं वो बन जाते हैं, जिसके कारण वो स्टोर रहता है माइंड में। अब चूंकि ओल्ड एज हो जाते हैं, ब्रेन सेल्स कम गए हैं, तो ये फंक्शन तो अब कम जाएगा, तो उसमें क्या होता है कि वो जब वो रीसेंट जो काम कर रहे हैं एकाग्रता से भी अगर कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं ब्रेन सेल्स कम है इसलिए वो सिनेप्स नहीं बन पा रहे, सिनेप्स नहीं बन रहे हैं, वो स्टोर नहीं हो पा रहा है ब्रेन में, तो अगली बार जब वो करते हैं तो उन्हें वो याद नहीं रहता, क्योंकि ब्रेन में

0: स्टोर है ही नहीं इन्फॉर्मेशन। क्यों नहीं स्टोर है? ड्यू टू लेस नंबर ऑफ न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स जो ब्रेन में है वो कम हो गए हैं इसके कारण से, तो इसलिए वो भूल जाते हैं। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है डिमेंशिया का, कि अगर कोई भी व्यक्ति जो 60 साल से अधिक है और उन्हें रीसेंट चीजें याद नहीं रहती है, तो उन्हें तुरंत किसी मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मिलना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, इसका इलाज किस प्रकार किया जाता है? यदि किसी को भूलने की आदत हो गई, वो भूल जा रहे हैं, तो दिन प्रतिदिन उनकी याददाश्त कमती जाएगी, या उसको रोका जा सकता है, टाला जा सकता है, या इसका पूर्ण रूप से इलाज संभव है?
0: जनरली अभी तक जो कॉमन डिमेंशिया जो पाए जाते हैं उनका उपचार, मतलब आप ये नहीं कह सकते कि उसे रिवर्स बैक तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइमरी डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है, वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट इलाज से, जैसे दवाओं के इलाज से और काउंसलिंग से, उसकी जो गति है उसको हम लोग धीमा कर सकते हैं। जो अगर बिना इलाज से वो 2-3 साल में जितना ज्यादा खराब होंगे, अगर हमने सही समय पे इलाज शुरू कर दिया तो उसे हम लोग 10-12 साल तक 15 साल तक खींच सकते हैं। तो जो गति है प्रोग्रेशन की उसको हम लोग धीमा कर सकते हैं दवाओं के द्वारा, काउंसलिंग सर्विसेज से, थेरेपी कहते हैं उसके द्वारा, ये चीजें हम लोग कर सकते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल के द्वारा ये चीजें हम लोग कर सकते हैं।
1: जी, कितना जिम्मेदार है डॉक्टर साहब हमारी जीवन शैली आज की? खान पान हमने अपने आप को बिगाड़ लिया है, हमारे रहने खाने पीने का समय निर्धारित नहीं है
0: जी।
1: तो कैसे हम अपने आप को व्यवस्थित करें ताकि हमारी याददाश्त बहुत मजबूत रहे?
0: याददाश्त के लिए हमारी जीवन शैली बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आजकल हम लोग देख रहे हैं ये जो बीमारी है, पहले इस उम्र 60 की उम्र में बहुत ज्यादा कॉमन नहीं थी, लेकिन आजकल ये बहुत ही कॉमन होती जा रही है, बहुत ज्यादा मरीज इस उम्र के हमें मिल रहे हैं। इसका एक कहीं ना कहीं प्रमुख कारण हमारी जीवन शैली है। जीवन शैली में हम लोगों ने एक जंक फूड का एक बहुत ही प्रचलन है तो उसको अपना लिया है, पौष्टिक आहार से हम लोग दूर जा रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी नींद, और बहुत बार लोगों में पाया गया है कि वो नशे का सेवन करने लगते हैं, अगर कुछ समस्या होती है, कुछ टेंशन होती है तो नशे का सेवन, स्मोकिंग जो कॉमन है आजकल, स्मोकिंग वो सब अगर करेंगे तो आप में जो इस तरह की डिमेंशिया के लक्षण है वो अर्ली आ सकते हैं। साथ साथ हमें 40-45 के ऊपर फिर कुछ कुछ बीमारियां बहुत कॉमन हो गई आजकल, जैसे कि हाइपरटेंशन, डायबिटीज, अगर उसका हम लोग सही समय पे सही इलाज स्टार्ट कर दें तो भी ये चीजें हमें डिमेंशिया को कम करने में या उसे प्रोग्रेशन को धीमे करने में बहुत मदद करती है। तो जीवन शैली के साथ साथ नशे का सेवन ना करें, और अगर कुछ बीमारी है, शारीरिक बीमारी आपको हो रही है तो उसका उचित और संपूर्ण इलाज कराएं, तो हम लोग इस डिमेंशिया का जो प्रोसेस है इसको हम लोग डिले कर सकते हैं, और कुछ कुछ केसेस में इसे बहुत डिले भी कर सकते हैं, रोक भी सकते हैं।
1: डिमेंशिया और टेंशन, टेंशन ज्यादा है तो डिमेंशिया का खतरा ज्यादा बढ़ जाएगा?
0: एक्चुअली थोड़ा सा ये है कि टेंशन, अगर यंग एज से बहुत अगर स्ट्रेस है, टेंशन है, तो कहीं ना कहीं टेंशन हमारे ब्रेन सेल्स को तो हैम्पर करेगा ही, उसे डैमेज करेगा ही, तो रिस्क तो बढ़ जाता है। अगर जो अवसाद से लगातार ग्रसित है तो उनमें आगे के एज में, मतलब पोस्ट 60, डिमेंशिया होने के चांसेस तो बढ़ जाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो अवसाद है, डिप्रेशन है, ये हमारे सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स जो ब्रेन में है उसको कम करता ही है। तो एक तो वो है, और दूसरा जैसे मैंने बताया कि डिप्रेशन या टेंशन में लोग क्योंकि एकाग्र नहीं हो पाते इसलिए वो चीजें भूल जाते हैं, जिसे मैंने टर्म बताया कि सुडो डिमेंशिया कहते हैं, तो वो एक चीज तो होती है।
1: तो एकाग्र मन से यदि हम काम करते हैं और एक साथ बहुत चीजें हम करने लग जाते हैं, जिसे हम मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, और फिर चीजों को हम भूल जा रहे हैं, तो एक समय में एक कार्य किया जाए।
0: कुछ लोगों में होती है ये प्रतिभा कि वो मल्टीटास्किंग कर पाते हैं, तो उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मल्टीटास्किंग नहीं अगर कर पाते हैं, तो उन्हें एकाग्रता से ही काम करना चाहिए ताकि उनको चीजें याद रहेगी, ये चीजें उनको मतलब अगर बाद में रिकॉल करना है तो याद रह सकती है। मल्टीटास्किंग कुछ लोग कर पाते हैं, ये उनकी एबिलिटी होती है, लेकिन सारे लोगों में ये एबिलिटी नहीं होती है। और मन को कहीं ना कहीं चित्त को प्रसन्न रखना होगा, शांत रखना होगा, जिससे ये चीजें हम लोग डिले कर सकते हैं, रोक सकते हैं।
1: तो मित्रों, अपना ख्याल रखिएगा, और यदि इस तरह के लक्षण आपको दिखते हैं तो तुरंत आप इसका इलाज शुरू कीजिए, और कोई भी चीज, छोटी छोटी चीजें घर में आप रखते हैं तो एकाग्र मन से उस चीजें को रखिए, अपनी चश्मा और कागजात कहीं और रख दिया, छोटी छोटी चीजें को आप भूल जाते हैं, चाबी कहीं और रख दिया, और आप फिर परेशान होने लग जाते हैं। एकाग्र मन से रखेंगे, चित मन से रखेंगे तो चीज आपको सही जगह मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात आज के लिए है कि आप अपने

0: जीवन शैली को सुधारिए। यदि बुरी आदतें हैं आपके साथ, उसको आप दूर कीजिए और खुश रहने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सुरजीत प्रसाद, सह प्राध्यापक केंद्रीय मनोचिकित्सक संस्थान रांची, जब इस कार्यक्रम में आए। और मित्रों, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और अपना ख्याल रखिएगा और अपने इष्ट मित्रों का भी ख्याल रखिएगा। नमस्कार।
1: अभी आप सुन रहे थे कल्याणी कार्यक्रम। कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से संसद समीक्षा के लिए।

2026 को मंजूरी दे दी, जिसका उद्देश्य अदालतों में डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में स्वीकार करने की प्रक्रिया को आधुनिक तथा स्पष्ट बनाना है। राज्यसभा ने संक्षिप्त चर्चा के बाद इस विधेयक को ध्वनि मत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और नीट प्रश्न पत्र लीक को लेकर राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दों को लेकर कुछ देर नारेबाजी करने के बाद विरोध व्यक्त करते हुए सदन से वॉकआउट किया। यह विधेयक औपनिवेशिक काल के पुराने अधिनियम 1891 का स्थान लेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने विपक्षी सदस्यों के बीच हंगामे के बीच इस विधेयक को चर्चा और पारित कराने के लिए रखा। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि इस विधेयक के माध्यम से बैंकों को प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी, साथ ही अदालती मामलों में बैंक के पक्ष को मजबूती से रखा जा सकेगा। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि आज बैंकिंग सेवाओं का बड़े स्तर पर डिजिटलीकरण हो गया है। बैंकिंग क्षेत्र की इस जरूरत को देखते हुए मूल कानून में बदलाव किया गया है। उन्होंने कहा कि मूल कानून में कागज आधारित प्रति पर बहुत जोर दिया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि पहले बैंकों को उनके लेन देन के सिलसिले में कागजी रिकॉर्ड लेकर अदालत में बुलाया जाता था और इसमें डिजिटल रिकॉर्ड का उल्लेख नहीं था, अब डिजिटल रिकॉर्ड मान्य होगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान कई सदस्यों ने बैंक ग्राहकों के साथ बढ़ते साइबर अपराध को लेकर चिंता व्यक्त की। चर्चा में बीजत के मानस रंजन मंगराज, भाजपा के अरुण सिंह और शंभु शरण पटेल, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉ एम थंबीदुरई और डॉ एम धनपाल, रंकापा के राजेंद्र हीरालाल जैन, भाष्यम रामकृष्ण, बीआरएस के रविचंद्र वद्दी राजू, द्रमुक सदस्य एल के सुधीश और शिवसेना की डॉक्टर ज्योति नागराज वाघमारे ने हिस्सा लिया। प्रस्तावित कानून में बैंकर्स बुक्स या बैंक कार बही की परिभाषा का दायरा बढ़ाकर इसमें डिजिटल क्लाउड आधारित और अन्य इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को भी शामिल किया गया है। विधेयक में अदालतों के समक्ष डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में पेश करने तथा उसके प्रमाणन के लिए स्पष्ट और एक समान नियम निर्धारित करने का भी प्रावधान है। इसके अलावा बैंक अधिकारियों को बिना ठोस आधार के बार बार अदालतों में तलब किए जाने से बचाने के लिए विशेष कारण या स्पेशल कॉज परीक्षण का प्रावधान भी किया गया है। इस विधेयक के पारित होने के बाद सदन में कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य उस मौजूदा कानूनी प्रावधान को हटाना है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तरीकों पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लागू करने से रोकता है। चर्चा में भारतीय

जनता पार्टी के तरुण चुग, विक्रमजीत सिंह साहनी, डॉक्टर कल्पना सैनी, रेखा शर्मा, धनंजय भीमराव महादिक, बाबूराम निषाद, द्रमुक सदस्य पी विल्सन, बीजत के सुभाषीष खूंटिया, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एस निरंजन रेड्डी, अन्ना द्रमुक के डॉक्टर एम थंबीदुरई, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, यूपीपीएल के प्रमोद बोरो, बीआरएस के रविचंद्र वद्दीराजू और तेदेपा के विजय चिंता कायला ने हिस्सा लिया। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक में भारत को विशेष रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में विनिर्माण केंद्र के रूप में मजबूत करने और वैश्विक कंपनियों को उपकरण, पुर्जे तथा सामग्री लाने के लिए प्रोत्साहित करने का उद्देश्य निहित है। उन्होंने कहा कि कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कलपुर्जे ऐसे हैं जिनका भारत में निर्माण नहीं होता, लेकिन देश में उनकी जरूरत होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में अनुबंध पर विनिर्माण करने वाली कंपनियों से जुड़ी विदेशी कंपनियों को कर छूट देने का प्रस्ताव है। यह छूट वर्तमान में 5 साल के लिए उपलब्ध है, जिसे बढ़ाकर वित्त वर्ष 2040-41 तक करने का प्रस्ताव है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि पूर्व में भारतीय डेटा सेंटर का इस्तेमाल करने वाली विदेशी क्लाउड कंपनियों को कर छूट देने का वादा किया गया था, लेकिन इसके लिए उन्हें सरकार की बहुस्तरीय मंजूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। विधेयक में डेटा सेंटर के लिए अधिक स्पष्ट और सरल नियमों का प्रस्ताव किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक में यूपीआई लेन देन करने वाले पर कर लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। यूपीआई पहले की तरह ही छोटे दुकानदारों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए मुफ्त होगा। सदन ने इस संबंध में जून में लागू अध्यादेश को अस्वीकृत करने के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद जॉन ब्रिटास के सांवैधानिक संकल्प को खारिज कर दिया है। विधेयक पर चर्चा और पारित किए जाने के समय कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य मौजूद नहीं थे, क्योंकि वे इससे पहले ही सदन से वॉकआउट कर गए थे। मंत्री के जवाब के बाद कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को ध्वनिमत से लोकसभा को लौटा दिया गया। तत्पश्चात उच्च सदन में विशेष उल्लेख के जरिए भाजपा के अमरपाल मौर्य, डॉक्टर अनिल सुखदेव राव बोंडे, डॉक्टर मेधा विश्राम कुलकर्णी, सुजीत कुमार, बाबू भाई जय संघ भाई देसाई, दर्शना सिंह, डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता, डॉक्टर दिनेश शर्मा, अधिकारी मायूम शारदा देवी, केसरी देव सिंह झाला, डॉक्टर कल्पना सैनी और रेखा शर्मा ने लोक महत्व से जुड़े अपने अपने मुद्दे उठाए। बाद में उच्च सदन की बैठक कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले राज्यसभा की बैठक राजधानी दिल्ली में पिछले महीने नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई के मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण 3 बार बाधित हुई। सुबह 11 बजे सदन की बैठक शुरू होने और सरकारी दस्तावेज सदन के पटल पर रखे जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह की सदन में उपस्थिति और जवाब की मांग करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। उन्होंने अयोध्या में राम मंदिर को मिले चंदे में कथित चोरी के आरोपों को लेकर भी नारेबाजी की। सभापति ने सदस्यों से शून्यकाल में सूचीबद्ध विषयों को उठाने की अपील की। हंगामे के बीच ही भाजपा के राहुल सिन्हा, तरुण चुग, डॉक्टर के लक्ष्मण और बाबू भाई जयसंघ भाई देसाई ने आसन की अनुमति से सदन में लोक महत्व से जुड़े विभिन्न मुद्दे उठाए। इस दौरान विपक्षी सांसद आगे की पंक्ति के पास एकत्र हो गए और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बोलने का मौका दिए जाने की मांग करने लगे। राधाकृष्णन ने प्रदर्शन कर रहे सांसदों से अपनी सीटों पर लौटने को कहा, ताकि उनकी मांग पर विचार किया जा सके। अपनी बात का असर होता न देख सभापति ने करीब 11:20 पर बैठक दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। दोपहर 12 बजे जब प्रश्नकाल के लिए सदन की कार्यवाही शुरू हुई, तो आसन की अनुमति से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और प्रवास तथा शहरी मामलों के मंत्री मनोहर लाल ऊर्जा संबंधी सवालों का जवाब देने के लिए खड़े हुए, लेकिन कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों के सदस्य लगातार नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। 2 बजे बैठक शुरू होने पर उपसभापति हरिवंश ने बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक 2026 को सदन में चर्चा और पारित करने के उद्देश्य से पेश करने के लिए कहा, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने अपनी मांग दोहराते हुए हंगामा जारी रखा। कुछ सदस्य तो अपने स्थान से उठकर आगे आ गए। सदन में व्यवस्था न बनते देख उपसभापति हरिवंश ने बैठक को
15 मिनट के लिए स्थगित कर दिया। 15 मिनट बाद बैठक के फिर से शुरू होने पर सदन में बैंकर्स बुक्स एविडेंस विधेयक और कराधान तथा अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 को लिया गया। अब सुनिए लोकसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक हैं पीटीआई भाषा के वैभव माहेश्वरी। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी पर चर्चा और दिल्ली

ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। शोर शराबे के बीच ही सदन में तीन अन्य विधेयक खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026, केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए गए। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी पर सदन में चर्चा और प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों पर पुलिस की कार्रवाई पर गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग को लेकर कांग्रेस और सपा समेत विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सदन की बैठक दो बार के स्थगन के बाद जब अपराह्न 2 बजे शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार विद्यार्थियों के मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है और गृह मंत्री अमित शाह विस्तार से जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पहले दिन से यह मांग कर रहे थे कि गृह मंत्री अमित शाह को विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर जवाब देना चाहिए। श्री रिजिजू ने कहा कि मैं सरकार की ओर से स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि सरकार विद्यार्थियों के मामले को लेकर चर्चा और पूरा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और विपक्ष से अनुरोध है कि उन्हें गृह मंत्री के जवाब के समय डरना नहीं है, भागना नहीं है, उन्हें पूरा जवाब सुनना पड़ेगा। श्री रिजिजू ने कहा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में भी यह बात कही गई है कि सरकार विस्तार से चर्चा और जवाब देने को तैयार है। इस दौरान विपक्ष के सदस्य सदन में नारेबाजी करते रहे। इस बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 को चर्चा और पारित करने के लिए पेश किया। श्री मेघवाल ने कहा कि यह विधेयक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में चल रही सुधार एक्सप्रेस का हिस्सा है। उनका कहना था कि यह विधेयक न्यायाधिकरणों के अधिकार क्षेत्र बदलने का विधेयक नहीं है। विधेयक का प्रमुख उद्देश्य विभिन्न न्यायाधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति के लिए दक्षता बढ़ाने के साथ स्वतंत्रता, पारदर्शिता और पात्रता संबंधी मानदंडों में एकरूपता सुनिश्चित करना है। सदन में विपक्ष के हंगामे के बीच विधेयक को बिना चर्चा के ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। पीठासीन सभापति जगदम्बिका पाल ने आसन के समीप आकर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी सांसदों से कहा कि वे गृह मंत्री अमित शाह के जवाब की मांग कर रहे थे और अब जब संसदीय कार्य मंत्री ने आश्वासन दिया है कि गृह मंत्री सदन में चर्चा का जवाब देने को तैयार है तो सदन की कार्यवाही चलनी देनी चाहिए। हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने बैठक को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया। इससे पहले सदन की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और विद्यार्थियों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर हंगामा करने लगे। आसन पर उस समय आरएसपी नेता एनके प्रेमचंद्रन थे, जिन्होंने प्रश्नकाल शुरू कराने का प्रयास किया। वैसे सामान्य तौर पर लोकसभा में प्रश्नकाल के समय आसन पर अध्यक्ष ओम बिरला होते हैं। हंगामा जारी रहने पर भी श्री प्रेमचंद्रन ने बैठक शुरू होने पर भी 2 मिनट अंदर ही दोपहर 12 बजे तक कार्यवाही स्थगित कर दी। सदन की कार्यवाही फिर से आरंभ होने पर भी विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते रहे। हंगामे के बीच विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने न्यायाधिकरण सुधार विधेयक 2026 और कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने खान और खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 और सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहले ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 पेश किए। हालांकि ये दोनों विधेयक केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के नाम से सूचीबद्ध थे। हंगामा नहीं थमने पर भी पीठासीन सभापति संध्या राय ने दोपहर 12:14 पर सदन की बैठक अपराह्न 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी। इस प्रकार मॉनसून सत्र की शुरुआत से ही लगातार 16वें दिन आज भी सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके। सदन में आज पेश किए गए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक 2026 का उद्देश्य राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एनसीडीसी के अधिकार क्षेत्र का विस्तार करना है। विधेयक के तहत एनसीडीसी को सहकारी समितियों या इस क्षेत्र के विकास में लगी किसी भी इकाई को सीधे ऋण और अनुदान देने का अधिकार मिल सकेगा। सहकारिता मंत्रालय के तहत आने वाला एनसीडीसी एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 के तहत की गई थी।
एनसीडीसी के प्रमुख कार्यों में कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों और अन्य अधिसूचित वस्तुओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण और आयात निर्यात से जुड़े कार्यक्रमों की योजना बनाना

0: उन्हें बढ़ावा देना और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना शामिल है। इस नए विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के वितरण के अनुसार जून 2021 में अलग सहकारिता मंत्रालय के गठन और केंद्र सरकार द्वारा सहकारी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए उठाए गए कदमों के बाद सहकारी क्षेत्र के विकास में एनसीडीसी की भूमिका काफी बढ़ गई है। केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 भी सदन में पेश किया गया, जिसमें केरल का नाम बदलकर केरलम करने का प्रावधान है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस वर्ष 24 फरवरी को केरल का नाम बदलकर केरलम करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें केंद्र से राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने का आग्रह था। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: अभी आप सुन रहे थे संसद समीक्षा हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं फिल्म 103 मेगाहर्ट्ज़ पर। अब आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से। अभी आपने सुना फिल्म बाहर आने तक के इस गाने को पंकज उदास, अनुराधा पौडवाल के आवाज में, राजेश रोशन के संगीत, इब्राहिम अश के बोल थे। और अब आइए सुनते हैं लता मंगेशकर, अमित कुमार की आवाज़ में अरशद भोपाली के बोल हैं और राम लक्ष्मण के संगीत। फिल्म पुलिस और पब्लिक का ये खूबसूरत नगमा आइए हम सुनते हैं।

अभी आपने सुना अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज में बेवफा सनम के इस गाने को रानी मलिक के संगीत निखिल विनय के बोल थे। और अब आइए सुनते हैं विपिन सचदेवा और राधा पौडवाल की आवाज में बेटा फिल्म के इस गाने को, आनंद मिलिंद के संगीत और समीर के बोल।

सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट से, और इसी गाने के साथ आज का फिल्मी सफ़र यहीं थमता है। कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से, जहां सुनेंगे रात्रि 8 बजे 8:45 पर हिंदी में समाचार, समाचार संध्या रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार, 9:15 में उर्दू में समाचार, 9:30 पर श्रोताओं सुनेंगे विविध भारती की प्रसारण सेवा आज के फनकार, रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे संसद में प्रश्नकाल आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से, 11 बजे हम लेकर हाजिर होंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा, रात्रि 10 बजे रात्रि 11 बजे हिंदी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से, और 11:05 में अंग्रेजी में समाचार। हम अपनी सभा का समापन करेंगे रात्रि 11:10 पर। तो श्रोताओं, कुछ ही पलों में हम जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र में समाचार संध्या के लिए, बस कीजिए थोड़ा सा।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से संसद चलने की देने की अपील की। कहा, गृहमंत्री अमित शाह छात्र विरोध प्रदर्शन से संबंधित मुद्दों पर बयान देंगे। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों तथा पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवाओं के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रगीत वंदे मातरम का पहली बार गायन। हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट। एफआईएच हॉकी विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप के साथ शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल मुकाबले नहीं होंगे, पुरुष और महिला टीम पूल डी में शामिल। और अब समाचार विस्तार से। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने यह विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेनदेन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंककार बहिस्साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ने में मदद करेगा।
1: The bill, among various other things that it wants to do,
2: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
1: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एक रूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और

0: और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
1: संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के कारण दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: संसद में आज भी विभिन्न मुद्दों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बार बार बाधित हुई। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही तीन तीन बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा में आज चार विधेयक पेश किए गए। इनमें से अधिकरण सुधार विधेयक 2026 विपक्ष के शोर शराबे के बीच बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा में दो विधेयक चर्चा के लिए लिया गया, जिनमें बैंकिंग प्रणाली को आधुनिक और आज के डिजिटल युग के अनुरूप बनाने के लिए बैंक कार बहिसाक्ष्य विधेयक 2026 पारित किया गया। इसके अलावा कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा के बाद इसे लोकसभा को लौटा दिया गया। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृहमंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं।
3: छात्र आंदोलन पर स्टूडेंट्स के लिए, युवाओं के लिए पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूर्ण रूप से पूरी तरह से सुनेंगे शांति से, ये भी आप विश्वास दिलाना पड़ेगा।
1: इससे पहले राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विद्यार्थियों के खिलाफ की गई कार्रवाई पर संसद में गृहमंत्री के वक्तव्य की मांग की।
4: लोकसभा में और राज्यसभा में एक ही डिमांड है कि अमित शाह जी सदन में आना चाहिए और अपनी बात रखना चाहिए। हम 17 दिन से ये पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो सदन में आके जो बच्चों के ऊपर अन्याय हुआ उनका एक स्टेटमेंट चाहते हैं। हम तो डिबेट चाहते हैं, हम सिर्फ स्टेटमेंट ही पूछ रहे हैं ना।
1: भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है।
5: फिर से मैं चैलेंज देता हूं राहुल गांधी को, आप सदन में आइए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं और आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, यह भी बताना चाहूंगा। और भ्रम मत फैलाइए, कोई गोली नहीं चली है जंतर मंतर में और कोई गोली का ऑर्डर नहीं दिया गया है जंतर मंतर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़प के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खेयांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।
6: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच के नेतृत्व में हजारों अभ्यर्थियों ने विधानसभा की ओर मार्च किया और कई बैरिकेडिंग पार करने का प्रयास किया, जिसके बाद पुलिस ने वाटर कैनन और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के अनुसार प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की और पुलिस कर्मियों पर पथराव भी किया, जिसके बाद बल का प्रयोग किया गया। रांची सिटी एसपी पारस राणा और एसपी ग्रामीण गौरव गोस्वामी ने छात्रों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन की अपील करते हुए कहा कि पुलिस ने संयम बरता है। प्रदर्शनकारी जेएसएससी सीजी परीक्षा की स्वतंत्र सीबीआई जांच और जेपीएससी जेएसएससी परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की आलोचना करते हुए सीबीआई और ईडी जांच की मांग दोहराई है। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: इस वर्ष 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में युवा शक्ति और 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में देश के युवा शक्ति के योगदान को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ ही राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150

0: वर्ष पूरे होने का भी उत्सव मनाया जाएगा।
1: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐतिहासिक लाल किले से करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इस वर्ष के समारोह का एक प्रमुख आकर्षण वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव होगा। पहली बार स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का सामूहिक गान होगा। समारोह की दूसरी प्रमुख थीम युवा शक्ति विकसित भारत एट 2047 की यात्रा का नेतृत्व है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान राष्ट्र की सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है जो नागरिकों को विकसित भारत निर्माण के प्रयास में एकजुट करता है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस वर्ष वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के कारण यह अभियान हर देशभक्त के लिए भावुक बन गया है। उन्होंने नागरिकों से तिरंगा फहराने और हरघरतिरंगा.com पर अपनी सेल्फी अपलोड करने का भी आग्रह किया। जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा अभियान 2026 और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 गौरवशाली वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में डोडा जिला प्रशासन ने तिरंगा रैली का आयोजन किया। तिरंगा रैली को उपायुक्त कृष्णलाल ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज से झंडी दिखाकर रवाना किया। मणिपुर में हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत इम्फाल में बाइक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में हजारों बाइक सवारों ने हिस्सा लिया। सरकार ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVI के अंतर्गत 10 लाख प्रशिक्षण के लक्ष्य को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे भ्रामक दावे को खारिज कर दिया है। पत्र सूचना कार्यालय PIB के फैक्ट चेक इकाई ने स्पष्ट किया है कि PMKVI के तहत ऐसी कोई घोषणा नहीं की गई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में कल मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कल अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने पूरे सप्ताह पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पदक विजेताओं से कल नई दिल्ली में अपने आवास पर मुलाकात की। पदक जीतने वाले खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री से राष्ट्रमंडल खेल के अनुभव साझा किए। श्री मोदी ने कहा कि सम्मान केवल पदक जीतने में नहीं बल्कि एक युवा प्रतिभा के रूप में उत्कृष्ट खेल दिखाने में है।
2: आपके इस अचीवमेंट को सिर्फ आपका अचीवमेंट मानता हूं ऐसा नहीं है, ये आपका विजय आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा बन जाता है। अगर आप लोग खेलो इंडिया की प्रतिष्ठा बढ़ाते हैं, और प्रतिष्ठा सिर्फ वहां जाकर के रिबन काटने से नहीं होगी, आप वैसे ही खेलेंगे जैसे एक छोटा खिलाड़ी खेलता है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा क्योंकि अभी तो हमें बहुत आगे जाना है।
0: भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते हैं। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है और दोनों पूल से शीर्ष दो टीम सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। भारतीय पुरुष टीम को पूल डी में इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ रखा गया है, जबकि भारतीय महिला टीम पूल डी में चीन, इंग्लैंड और दक्षिण अफ्रीका का सामना करेगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में अंगदान, मिथक तोड़ना, जीवन बचाना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस परिचर्चा में राष्ट्रीय अंग और उत्तक प्रत्यारोपण संगठन के निदेशक डॉक्टर अनिल कुमार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के डॉक्टर राजेश सिन्हा भाग लेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय हैंडलूम डिजाइनर्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया। इसमें डिजाइनर, बुनकर, नेते निर्माता और उद्योग से जुड़े लोग शामिल हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने देश के विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार सृजित करने के लिए कराधान विधेयक पारित किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आश्वासन दिया, UPI लेन देन पर कोई शुल्क नहीं। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को साक्ष्य के रूप में कानूनी मान्यता देने वाले विधेयक को भी संसद से मंजूरी।

0: बहस में हिस्सा लें। जनाब बिरला ने तामीरी बहस, बामायने शिरकत और आला तरीन पार्लियामानी रिवायात की पाबंदी की अहमियत पर जोर दिया। स्पीकर मौसूफ ने सभी पार्टियों से उनके तआवुन की अपील की ताकि ऐवान की कार्रवाई को बिला रुकावट और मुनज्जम तरीके से चलाया जा सके और लोगों से वाबस्ता मामलात पर एक जामे और सूदबंद बहस हो सके। उन्होंने कहा कि लोगों के मामलात के सिलसिले में इस तरह से इंतजार नहीं कराया जा सकता और उनका इस ऐवान में इजहार किया जाना चाहिए, उन पर बहस होनी चाहिए और उनका हल निकाला जाना चाहिए। पीएसी मीटिंग के बाद पार्लियामेंट के अहाते में नामानिगारों से बात करते हुए पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि हुकूमत तलबा के हालिया एहतजाज और मुतालिका मामलात पर पार्लियामेंट में तफसीली बहस के लिए तैयार है। इस बात की यकीन दहानी कराते हुए कि वजीर दाखिला अमित शाह हर मामले पर जवाब देने के लिए तैयार हैं, जनाब रिजिजू ने कहा कि शहरियों को हकायक जानने का हक हासिल है। उन्होंने अपोजिशन पर ऐवान में नज्म व जब्त बरकरार रखने और कार्रवाई में मजीद रुकावट न डालने पर जोर दिया। जनाब रिजिजू ने अपोजिशन से ऐवान की कार्रवाई चलने देने की अपील की ताकि वजीर दाखिला अमित शाह तलबा के एहतजाज के सिलसिले में बयान दे सकें और अपोजिशन अरकान की जानिब से उठाए गए सवाल का जवाब दे सकें।
1: छात्र आंदोलन पर पूरा डिटेल में चर्चा दिल्ली में और देश भर में जो भी छात्र से संबंधित अभी जो भी आंदोलन चल रहे हैं उसका चर्चा हो सकते हैं। मेरा अनुरोध है कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के साथियों को कि जब छात्र आंदोलन को लेकर के सरकार चर्चा के लिए तैयार है तो आप बिल्कुल चर्चा के दौरान हंगामा नहीं करेंगे और गृह मंत्री जी का सरकार का जवाब पूरी तरह से सुनेंगे।
0: वजीर मौसूफ ने जोर देकर कहा कि हुकूमत पार्लियामानी बहस से कभी पीछे नहीं हटी है। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि बीएसई मीटिंग के दौरान हुकूमत ने इस मामले पर जामे बहस के सिलसिले में वाजे तौर पर अपनी आमादगी जाहिर की थी। लोकसभा ने ट्रिब्यूनल्स इस्लाही बिल 2026 को मंजूरी दे दी है। इस बिल का मकसद मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स में चेयरपर्सन और अराकीन की अहलियत, आजादी और तकरूरात और खिदमात को यकीनी बनाते हुए शफाफियत में इजाफा करना है। साथ ही इस बिल का मकसद ट्रिब्यूनल्स की इंतजामिया और कामकाज को बेहतर बनाना है। ये कानून नेशनल ट्रिब्यूनल्स कमीशन के क्याम की भी तजवीज पेश करता है। लोकसभा में नीट मामले पर तलबा के एहतजाज के खिलाफ मुबैना पुलिस कार्रवाई समेत मुख्तलिफ मामलों पर अपोजिशन अराकीन की जानिब से हंगामा आराई के दौरान इस बिल को बगैर किसी बहसो मुबाहिसे के मंजूर कर लिया गया। हंगामा जारी रहने पर सदर नशी ने लोकसभा की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। पेट्रोलियम और कुदरती गैस के वजीर मुमलिकत सुरेश गोपी ने मुत्तला किया है कि हुकूमत ने पेट्रोल में 20% से ज्यादा एथेनॉल की आमेजिश से मुतालिक कोई फैसला नहीं किया है। वजीर मौसूफ ने राज्यसभा में एक सवाल के तहरीरी जवाब में ये बात कही। जनाब गोपी ने कहा कि मुस्तकबिल में एथेनॉल की आमेजिश बढ़ाने के सिलसिले में कोई भी फैसला सिर्फ तफसीली साइंसी और तकनीकी मुताले और सभी मुतालिका फरीकों के साथ सलाह मशवरे के बाद ही किया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने दौलत मुश्तरका खेल 2026 में तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों से कल नई दिल्ली में अपनी रिहायशगाह पर मुलाकात की। बातचीत के दौरान तमगे हासिल करने वाले खिलाड़ियों ने वजीर आजम के साथ खेलों के अपने तजुर्बात के बारे में बातचीत की। जनाब मोदी ने खिलाड़ियों को मुबारकबाद दी और मुस्तकबिल में उनकी कामयाबियों के लिए एतमाद का इजहार किया।
2: स्पोर्ट्स व्यवस्था एक बात है लेकिन देश मेडल तब प्राप्त करता है जब देश में स्पोर्ट्स कल्चर बनता है। दोस्तों आपने बहुत बड़ा काम किया है, देश का नाम रोशन किया है, आपको मैं बहुत बधाई देता हूं और आप विश्वास कीजिए आगे भी आप विजयी होंगे और फिर से एक बार यहीं पर हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही है। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाब्तगियों के खिलाफ तलबा की जानिब से एहतजाज के तौर पर विधानसभा का घेराव करने की कोशिश के सबब आज भी रांची में सूरत हाल कशीदा रही। पुलिस ने मुजाहिरीन को रोकने के लिए पानी की बौछार, आंसू गैस का इस्तेमाल और लाठी चार्ज किया। इस दौरान जेपीएससी के साबिक चेयरमैन एल क्यांगेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच की क्यादत में हजारों तलबा ने विधानसभा की जानिब मार्च किया और कई बैरिकेड्स पार करने की कोशिश की। इसके बाद पुलिस ने पानी की बौछार की और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। पुलिस के मुताबिक कुछ मुजाहिरीन ने बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश की और पुलिस पर पथराव किया, जिसके बाद पुलिस ने भी ताकत का इस्तेमाल किया। रांची सिटी के एसपी पारस राणा

0: और एसपी रूरल गौरव गोस्वामी ने तलबा से अमन बरकरार रखने की अपील की और कहा कि पुलिस ने तहम्मुल से काम लिया है। मुजाहिरीन जेएसएससी सीजीएल इम्तिहानात के ताल्लुक से सीबीआई के जरिए गैर जानिबदाराना छानबीन कराए जाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान झारखंड के सीआईडी ने भर्ती इम्तिहानात में मुबैना बेजाबतगियों के सिलसिले में जेपीएससी के साबिक चेयरमैन एल कियांगटे को गिरफ्तार किया है। दिफाई उमूर के मरकजी वजीर मुमलकत जनाब संजय सेठ ने पुलिस कार्रवाई की नुक्ताचीनी की है। नीज सीबीआई और ईडी के जरिए छानबीन कराए जाने की मांग को दोहराया है। इस दौरान हजारीबाग से बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट मनीष जायसवाल ने मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह से बात की और इस मामले की सीबीआई के जरिए जांच कराने की तलबा की मांग को दोहराया। पुलिस कार्रवाई और जेपीएससी चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद मामला मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया है। रांची से महविश रहमान की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
1: इस साल 80वें यौम आजादी की तकरीबात में युवा शक्ति और विकसित भारत की तामीर में नौजवान भारत के तावुन के साथ साथ कौमी गीत वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने को उजागर किया जाएगा। आज नई दिल्ली में मीडिया को तफसील बताते हुए दिफा के सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि तारीफी लाल किले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी तकरीबात की क्यादत करेंगे। वजीर आजम कौमी परचम फहराएंगे और मुल्क से खिताब करेंगे। पहली मरतबा यौम आजादी की तकरीबात में लाल किले की फसील से कौमी गीत गाया जाएगा। मुल्क भर में जारी हर घर तिरंगा मुहिम में नुमाया तौर पर तेजी आ रही है और ये जिंदगी के सभी शोबों से ताल्लुक रखने वाले शहरियों को मुल्क के कौमी फख्र और इत्तेहाद के जज्बे का मिलकर जश्न मनाने की तरकीब दे रही है। हर घर तिरंगा मुहिम इस माह की 17 तारीख तक जारी रहेगी और ये इस साल वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह से मुताबिकत रखती है, जिससे सभी शहरियों के लिए ये एक पुरजोश मौका बन गया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने सभी से इस मुहिम में जोशो खरोश के साथ शामिल होने और विकसित भारत की तामीर के सिलसिले में अपने ताउन के मजमुई अज़्म का इआदा करने पर जोर दिया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने सभी शहरियों से इसमें शामिल होने और तिरंगा यात्रा, तिरंगा रैली और बड़े पैमाने पर वंदे मातरम गाकर और तिरंगा फहराकर और हर घर तिरंगा .com पर सेल्फी अपलोड करके जश्न मनाने की अपील की है। उधर जम्मू कश्मीर में हर घर तिरंगा मुहिम के एक हिस्से के तौर पर सभी अजला में तिरंगा यात्रा और हुब्बुल वतनी के प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने कहा कि आबनाए हुरमुस तब तक नहीं खुलेगी जब तक वाशिंगटन तेहरान के खिलाफ अपनी बहरी नाकाबंदी जारी रखेगा। तेहरान में आज हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए बकाई ने कहा कि ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइली फौज की जारहियत की वजह से तवानाई की सप्लाई की अहम बहरी गुजरगा आबनाए हुरमुस को बंद किया गया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि आबनाए हुरमुस का दोबारा खोला जाना अमरीका और इसराइली हुक्काम की जानिब से ईरान पर आयद की गई शराइत पर मुनहसिर है। भारतीय महकमा मौसमियात ने कल हिमाचल प्रदेश और मशरक़ राजस्थान में शदीद से बहुत शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महकमे के मुताबिक कल अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, छत्तीसगढ़, गंगा की तराई वाले मगरबी बंगाल, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कहीं कहीं तेज बारिश हो सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, कोंकण, गोवा, वस्ती, महाराष्ट्र, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, पंजाब, उत्तराखंड, मगरबी मध्य प्रदेश और मगरबी राजस्थान में भी इसी तरह का मौसम रहेगा। एफआईएच मर्दों और खवातीन के हॉकी आलमी कप 2026 के मुकाबलों में ढांचा जाति तब्दीली की गई है। रिवायती क्वार्टर फाइनल मरहला खत्म कर दिया गया है और दो क्रॉस ओवर पूल्स के जरिए टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। बेल्जियम और नीदरलैंड मुश्तरका तौर पर इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे। ये टूर्नामेंट इस माह की 15 तारीख से शुरू होकर 30 तारीख तक जारी रहेगा। नए फॉर्मेट के तहत टीमों के लिए इब्तिदा से गलती की गुंजाइश बहुत कम होगी क्योंकि इब्तिदाई मरहले के नतीज अगले मरहले पर भी असरअंदाज हो सकते हैं। भारतीय मर्दों की टीम को इंग्लैंड, पाकिस्तान और वेल्स के साथ पूल डी में रखा गया है जबकि भारतीय खवातीन खिलाड़ी पूल डी में चीन, इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमों से मुकाबला करेंगे। और आखिर में खास खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। पार्लियामेंट ने मुल्क के मैन्युफैक्चरिंग इको निजाम को मुस्तहकम करने, सरमायाकारी रागिब करने और रोजगार के मौके पैदा करने की खातिर टैक्सेशन बिल को मंजूर कर लिया है। वजीर खजाना निर्मला सीतारमन ने यकीन दहानी कराई है कि यूपीआई लेन देन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को शवाहिद की हैसियत से कानूनी तौर पर तस्लीम किए जाने से मुतालिक कानून को भी पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी है। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने अपोजिशन पर जोर दिया है कि वो तलबा के एहतजाज से मुतालिक मामलात पर वजीर दाखिला अमित शाह के बयान के लिए लोकसभा की कार्रवाई चलने दे। झारखंड में भर्ती इम्तिहानात में बेजाब्तगियों पर तलबा के एहतजाज में तेजी आ गई है। तलबा ने पुलिस कार्रवाई के दरमियान रांची में असेंबली की

0: ने मार्च किया और 80वें यौम आजादी की तकरीबात में युवा शक्ति और विकसित भारत 2047 के लिए नौजवान भारत के तावुन को उजागर किया जाएगा। पहली मरतबा वंदे मातरम लाल किले की फसील से गाया जाएगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।

0: नमस्कार दोस्तों, कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं मुनीश शर्मा। दोस्तों, जिंदगी एक खूबसूरत सफर है और हर इंसान की चाहत रहती है कि हंसी खुशी ये सफर यूं ही चलता रहे, लेकिन प्रकृति का ये विधान है कि एक ना एक दिन ये सफर भी पूरा होगा। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि जब ये सफर खत्म होगा तब क्या हमारे पीछे ऐसा कुछ रह सकता है जो किसी और हम सफर के जीवन के बुझते हुए चरा।
1: 50 में बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्रामिंग चार्ज दिल्ली से आए,
2: संगीतकार रवि,
1: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम डोरियां रिकॉर्ड करना चाहते, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुनाया जाते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पूरे पकाए दूर के।
3: आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में।
2: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

फिल्म संगीत के चाहने वालों में बिरला ही कोई होगा जिसने महल फिल्म का ये गीत ना सुना होगा। हम बात कर रहे हैं 40 के दशक के मशहूर संगीतकार खेमचंद प्रकाश की। दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से कलाकार ऐसे हुए हैं जिन्हें समुचित सम्मान और प्रसिद्धि मृत्यु उपरांत मिली है। खेमचंद प्रकाश उन्हीं में से एक थे।

खेमचंद प्रकाश का जन्म 12 दिसंबर 1907 को राजस्थान के सुजानगढ़ में हुआ था। न केवल संगीत बल्कि नृत्य की भी आरंभिक शिक्षा उन्हें अपने पिता से मिली, जो राज दरबार में ध्रुपद गायक और कथक नर्तक थे। किशोरावस्था में ही खेमचंद प्रकाश को पहले बीकानेर और उसके बाद में नेपाल के राज दरबार में गायक कलाकार के रूप में नियुक्ति मिल गई थी। आगे किस्मत उन्हें कोलकाता ले आई, जहां वे सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माण कंपनी न्यू थिएटर्स में नियुक्त हुए। 1935 में बनी फिल्म देवदास के संगीतकार तिमिर बरन के सहायक के रूप में उन्होंने काम शुरू किया। 1938 की फिल्म स्ट्रीट सिंगर के लिए खेमचंद प्रकाश ने एक मजाहिया गीत भी गाया। उसके बाद खेमचंद प्रकाश मुंबई आ गए। शुरुआत हुई 1939 में। सुप्रीम पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्में मेरी आंखें और गाजी सलाउद्दीन के लिए उन्होंने संगीत निर्देशन किया।

और फिर बहुत जल्द रणजीत मूवीटोन फिल्म स्टूडियो के नियमित संगीतकार के रूप में खेमचंद प्रकाश नियुक्त हुए। उस शुरुआती दौर में रणजीत मूवीटोन की फिल्में थीं दिवाली, होली, परदेसी, फरियाद इत्यादि। उन दिनों खेमचंद प्रकाश के गीतों में ज्यादातर स्वर होता था खुर्शीद का। इस जोड़ी ने 40 के दशक के आरंभ में बहुत से मशहूर गीत दिए। 1943 में बनी रणजीत स्टूडियो की फिल्म तानसेन जबरदस्त हिट हुई।

1948 में बॉम्बे टॉकीज की फिल्म आई जिद्दी। इस फिल्म में एक गायक के रूप में किशोर कुमार को सबसे पहला अवसर दिया संगीतकार खेमचंद प्रकाश ने। जिद्दी का ही एक और गीत जो लता जी ने गाया था, संगीत प्रेमियों द्वारा खूब पसंद किया गया।

और फिर 1949 में आई फिल्म महल। महल के पहले बाजार में फिल्मी गीतों के जो रिकॉर्ड्स मिलते थे, उन ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स पर फिल्म की कहानी के उस गीत को पर्दे पर गाने वाले पात्र का नाम हुआ करता था। महल फिल्म का ये गीत आएगा आने वाला रिकॉर्ड पर इन बोलों के आगे नाम लिखा था कामिनी। ऑल इंडिया रेडियो से ये गीत प्रसारित हुआ। बहुत से सुनने वालों ने रेडियो के दफ्तर में फोन करके जानना चाहा कि ये आवाज किसकी है, और फिर रेडियो से गायिका का नाम प्रसारित हुआ, लता मंगेशकर। संगीतकार खेमचंद प्रकाश। इस गीत को और लता जी को बेशुमार शोहरत हासिल हुई, मगर अफसोस महल के रिलीज होने से 2 माह पूर्व 10 अगस्त 1950 को संगीतकार खेमचंद प्रकाश 42 वर्ष की अल्पायु में इस संसार से विदा हो चुके थे।

0: आज का ये कार्यक्रम केंद्रित था संगीतकार खेमचंद प्रकाश पर, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब जयंत पात्रीकर को दीजिए इजाजत।
1: आज के फनकार।

0: माननीय सभापति जी,
1: क्वेश्चन आवर क्वेश्चन नंबर 226 डॉक्टर के लक्ष्मण गौरव।
2: प्रश्न संख्या 226, क्या विद्युत मंत्री ये बताने की कृपा करेंगे कि क विद्युत संशोधन नियम 2026 तथा राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के प्रारूप के अंतर्गत प्रस्तावित प्रमुख उद्देश्य तथा प्रमुख सुधार क्या हैं? ख इन सुधारों से विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिरता में सुधार, परिचालन दक्षता में वृद्धि तथा उपभोक्ताओं को विश्वसनीय एवं 2400 घंटे बिजली आपूर्ति किस प्रकार सुनिश्चित होने की संभावना है? और ग इन सुधारों को अंतिम रूप देने से पूर्व राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों से परामर्श करने तथा देश भर में इनके प्रभावी कार्यान्वयन को सुगम बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?
1: फर्स्ट सप्लीमेंट्री डॉक्टर के लक्ष्मण गौरव।
3: सर, अंडर द विजनरी लीडरशिप ऑफ अवर बिलोड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, India's power sector has undergone a historic transformation with a strong focus on ensuring affordable, reliable and sustained electricity for every year. And due to Modi ji government's policies, states like Telangana has witnessed rapid growth in industries, data centers, urban infrastructure leading to increasing electricity demands, sir, which has significant potential for solar energy, including decentralized and agricultural solarization. So through you, I request the Honorable Minister to explain how the proposed reforms will encourage greater adoption of distributed renewable energy, battery energy storage and smart distribution system in states like Telangana while ensuring the financial sustainability of DISCOMs. Thank you, sir.
2: Shri Manohar Lal, Vidyut Mantri.
4: Sabhapati Mahoday, पॉलिसी 2026 इसको तैयार करने में डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी, बैटरी एनर्जी स्टोरेज और स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी की फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी मजबूत करने के लिए कई प्रावधान शामिल किए गए हैं और जो प्रावधान बनाए गए हैं वो सारे देश भर के लिए लागू होंगे और तेलंगाना में भी उसी प्रकार से उनको लागू किया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड रिन्यूएबल एनर्जी तीव्रता से लाने के लिए ड्राफ्ट पॉलिसी स्टोरेज के साथ सबसे पहले रूफ टॉप सोलर, उसके बाद पीयर टू पीयर एनर्जी ट्रेडिंग, इस प्रकार के प्रावधान, रिन्यूएबल एनर्जी को ओपन एक्सेस, इसमें भी सेल्फ सेल करने का प्रावधान रखा गया है। को लोकेटेड स्टोरेज अर्थात जहां जनरेशन होगी उसके निकट ही स्टोरेज के प्रावधान, चाहे बैटरी स्टोरेज के हो अथवा पंप स्टोरेज के हो, उनको रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के साथ जोड़ा गया है और इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज एग्रीगेटर को बेहतर रिन्यूएबल एनर्जी का फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी हमेशा एनवायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है और एनवायरमेंट की फोरकास्टिंग और शेड्यूलिंग एक बहुत इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान है, इसलिए ये पॉलिसी अपने सभी आयामों को ध्यान में रखकर के बनाई गई है और इस पॉलिसी में नए प्रकार की टेक्नोलॉजी जैसे फ्लोटिंग सोलर, एग्री फोटोवोल्टिक सॉल्यूशन और रिन्यूएबल एनर्जी के ट्रांसमिशन ऑप्टिमाइज डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करता है, अर्थात सोलर एनर्जी को अधिक से अधिक उपयोग हम कैसे कर सके इसका भी इसमें प्रावधान रखा गया है। वेरिएबल रिन्यूएबल एनर्जी को मैनेज करने ग्रिड स्टेबिलिटी, क्योंकि ग्रिड स्टेबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण पार्ट इसमें आता है, क्योंकि ये डे टाइम में ही, यानी सोलर एनर्जी डे टाइम में ही मिलेगा और ग्रिड की स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए हमको उसमें भी ध्यान रखना पड़ता है, उसको सुधारने के लिए, पीक डेफिसिट को कम करने के लिए बैटरी स्टोरेज सिस्टम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और बैटरी स्टोरेज

सिस्टम पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स इनको लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज टेक्नोलॉजी बैटरी कंपोनेंट को भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अब से पहले बैटरी के कंपोनेंट ये सभी इंपोर्ट करने पर ज्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अब क्योंकि हमें अपने मेक इन इंडिया के आधार पर और सभी प्रोडक्ट को हम जो डोमेस्टिक मार्केट बेस्ड प्रोत्साहन मैकेनिज्म को इसको बढ़ावा दे रहे हैं। धन्यवाद। स्मार्ट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए ये ड्राफ्ट जो पॉलिसी बनाई गई है जिसको सर्कुलेट किया गया था और सभी जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स थे सबका कंसल्टेशन कर लिया गया है, ये फाइनलाइज करने के राह पर है। और इसके अंदर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की डिप्लॉयमेंट इसके बारे में पूछा गया, डिस्ट्रीब्यूटर एनर्जी रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑपरेटर या डीएसओ फ्रेमवर्क ये भी बनाया गया है, डिमांड साइड मैनेजमेंट, क्योंकि डिमांड साइड मैनेजमेंट और सप्लाई साइड मैनेजमेंट दोनों का ध्यान रखेंगे तभी हम रेगुलर पावर की सप्लाई हम कर पाएंगे। और ऐसे ही डिमांड का रिस्पॉन्स क्या है स्मार्ट ईवी चार्जिंग, क्योंकि आगे आगे अब हमारी जो डिमांड है चाहे डाटा सेंटर्स हो अथवा ईवी चार्जिंग हो, एआई का जो इस्तेमाल हो, इससे एनर्जी की डिमांड ये हमारी बढ़ने वाली है। इसलिए जीआईएस बेस्ड एसेट मैपिंग और डिजिटल ट्विन, इसी प्रकार टाइम ऑफ यूज टैरिफ, यानी टाइम ऑफ यूज में जिस समय हमारे पास सोलर पावर ज्यादा है उस समय उसका यूज ज्यादा बढ़े, जब हमारे पास पावर की कमी है उस समय डिमांड उसकी शिफ्ट की जाए, तो टाइम ऑफ यूज टैरिफ को भी इसका प्रोत्साहन देने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटीज के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग इसमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है ताकि नई टेक्नोलॉजी का भी इसमें उपयोग किया जा सके। मान्यवर, डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी, क्योंकि आज पावर डिपार्टमेंट का सबसे ज्यादा अगर कोई कठिन बात है वो डिस्कॉम्स की फाइनेंशियल वायबिलिटी एक कंसर्न है। सभी डिस्कॉम्स ये लगभग घाटे में जा रहे हैं और टोटल देश भर के डिस्कॉम्स का जो घाटा है इस समय लगभग 6,85,000 करोड़ रुपया हो गया है। इसको कैसे कम किया जाए, क्योंकि लंबे समय तक डिस्कॉम घाटे में चलेंगे तो फिर वो सस्टेनेबल नहीं रहेगा। इसलिए मल्टी ईयर टैरिफ फ्रेमवर्क ये जो होता है उसके तहत टाइमली कॉस्ट रिफ्लेक्टिव टैरिफ ये कैसे बनाया जाए इसमें इसका यानी हमें उपयोग करना है। पावर परचेज कॉस्ट और ऑटोमेटिक पास थ्रू, जितनी कॉस्ट आएगी उसको पास थ्रू कैसे करेंगे, ये अभी तक ऑटोमेटिक नहीं था, इसको समझौते के तहत किया जाता था, लेकिन ऑटोमेटिक टैरिफ के अंदर उसका जो है कैसे पास थ्रू हो। हमारे एपीएमसी लॉसेज एक समय था 2014 में जब 30% से भी ऊपर था, अभी देश भर का जो एपीएमसी लॉसेज है वो लगभग 15% है, काफी कम आया है, लेकिन इसको और भी हमको इसको कम करना है, वो भी इस पॉलिसी के अंदर दर्शाया गया है। कैसे लॉस रिडक्शन हो, कैसे हमारा परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, यानी कोई प्लांट परफॉर्मेंस अच्छा करता है उसको कैसे इंसेंटिव दिया जाए, इसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। इसी प्रकार गवर्नेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो, क्योंकि कॉस्ट को कम करने के लिए कई तरीके होंगे जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ऑपरेशनल कॉस्ट ये कैसे कम हो, ये पॉलिसी स्टेट गवर्नमेंट और सब्सिडी बर्डन इसका कम करने के लिए स्टोरेज के साथ साथ एग्रीकल्चर फीडर के संचालन को भी प्रभावित करती है। तो हमने तीन प्रकार के और प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा बीमा योजना ने पीएम कुसुम की तीन योजनाएं बनाई गई है। पहली योजना उसके अंदर जिसको कंपोनेंट ए कहेंगे वो 2 मेगावाट तक ग्रिड कनेक्टेड रिन्यूएबल एनर्जी पावर सिस्टम इसके ऊपर डाला जाएगा, और चाहे वो कोई भी जमीन हो, कल्टीवेटर हो अथवा बैरन हो, इसमें पावर को बना सकते हैं, पावर को ग्रिड से प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा एनर्जी को दे नहीं सकते हैं। एक योजना उसमें कंपोनेंट बी है जिसके अंदर हम ऑफ ग्रिड इस प्रकार के कनेक्शन देते हैं, ना पावर ली जा सकती ना दी जा सकती है, केवल किसान अपने उपयोग के लिए उस सोलर पावर का उपयोग कर सकता है। और कंपोनेंट सी, इसमें एक्स्ट्रा पावर यदि बनती है तो ग्रिड में डाल करके किसान जो अपनी इनकम भी कर सकता है, अगर किसान को अपनी फसल के इनकम के साथ साथ ऊर्जा दाता बन करके और ऊर्जा की इनकम अपने साथ जोड़नी है तो किसान को एक बहुत बड़ा लाभ इसमें होने वाला है। तो मान्यवर,
ऐसे ही जो हमारे डाटा सेंटर्स हैं वो लगातार इसमें बढ़ रहे हैं। हम टेक्नोलॉजी के नाते से स्मार्ट मीटर का प्रावधान इसमें किया गया है और स्मार्ट मीटर में भी ऑप्शनली

ने भी कहा कि पोस्ट पेड किस प्रकार से लागू किया जाए, तो पोस्ट पेड के हिसाब से भी हमने सबसे पहले गवर्नमेंट मीटर और उनको अलाउ किया है तो पोस्ट पेड पर आए, बाकी सबको ऐच्छिक रखा गया है, कोई आएगा तो अच्छा है, स्टेट्स इसके लिए इंसेंटिव किसके

0: अपने सेकेंड सप्लीमेंट्री सतरंग सिंह सांडो जी,
1: बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पंजाब में एफिशिएंट पावर इंफ्रास्ट्रक्चर देने के लिए 9,600 करोड़ रुपए का आपने सैंक्शन किया। पंजाब के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं। इलेक्ट्रिसिटी हमारे किसान की खेती के लिए बैकबोन है चेयरपर्सन साहब, और हाईली डिपेंडेंसी हमारी इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। 14 लाख ट्यूबवेल से किसान खेती के लिए पानी निकालता है, और मैं किसान का बेटा हूं, मैंने देखा कि खेतों में जो खंभे लगे हैं बिजली के वो हमारे लिए बाधा बन रहे हैं। मैं मंत्री जी का धन्यवाद भी करना चाहूंगा, सवाल भी पूछना चाहूंगा कि खेतों में से खंभे हटाकर अंडरग्राउंड केबल डालने के लिए अभियान चल रहा है, वो कब तक पूरा हो जाएगा, और पंजाब सरकार को कितनी सहायता दी जा रही है केंद्र की ओर से, मेरा ये सवाल है। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सभापति महोदय, ये विषय चूंकि पंजाब के आंकड़ों से जुड़ा हुआ है, वैसे तो सारी योजनाएं जो भी बनाती है प्रदेश सरकारें बनाती हैं और अपने दायरे को रख करके ध्यान में रख करके बनाती हैं। पंजाब की जो फाइनेंशियल वायबिलिटी डिस्कॉम की, जैसा मैंने पहले कहा, ये बहुत ही अच्छी नहीं है, तो पंजाब की डिस्कॉम की फाइनेंशियल वायबिलिटी को देख करके ही उनको ऋण मिलता है। ये ठीक है कि पंजाब के मुख्यमंत्री स्वयं मुझे मिलने आए थे, उनको ऋण की आवश्यकता REC से PFC से थी, लेकिन REC PFC एक ऑटोनोमस बॉडी है, उनको उसकी वायबिलिटी अपने आप देखनी है कि कौन सा लोन हमको देना कौन सा नहीं देना है। हाँ, जहां तक पावर किंग की डिमांड है, इस डिमांड को भी समय समय पर पूरा करते हैं, जब भी ये मांगते हैं तो करते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी हैं हमारे कहने के अनुसार भी पंजाब के डिस्कॉम्स या पंजाब की सरकार उसको आगे नहीं बढ़ती है। आगे न बढ़ने के कारण से, स्टेलमेंट के कारण से चीजें सहानुभूतिपूर्वक सोची नहीं जा सकती। उसका कारण है कि बाजार में बिजली मिलती है, अगर खरीदनी है तो बाजार से खरीदी जा सकती है, लेकिन बाजार से खरीदने के लिए पंजाब के पास पैसा नहीं है। और पंजाब ने विशेष तौर पिछले साल का जो एक हमारा प्रयोग करने का ऑर्डर होता है उसमें एक एम्बिग्युटी पाई गई, उस एम्बिग्युटी के कारण से उनका केस एप्पल में चला गया। एप्पल ने अभी निर्णय देना है, जैसे ही ये एप्पल का 18 अगस्त को डेट लगी है, उस प्रकार से जैसा निर्णय आएगा इनकी फाइनेंशियल ठीक होंगे तो इनको पूरी सहायता की जाए, इसमें कोई दिक्कत नहीं।
0: श्रीमान विजय चंदाकालिया जी, श्रीमान विजय चंदाकालिया जी,
1: धन्यवाद जी, धन्यवाद चेयरमैन जी। सर, पूरी माह का ग्रीन हाइड्रोजन हब इन अनकापल्ली डिस्ट्रिक्ट, सर दिस इज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन हब इनॉग्रेटेड बाय अवर प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। First in my bloodline, I'm witnessing this green hydrogen plant in our own district. So the project envisages an investment of approximately 1.85 lakh crore, including 20 gigawatt of renewable energy capacity, and is planned to produce 1500 TDP of green hydrogen and 7500 TDP of green hydrogen derivatives. So my question here is, I want to ask the honorable minister if the government is considering measures to ensure time-bound coordination between NTPC, the Central Transmission Utility, and other concerned central agencies for the required transmission and grid connectivity, so that adequate power infrastructure is in place ahead of commissioning and does not constrain the hub's planned capacity or future expansion, sir.
2: Honorable Minister, Sabhapati Mahoday, वैसे तो जो उन्होंने प्रारंभ किया कौन से प्रोजेक्ट के लिए पूछ रहा है ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आया है, लेकिन फिर भी इन जनरल जो मैंने विषय उठाया कि ट्रांसमिशन की जो कठिनाई है, जो दिक्कत है, मैं मानता हूं बहुत से एरियाज में अलग अलग कारणों से ट्रांसमिशन लाइन्स की दिक्कतें आती हैं। ट्रांसमिशन लाइन चूंकि बहुत से मल्टी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है, जनता का विरोध भी होता है, किसानों का विरोध भी होता है, एनवायरमेंटल इश्यूज भी होते हैं, उन सबको सुधार करने के बाद हम ROW का जो फैक्टर विशेष तौर पर रहता है उसके लिए नई गाइडलाइंस तय की हैं, और नई गाइडलाइंस मुझे खुशी है इस बात की कि कुल मिलाकर 17-18 स्टेट्स ने नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है, और नई गाइडलाइंस जारी करने के बाद किसानों का कंपनसेशन पर्याप्त मात्रा में मिलने लग गया उनको, और वहां की लाइनें चालू हो गई हैं। लेकिन जहां कहीं ट्रांसमिशन लाइन भी नहीं बनेगी वहां इवैक्यूएशन करने में जनरेशन होने के बाद भी कठिनाई आएगी, इसलिए जहां कहीं भी विषय कर रहे हैं वो प्रश्नों के अलग से स्थान के बारे में कोई बताया गया तो जैसा अलग प्रश्न रखेंगे उसका उत्तर दे देंगे।

0: फोर्थ सप्लीमेंट्री श्रीमान प्रभु सर मनोज कुमार झा सो श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी,
1: मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं पहली बार इस सदन में मुझे बोलने का मौका मिला है। आपके माध्यम से मैं विद्युत मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि छत्तीसगढ़ जहाँ नया उद्योग धंधे खुल रहे हैं और लगातार विद्युत की आवश्यकता बढ़ रही है, तो क्या इस संबंध में दृष्टिगत रखते हुए जो बलौदा बाजार जिला है छत्तीसगढ़ का, वह सीमेंट उद्योगों का हब है और वहाँ लगातार ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है, तो क्या नवीन प्लांट ऊर्जा से संबंधित वहाँ लगाने की कोई योजना है या अन्य जिलों में छत्तीसगढ़ में कोई नई ऊर्जा से संबंधित हमारे ऊर्जा प्लांट लगाने की कोई योजना है? मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ इस सदन को जो मुझे यहाँ आप सबके बीच में पहली बार आज बात रखने का मौका मिला है। सादर प्रणाम।
0: आदरणीय मिनिस्टर,
2: आदरणीय सभापति जी, वैसे देश भर में इस समय पावर की कहीं भी शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि हमने इस बार हाईएस्ट पीक डिमांड पावर की 270.8 गीगावाट एवर हाईएस्ट इसको हमने आपूर्ति की है, और आज भी हमारी तैयारी है कि 284 गीगावाट की हमारे पास कैपेसिटी है। अगर और भी आवश्यकता पड़ेगी उसको हम पूरा करेंगे। अगले वर्ष भी 300 से ऊपर गीगावाट की हमने योजना बना ली है, इसलिए पावर देश भर में अब सरप्लस कहना कहें लेकिन पावर सफिशिएंट हम अपने देश के अंदर हैं। इसी प्रकार से अब हर प्रदेश में अपनी योजनाओं स्वयं बनाते हैं, किसी प्रदेश में कोई कमी नहीं रहती है। हाँ, यदि उनको पावर कहीं अपने रीजन के अंदर पावर नहीं मिलती है तो ट्रांसमिशन के कारण से पावर अगर नहीं पहुंचती तो अलग बात है, अन्यथा पावर काज ओपन मार्केट में भी उपलब्ध है और ओपन मार्केट में जितनी उपलब्ध होती है उतनी खरीद भी आती नहीं है। इसलिए छत्तीसगढ़ का जहां तक विषय है कहीं पावर की कोई भी हमारे पास हमारे रिकॉर्ड में नहीं है। किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में अगर कोई डिले हो रहा है तो स्थानीय विषय कोई हो सकता है, अगर अलग से उसका प्रश्न आएगा तो सब जवाब दे दें।
0: हाउस विल मीट अगेन एट 2 PM।
3: अभी आप आज राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्रवाई की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे। यू वर लिसनिंग टू द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द क्वेश्चन आवर इन राज्यसभा टुडे। दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम द दिल्ली स्टेशन ऑफ आकाशवाणी।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम गुलदस्ता, जिसमें आज आप सुनेंगे राजलक्ष्मी आहूजा की आवाज में

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से संसद में प्रश्नकाल, संसद समीक्षा सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से। अभी आपने सुना रात्रि 10 बजे संसद में प्रश्नकाल। हम आकाशवाणी के डाल्टनगंज केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 MHz पर। हमारी स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:20 और 54 सेकेंड हो चुके हैं। हम कुछ ही पलों में लेकर हाजिर हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा।

अभी आपने सुना फिल्म बागी के इस गाने को कविता कृष्णमूर्ति, अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में, समीर के बोल, आनंद मिलिंद के संगीत। और अब आइए सुनते हैं विनोद राठौर, अलका याग्निक की आवाज़ में, समीर के बोल, आनंद राज, आनंद के संगीत। फिल्म का नाम है बिच्छू।

आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। रात्रि के 10:32 और 44 सेकंड हो चुके हैं हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और अब आइए सुनते हैं राधा पौडवाल बापू सुप्रियो की आवाज़ में, जतिन ललित के संगीत, समीर के बोल, फिल्म का नाम ढाई अक्षर प्रेम।

अभी आपने सुना फिल्म सिर्फ तुम के इस गाने को अलका याग्निक की आवाज़ में, समीर के बोल, नदीम श्रवण के संगीत, और अब आइए सुनते हैं श्रेया घोषाल की आवाज़ में अजय अतुल के संगीत, स्वानंद किरकिरे के बोल हैं, फिल्म का नाम है सिंघम।

अभी आपने सुना फिल्म शहंशाह के इस गाने को लता मंगेशकर, मोहम्मद अजीज की आवाज़ में, अमर उत्पल के संगीत, आनंद बख्शी के बोल। श्रोताओं, आप सुन रहे फिल्म संगीत का कार्यक्रम रजनीगंधा। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10:55 और 16 सेकंड हो चुके हैं। आइए आखिरी पेशकश लेकर हाजिर हैं फिल्म साजन के इस गाने को SP बालासुब्रमण्यम की आवाज़ में, समीर के बोल, नदीम श्रवण के संगीत। आप सुने इस गाने को आखिरी पेशकश कार्यक्रम रजनीगंधा के, और इसके साथ ही इजाज़त लेते हैं आज के कार्यक्रम से। रात्रि 11 बजे जुड़ेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र की प्रसारण सेवा में हिंदी में समाचार, और 11:05 में अंग्रेजी में समाचार के लिए।

आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। संसद ने कराधान और अन्य विधियां संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है।

0: राज्यसभा ने इस विधेयक को चर्चा के बाद आज लोकसभा को वापस भेज दिया। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने ये विधेयक पेश किया था। चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य भारत के विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना और अधिक निवेश आकर्षित करना, रोजगार सृजित करना और विनिर्माण गतिविधियों को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि विधेयक में यूपीआई उपयोगकर्ताओं पर कोई कर या लेन देन शुल्क नहीं लगाया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि छोटे व्यापारियों और उपभोक्ताओं को यूपीआई पर एमडीआर शुल्क नहीं देना होगा। संसद ने बैंक कार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पारित कर दिया है। इस विधेयक को आज राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री सीतारामन ने कहा कि ये विधेयक देश को तेजी से आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
1: इस विधेयक में अन्य बातों के साथ साथ बैंकों के खातों के लिए एक प्रौद्योगिकी तटस्थ कानूनी ढांचा प्रदान करने का प्रावधान है। यह इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल बैंकिंग रिकॉर्ड को मान्यता देता है और प्रमाणीकरण प्रक्रिया को मानकीकृत करता है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग रिकॉर्ड की स्वीकार्यता आसान होती है। इसके अंतर्गत मैनुअल, डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरों के माध्यम से प्रमाणीकरण की अनुमति दी गई है।
2: परमिट्स ऑथेंटिकेशन थ्रू मैनुअल, डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर्स।
0: लोकसभा ने अधिकरण सुधार विधेयक 2026 पारित कर दिया है। स्थगन के बाद जब दोपहर 2 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विधि और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विपक्ष के हंगामे के बीच अधिकरण सुधार विधेयक 2026 प्रस्तुत किया। श्री मेघवाल ने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य कार्य प्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है।
3: इस विधेयक का उद्देश्य विभिन्न अधिकरणों के अध्यक्षों और सदस्यों की योग्यता, नियुक्ति और प्रशासन तथा कार्यप्रणाली में दक्षता सुधार, पारदर्शिता और एकरूपता सुनिश्चित करना है। साथ ही न्यायाधिकरणों के प्रशासन और कामकाज में सुधार करना, एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना करना और संबंधित अधिनियमों में परिणामी संशोधन करना भी है।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज सभी दलों के नेताओं से अपील की कि वे सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करें। संसद भवन में हुई कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में श्री बिरला ने सदन में जारी गतिरोध पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी दलों के नेताओं से अपील करते हुए कहा कि सदन की कार्यवाही चलने दें ताकि प्रश्नकाल हो सके और महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा की जा सके। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर संसदीय कार्यवाही में बाधा डालने और चर्चा में अपने विषय बदलने का आरोप लगाया है। पार्टी के नेता जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए कहा कि श्री गांधी का उद्देश्य चर्चा न करना और अराजकता फैलाना है। झारखंड में विधानसभा मार्च के दौरान छात्रों और पुलिस के बीच झड़पों के बाद परीक्षा भर्ती में अनियमितताओं को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगटे को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि सरकार छात्रों के विरोध प्रदर्शन और इससे जुड़े मुद्दों पर संसद में विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आश्वासन दिया कि गृह मंत्री अमित शाह हर मुद्दे का जवाब देने के लिए तैयार हैं। चीन में तूफान डॉल्फिन के कारण तेज बारिश के बाद बाढ़ आने की खबर है। लाखों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि तट से टकराने के बाद तूफान के कमजोर पड़ने के बावजूद खतरा बना हुआ है। आज सुबह तक फुजियान प्रांत में जमीन और समुद्र दोनों तरफ के संवेदनशील क्षेत्रों से 168,000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया। FIH हॉकी पुरुष और महिला विश्व कप 2026 इस सप्ताह के अंत में नए प्रारूप से शुरू होगा। प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल चरण को समाप्त कर दिया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।